आप कमाणे विछुड़ी दोष न काहू देण। कर कृपा प्रभु राख लियो और ना ही करण करेण। हर

नानक जीवे जप हरि दोख सबे ही हंत दिन रैन जिसना विसरे सो हरिया होवे जंत। सर्व कला प्रभ पूर्णो मंज निमाणी थाओ हर ओट दही।

खेड पंजवें खान पीन की तात छेवें कामना पुछे जात सतवें संघ किया परवास अठवें क्रोध हुआ तन नास नामे तौले उबे साहा दसवें गद्दा हुआ स्वाहा गए गीत पुकारी ताहा उड्या हंस।

मूं न जाने अकबल टंडोलिम टूंडिम दिख में नानक जग तूए का कमल हर पौरी तू करता पुरख अगम है आप सृष्ट उपाति रंग तरंग उपार्जना बहु बहु विध पाती तू जाने जिन उपाय सब खेल तुमाती एक आवे एक जाने उठ बिन नावे मर जाती गुरुमुख रंग चलू लिया रंग हर रंग राती सो सेवो सत निरंजनो हर पुरख विदाती तू आपे आप सुजान है वड पुरख वडाती जो मन चित तुद त्याय दे मेरे सच्चा बल बल हों तिन जाती।

जिन रच रचिया तिसे न जाने अंधा अंध कमाए जा पजे ता ठीकर होवे कारत करी न जाए नानक गुर बिन नाहे पत पत बिन पार न पाए। महला दूजा देंगे थावो दिता चंगा मनमुख ऐसा जानिए सुरत मत चतुराई ताकि क्या कर आंख वखाणिए अंतर बह के कर्म कमावे

ते साधु जा आख वखाणी है, जिचर तेरी जोत तिचर ज्योति विच तू बोले, विन ज्योति कोई किछ करो दिखा सियाणी है। नानक गुरमुख नदरी आया, हर इको सुगुण सुजानी है। पौड़ी तुद आपे जगत उपाय कै, तुद आपे तंदे लाया, मोठ गौली पाए कै, तुद आपो जगत खुआया। तिसना अंदर अग्न है, कितना पुखाते आया, सहसा यो संसार है, मर जमे आया जाया। दिन सतगुर मोह न टुटई, सब थके कर्म कमाया, गुरमति नाम ति आई है, सुख रजा जा तुद पाया। कुल उधारे अपना, तन जने दी माया, शोभा सुरत

कपड़ पहरा तोवा सदाकार बड़ा रत्ता पीला काला बेदा करी पुकार होए कुचील रहा मलतारी दुर्मत मत विकार ना हो ना मैं ना हो होवा नानक शब्द विचार महला पहला वस्त्र पखाल पखाले काया आपे संजम होवे अंतर मैल लगी नहीं जाने बारों मल मल तोवे अंदा पूल पया जम जाले वक्त पराई अपनी कर जाने होमे विच दुख काले नानक गुरमुख होमे तुटे ता हर हर नाम तिरावे नाम जपे नामो आराधे नामे सुख समावे पौड़ी काया हंस संजोग मेल मिलाया तिन्ही किया विजोग जिन उपाया मूरख भोगे भोग दुख सवाया सुखों उठे रोग पाप कमाया हरखों सोग विजोग उपाय खपाया मूरख गणत गणाए चगड़ा पाया सतगुर हथ निबेड़ चगड़ चुकाया करता करे सोहोग न चले चलाया श्लोक महला पहला पूर बोल मुर्दार खाए अवरी नो समझावन जाए मुठा आप मुहाए साथ है नानक ऐसा आगू जापे महला चौथा जिस दे अंदर सच है सो सच्चा नाम मुख सच अलाए ओ हर मार्ग आप चलदा होर नानो हर मार्ग पाए जे अग्गे तीर्थ होए ता मल लहे छप्पड़ नाते सगरी मल लाए तीर्थ पूरा सतगुरु जो अंदिन हर हर नाम के आए ओ आप छुटा कुटंब स्यो दे हर हर नाम सब सृष्टि छदाए जन नानक तिस बलिहारण जो आप जपे अवरा नाम जपाए पौड़ी एक कंद मूल चुन खाए वन खंड वासा एक पगवा वेश कर फिरे जोगी सन्यासा अंदर तृष्णा बहुत छादन भोजन की आशा बिरथा जन्म गवाए न गिरही ना उदासा जमकाल सिरो ना उतरे त्रिविद मनसा गुरमति काल ना आवे नेड़े जा होवे दासन दासा सच्चा शब्द सच मन कर ही मह उदासा नानक सतगुर सेवन अपना से आशा ते निराशा श्लोक महला पहला जे रत लगे कपड़े जामा होए पलीत जो रत पीवे मानसा तिन क्यों निर्मल चीत नानक नाव खुदाए का दिल हच्छे मुख ले हो अवर दिवा जे दुनी के झूठे अमल करे।

परया पर परतोवा आप न बुझा लोक बुझाई ऐसा आगू होवा नानक अंधा होए कै दसे राह सब समुहाए साथे अग्गे गया मोहे मोहे पाहे सो ऐसा आगू जापे पौड़ी महारुति सब तू करी मूर्त विचारा तू गणते किने न पायो सच्चे अलख अपारा पड़िया मूर्ख आसी है जिस लब लोभ अहंकारा नाव पड़ी है नाव बुझी है गुरमति विचारा गुरमति नाम तन खत्या भगती परे पनारा निर्मल नाम मन्या दर सच्चे सच्यारा जिसदा जियो प्राण है अंतर जोत अपारा सच्चा साहो इक तू होर जगत बन जारा श्लोक महला पहला मेहर

पौरी एक रतन पदार्थ वणज दे एक कच्चे दे वापारा सतगुर तुठे पायन अंदर रतन पंडारा गिन गुर किने ना लद्या अंधे पौके मुए कुड़ियारा मन मुख दूजे पच मुए ना बूझे विचारा एक सबाजो दूजा को नहीं किस अग्गे करे पुकारा एक दिल तन सदा पौक दे एक ना परे तुजारा गिन ना है होर तन नाही होर बिख्या सब छारा नानक आप कराए करे आप हुकम सवारन हारा। श्लोक महला पहला। मुसलमान कहावन मुश्किल जा होए ता मुसलमान कहावे अवल औल दीन कर मिठा मस्कल माना माल मुसावे होए मुस्लिम दीन मुहाने मरण जीवन का पर...

अग्गी काला कपड़ होवे खाना होवे वाओ सुरगे दिया मोहनियां स्त्रियां होवन नान सबो जाओ पीतू है सालाना आसन लह न चाओ। पौड़ी बद फैली गैबाना कसम ना जानई सो कही है देवाना आप ना पछाणई कल्ले बुरी संसार वादे खपी है विण नावे बेकार परमे पची है राह दोवे इक जाने सोई सिज सी कुफर गो कुफराने पया दज सी सब दुनिया सुबहान सच समाई है सिज्जे दर दीवान आप गवाई है। महला पहला श्लोक सो जीव्या जिस मन वस्या सोए नानक अवर न जीवे कोए जे जीवे पत लखी जाए सब हराम जेता किच खाए राज रंग माल रंग।

क्या मन नाही सच्चा सोए, क्या मेवा क्या क्यों गुड़ मिठा, क्या मैदा क्या मांस, क्या कपड़ क्या सेज खाली कीजे भोग विलास, क्या लश्कर क्या नेब खवासी आवे महली वास, नानक सच्चे नाम विण सबे तोल विनाश। पौड़ी जाति दे क्या हाथ सच परखिए, मोरा होवे हाथ मरिए चखिए, सच्चे की सरकार जुग जुग जानी है, हुक्म मने सिरदार दर दीवानी है, फुरमानी है कार खसम पठाया, तबल बाज बिचार सबक सुनाया, एक होए असवार इतना साखती,

पास, पत्थर पाला क्या करे, खुसरे क्या घरवास, कुत्ते चंदन लाई है, पीसो कुत्ती तात, बोला जे समझा।

वेदा गंद बोले सच कोए, मोया गंद ने की सत होए, एस गंद वरते संसार, मूरख गंद पवे मोहे मार, नानक आखे एवो विचार, सृष्टि गंद पवे दरबार, पौड़ी आपे कुदरत साज के आपे करे विचार, एक खोटे एक खरे आपे परखन हार, खरे खजाने पाईए खोटे सतिए बार बार, खोटे सच्ची दरगे सुतिए किस आगे करे पुकार, सतगुर पिछे पज पवे एहा करनी सार, सतगुर खोट्यों खरे करे शब्द सवारन हार, सच्ची दरगे मनियन गुर के प्रेम प्यार, गणत तिना दी को क्या करे जो आप बख्शे करतार, श्लोक महला पहला, हम जे जिमी दुनिया पीरा मसालता राया, मेरवद बादशाह अफजू खुदाए, एक तू ही महला पहला, ना देव दानवा नरा, ना सिद्ध साधका तरा, अस्त एक दिगर कोई, एक तू ही महला पहला, ना दादे दिहंग आदमी, ना सप्त जेर जिमी, अस एक दिगर कोई, एक तू ही महला पहला, ना सूर सस मंगलो, ना सप्त दीप नह जलो, अन पौन फिर ना कोई, एक तू ही महला पहला, ना रिजक दस्त आकसे, हमारा एक आसवसे, अस एक दिगर कोई, एक तू ही महला पहला, परंगे ना गिरा जर, द्रक्त आब आस कर।

कार कर्म कमाई है, गुरमति आप गवाए नाम से आई है, दूजी कार है लग जन्म गवाई है, बिन नाम है सब विष तय जय खाई है, सच्चा सबल सलाह है सच समाई है।

करम पूरे पूरा गुरु पूरा जा का बोल नानक पूरा जे करे कटे नाही तोल। पौड़ी जा तू ता क्या होर मैं सच सुनाइए मुठी तंदे चोर महल ना पाइए इने चित कठोर सेव गवाइए जित काट सच ना पाए सो पन कढ़ाइए क्यों कर पूरे वट तोल तुलाइए कोई ना आखे तत।

नदर शराब की बहुर ना पाई ताओ। सती पैरी सत पला बही है पड़िया पास, उसे पाप पुन बिचारी है कूड़े कत्ते रास। उसे खोटे सती है खरे की चैसा बास, बोलन

आए दोहा सिरिया आपे खसम देखे कर वो पाए नानक ए वह जानिए सब किस तुसे रजाए महला दूजा नानक परखे आपको ता पारख जान रोग दारू दोवे बुझे ता बैक्ष जान वात न करी मामला जाने मेहमान मूल जान गला करे हान लाए हान लग न चले सत रहे सो विष्ट परवान सर संदे आगास को क्यों पहुंचे बाण अगर ओ अगम है वाहे दड़ जान पौड़ी नारी पुरख प्यार प्रेम सिदारिया कर्ण भगत दिन रात न रहनी वारिया मेला मंज निवास।

है ना पुख राजा राज ना कृत्या सायर परे सुख नानक सच्चे नाम की केती पुछा पुछ महला दूजा निखलंग तस जन्म सजावत ब्रह्म न बिंदते सागरंग संसारस गुर प्रसादी तरह के करण तारण समरथ है कहो नानक विचार कारण करते वस है जिन कल रखी तार पौड़ी खसने के दरबार टाडी वसिया सच्चा खसम कलान कमल विकसिया खसमो पूरा पाए मनो रहस्या दुश्मन कदे मार सज्जन सरसिया सच्चा सतगुरु सेवन सच्चा मार्ग दसिया।

ताली सच्चे महल खसम बुलाया, सच्ची सिफत सलाह कपड़ा पाया, सच्चा अमृत नाम भोजन आया, गुरुमती खादा रज तिन सुख पाया, ताली करे पसा।

सिर पर चलिए सही है पार, नजरी कर्मी गुर विचार। कै बिन कोई ना लंगस पार, कै पौ राख्या पाए सवार। रहाओ कै तन अगन पखे पै नाल, कै पौ कड़िए सब दुसवार। कै बिन कारत कच निकच, अंधा सच्चा अंधी सच। बुद्धि बाजी उपजे चाओ, सह स्याणप पवे न पाओ। नानक मन मुख बोले।

डर डर जाए, सो डर के हाँ जित डर डर पाए, तुद बिन दूजी ना ही जाए, जो किछ वरतै सब तेरी रजाए। डरिए जे डर हो वै होर, डर डर डरना मन का सोर, रहाओ ना जियो मरे ना डूबे तरे, जिन किछ किया सो किछ करे, हुक्मे आवे हुक्मे जाए, आगे पाछे हुक्म समाए। हंस हेत आखा समान, फिस विच पूख बहुत ने।

देही माटी बोले कौन, गुजरे ज्ञानी मुआ है कौन। मुई सुरत बाद अंकार, ओ नाम हुआ जो देखन हार। जय कारण तट तीरथ जाही, रत्न पदार्थ कट ही माही। पढ़ पढ़ पंडित बाद वखाने, पीतर हो दी वक्त न जाने। हाउ नाम हुआ मेरी मुई बलाए, ओह नाम हुआ जो रहा समाए। कहो नानक गुरु ब्रह्म दिखाया, मरता जाता नजर न आया। गौड़ी मेला पहला दखनी, सुन सुन गूजे माने नाओ। ताके सब बलिहारे जाओ, आप पुलाए ठौर न ठाओ। तू समझावे मेल मिलाओ, नाम मिले चले।

सीख हुकम संजोगी गढ़ दस द्वार पंच वसे मिल जोत अपार आप तुले आपे वनजार नानक नाम सवारनहार गौड़ी महला पहला जातो जाए कहां से आवे कह उपजे कह जाए समावे।

मन से उपजे मन माए समाए, गुरुमुख मुक्तो बंद न पाए, शब्द विचार छुटे हर नाए, तरवर पंखी बहु निस्वास, सुख दुखिया मन मोह विनाश, साज बिहाग तक है आगास, देह दिस सारे कर्म लिखियास। नाम संजोगी गोयल ठाट, काम क्रोध फूटे बिखमाट, बिन वखर सुनो कर हाट, गुर मिल खोले बजर कपाट, साध मिले पूरव संजोग, सच रहसे पूरे हर लोग, मन तन दे ले सहज सुभाए, नानक तिनके।

पर पंच व्याप रहा मन दोए, फिर नारायण करे सो होए। बोहित चढ़ो जावे वार, ठाके बोहित दरगे मार, सत्साला ही तन गुरुद्वार, नानक दर कर एकंकार, गौड़ी महला।

कह रहा हो। जन्म जीत मरण मन मानिया, आप मुआ मन मन ते जानिया, नजर पई कर करते जानिया, जप सत तीरथ मज्जन नाम, अजक विचार करो किस काम, नर नारायण अंतर जाम, आन मनो तो कर कर जाओ, किस जाचो नहीं को थाओ, नानक गुरमत सहज समाओ, नानक गुरमत सहज समाओ, गौड़ी महला पहला, सतगुरु मिले सो मरण दिखाए, मरण रहन रस अंतर पाए, गर्भ निवार गगनपुर पाए, मरण लिखाए आए नहीं रहना, हर जप जाप रहन हर शरणा रहाओ, सतगुरु मिले त दुबदा पागे, कमल विगास मन हर प्रबल।

गए होए ज्योतिष पाना सोई हुआ अगर न करने वाला दुआ न जाना कर्म केवट तेरी दात कर्म कर्म तेरे नाम की जात रहाओ तू एवड़ दाता देवन हार तोत नाही।

ज्यों पावी त्यों नाम जपाए, तू दाना बीना साचा सिर मेरे, गुरमत दे परोसे तेरे, तन में मैल नाही मन रात।

गुरबचनी सच शब्द पछाता तेरा पान नाम की वडियाई नानक रहना भगत शरणाई गौड़ी महला पहला जिन अतख कहाया अपियो पी आया हम पै विसरे नाम समाया क्या डरिए डर डरे समाना पूरे गुर के शब्द पछाना रहाओ जिस नर राम हृदय हर रास सहज सुभाए मिले सावास जाए सवारे सांझ बिहाल इत उत मन मुख बांधे काल एनस राम हृदय से पूरे नानक राम मिले परम दूरे गौड़ी महला पहला।

ते हर जान राम तगत गुर सेवा करना बहुड़ जन्म ना होए है मरना रहाओ। चार पदार्थ कहे सब कोई सिमरत शास्त्र पंडित भुक्सोई बिन गुर अर्थ विचार न पाया मुक्त पदार्थ भगत हर पाया। जाँ कह हृदय वस्या हर सोई गुरुमुख भगत प्राप्त होई हर की भगत मुक्त आनंद गुरुमत पाए परमानंद। जिन पाया गुरु देख दिखाया आशा माहे निराश बुझाया दीना नाथ सर्व सुख दाता नानक हर चरणी मन राता। गौड़ी चेती महला पहला अमृत काया रह सुखाली बाजी एहो संसारो लग लोभ मुख

हौ तुद आसा मेरी काया तू सुन सिख हमारी निंदा चिंदा करे पराई झूठी लाए तवारी वेल पराई जो है जियड़े करे चोरी बुरियारी हंस चलिया तू पिछे रहिए छुटर होइए नारी तू काया रहिए सुपनंतर तुद क्या कर्म कमाया कर चोरी मैं जा किच लिया तामन पल्ला पाया हल्त न सोबा पल्त न टोई एला जन्म गवाया हौ खरी दुहेली होई बाबा नानक मेरी।

सुन मूरख मन अजाना, भोग तिसे का पाना रहाओ। साओ हमारा ठाकुर पारा, हम तिसके वन जा रे। जियो पिंड सब रास तिसे की, मार आपे जी वाले। गौड़ी चेती महला पहला, अगर पंच हम एक जना, क्यों राखो कर बार मना। मारे लूटे नीत नीत, किस आगे करी पुकार।

सनातना अमृत केल करे नित पामन अवर लुटेन सो पंच जना। ताहे मड़ोली लूटिया देहोरा सातन पकड़ी एक जना जम डंडा गल

मुंदरा से कट पीतर मुंदरा काया की जय खिंसाता पंच चेले वश की जय रावल इहो मन की जय डंडाता जोग जुगत इव पावसता एक शब्द दूजा होर नास्त कंद मूल मन लावस्ता रहाओ मुंड मुंडाए जे गुर पाये हम गुर की नी गंगा पार त्रिभवन तारण हार स्वामी एक न चेत संधाता कर पटंग गली मन लावस संसा मूल न जावस्ता एक चरणी दे चितलावे लब लोभ की तावस्ता जपस निरंजन रचस मना काहे बोले जोगी कपट खना रहाओ काया कमली हंस इआना मेरी मेरी करत बिहानी ता प्रणवत नानक नागी दाजे फिर पाछे पस्तानी ता गौड़ी चेती महला पहला औखद मंत्र मूल मन एक है जे कर दृढ़ चित की जय रे जन्म जन्म के पाप कर्म के पातन हारा ली जय रे मन एको साहिब।

लागे गुरमुख मिले बढ़ाई रे जो तिनकी आसोई हुआ कीर्तना मेटिया जाई रे। सुबर भरे ना होवे ऊने जो राते रंग लाई रे तिनकी पंख होवे जे नानक तो मूड़ा किस पाई रे। गौड़ी चेती महला पहला कब की माई बात कब चेरा किदू था वो हम आए अगन बिंब

केते पंख उड़ाए। हट पटन बिज मंदर पन्ने कर चोरी कर आवे, अगो देखे पिछो देखे तुझते कहां छपावे। तट तीरथ हम नवखंड देखे हट पटन बाजारा, लेके तकड़ी तोलन लागा।

इतना पारा वार मेरा प्रभु बख्शे बख्शनवार। गुरु मिले सब मत बुद्ध होए, मन निर्मल वसे सब सोए, साच वसे साची सब कार, उत्तम करनी शब्द विचार। गुर ते साची सेवा होए, गुरमुख नाम पछाणे कोए, जीवे दाता देवन हार, नानक हर नामे लगे प्यार।

पूरे पाग मिले गुर आए साचे सहज साथ कमाए रहाओ। गुर मिले कृष्णा अगन बुझाए गुर ते साथ वसे मन आए गुर ते पवित्र पावन सुच होए गुर ते शब्द मिलावा होए। बाद गुरु सब परम पुलाई बिन नामे बहुता दुख पाई गुरमुख हो वैसो नाम से आए दर्शन सच्चै सच्ची पत होए। किसनो कही है दाता इक सोई कृपा करे शब्द मिलावा होई मिल प्रीतम साचे गुण गावा नानक साचे साथ समावा। गौड़ी ग्वारे री महला तीजा सो थाओ सच मन निर्मल होए सच निवास करे सच सोए सच्ची बाणी जुग चारे जापे सब किछ साचा आपे आपे। कर्म होवे सब संग मिलाए हर गुण गावे बैस सुखाए रहाओ। जलो एह जेवा दूजे पाए हर रस न चाखे फीका आलाए बिन बूझे तन मन फीका होए बिन नावे दुखिया चलिया रोए। रसना हर रस चाखिया सहज सुदाए गुर कृपा ते सत समाए साचे राती गुर शब्द विचार अमृत पीवे निर्मल तार। नाम समावे जो पांडा होए उंदे पांडे टिके ना कोए गुर शब्दी मन नाम निवास नानक सच पांडा जिस शब्द

गावत रहे जिस सतगुरु पावे, मन सन राता नाम सुहावे, रहाओ इक गावे इक भगत करे, नाम न पावे बिन असने, सच्ची भगत गुर शब्द प्यार, अपना तिर राख्या सदा उद्धार। भगत करे मूर्ख आप जनावे, नच नच तपे बहुत दुख पावे, नचिए तपिए भगत न होए, शब्द मरे भगत पाए जन सोए, भगत वछल भगत कराए सोए, सच्ची भगत विचों आप खोए, मेरा प्रभु साचा सब विद जाने, नानक बसे नाम पछाणे, गौड़ी ग्वारे री महला तीजा, मन मारे तात मर जाए, बिन मुए कैसे हर पाए, मन मरे दारू जाने कोए, मन शब्द मरे बूझे जन सोए, जिसनो बख्शे देवड़ियाई, गुर प्रसाद हर वसे मन आई, रहाओ गुरमुख करनी कार कमावे, ता इस मन की सोजी पावे, मन में मत मैगल मितबारा, गुर अंकत मार जीवा लनहारा, मन असाद सादे जन कोए, अचर चरे ता निर्मल होए, गुरमुख एव मन।

नानक गुरमुख नाम पछाने गौरी ग्वारे री महला की जा। होमे विच सब जग बौराना दूजे पाए परम फुलाना बहुत चिंता चितवे आप न पछाना तंदा करत्या अंजन विहाना हृदय राम रमो मेरे पाई गुरमुख रसना हर रसन रसाई रहाओ। गुरमुख हृदय जिन राम पछाता जग जीवन सेव जुग चारे जाता। हों मैं मार गुर शब्द।

नाम नव निज गुरते पाए, हर कृपा ते हर वसे मन आए। राम राम करत्या सुख सां शरीर, अंतर वसे न लागे जंपीर। आपे साहिब आप वजीर, नानक सेव सदा।

जित सेवे दरगे पत परवाना, हर के नाम विटो बल जाओ, तू विसरे तद ही मर जाओ रहाओ, तिन तू विसरे जे तुझ आप भुलाए, तिन तू विसरे जे दूजे पाए, मन मुख अज्ञानी जो नी पाए, मन मुख अज्ञानी जो नी पाए, जिन एक मन तुठा से सतगुरु सेवा लाए, जिन एक मन तुठा तिन हर मन वसाए।

ताई तहां गुपत प्रगट प्रभ बनत बनाई आपे सुतिया देह जगाई किसकी कीमत किने न होई कह कह कथन कहे सब कोई गुर शब्द समावे बूझे हर सोई सुन सुन वेखे शब्द मिलाए वड्डी वड्याई गुर सेवा ते पाए नानक नाम रते हर नाम समाए नानक नाम रते हर नाम समाए गौड़ी ग्वारे री महला तीजा मनमुख सूता माया मोह प्यार गुरमुख जागे गुण ज्ञान विचार से जन जागे जिन नाम प्यार सहजे जागे सवे न कोए पूरे गुर से बूझे जन कोए रहाओ असंत अनाड़ी कदे न बूझे कथनी करे ते माया नाल लूजे अंध अज्ञानी कदे न सीजे इस जुग में

विचारा, आश्चर्य सगले कुल उधारा। इस कल युग में कर्म कामना कोई, कली का जन्म चंडाल कह कर होई, नानक नाम बिना को

परमे आवे परमे जाए के जग जन्मिया दूजे पाए मन मुख न चेते आवे जाए आप फुला के प्रत आप फुलाया इहो जियो विडानी चाकरी लाया मां दुख खटे बिरथा जन्म गवाया कृपा कर सतगुरु मिलाए एको नाम चेते विचों परम चुकाए नानक नाम जपे नौ नौ निद पाए गौड़ी ग्वारे री महला तीजा जिना गुरुमुख त्याया तिन पूछो जाए गुर सेवा ते मन पति आए से तनवंत हर नाम कमाए पूरे गुर ते सो जी पाए हर हर नाम जपो मेरे पाई गुरुमुख सेवा हर काल थाए पाई गुरुमुख सेवा हर काल थाए पाई रहाओ आप पछाणे मन निर्मल होए जीवन मुक्त हर पावे सोए हर गुण गावे मत उत्तम होए सहजे सहज समावे सोए दूजे पाए न तेरे आ जाए हों मैं माया महा बित खाए पुत कुटुंब गृह मोह आजमाए मन मुख अंधा आवे जाए हर हर नाम देवे जन सोए अंजन भगत गुर सबदी होए गुरमत बिरला बूझे कोए नानक नाम समावे सोए नानक नाम समावे सोए गौड़ी ग्वारे री महला तीजा गुर सेवा जुग चारे होई पूरा जनकार कमावे कोई अखुट नाम तन हर कोट न होई ऐसे सभा सुख दर शोभा होई ए मन मेरे परम न कीजे गुरमुख सेवा अमृत रस पीजे रहाओ सतगुर सेवे से महापुरुष संसारे आप उदरे कुल सगल निस्तारे हर का नाम रखे उदारे नाम रते पौजल उतरे पारे सतगुर सेवे सदा मन दासा होमे मार कमल परगासा अनहद वाजे निज कर वासा नाम रते कर माहे उदासा सतगुर सेवे तिनकी सच्ची बाणी जुग जुग पवती आस वखाणी हम दिन जपे

हृदय नाम नित हर रस कोग, गुरुमुख प्राणी नाम हर चाहे, जन्म जीत लाहा नाम पाए रहाओ। ज्ञान स्यान गुर शब्द है मीठा, गुर कृपा से किने विरले चक डीठा। कर्म कांड बहु करे अचार, बिन नावे त्रिग त्रिग अहंकार। बंधन बांधियो माया पास, जन नानक छूटे गुर प्रगास। महला तीजा गौड़ी बैरागण, जैसी धरती ऊपर मेघुला बरसत है। क्या धरती मदे पानी नाही, जैसे धरती मदे पानी प्रगासिया। बिन पगा बरसत फिराही।

पुरुष होए के क्या ओए कर्म समाही, नाना रूप सदा है तेरे तुझ ही माहि समाही। इतने जन्म फूल परे से जा पाया ता फूले नाही, जा का कार्य सोई पर जाने जे गुर के शब्द समाही। तेरा शब्द तू है आपे परम कहाई, नानक तत् तत् क्यों मिलिया पुनरप जन्म न आही। गौरी बैरागन महला तीजा, सब जग काले वस है बांदा दूजे पाए, हो मैं कर्म कमाऊं दे मन मुख मिले सजाए। मेरे मन गुर चरणी चित लाए, गुरमुख नाम निधान ले दरगे ले छबाए।

पाए गुरमुख आप पछाणिया हर नाम वसिया मन आए अंदिन भगती रत्या हर नामे सुख समाए मन शब्द मरे प्रतीत होए होमे तजे विकार जन नानक करमी पायन हर नामा भगत पंडार गौड़ी बैरागन महला तीजा कई अड़े दिन चार है हर हर लिख पाया सो गावंती नार है गुरमुख गुण गाया तेल करे गुण समले सौरे वास पाया गुरमुख सहज समानिया हर हर मन पाया ससुरे पेय फिर वसे कहो कित विद पाये आप निरंजन अलख है आपे मेलाये रहाओ आपे ही प्रभ दे मत हर नाम ते आये गढ़पागी सतगुरु मिले मुख अमृत पाये हों मैं दुबदा बिनस जाए सहजे सुख समाये सब आपे आप वर्तदा आपे नाए लाये मन मुख गर्भ न पायो अज्ञान ए आने सतगुर सेवा ना करें फिर पछताने गर्भ जो नी वास पाए दे गर्भे गल जाने मेरे करते ए वह पामदा मन मुख परमाने मेरे हर प्रभ लेख लिखाया दुर्मस्तक पूरा हर हर नाम से आया पेटिया गुरसूरा मेरा पिता माता हर नाम है हर बंधक बीरा हर हर बस मिलाए प्रभ जन नानक पीरा गौड़ी बैरागन महला तीजा सतगुर ते ज्ञान पाया हर सत बिचारा मत मलीन प्रगट पई जत नाम मुरारा शिव सकत मिटाया चूका दियारा तुरमस्तक जिन को लिखिया तिन हर नाम प्यारा हर कित विद पाई संत जनो जिस देखो जीवा हर बिन चसाना जीवती गुर मेलियो हर रस पीवा रहाओ हर गुण गावा।

हर शरणागत राखले हो मूड मुग्ध निस्तारे सहज आनंद सदा गुरमति हर हर मन प्याया सज्जन हर प्रभ पाया हर सोहेला गाया हर दया तार प्रभ बेनती हर हर चेताया जन नानक मंगे तूर तिन जिन सतगुर पाया गौड़ी ग्वारे री महला चौथा चौथा चौक दे सतगुरु प्रसाद पंडित खास सिमरत पढ़िया जोगी गोरख गोरख करिया मैं मूरख हर हर जप पढ़िया ना जाना क्या गत राम हमारी हर पद मन मेरे

सूद वैस पर किरत कमावे, मैं मूर्ख हर नाम छुड़ावे। सब तेरी सृष्ट तू आप रहा समाई, गुरमुख नानक दे वड्याई। मैं अंधले हर टेक टिकाई, मैं अंधले हर टेक टिकाई। गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, निर्गुण कथा कथा है हर की। पज मिल साधु संगत जन की, तब पौजल अकथ कथा सुन हर की। गोविंद सत संगत में लाए, हर रस रसना राम गुण गाए। रहाओ जो जन प्यावे हर हर नामा, तिन दासन दास करो हम रामा। जन की सेवा उत्तम कामा, जो हर की हर कथा सुनावे। सो जन हमरे मन चित पावे, जन पग रेण वड पागी पावे। संत जना स्यों प्रीत बन आई, जिनको लिखत लिखिया तुर पाई। ते जन नानक नाम समाई, ते जन नानक नाम समाई। गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, माता प्रीत करे पुत खाए। मीने प्रीत पई जल नाए, सतगुर प्रीत गुर सिख मुख पाए। ते हर जन हर मेलो हम प्यारे, जिन मिलिया दुख जाए हमारे। रहाओ जो मिल बछरे गौ प्रीत लगावे, कामन प्रीत जा फिर कर आवे। हर जन प्रीत जा हर जस गावे, सारंग प्रीत बसे जल पारा।

गुर सिख प्रीत गुर मिले गलाटे, जन नानक प्रीत साध पग चाटे, जन नानक प्रीत साध पग चाटे। गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, पीखक प्रीत पीख प्रभ पाए, भूखे प्रीत होवे अन खाए, गुर सिख प्रीत गुर मिल आघाए, हर दर्शन दे हो हर आस तुम्हारी, हर कृपा लोच पूर हमारी। रहाओ चटवी प्रीत सूरज मुख लागे, मिले प्यारे सब दुख त्यागे, गुर सिख प्रीत गुरु मुख लागे।

प्रीत माया मोह काचा, बिनस जाए कूड़ा कछ पाचा, जन नानक प्रीत त्रिपत गुर साचा, जन नानक प्रीत त्रिपत गुर साचा। गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, सतगुर सेवा सफल है बनी, जित मिल हर नाम ते आया हर तनी, जिन हर जपया तिन पीछे छूटी कणी, गुर सिख हर बोलो मेरे भाई, हर बोलत सब पाप लह जाई, राव जब गुर मिलिया तब मन वस आया, तावत पंच रहे हर त्याया, अंदिन नगरी हर गुण गाया, सतगुर पग तूर जिना मुख लाई, तिन कूर त्यागे हर लिव लाई, ते हर दरगे मुख उजल पाई, गुर सेवा आप हर पावे, कृष्ण बल पद्र गुर पग लग त्यावे, नानक गुरमुख हर आप तरावे, नानक गुरमुख हर आप तरावे। गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, हर आपे जोगी डंडा तारी, हर आपे रब रहा बनवारी, हर आपे तप

चौथा साहो हमारा तू कणी जैसी तू रास दे तैसी हम ले हर नाम बनन जय रंग स्यो जे आप दयाल होए दे हम बन जा रे राम के हर वणज करावे दे रास रे रहाओ लाहा हर तगत तन खटिया हर सच्चे सा मन पाया हर जप हर वखर लद्या जम जा गाती नेड़ ना आया और वणज करे व्यापारिये अनंत तरंगी दुख माया ओए जे है वणज हर लाया फल से हा तिन पाया हर हर वणज सो जन करे जिस कृपाल होए प्रभ दे जन नानक साओ।

मेरा पुत की खाए। त्यों हर जन हर हर जप करे हर अंत छाए। मैं मूरख की गत की जय मेरे राम गुर सतगुर।

वो बतावे क्यों हर जन हर हर बोलता हर बोल सुख पावे बिच संचय हटवाणिया बहाट कमाए मोह झूठ पसारा झूठ का झूठे लपताए क्यों हर जन हर

सतगुरा जब गुरु बोले तब विषम होए जाए। हम जैसे अपराधी अवर कोई राख है, जैसे हम सतगुरु राख लिए छड़ाए। तू गुरु पिता तू है गुरु माता, तू गुरु बंदब मेरा सत।

हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे, तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चूके सब सोग संतापे, गौरी बैरागन महला चौथा। कंचन नारी में जियो लुबत है मोह मीठा माया, कर मंदर कोड़े खुशी मन अन रस लाया, हर प्रभ चित न आवई क्यों छूटा मेरे हर राया, मेरे राम ए नीच कर्म हर मेरे, गुणवंता हर हर दयाल कर कृपा, बख्श अवगुण सब मेरे रहाओ, किछ रूप नहीं किछ जात नहीं किछ ढंग न मेरा, क्या मोह ले बोले गुण विहून नाम जपया ना तेरा, हम पापी संग गुर उबरे उन सतगुर केरा, सब जियो पिंड मुख नक दिया बर्तन तो पानी,

जन नानक हाट विहाजिया हर गुलम गुलामी। गौड़ी बैरागन महला चौथा। जो जननी सुत जन पालती राखे नगर मझार अंतर बाहर मुख दे गिरास खिन खिन पोचार त्यों सतगुर गुर सिख राखता हर प्रीत प्यार मेरे राम हम बारिक हर प्रभु के।

त्यों सतगुर सिख प्रीत हर हर की, गुर सिख रखे जी नाली, जैसे काकी तीस बतीस है, विच राखे रसना मास रत केरी, कोई जानो मास काकी के किछ हाथ है, सब वसगत है।

जरा मरा ताप सिरत साप सब हर के बस है, कोई लाग न सके बिन हर का लाया। ऐसा हर नाम मन चित नित त्यावो, जन नानक जो अंत

आओ कर कृपा हर मेलिया मेरा सतगुर पूरा इच पुनी जन केरिया ले सतगुर तूरा हर भगत दृढ़ावे हर भगत सुने तिस सतगुर मिलिए तोटा मूल न आवई हर लाभ नित दृढ़िए जिसको हृदय विगास है पाओ दूजा नाही नानक तिस गुर मिल उदर हर गुण गावाही महला चौथा गौरी पूर्वी हर दयाल दया प्रभ कीनी मेरे मन तन मुख हर बोली गुरमुख रंग पाया अत गूड़ा हर रंग पीनी मेरी चोली अपने हर प्रभ की हों बोली जब हम हर सेती मन मानिया कर दीनो जगत सब गोल अमोली रहाओ करो विवेक संत जन पाई खोज हृदय देख टंडोली हर हर रूप सब जोत सब आई हर निकट वसे हर कोली हर हर निकट वसे सब जग के अपरंपर पुरख अतोली हर हर प्रगट कियो गुरु पूरे सिर वेचियो गुरु पहमोली हर जी अंतर बार तुम शरणागत तुम वड पुरख वडोली जन नानक अंधे हर

पुरुष विदाते, जित मार्ग तुम प्रेरो स्वामी, तित मार्ग हम जाते, राम मेरा मन हर सेती राते, सत संगत मिल राम रस पाया, हर राम में नाम समाते रहाओ, हर हर नाम हर हर जग अवखद।

सो सतगुर मेल मेरा प्राणे, राम हम सतगुर पार ब्रह्म कर माने। हम मूर मुग्ध अशुद्ध मत होते, गुर सतगुर के बचन हर हम जाने। राव जितने रस अनरस हम देखे, सब तितने फीक फीकाने। हर का नाम अमृत रस चाखिया, मेरे सतगुर मीठ रस गाने। जिनको गुर सतगुर नहीं पेटिया, ते साकत मूड दीवाने। तिनके कर्महीन तुर पाए, देख दीपक मोय कचाने। जिनको तुम दया कर मेलो, ते हर हर सेव लगाने। जन नानक हर हर हर जप प्रगते, मत गुरमत नाम समाने। गौड़ी पूर्वी महला चौथा, मेरे मन सो प्रभ सदा नाल है। स्वामी कौ किथे हर पहु नसी है, हर आपे बस ले प्रभ साचा। हर आप छदाए छुटी है, मेरे मन जप हर हर हर मन जपी है। सतगुर की शरणाई पज को, मेरे मना गुर सतगुर पीछे छुटी है। रहाओ मेरे मन सेवो सो प्रभ सर्व सुख दाता, जित सेवे निज कर वसी है। गुरुमुख जाए लहो कर अपना, कस चंदन हर जस कसी है। मेरे मन हर हर हर हर हर जस उत्तम, ले लाहा हर मन हसी है। हर हर आप दया कर देवे, ता अमृत हर रस चखी है। मेरे मन नाम बिना जो दूजे लागे, ते साकत नर जम कुटी है। ते साकत चोर जिना नाम विसारिया, मन तिनके निकट न पिटी है। मेरे मन सेवो अलख निरंजन नर हर, जित सेवे है लेखा छुटी है। जन नानक हर प्रभ पूरे किए, खिन मासा तोल न कटी है। गौड़ी पूर्वी महला चौथा, हमरे प्राण वसगत प्रभ तुमरे। मेरा जियो पिंड सब तेरी, दया करो हर दर्श दिखावो। मेरे मन सन लोच कनेरी, राम मेरे मन सन लोच मिलन हर केरी। गुर कृपाल कृपा किंचत गुर कीनी, हर मिलिया आए प्रभ मेरी। रहाओ जो हमरे मन चित है स्वामी, साबिद तुम हर जानो मेरी। अंदिन नाम जपी सुख पाई, नित जीवा आस हर तेरी। गुर सतगुर दाते पंथ बताया, हर मिलिया आए प्रभ मेरी। अंदिन अनद पयावड पागी, सब आस पुजी जन केरी। जगन्नाथ जगदीशर करते, सब वसगत है हर केरी। जन नानक शरणागत आए, हर राखो पैज जन केरी।

अविनाशी पुरुख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ग्रह मंडा है। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा है। जन नानक नाम

जन नानक गुर के लाले बोले लग संगत करुआ मीठा गौड़ी पूर्वी महला चौथा हर हर अर्थ शरीर हम बेचिया पूरे गुर के आगे सतगुर दाते नाम दिड़ाया मुख मस्तक पाग सब आगे राम गुरमत हर लिव लागे राम गुरमत हर लिव लागे रहाओ तट पट रमैया रमत राम राय गुर शब्द गुरु लिव लागे हों मन तन देवो काट गुरु को मेरा प्रम को गुरु बचनी पागे अंधियारे दीपक आन जलाए गुर ज्ञान गुरु लिव लागे अज्ञान अंधेरा बिनस बिनास्यो कर वस्त लही मन जागे साकत बदक माया तारी तिन जम जोहन लागे उन सतगुर आगे शीश ना बेचिया ओए आवे जाए अपागे हमरा बिनो सुनो प्रभ ठाकुर हम शरण प्रभु हर मांगे जन नानक की लज पात गुरु है सिर बेचो सतगुर आगे

आया हम अपराध पाप बहु कीने कर दुष्टि चोर चुराया अब नानक शरणागत आए हर राखो लाज हर भाया गौड़ी पूर्वी महला चौथा गुरमत बाजे शब्द अनाद गुरमत मनुआ गावे बदपागी गुर दर्शन पाया तन तन गुरु लिवलावे गुरमुख हर निवलावे रहाओ हमरा ठाकुर सतगुर पूरा मन गुर की कार कमावे हम मल मल तोवे पाम गुरु के जो हर हर कथा सुनावे हृदय गुरमत राम रसायन जुहवा हर गुण गावे मन रसक रसक हर

रामा मत माता मत जियो नाम मुख रामा संतोख पिता कर गुर पुरख अजन्मा वद पागी मिल रामा गुर जोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्वाणी जियो वद पागी मिल सुगड़ सुजानी जियो मेरा मन तन हर रंग पिन्ना आवो संतो मिल नाम जपाहा रिच संगत नाम सदा ले लाहा जियो कर सेवा संता अमृत मुख पाहा जियो मिल पूरब लिखियड़े तुर कर्मा सावन वर्ष अमृत जग छाया जियो मन मोर कोह केड़ा शब्द मुख पाया हर अमृत उठड़ा मिलिया हर राया जियो जन नानक प्रेम रतन्ना गौड़ी माज महला चौथा आओ सखी गुण कामन करी हा जियो मिल संत जना रंग माने रलिया जियो गुरदीपक ज्ञान सदा मन बलिया जियो हर तुठे टुल टुल मिलिया जियो मेरे मन तन प्रेम लगा हर टोल

मन अंधन अनदृश जियो हर पायणा वद पागई मेरे गोविंदा नित लैला हा मन हस जियो हर आप उपाय हर आपे वेखे हर आपे कार लाया जियो इक खावे बस टोट ना आवे इक ना फक्का पाया जियो इक राजे तख्त बहे नित सुखिए इक ना भिख मंगाया जियो सब इको शब्द वर्तदा मेरे गोविंदा जन नानक नाम ते आया जियो गौरी माज महला चौथा मन माही मेरे गोविंदा हर रंग रता मन माही जियो हर रंग नाल ना लखिए मेरे गोविंदा गुरपुरा अलख लखाही जियो हर हर नाम परदासिया।

वद पागी नाम समाही जियो, नैनी मेरे प्यारिया, नैनी मेरे गोविंदा, किने हर प्रभ डिठदा नैनी जियो।

मेरा हर प्रभ सज्जन सैनी जियो, हर आए मिलिया जग जीवन मेरे गोविंदा, मैं सुख विहानी रहनी जियो। मैं मेलो संत मेरा हर प्रभ सज्जन, मैं मन तन भुख लगाया जियो, हूँ रह ना सकूं बिन देखे मेरे प्रीतम, मैं अंतर बिरहो हर लाया जियो। हर लाया मेरा सज्जन प्यारा, गुर मेले मेरा मन जीवाया जियो, मेरे मन तन आस

ताजी वाजियो मन अंदर अमृत गुरमत हर मुनि वाजियो मन हर रंग रतना हर रस सदा पीवा जियो हर पायड़ा मन जीवा जियो मेरे मन तन प्रेम लगा हर बाण जियो मेरा प्रीतम मित्र हर पुरख सुजान जियो गुर मेले संत हर सुगड़ सुजान जियो हौ नाम विटो कुर्बान जियो हौ नाम विटो कुर्बान जियो हौ हर हर सज्जन हर मीत दसाई जियो हर दसो संतो जी हर खोज पवाई जियो सतगुर तुठड़ा दसे हर पाई जियो हर नामे नाम समाई जियो मैं वेदन प्रेम हर बिरहों लगाई जियो गुर सरदा पूर अमृत मुख पाई जियो हर हो दयाल हर नाम त्याई जियो जन नानक हर रस पाई जियो महला पंजवा राग गौड़ी ग्वारेरी चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद किन विद कुशल होत मेरे पाई क्यों पाई है हर राम सहाई रहाओ कुशल ना गए मेरी सब माया ऊंचे मंदर सुंदर छाया झूठे लालच जन्म गवाया हस्ती कोड़े देख विगासा लश्कर जोड़े नेब खवासा गल जेवड़ी हूं मैं के फासा राज कमावे दहग सारी माने रंग पोग बहुनारी जो नरपत सुपने पे खारी एक कुशल मोको सतगुरु बताया हर जो किछ करे सो हर क्या पगता पाया जन नानक हूं मैं मार समाया इन विद कुशल होत मेरे पाई क्यों पाई है हर राम सहाई रहाओ दूजा गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा क्यों प्रमी है प्रम किसका होई जा जल थल महियल रविया सोई गुरमुख उबरे मनमुख पत खोई जिस राखे आप राम दयारा तिस नहीं दूजा को पहुंचन हारा रहाओ सब में वर्ते एक अनंता ताकू सुख सो होए अचिंता ओहो सब किछ जाने जो वर्तनता मन मुख मोए जिन दूजी प्यासा बहु जोनी पवे तुर कीर्त लिखियासा जैसा बीजे तैसा खासा देख दर्श मन

कई जन्म गर्भ हिर खरिया, कई जन्म साफ कर उपाया, लख 84 जोन परमाया, साध संग पयो जन्म परापत, पर सेवा पद हर हर गुरमत, त्याग मान झूठ अभिमान, जीवत मरहे दर्द।

अविनाशी गुर के बचन कति जम फांसी गुर का बचन जी के संग गुर के बचन रचे राम के रंग जो गुर दिया सो मन के काम संत का किया सत्कर्मान रहाओ गुर का बचन अटल अछेद गुर के बचन कटे परम पेद गुर का बचन कतो न जाए गुर के बचन हर के गुण गाए गुर का बचन जी के साथ गुर का बचन अनाथ को नाथ गुर के बचन नरक ना पवे गुर के बचन रसना अमृत रवे गुर का बचन प्रगट संसार गुर के बचन न आवे हार जिस जन हुए आप कृपाल नानक सतगुर सदा दयाल गौरी ग्वारे री महला पंजवा जिन कीता माटी ते रतन गर्भ में राखिया जिन कर जतन जिन दीनी शोभा वड्याई किस प्रभ को आस पहर त्याई रमैया रेन

ब्रह्म सो लागो रंग, हर हर नाम जपत जन तारियो, अगन सागर गुर पार उतारियो, रहाओ कर कीर्तन।

एको मन एको सब ठाए, पूरन पूर रहो सब जाए, गुर पूरे सब परम चुकाया, हर सिमरत नानक सुख पाया। गौरी ग्वारे री महला पंजवा, अगले मोए से पाछे परे, जो उभरे से बंद लख थरे।

सिर ऊपर ठाडो तवन राए, मीठी कर कर बिखिया खाए। हौ बंदो हौ साधो बैर, हमरी पूम कौन काले पैर। हौ पंडित हौ चतुर सियाणा, करने हार न बुझे बिगाना। अपनी गत मित आपे जाने, क्या को कहे क्या आख वखाने। जित जित लावे तित तित लगना, अपना पला सब काहू मंगना।

ला पंजवा अनिक जतन नहीं होत छुटारा, बहुत सियाणत आगल पारा, हर की सेवा निर्मल हेत, प्रभु की दरगे शोभा सेत। मन मेरे गहो हर नाम का ओला, तुझे ना लागे ताता चोला, रहाओ जो बोहित पै सागर माहे, अंधकार दीपक दीपाहे, अगन शीत काल।

कर कृपा जिस आप दीवावे, हर हर नाम जा के हृदय वसे, दुख दर्द ते नानक नसे, गौड़ी द्वारे री महला पंजवा, बहुत दर्ब कर मन ना अघाना, अनक रूप देख नहीं पता।

त्रिग तन माया संग राते राव जो बिगारी कै सिर दीजे दाम ओए खसमे कै गृह उन दुख सहाम जो सुपने होए बैस

नहीं कृष्णा, आप बिना है आप करे रास, नानक प्रभ आ गए अरदास। बौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, बहु रंग माया बहु विध पेखी, कलम कागज सियान पलेखी, मेहर मलूक हुए।

कर कृपा संतन सच कहवा सर्व सुख एहो आनंद लया साध संग हर कीर्तन गाय कहो नानक वड़ पा।

पुत्र कलत्र ग्रस्त का फासा, होन न पाये राम के दासा। कौन सो विद जित राम गुण गाए, कौन सो मत जित तरे ए माए राव। जो पलाई सो बुरा जाने, साच कहे सो विखे समाने। जाने नाही जीत अर हार, इहो वलेवा साकत संसार। जो हला हल सो पीवे बौरा, अमृत नाम जाने कर कौरा। साध संग के नाही नेर, लख चौरासी परमता फेर। एक जाल पहाए पंखी, रस रस को

निमख न कृष्णा तेरी लाखे, हर रास्ता तू चाखे साध, चाखत होए रहे विस्माद। अमृत रसना पियो प्यारी, ए रस राती होए तृप्तारी। रहाओ हे जेवे तू राम गुण गाओ, निमख निमख हर हर हर त्याओ। आन न सुनिए कतहु जाइए, साध संगत वड पागी पाइए। आठ पैर जेवे आराध, पार ब्रह्म ठाकुर आगाद। इहा उहा सदा सुहेली, हर गुण गावत रसन अमोली। बनस्पत मौली फल फूल पेगे, ए रस राती बोर न छोड़े। आन न रस कस लवे न लाई, कहो नानक गुर पे हैं सहाय। गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, मन मंदर।

कवन बापारी जाका उहां विसाहो, नाम रतन को व्यवहारी, अमृत भोजन करे आहारी रहाओ, मन तन अर्पी सेव करी जय, कवन सो जुगत जित कर पी जय, पाए लगो तज मेरा तेरे, कवन सो जन जो सौदा जोरे।

संगा ठाकुर नाम कियो उन वर्तन त्रिपत अगावन हर कै दर्शन हर संग राते मन तन हरे गुरपुरे की सरनी परे रहाओ चरण कमल आत्म आधार एक निहारे आज्ञाकार एको बनज एको व्योहारी अवर न जाने बिन निरंकारी हर सोग दोहू ते मुक्ते सदा अलिपत जोग हर जुगते दीसे सब में सब ते रहते पार ब्रह्म का ओए ध्यान करते संतन की महिमा कवन वखानो अगाध बोध किछ मित नहीं जानो पार ब्रह्म मोहि।

व्यापत कर्म करे हो फासा, व्यापत ग्रस्त व्यापत उदासा, आचार व्यवहार व्यापत इह जात, सब कुछ व्यापत बिन हर रंग रात, संतन के बंधन काटे हर राय, ताको कहां ब्यापे माए, तहु नानक जिन तूर संत।

सगल भगत जाका नाम आधार, सर्व व्यापत पूरन तने जाकी शोभा कट कट बनी। जिस सिमरत दुख डेरा कह, जिस सिमरत जम किछु ना कह, जिस सिमरत होत सूखे हरे, जिस सिमरत डूबत पाहन तरे। संत सभा को सदा जयकार, हर हर नाम जन प्राण।

संत प्रसाद हर कीर्तन गाओ, संत प्रसाद सगल दुख मिटे, संत प्रसाद बंधन ते छुटे, संत कृपा ते मिटे मोह परम, साध रेण मज्जन सब कर्म, साध कृपाल दयाल गोविंद, साधा मैं ए हमरी जिंद, कृपा निध कृपाल से आवो, साध संग ता बैठन पावो, मोहे निर्गुण को प्रभु कीनी दया, साध संग नानक।

खैर अब मत दिन सी दुष्ट बिगानी जब के सुनिया हर जसानी रहाओ सहज सुख आनंद निधान राखना।

दुख रोग कछु न व्यापे, अमृत नाम हृदय हर जापे, पार ब्रह्म परमेश्वर त्याये, गुर पूरे ते ए मत पाये, रहाओ करण करावन हार दयाले, जी जम सगले प्रतपाले, अगम अगोचर।

सो सिमरो अनास को नाथ प्रभ चित आए सब दुख जाए तै सब दिन से हर कहनाए दिन हर पौ काहे का माने हर बिसरत काहे सुख जाने रहाओ जिन तारे बहुत तरन आगास जाकी जोत जी प्रगास जाकी

प्रभ सेवक साचा वैसा हो। गुरु पूरे रथ दे हाथ नानक पार ब्रह्म सम्राट गौड़ी द्वारे री महला पंजवा। गुरु प्रसाद नाम मन लागा जन्म जन्म का सोया जागा अमृत गुण उचरे प्रभ बाणी पूरे गुरु की सुमत प्राणी। प्रभ सिमरत कुशल सब पाए कर बाहर सुख सह सबाए रहाओ सोई पछाता जिन्हें उपाया कर कृपा प्रभ आप मिलाया। बां पकड़ लीनो कर अपना हर हर कथा सदा जप जपना मंत्र तंत्र औखद पुने चार हर हर नाम जी प्राण आधार साचा तन पायो हर रंग दुतर करे साध कै संग। सुख बैसो संत सज्जन परवार हर तन खटियो जाका नहि सुमार जिसे प्राप्त किस गुर दे नानक बिरथा कोई नहे। गौड़ी द्वारे री महला पंजवा हस्त पुनीत।

माया मगन ना कछुए मोह उदरे आप करे संसार राम नाम जप के कंकार आप कमाओ अवरा उपदेश राम नाम हृदय प्रवेश जाके माथे एहो निदान सोई पुरख जपे भगवान आप तैर हर हर गुण गाओ कहो नानक हो तिस

किरत संयोग सत्य उठ होई रहाओ। देखा देखी मन हाथ जल जाये, प्रिय संग न पावे बहु जोन को आये। शील संयम प्रिय आज्ञा माने, किस नारी को दुख न जमाने। कौ नानक जिन प्रयो परमेश्वर कर जानिया, तन सती दरगे परवानिया। गौरी ग्वारेरी महला पंजवा, हम तनवंत।

सतगुर अपने कौ बलिहार है, छोड़ न जाई सर पर तार है। रहाओ दुख रोग सोग बिसरे जब नाम, सदा आनंद जा हर गुण गाम। बुरा पला कोई ना कही जाए, छोड़ मान हर

जा को रस हर रस है आयो सो अन रस नाही लपटायो जा का कहया दर्दे चले सो किसको नजर ले आवे तले जा का सब किस

सहज आनंद हर साधु माहे, आज्ञाकारी हर हर राय, रहाओ जाके अचिंत वसे मन आए, ताको चिंता कतहु नाहे, जाके दिन सो मन से फरमा, ताके कछु नाही डर जमा, जाके हृदय दियो गुरु नामा, कहो नानक ताके सगल निधाना, गौड़ी महला पंजवा, अगम रूप का मन में थाना, गुर प्रसाद किने विरले जाना, सहज कथा से अमृत कुंता, जिसे प्राप्त तिसले पुंचा रहाओ, अनहत बाणी थान निराला, ताकि सुन मोहे गोपाला, तै सहज अखारे अनेक अनंता, पार ब्रह्म के संगी संता, हरख अनंत सोग नहीं दिया, सो कर गुरु नानक।

गौरी महला पंजवा आपन तन नहीं जाको गरबा राज मिलख नहीं आपन दरबा आपन नहीं काको लपटायो आपन नाम सतगुर के पायो रहाओ सुत बनता आपन नहीं पाई इष्ट मीत आप बाप ना माई सोईना रूपा सुन नहीं दाम हैवर गैवर आपन नहीं काम कहो नानक जो गुरु बख्श मिलाया इसका सब किस जिसका।

नाहे, हर सा प्रीतम कर मन मीत, प्राण आधार राखो सब चीत रहाओ। रे मन मेरे तू ताको सेव, आद पुरख अपरंपर देव, किस ऊपर मन कर तू आसा, आद जुगाद जा का परवासा, जा की प्रीत सदा।

से कर तब कुशल समाना, एकाटेक मेरे मन चीत, जिस किस करना सो हमरा मीत, रहाओ मीत हमारा वे परवाह, गुर कृपा के मोहे असनाहा, मीत हमारा अंतर जामी, समरथ पुरुष पार ब्रह्म स्वामी, हम दासे तुम ठाकुर मेरे।

कहो नानक गुरु मंत्र दृढ़ आया, केवल नाम रिदमाए समाया। गौड़ी महला पंजवा, का की माई का को बाप, नाम तारीख झूठे सब साथ, काहे को मूर्ख पकलाया।

के अग कोट, संत प्रसाद जन्म मरण के छोट, संत का दर्श पूरन स्नान, संत कृपा ते जपिए नाम, रहाओ संत के संग मिटिया अंकार, दृश्य आवे सब एक अंकार, संत सो प्रसन्न आए वस पंचा, अमृत नाम हृदय ले संचा, कहो नानक जाका पूरा कर्म, किस पेते साधु के चरण, गौड़ी महला पंजवा, हर गुण जपत कमल परगासे, हर सिमरत त्रास सब नासे, सामत पूरी जित हर गुण गावे, वडे पाग साधु संग पावे रहाओ, साध संग पाये निज नामा, साध संग पूरन सब कामा, हर की भगत जन्म परवान, गुर कृपा ते नाम बखान, कहो नानक सो जन परवान, जा कै हृदय वसै भगवान, गौड़ी महला पंजवा, एक सों जाका मन राता, जिसरी तिसे पराई पाता, बिन गोविंद ना दिसे कोई, करन करावन करता सोई रहाओ, मने कमावे मुख हर हर बोले, सो जन इत उत्कत है न डोले, जाके हर तन सो सत्साओ, गुर पूरे कर दीनो विसाओ, जीवन पुरख मिलिया हर राया, कहो नानक परम पद पाया, गौड़ी महला पंजवा, नाम भगत के प्राण आधार, नामो तन नामो व्योहार, नाम वडाई जन सोबा पाए, कर कृपा जिस आप दिवाए, रहाओ, नाम भगत के सुख स्थान, नाम रत सो भगत परवान, हर का नाम जन को तारे, साफ साफ जन नाम समारे, कहो नानक जिस पूरा पाग, नाम संग ताका मन लाग, गौड़ी महला पंजवा, संत प्रसाद हर नाम से आया, तब के तावत मन तृप्ताया, सुख विश्राम पाया गुण गाए, श्रम मिटिया मेरी हति बलाए, रहाओ चरण कमल अराद भगवंता, हर सिमरन ते मिटी मेरी चिंता, सब तज अनाथ एक शरण आयो, ऊंच स्थान तब सहजे पायो, दुख दर्द प्रम पौ नसिया, करन हार नानक मन

चरण ठाकुर के मार्ग तावो पलो समो सिमरन की बरिया सिमरत नाम तय पार उतरिया रहाओ नेत्र संतन का।

दुख बिन से सुख हर गुण गाए, गुर पूरा पेटियां लिव लाए, रहाओ हर का नाम दियो गुर मंत्र, मिटे वसूरे उतरी चिंत, अनद पए गुर मिलत कृपाल, कर कृपा का तेज जमजाल, कहो नानक गुर पूरा पाया, ताके बहुर न व्यापे माया। गौड़ी महला पंजवा, रास लिया गुर पूरे आप, मन मुख को लागो संताप,

और मृतक देह साध संग बिहुना आवत जात जोनी दुख छीना रहाओ। अनेक वस्त्र सुंदर पहराया जो डरना खेत माहे डराया सगल शरीर आवत सब काम नेफल मानुक जपे नहीं नाम कहो नानक जा को कहे दयाला साध संग मिल पजे गोपाला। गौड़ी महला पंजवा कल कलेश गुर शब्द निवारे आवन जान रहे सुख सारे तय दिन से निरपो हर त्याया साध संग हर के गुण गाया रहाओ। चरण कवल रिद अंतर तारे अग्न सागर गुर पार उतारे बूढ़त जात पूरे गुर कांडे जन्म जन्म के टूटे गांडे कहो नानक किस गुर बलिहारी जिस पेतक गत पई हमारी। गौड़ी महला पंजवा साध संग ताकी सर नहीं परो मंतन अपना आगे तरो अमृत नाम पीवो मेरे पाई सिमर सिमर सब तपत बुझाई रहाओ। तद अभिमान जन्म मरण निवारो हर के दास के चरण नमस्कारो सास सास प्रभ मने संभाले सो तन संचो जो चाले नाले तिसे प्राप्त जिस मत

अमृत दृष्ट संत जीवाए, काटे कष्ट पूरे गुरुदेव, सेवक को दीनी अपनी सेव, रहाओ मिट गई चिंत पुनी मन आशा, करी दया सतगुरु गुण ताशा, दुख नाथे सुख आए समाए।

सगल रोग का दिल सिया खाओ। सैंक सुभाए बोले हर बाणी, आख पहर प्रभ सुनरो प्राणी। दुख दर्द जम नेड़ ना आवे, कहो नानक जो हर गुण गावे। गौड़ी महला पंजवा, पले दिन पले संजोग, जित पेटे पार ब्रह्म निर्जोग। ओ बेला को हों बल जाओ, जित मेरा मन जपे हर नाओ। रहाओ सफल मूरत सफल ओ परी, जित रसना उचरे हर हरी। सफल ओ माथा संत नमस्कार, चरण पुनीत चले हर मार्ग। कहो नानक भला मेरा।

गुरु का शब्द रास मन माहे, नाम सिमर चिंता सब जाहे, दिन भगवंत नाही अनकोए, मारे राखे को सोए रहाओ, गुरु के चरण हृदय उर्धार, अग्न सागर जप उतरे पार, गुरु मूरख सो लाए ध्यान, ईहा ऊहा पावे मान, सगल त्याग गुर शरणी आया, मिटे अंधे से नान सुख पाया, गौड़ी महला पंजवा, जिस सिमरत दुख सब जाए।

नाम रतन बसे मन आए जप मन मेरे गोविंद की बाणी साधु जन राम रसन वखाने रहाओ इकस बिन नाही दूजा कोई जाकी दृष्ट सदा सुख होए साजन मीत सखा कर एक हर हर अक्षर मन में लेख रव रया सरबत स्वामी गुण गावे नानक अंतर जामी गौरी महला पंजवा तै मैं रचियो सब संसारा तिस पौ नाही जिस नाम अधारा पौ ना व्यापे तेरी सरना जो तुझ पावे सोई करना रहाओ सोग हरख में आवन जाना तिन सुख पाया जो प्रभु पाना अगन सागर महा व्यापे माया से शीतल जिन सतगुरु पाया राख ले।

तुम मन वसे तो दुख न लागे, तुमरी कृपा से परम पौ पागे, पार ब्रह्म अपरम पर स्वामी, सगल कथा के अंतर जामी, करो अरदास अपने सतगुर पास, नानक नाम मिले सचरास, गौड़ी महला पंजवा। कण बिना जैसे थोथर तुखा, नाम विहून सुने से मुखा, हर हर नाम जपो नित प्राणी, नाम विहून त्रिग जे बिगानी, रहाओ नाम बिना नाही।

जो कुछ वर्त है सब तेरा पाना, हुक्म बूझे सो सच समाना, कर कृपा दीजे प्रभु दान, नानक सिमरै नाम निधान। गौड़ी मैला पंजवा ताका दर्श पाये वड पागी, जाकी राम नाम लिव लागी, जाके हर

ताके संग किलवित दुख जाए, जन की महिमा कति न जाए, पार ब्रह्म जन रहा समाए, कर कृपा प्रभु जिनो सुनी जय, दास की सूर नानक को दी जय, गौरी महला पंजवा। हर सिमरत तेरी जाए बनाए, सर्व कल्याण वसे मन आए।

का निर्मलमंता सोड उपाव एक टेक राख महापदार्थ अमृत रस चाख बिखम सागर तेई जन तरे नानक जाको नगर करे गौड़ी महला पंजवा हृदय चरण कमल प्रभ तारे पूरे सतगुर मिल निस्तारे गोविंद गुण गावो मेरे पाई मिल साधु हर नाम से आई रहाओ दुलभ दे होई परवान सतगुर ते पाया नाम निशान हर सिमरत पूरन पद पाया साध संग तय परम मिटाया जत तत देखो तत

चरण कमल हृदय उतारी, मन तन तन गुर प्राण आधारी, सफल जन्म होवे प्रवान, गुर पार ब्रह्म निकट कर जान, संत तूर पाये वड पागी, नानक गुर पेटत हर स्यों लिव लागी। गौड़ी महला पंजवा। करे दुह कर्म दिखावे होर, राम की दरगे बांदा चोर, राम रमे सोई रामाना, जल सल मैयल एक समाना, रहाओ अंतर बिक मुख अमृत सुनावे, जमपुर बादा चोटा खावे, अनक पर्दे में कमावे विकार, खिन में प्रगट हो है संसार, अंतर साच नाम रस राता, नानक तिसके

आनंद निवासे राम जना को राम परोसा नाम जपत सब मिट्यो अंदेसा रहाओ साध संग कछ पौ ना पराती गुण गोपाल गाये दिन राती कर कृपा प्रभ बंदन छोटे चरण कमल की दीनी ओट कहो नानक मन पई प्रतीत निर्मल जस की रह जननीत गौड़ी महला पंजवा हर चरणी जा का मन लागा दुख दर्द प्रमता का।

तेजन लागे गुर की पाई, सुख सहज सांत आनंदा, जप जप जीवे परमानंदा, नाम रास साध संग खाटी, कहो नानक प्रभ अपदा काटी। गौड़ी महला पंजवा। हर सिमरत सब मिटे कलेश, चरण कमल मन में प्रवेश, उचरो राम नाम लख बारी, अमृत रस की वो प्रभ प्यारी, रहाओ सुख सहज रस महा आनंदा, जप जप जीवे परमानंदा। काम क्रोध लोभ मद खोए, साध के संग किलबिख सब टोए, कर कृपा प्रभ दीन दयाला, नानक दीजे सागर वाला। गौड़ी महला पंजवा। जिसका दिया पैने खाए, किस क्यों आलस क्यों बने माए, खसम विसार आन कम लागे, कौडी बदले रतन त्यागे, रहाओ प्रभु त्याग लागत अन लोबा, दास सलाम करत कत सोबा, अमृत रस खावे खान पान, जिन दिए तिसे न जाने स्वान, कहो नानक हम लून हरामी, बख्श ले हो प्रभ अंतरगामी। गौड़ी महला पंजवा। प्रभ के चरण मन माए ध्यान, सगल तीर्थ मजन स्नान, हर दिन हर सिमरन मेरे पाई, कोट जन्म की मल ले जाए, रहाओ हर की कथा हृदय माए बताए, मन बाँचत सगले फल पाए, जीवन मरण जन्म परवान, जाके हृदय वसे भगवान, कहो नानक से जन पूरे, जिना प्राप्त साधु पूरे। गौड़ी महला पंजवा। खादा पैन दा मुँह कर पाए, किसनो जो है दूत धर्म राए, किस क्यों बेमुख जिन जियो पिंड दीना, कोट जन्म पर मैं बहुजूना, रहाओ साकत की ऐसी है रीत, जो किस तरह सगल विपरीत, जियो प्राण जिन मन तन तारिया, सोई ठाकुर मनो विसारिया, बदे विकार लिखे बहु कागर, नानक उदर कृपा सागर, पार ब्रह्म तेरी।

सगल मनोरथ मुक्त पद दीत, ऐसा मीत करो सब कोए, जाके बिरथा कोई न होए। रहाओ अपने स्वाए हृदय ले तारिया, दुख दर्द रोग सकल बिदारिया। रखना जी दी बोलत राम, पूर्ण होए सगले काम। अनेक बार नानक बलिहारा, सफल दर्शन गोविंद हमारा। गौड़ी महला पंजवा, कोट बिगन हिरे खिन माहे, हर हर कथा साध संग सुनाहे, पीवत राम रस।

औषध मंत्र तंत्र सब सार करने हार हृदय में तार सब सब परम पजियो पार ब्रह्म कौ नानक अटल ए धर्म गौड़ी महला पंजवा कर कृपा पेटे गुर सोई तित बल रोग न व्यापे कोई राम रमन करण तै सागर शरण सूर फारे जम कागर रहाओ सतगुर मंत्र दियो हर नाम ए आसर पूरन पै काम जप तप संयम पूरी वडियाई गुर कृपाल हर पै ताई मान मोह खोए गुर परम देख नानक पसरे पार ब्रह्म गौरी महला पंजवा दिखे राज के अंदुला पारी दुख लागे राम नाम सितारी तेरे दास को तुही वड्याई माया मगन नरक ले जाई रहाओ रोग ग्रस्त सितारे नाओ दिख माते का

मिल नानक हर अंतर जामी, गौड़ी महला पंजवां। आठ पहर संगी बटवारे, कर कृपा प्रभ ले निवारे। ऐसा हर रस रमो सब कोए, सर्व कला पूरन प्रभ सोए। रहाओ महातपत सागर संसार, प्रभ खिन में पार उतारन हार। अनस बंधन तोरे नहीं जाहे, सिमरत नाम मुक्त फल पाए।

संसार पूरन सब काम वड पागी हर कीर्तन गाये पार ब्रह्म तू देहता पाये रहाओ हर के चरण हृदय उद्धार।

नानक दरगे पाए मान गौड़ी महला पंजवा जल थल मैयल पूरन हर मीत ब्रह्म बिन से गाए गुण गीत उठत सोवत हर संग पहरुआ जा कै सिमरन जम नहीं डरुआ रहाओ चरण कमल प्रभु हृदय निवास सगल दुख का होया नास आसा मान तान तन एक साचे साकी मन में टेक महा गरीब जन साध अनाथ नानक प्रभु राखे देहात गौरी महला पंजवा हर हर नाम मजन कर सूचे कोट ग्रहण पुन फल मूचे रहाओ हर के चरण हृदय में बसे जन्म जन्म के किल विख नसे साध संग कीर्तन फल पाया जम का मार्ग दृष्ट न आया मन बच क्रम गोविंद आधार ताते छुटियो बिक संसार कर कृपा प्रभु कीनो अपना नानक जाप जपे हर जपना गौड़ी महला पंजवा पौ शरणाई जिन हर जाते मन तन शीतल चरण हर गाते कै पंजन प्रभु मन ना बसाही दरपत दरपत जन्म बहुत जाही रहाओ जा कै हृदय बस्यो हर नाम सगल मनोरथ

0: नानक टेक गौड़ी मैला पंजवा। बार राक्षोर लै समाल कर आए गोविंद लै नाल, हर हर नाम संतन कै संग, मंतन राता राम कै रंग। रहाओ गुरु प्रसादी सागर तरिया, जन्म जन्म के किल विच सब हिरिया। शोभा सुरत नाम भगवंत, पूरे गुरु का निर्मल मंत। चरण कमल हृदय में जाप, नानक पेख जीवे प्रताप। गौड़ी मैला पंजवा। तन एहो थान गोविंद गुण गाए, कुशल खेम प्रभ आप बसाए। रहाओ विपत तहां जहां हर सिमरन नाही, कोट आनंद जह हर गुण गाही। हर बिसरे दुख रोग कनेरे, प्रभ सेवा जम लगे ननेरे। सोवड पागी निचल थान, जह जपिए प्रभ केवल नाम। जह जाइए तह नाल मेरा स्वामी, नानक को मिलिया अंतर जामी। गौड़ी महला पंजवा।
1: जो प्राणी गोविंद त्यावे, पढ़िया अनपढ़िया परम

रूपवंत सो चतुर सियाणा, जिन जन मान्या प्रब का पाणा, जग में आया सो परवान। काट काट

हर के चरण हृदय कर ओट, जन्म मरण ते होवत छोट। रहाओ सो तन निर्मल जित उपजे ना पाप, राम रंग निर्मल प्रताप साध संग।

सोल महारस हर अमृत की जय रहाओ। निर्मल उद्दक गोविंद का नाम, मज्जन करत पूरन सब काम। संत संगते गोष्ठ होए।

आद जुबाद प्रगट प्रताप, निंदक मुआ उपज वदताप, इन मारिया जे रखे न कोए, आगे पाछे मंदी सोए, अपने दास राखे।

साध तूर कर सुध मन जाई, अनक जला जे तो वै दे, मैल ना उतरे सुध ना ते। सतगुर पेट्यो सदा कृपाल, हर सिमर सिमर कात्या पौ काल। मुकत पुगत जुगत हर नाओ, प्रेम भगत नानक गुण गाओ। गौड़ी महला पंजवा, जीवन पदवी हर के दास। जिन मिलिया आत्म प्रगास, हर का सिमरन सुन मन कानी। सुख पावे हर द्वार प्राणी, रहाओ आज पैर से आई है गोपाल। नानक

राम नाम नित रसन बखान, दिन से रोग पय कल्याण, पार ब्रह्म गुण अगम विचार, साधु संगम है निस्तार, निर्मल गुण गावो नित नीत, गई व्याद उबरे जनमीत, मन बच क्रम प्रभ अपना त्याई, नानक दास तेरी शरणाई। गौड़ी महला पंजवा। नेत्र प्रकाश किया गुरुदेव, परम गए पूरन पैसे, रहाओ शीतला ते रख।

दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की कैद रखी करकारे, बादशाह सा सब वश कर दीने, अमृत नाम मारस पीने, निरपो होए।

हर संग राते जमकी नहीं त्रास, हर संग राते पूरन आस, हर संग राते दुख न लागे, हर संग राता अमदिन जागे, हर संग राता सहज कर वसे, हर संग राते प्रम पौ नसे, हर संग राते मत उत्तम होए, हर संग राते निर्मल सोए, कहो नानक तिनको बल जाए, जिनको प्रभ मेरा बिसरत नाही, गौड़ी मैला पन्नवा, उद्यम कर शीतल मन भये, मार्ग चलत सगल दुख गए, नाम जपत मन पय आनंद, रस गाए गुण परमानंद, खेम पया कुशल कार्य आए, कीर्तन साध संग

अस्थिर पै बसे सुख आसन, गुर प्रसाद नानक सुख बासन, गौरी महला पंजवा, कोट मज्जन तीनो स्नान, लाख अरब खरब दीनो दान, जा मन वस्यो हर को नाम, सगल पवित्र गुण गाए गोपाल, पाप मिटे साधु शरण दयाल, रहाओ बहुत उर्द तप साधन सादे, अनिक लाभ मनोरथ लादे, हर हर नाम रसन आरादे, सिमरत सासत बेद बखाने, जोग ज्ञान सिद्ध सुख जाने, नाम जपत प्रभ सो मन माने, अगाध बोध हर अगम अपारे, नाम जपत नाम हृदय विचारे, नानक को प्रभ कृपा धारे, गौरी महला पंजवा, सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल गुर हृदय बसाया, गुर गोविंद पार ब्रह्म पूरा, किसे अराध मेरा मन कीरा रहा, अंदिन जपो गुरु गुरु नाम ताके

माई प्रभु की शरण उभरे सब कोए करण करावन पूर्ण सच सोए रहाओ अब मन बसिया करने हारा कै दिन से आत्म सुख सारा कर कृपा अपने जन राखे जन्म जन्म के

राम को बल पूरन पाई, ताके बिरथा ना व्यापे काई। रहाओ जो जो चितवे दास हरमाई, सो सो करता आप कराई। निंदक की प्रभ पत गवाई, नानक हर गुण निर्पोगाई। गौरी महला पंजवा, कुछ बल वीर ब्रह्म सुख सागर। गर्त परत गहले हो अंगुरिया, रहाओ श्रवण ना सुरत, नैन सुंदर नहीं आरत। द्वार रटत पिंगुरिया, दीना नाथ अनाथ, करुणा में साजन मीत।

सगल पदार्थ अष्ट सिद्ध नामा रस माए सो प्रसन्न पय केशवा से जन हर गुण गाए। मात पिता सुत बंद को तू मेरे प्राण आधार साध संग नाम।

सर्व कल्याण सुख सच पावे रहाओ। बन बन खोजत फिरत बैरागी, बिजले काहू एक लिव लागी, जिन हर पाया सेवड पागी। ब्रह्मादिक सनकादिक चाहे, जोगी जति सिद्ध हर आहे, जिसे प्राप्त सो हर गुण गाहे। ताकी शरण जिन बिसरत नाही, वद पागी हर

तौ संत मिले वडपागी रहाओ मन अर्पो तन राखो आगे मन की मत मोय सगल त्यागी जो प्रभु की हर कथा सुनावे हम दिन फिरो तिस पिछे विरागी पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे पेट्यो पुरुष रसिक बैरागी मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक जन्म जन्म की सोई जागी गौरी महला पंजवा निकसरे पंखी सिमर हर पा

हर पेखन को सिमरत मन मेरा, आस प्यासी चितवो दिल रहनी है कोई संत मिला वे नेरा। रहाओ सेवा करो दास दासन की, अनक पांच किस करो निहोरा। तुला तार तोले सुख सगले बिन

कोई ऐसा संत सहज सुख दाता मोहे मार्ग दे बताई रहाओ। अंतर अलख न जाई लखिया विच पर्दा हो मैं पाई माया मोह सबो जग सोया तिहु परम कहो क्यों जाई। एका संगत इकत गृह बसते मिल बात न करते पाई एक बस दिन पंच दुहेले ओ बस अगो

खेद करें और बहुत संतावे हैं। आयो शरण तुहारे कर कर हारो अंत बहु पाती छोड़े कतहु नाही। एक बात सुनता की ओटा साध संग मिट जाहे कर कृपा संत मिले मोह तुमते तीरज पाया संती मंत दियो मोह निरपो गुर का शब्द कमाया जीत ले ओए महा दुखादी सहज सुहेली बानी कहो नानक मन पाया परगासा पाया पद निर्वाणी। गौड़ी महला पंजवा ओ अविनाशी राया निरपो संग तुम्हारे बसते इहो डर्म कहां ते आया रहाओ एक महल तू हुए अफारो एक महल निवानो एक महल तू आपे आपे एक महल गरीबानो एक महल तू पंडित बखता एक महल खल होता एक महल तू सब कुछ ग्राहज एक महल कछु न लेता। काश की पुत्री कहाँ करे बकरी खिलान हारो जाने जैसा पेट करावे बाजीगर ओ तैसो ही साज आने अनक कोठरी बहुत पाप करिया आप हुआ रखवारा जैसे महल राखे तैसे रहना क्या हो करे बिचारा। जिन कुछ किया सोई जाने जिन ए सब विद साजी कहो नानक अप

भयो उन मोहनी बाला, उससे कटे नाही रुच चसुआ, जग ऐसा मोहे गुरहे दिखायो, तो शरण पर्यो तज गर्भ सुआ, मार्ग प्रभ को

सदन सुहेले सर्व सुखा में तुझते पाए मेरे ठाकुर अगे अतोले वरन ना साको तुमरे रंगा गुण निधान सुख दाते अगम अगोचर प्रभ अविनाशी पूरे गुरते जाते प्रम्पो काट किए ने केवल जब से हूँ मैं मारी जन मरण को चूक।

जन पार ब्रह्म रंग राते सुख सहज आनंद तिना संग उन संसार अवर न दाते। जगत उदाहरण से ही आए जो जन दर्श प्यासा उनकी शरण परे सो तरिया संत संग पूर्ण आशा।

पंच चेले मिल पर इकतरा एक वस्तिये दस बैरागन आज्ञाकारी तब निर्मल जोगी थी परम जराए चराई विपूता पंच एक कर पेखिया सहज सुख सोखी ने पुगता जो ठाकुर मस्तक लेखिया जय पौ नाही ता आसन बांधियो सिंगी अनहत बानी पत विचार डंडा कर राखियो जुगत नाम मन पानी ऐसा जोगी वध पागी पेटे माया के बंधन काटे सेवा पूज करो तिस मूरत की नानक तिस पग चाटे गौड़ी महला पंजवा अनूप पदार्थ नाम सुनो सगल त्याय ले मीता हर औषध जाको गुर दिया ताके निर्मल चीता रहाओ अंधकार मिट्यो किन तंते गुर शब्द दीपक पर दासा।

तुम प्रवराते पोत पोत भगतन संग जोरी प्रयो प्रयो नाम तेरा दर्शन चाहे जैसे दृष्ट ओ चंद चकोरी राम संत में भेद किछ नाही एक जन कई महलाख करोरी जा कहिए प्रगट प्रभ हुआ हम दिन कीर्तन रसन रमोरी तुम समरथ अपार अत ऊंचे सुखदाते प्रप्राण अधोरी नानक को प्रभु की जय कृपा उन संतन के संग संगोरी।

था सब कुछ तुम्हारे हाथ ऐसा निधान देहो मोको हर जने चले हमारे साथ निर्गुण आरे को गुण की जय हर नाम मेरा मन जाते संत प्रसाद नान खर पेटे मन तन शीतल कराके गौरी महला पंजवा सह समायो देव मोको सतगुर।

ब्रह्मंड खंड हर ताको नाम जपी जैरे रहाओ मन की मत त्यागो हर जन हुकम बूज सुख पाई रे जो प्रभ करे सोई फल मानो सुख दुख ओही त्याई रे कोट पतित उधारे किन में करते बार न लागे रे दीन दर्द दुख पंजन स्वामी जिस पावे तिसे निवार

दाता सगल कथा प्रतिपारे रहाओ मा कष्ट काते खिन पीतरे रसना नाम चितारे शीतल सांत सुख हर सरणी जलती अग्नि निवारे गर्भ कुंड नरक के राख पव जल पार उतारे चरण कमल आराधत मन में जम की त्रास बिदारे पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर ऊंचा अगम अपारे गुण गावत त्यावत सुख सागर जुए जन्म न हारे काम क्रोध लोभ मोहे मन हीनो निर्गुण के दातारे कर कृपा अपनो नाम दीजे नानक सद बलिहारे।

जीरे ओला नाम का अवर जे कर्म करावनो तिन में पव है जाम का रहा अवर जतन नहीं पाये वदे पाद हर के आये।

लक्ष चौरासी जोन फिरे गोविंद लोक नहीं जन्म मरे बल बुद्ध सियान पहु में रही हर साध शरण नानक गही गौड़ी महला पंजवा मन राम नाम गुण गाय नीत नीत हर सेवी है सास सास हर त्याय रहाओ संत संग हर मन वसे दुख दर्द अनेरा प्रम नसे संत प्रसाद हर जाति है सो जन दुख ना व्यापी है जाको गुर हर मंत्र दे सो उबरिया माया अगन के नानक को

हृदय बुद्ध ताके कर तल नवनिध सिद्ध जो जाने हर पव तन किछ नाही ताके कमी करने हार पछानिया सर्व सुख रंग माणिया हर तन जाके गृह वसै कहो नानक तिन संग दुख नसै।

पान प्रभ का खाना रहाओ ऐसे है रे खत्म हमारा छिन में साज सवार नहारा काम करी जे ठाकुर पावा गीत चरित प्रभ के गुण गावा।

अज्ञानी मानुक पया जो नाही सो लो रैन अंधारी कारिया कवन जुगत जित पोरे प्रम तो हारिया।

सुख भय अकाल पुरख अगाध बोध सुनत जसो कोट अग थे कृपा निज प्रभ मया तार नानक हर हर नाम लय गौड़ी पूर्वी महला पंजवा मेरे मन शरण प्रभु सुख पाए जा दिन बिसरे प्राण सुख दाता सो दिन जात अजाए रहाओ एक रैन के पावन तुम आए बहु जुग आस बदाए गृह मंदिर संपै जो दिसे जो तरवर की छाए तन मेरा संपै सब मेरी बाग मिलख सब जाए देवनहारा बिसरियो ठाकुर चिन्मय होत पराए

गुण गाइए जो होए दयाल सतगुर अपना ता ए मत बुद पाइए। मेरे मन नाम ले जम बंते छूटे सर्व सुखा सुख पाइए। शेर स्वामी सतगुर दाता मन बंचत फल आइए। नाम इष्ट नीत सुत करता मन संग तुहारे चाले।

अनक बंधन माया परमत परमाया गुण निज नहीं जाया मन बिछय ही मैं लुजी है जा को रे कृपा करे जीवत सोई मरे साध संग माया।

आवे दुखम पंथ कयान रहाओ सेवक सेवक सदा सेव तेरे संग बस्त है काल कर सेवा तू साध की हो काटिए जम जाले होम जग तीरथ किए बुझ हो मैं बदे विकार नरक सुरग दोए पुंचना।

सुखरे। हर्ष शोग हान मृत दुख सुख चित संसर गुर मिले। राव जौ लो हों कि सोचो चितो तौ लो दुखन परे। जो कृपाल गुर पूरा पेटिया सो अनद सहजे। जेती स्यान कर्म हों किए तेते बंद परे। जो साधु कर मस्तक तरयो तब हम मुक्त भये। जो लो मेरो मेरो करतो तौ लो बिखेरे। मन तन बुद्ध अर्थी ठाकुर को तब हम सहज सोए। जो लो पोट उठाई चलियो तौ लो दान परे। कोट डार गुर पूरा मिलिया तौ नानक निर्भय। गौड़ी माला महला पंजवा पावन त्यागियो री त्यागियो। त्यागियो मैं गुरु मिल त्यागियो। सर्व सुख आनंद मंगल रस मान गोविंद आग्यो। रहाओ मान अभिमान दो समाने। मस्तक डार गुर पाग्यो। संपत हर्ष ना आपत दुखा रंग ठाकुर लाग्यो। बास बासरी एक है स्वामी उद्यान दृष्टाग्यो। निरपो पे संत प्रम डार्यो पूर्ण सर्वाग्यो। जो किस करते कारण कीनो मन बुरो न लाग्यो। साध संगत पर साध संतन के सोयो मन जाग्यो। जन नानक और तुहारी परयो आयो शरण आग्यो। नाम रंग सहज रस माने।

किया। सतगुरु सब समाया रहाओ, लाठी भूख त्रिशन सब लाठी, चिंता सगल बिसारी, कर मस्तक गुर पूरे तरयो, मन जीतो जग सारी। त्रिपद अधाए रहे रिद अंतर, दोलन ते अब चूके, अखुट खजाना सतगुरु दिया, तोट नहीं रे मुके। अचरज एक सुनो रे पाई, गुर ऐसी बूझ बुझाई, लाए परदा ठाकुर जो पेट्यो, तो बिसरी तात पर आई। कहो ना जाए एहो अचंबो, सो जाने जिन चाखिया, कहो नानक सच पे बिगाता, गुर निधान हृदय ले राखिया। गौड़ी माला मैला पंजवा, उबरत राजा राम की सरणी, सर्व लोक माया के मंडल, गिर गिर परते तरणी रहाओ। शास्त्र सिमरत वेद विचारे, मां पुरखन यूं कहया, बिन हर भजन नाही निस्तारा, सूख न किन्हूं लया। तीन पवन की लखनी जोरी, बूझत नाही लहरे, बिन हर भगत कहां स्थित पावे, फिर तो पहरे पहरे। अनक बिलास करत मनमोहन, पूरन होत न कामा, जल तो कभू न बूझत, सगल बिरसे बिन नामा। हर का नाम जपो मेरे मीता, यह सार सुख पूरा, साध संगत जन्म मरण निवारे, नानक जन की।

हर दिन अवर किरिया बिरथे जब तब संजम कर्म कमाने एह ओरे मूसे रहाओ बर्त नेम संजम में रहता तिनका आद न पाया आगे चरण और है पाई उहां कामना आया तीरथ नाए अर करनी प्रमता आगे ठौर न पावे उहां कामना आवे एह बिद ओ लोगन ही पति आवे चतुर वेद मुख बचनी उचरे आगे महल न पाये बूझे नाही एक सुदाकर ओ सजनी चाक चखाइए नानक कह तो यो बिचारा जे कमावे सो पार ग्रामी गुर से वो अरनाम त्यावो त्यागो मनो गुमानी गौड़ी माला पन्नवा माधो हर हर हर मुख कहिए हम ते कछु न होवे स्वामी ज्यों राखो त्यों रहिए रहाओ क्या किस करे के करने हारा क्या इस हाथ बिचारे जित तुम लावो तित ही लागा

एहो जियो वताई बल बल जाई जियो तिस निव निव लागो पाई जियो तिस निव निव लागो पाई जियो कोठी पंडित वेद खोजंता जियो।

जिन प्रभ त्याया सो सो बावंता जियो, जिस साधु संगत तिस सब सो करनी जियो, जन नानक सह समाई जियो। गौड़ी महला पंजवा माज, आओ हमारे राम प्यारे जियो, रैन दिनस साथ साथ सितारे जियो, संत देव संदेशा पै चरणारे जियो, खुद दिन कित बिद करिए जियो, संग तुम्हारे मैं करे आनंदा जियो, वन तिन त्रिभवन सुख परमानंदा जियो, सेज सुहावी इहो मन बिद संदा जियो, पेख दर्शन इहो सुख लइए जियो, चरण पखार करी नित सेवा जियो, पूजा अर्चा बंदन देवा जियो, दासन दास नाम जप लेवा जियो, बिनो ठाकुर पह कहिए जियो, इच पुन्नी मेरी मन तन हरिया जियो, दर्शन पेखत सब दुख पर हरिया जियो, हर हर नाम जपे जप करिया जियो, इहो अजर नानक सुख सही है जियो। गौड़ी माज महला पंजवा, सुन सुन साजन मन विच प्यारे जियो, मन तन तेरा इहो

मन जीवे पाई जियो, गुर प्रसादी सो हर हर पाई जियो, सब किछ प्रभ का प्रभ किया जाई जियो, प्रभ को सद बल जाई जियो, एहो निधान जपै वट पागी जियो।

जोर तुम्हारे सुख बसा सत शब्द निशान राव। सबे गल्ला जातिया सुन के चुकिया कद ही सुरत न लदिया माया मोहड़िया। दे बुजार सारता से अखी जिखड़िया कोई जे मूर्ख लोभिया मूल न सुनी कहा। इकस दो चहु क्या गणी सब इकत साध मुठी एक अद नाए रसियड़ा का विरली जाए उठी। भगत सच्चे दर्श होंदे आनंद करें दिन रात रंग रते परमेश्वर है जन नानक तिन बल जात गौड़ी में।

पूरन सतगुर ज्ञान रहाओ। जित कट वसै पार ब्रह्म सोई सुहावा थाओ। जम कंकर नेड़ न आवई रसना हर गुण गाओ। सेवा सुरत न जानिया ना जापे आराध। ओठ तेरी जग जीवना मेरे ठाकुर अगम आगाद। पाए किरपाल गुसाइया नखे सोग संताप। तत्ती वाव न लगई सतगुर रखे आप। गुर नारायण दया गुर गुर सच्चा सृजन हार। गुर सुखे सब किस पाया जन नानक सद बलिहार। गौड़ी माज महला पंजवा हर राम राम राम रामा जप पूरन होए कामा। रहाओ राम गोविंद जपेंदिया हुआ मुख पवित्र। हर जस सुनिए जिससे सोई पाई मित्र। सब पदार्थ सब फला सर्व गुणा जिस माहे। क्यों गोविंद मनो विसारिये जिस सिमरत दुख जाहे। जिस लड़ लगे है जीविये पव जल पई है पार। मिल साधु संग उधार होए मुख उजल दरबार। जीवन रूप गोपाल जस संत जना की रात। नानक उबरे नाम जप दर सच्चे सा बात। गौड़ी माज महला पंजवा मीठे हर गुण गाओ। जिंदु तू मीठे हर गुण गाओ। सच्चे सेती रतिया

साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते ऐनस पागो रहाओ। सुख दुख दोनों समकर जाने और मान अपमाना, हर शोक ते रह अतीता तिन जग तत पछाना। उस्तत निंदा दो त्यागे हो जय।

गौड़ी महला नावा। प्राणी को हर जस मन नहीं आवे, एनिस मगन रहे माया में, कहो कैसे गुण गावे रहाओ, पूत मीत माया ममता स्यों, ए विद आप बंधावे, मिर्ग तृष्णा ज्यो चूठो त्यों जग, देखता उठतावे, भुगत मुक्त का

तो संविद बने आए गौड़ी महला नामा। साधो गोविंद के गुण गावो मानस जन्म अमोलक पायो बिरथा काए गवाओ। राव पतित पुनीत दीन बंद हर

ओ माया सुन भजन राम चित लावो, नानक कहत मुकत पंथ एहो, गुरुमुख होए तुम पावो। गौड़ी महला नामा को माई पूलियो मन समझावे, वेद पुराण साध मग सुन कर निमक न हर गुण गावे। रहाओ दुर्लभ दे पाए मानस की बिरसा जन्म सिरावे, माया मोह महा संकट बन ता क्यों रुच उपजावे। अंतर बाहर सदा संग प्रभ ता क्यों निहो न लावे, नानक मुकुट ताहि तुम मानो जे कट राम समावे। गौड़ी महला नावा साधो राम शरण विश्रामा, वेद पुराण पढ़े को ए गुण सिमरे हर को नामा। रहाओ लोभ मोह माया ममता कुन औ बिकियन की सेवा, हरख सोग परस जे नाहिन सो मूरत है देवा। सुर्ग नरक अमृत बिक ए सब क्यों कंचन हर पैसा, उस्तत निंदा ए समझा कह लोभ मोह फुन तैसा। दुख सुख ए बांधे जे नाहिन ते तुम जानो ज्ञानी, नानक मुक्त ताहे तुम मानो ए बिद को जो प्राणी। गौड़ी महला नावा मन रे कहां पयो तें बौरा, एनक औद कटे नहीं जाने पयो लोग संघौरा। रहाओ जो तन ते अपनो कर मान्यो, अर सुंदर गृह नारी इनमें कट से रोरे नाहिन, देखो सोच बिचारी। रतन जन्म अपनो तैहारियो गोविंद दत्त नहीं जानी, निमख ना लीन पयो चरणन त्यों बिरसा औद सिरानी। कहो नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुण गावे, और सगल जग माया मुहया निरपय पद नहीं पावे। गौड़ी महला नावा नर अचेत पाप से डर रे, दीन दयाल सगल पै पंजन शरण ताहे तुम पर रे। रहाओ वेद पुराण जात गुण गावत ताको नाम ही है मो तर रे, पावन नाम जगत में हर को सिमर सिमर कसमल सब हर रे। मानस देह बौर ने पावे कछु उपाओ मुक्त का कर रे, नानक कहत गाय।

निज सिद्ध निर्मल नाम विचार पूरन पूर रहया बिखमार त्रिकुटी छूटी बिमल मजार गुर की मत जिए आई कार। इन विद राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया रहाओ एक सुख मानिया सहज मिलाया निर्मल बाणी परम चुकाया लाल पहे सूहा रंग माया नगर पही दिख ठाक रहाया उलट पही जीवत मर जा गया शब्द रवे मन हर क्यों ला गया रस संग्रह दिख पर हर त्या गया पाए बसे जम का पौ पा गया साध रहे बादंग अंकारा चित हर क्यों राता हुक्म अपारा जात रहे पत के आचारा दृष्ट पई सुख आत्म तारा तुझ बिन कोई न देखो मीत किस सेवो किस देवो चीत किस पूछो किस लागो पाए किस उपदेश रहा लिवलाए गुर सेवी गुर लागो पाए भगत करी रात्यो हर नाए सिखिया दीखिया पूजन पाओ हुक्म संजोगी निज कर जाओ गर्भ गतं सुख आत्म त्याना जोत पई ज्योति माए समाना लिखत मिटे नहीं शब्द निशाना करता करना करता जाना न पंडित न चतर सियाना न फूलो न परम फुलाना कथो न कथनी हुक्म पछाना नानक गुरमुख सहज समाना गौड़ी ग्वारे री महला पहला मन कुंचर काया उद्याने गुर अंकस सच शब्द निशाने राज द्वारे शोभ सुमाने चतुराई ने चीनिया जाए बिन मारे क्यों कीमत पाए रहाओ कर में अमृत तप कर ले नन्ना कार ना कोई करे राखे आप वड्याई दे नील अनिल अगन इक थाई जल निवरी गुर बूझ बुझाई मन दे लिया रहत गुण गाई जैसा कर बाहर सो तैसा बैस गुफा में आँखों कैसा सागर डूगर निरपो ऐसा मुए को कहो मारे कौन निडरे को कैसा डर कवन शब्द पछाने कीने पौन जिन कहया तिन कहन वखानिया जिन बूझिया तिन सहज पछानिया देख विचार मेरा मन मानिया कीरत सूरत मुक्त इक नाई तही निरंजन रहा समाई निज कर व्याप रहा निज ठाई।

दुख मांगत दुख आगल होए, सगल विकारी हार पर होए, एक बिना झूठे मुक्त न होए, कर कर करता देखे सोए। तृष्णा अगन शब्द बुझाए, दूजा परम सहज सुभाए, गुरमति नाम हृदय वसाए, साची बाणी हर गुण गाए। तन में साचो गुरमुख पाओ, नाम बिना नाही निज खाओ, प्रेम परायण प्रीतम राओ, नदर करे ता बूझे नाओ। माया मोह सर्व जंजाला, मन मुख कुचील कुचित विकराला, सतगुर सेवे चूके जंजाला, अमृत नाम सदा सुख नाला। गुरमुख बूझे एक लीलाए, निज कर वासे साज समाए, जमन मरना ठाक रहाए, पूरे गुर के ए मत पाए। कथनी कथो ना आवे और, गुर कुछ देखिया नाही दर होर, दुख सुख पाणे तिसे रजाए, नानक नीच कहे लिगलाए। गौड़ी महला पहला, दूजी माया जगत चितवास, काम क्रोध अहंकार।

तरण गगन नह देखो दोए, नारी पुरुष सबाई लोए, रव सस देखो दीपक उजियाला, सर्व निरंतर प्रीतम बाला, कर कृपा मेरा चित लाया, सतगुरु मो को एक बुझाया, एक निरंजन गुरुमुख जाता, दूजा मार शब्द पचाता, एको हुक्म वर्ते सब लोई, एक से सब ओपत होई, राह दोवे खसम एको जान, गुर कै शब्द हुक्म पछाण, सगल रूप वर्ण मन माही, कहो नानक एको सालाही, गौड़ी महला पहला, अध्यात्म कर्म करे सा साचा, मुक्त फेर क्या जाने काचा, ऐसा जोगी जुगत विचार है, पंच मार साच उधार है, रहाओ जिसके अंतर साच बसावे, जोग जुगत की कीमत पावे, राम सत एको गृह उद्यान है, करनी कीरत कर्म समान है, एक शब्द एक पिछला मांगे, ज्ञान ध्यान जुगत सच जागे, पैर अच रहे ना बाहर जाए, कीमत कौन रहे लिवलाए, आपे मेले परम सुखाए, गुर प्रसाद परम पद पाए, गुर की सेवा शब्द विचार, हमें मारे करनी सार, जब तब संजम पाठ पुराण, कहो नानक अपरम परमान, गौरी महला पहला, सीमा गही व्रत शील संतोखं, रोग ना व्यापे ना जम दोखं, मुक्त पाए प्रभ रूप न देखं, जोगी को कैसा डर होए, रूख बिरख गृह बार सोए, रहाओ निरपौ जोगी निरंजन त्यावे, अंधन जागे सच विवलावे, सो जोगी मेरे मन पावे, सो जोगी मेरे मन पावे, काल जाल ब्रह्म अग्नि जारे, जरा मरण गत गर्व निवारे, आप तरह पितरी निस्तारे, सतगुर सेवे सो जोगी होए, पैरच रहे सो निरपो होए, जैसा सेवे तैसो होए, नर नहीं केवल निरपो ना हो, अनाथे नाथ करे बल चाओ, पुनरप जन्म नाही गुण गाओ, अंतर बार एको जाने, गुर के शब्दे आप पछाने, साचे शब्द दर निशाने, शब्द मरे तिस निज कर वासा, आवे ना जावे चूके आसा, गुर के शब्द कमल पर गासा, जो दिसे तो आस निरासा, काम क्रोध बिक फूक पे आसा, नानक बिरले मिले उदासा, गौरी महला पहला, ऐसो दास मिले सुख होई, दुख विसरे पावे सत सोई, दर्शन देख पई मत पूरी, अखट मज्जन चरने तूरी, रहाओ नेत्र संतोखे एक लिव तारा, जेवा सूची हर रसारा, सत करनी अब अंतर सेवा, मंत्र तास्या अलख अपेवा, जय जय देखो तै तै साचा, दिन बूझे जगरत जग काचा, गुर समझावे सोजी होई, गुरमुख बिरला बूझे कोई, कर कृपा राखो रखवाले, बिन बूझे पशु पैर बेताले, गुर कहया अवर नहीं दूजा, किस कहो देख करो अन पूजा, संत हेत प्रभ त्रिपवन तारे, आत्म चीन है सो तप विचारे, साच हृदय सच प्रेम निवास, प्रणवत नानक हम ताके दास, गौड़ी मेला पहला, ब्रह्म में गर्भ किया नहीं जानया, वेद की विपत पड़ी पछतानिया, जह प्रभ सिमरे तही मन मानिया, ऐसा गर्भ बुरा संसार है, जिस गुर मिले तिस गर्भ निवार है, रहाओ बल राजा माया अंकारी, जगन करे बहु पार अपारी, बिन गुर पूछे जाए प्यारी, हरी चंद दान करे जस लेवे, बिन गुर अंक ना पाए अपेवे, आप पुलाए आपे मत देवे, दुर्मत हरनाथ दुराचारी, प्रभ नारायण गर्भ परहारी, प्रहलाद उधारे कृपा तारी, पूलो रावण मुग्ध अचेत, लूटी लंका सीत समेत, गर्भ गया बिन सतगुर हेत, शैत बाहो मद कीट में खासा, हरनाकसले नखो विदासा, दैत संगारे बिन भगत अभ्यासा,
जरा संद काल जमुन संगारे रतत बीज काल नेम बिदारे दैत संगार संत निस्तारे आपे सतगुर शब्द विचारे दूजे पाए दैत संगारे गुरुमुख साच पगत निसारे बूढ़ा दुर्योधन पत खोई राम न जानिया करता सोई जन को दुख पचे दुख होई जन में जय गुर शब्द न जानिया क्यों सुख पावे परम पुलानिया इक तिल पूले बौर पछतानिया कंस के चांडूर ना कोई राम ना छीनिया अपनी पत कोई बिन जगदीश ना राखे कोई बिन गुर दर्ब ना मेटिया जाए गुरमत तर

पाप पतंबर पहर हटावो, दिन हर नाम कहां सुख पावो, क्या पहरो क्या ओढ़ दिखावो, दिन जगदीश कहां सुख पावो, रहाओ कानी कुंडल गल मोतियन की माला, लाल निहाली फूल गुलाला, बिन जगदीश कहां सुख पाला, नैन सलोनी सुंदर नारी, खोर सिगार करे अति प्यारी, बिन जगदीश पजे नित खुआरी, दर कर महला सेज खाली, ऐनक फूल बिछावे माली, बिन हर नाम सो देह दुखाली, हैवर गैवर नेजे वाजे, लक्कर नेब खवासी पाजे, बिन जगदीश चूठे दिवाजे, सिद्ध कहावो रिद सिद्ध बुलावो, ताज कुल है सिर खतर बनावो, बिन जगदीश कहां सच पावो, खान मलूक कहावो राजा, अबे तबे कूड़े है पाजा, बिन गुर शब्द ना सवरस का।

सेवा एक न जानत अवरे, पर पंच ब्याज त्यागे कवरे, पाय मिले सत साचे फसरे, ऐसा राम भगत जन होई, हर गुण गाय मिले मल सोई, रहाओ ऊंदो कवल सगल संसार है, दुर्मत अगन जगत पर जा रे, सो उभरे गुर शब्द विचार है, प्रिंग पतंग कुंचर अर मीना, मृग मरे सह अपना कीना, तृष्णा रात तत नहीं दीना, काम चित कामन हितकारी, क्रोध विनाश है सगल विकारी, पत मत खोवे नाम विसारी, पर कर कीत मन मुख डोलाए, गल जेवरी तंदे लपटाए, गुरमुख छूटस हर गुण गाए, जो तन विधवा पर को दे, काम दाम चित पर वसे, बिन फिर तृप्त न कभू होई, पढ़ पढ़ पोथी सिमरत पाठा, वेद पुराण पढ़े सुन साटा, बिन रस राते मन बौ नाटा, ज्यो चात्रिक जल प्रेम प्यासा, ज्यो मीना जल माहे उलासा, नानक हर रस की तृप्तासा, गौरी मैला पहला, हट कर मरे ना देखे पावे, वेद करे बहु पसंद लगावे, नाम विसार बहुर पछतावे, तू मन हर जियो तू मन सुख, नाम विसार सह जम दुख, रहाओ चोवा चंदन अगर कपूर, माया मगन परम पद दूर, नाम विसारे सब कूड़ो कूर, नेजे वाजे तक सलाम, अद की तृष्णा व्यापे काम, बिन हर जाचे भगत ना नाम, वाद अहंकार नाही प्रभ मेला, मन दे पावे नाम सुहेला, दूजे पाए अज्ञान दुहेला, बिन दम के सौदा नहीं हाट, बिन बोहित सागर नहीं वाट, बिन गुर सेवे काटे काट, जिसको वाह वाह जे वाट दिखावे, जिसको वाह वाह जे शब्द सुनावे, जिसको वाह वाह जे मेल मिलावे, वाह वाह जिसको जिसका इहो जियो, गुर सबदी मत अमृत पियो, नाम वडाई तुद पाने दियो, नाम बिना क्यों जीवा माए, अनदिन जपत रहो तेरी सरनाए, नानक नाम रते पत पाए, कौड़ी मैला पहला, हूं मैं करत देखी नहीं जानिया, गुरुमुख भगत जिरले मन मानिया, हूं करत नहीं सच पाई है, हूं मैं जाए परम पद पाई है, रहाओ हूं मैं कर राजे बहुत आवे, हूं मैं खपे जन्म मर आवे, हूं मैं निवरे गुर शब्द विचार है, चंचल मत त्यागे पंच संगार है, अंतर साच सहज कर आवे, राजन जान परम गत पावे, सच करनी गुर परम चुकावे, निरपो के करतारी लावे, हों कर मरना क्या पावे, पूरा गुर पेटे सोच अगर चुकावे, जेसी है तेसी क्यों नाही, गुरमुख ज्ञान पेट गुण गाही, होमे बंधन बंद पवावे, नानक राम भगत सुख पावे, गौरी मैला पहला, प्रश्ने ब्रह्मा काले कर आया, ब्रह्म कमल पयाल न पाया, आज्ञा नहीं लीनी परम पुलाया, जो उपजे सो काल संगारिया, हम हर राखे गुर शब्द विचारिया, रहाओ माया मोहे देवी सब देवा, काल न छोड़े बिन गुर की सेवा, ओ अविनाशी अलख पेवा, सुल्तान खान बादशाह नहीं रहना, नामो पूले जम का दुख सहना, मैं पर नाम ज्यो राखो रहना, चौधरी राजे नहीं किसे मुकाम, सा मरे संचे माया दाम, मैं तन जी जय हर अमृत नाम, रैयत मेहर मुकदम सिकदार है, नेचल कोई न दिसे संसार है, अफ्रियो काल कूर सिर मार है, नेचल एक सच्चा सत सोई, जिन कर साजी तिन्हें सब गोई, ओ गुरुमुख जापे तापत होई, काजी शेख पेख फकीरा, वडे कहावे हो मैं तन पीरा, काल न छोड़े बिन सतगुर की तीरा, काल जाल जेवा अरनैनी, कानी काल सुने बिख बैनी, बिन सबदे मूठे दिन रैनी,
हृदय साच वसे हर नाए, काल ना जो है सके गुण गाए, नानक गुरमुख शब्द समाए, गौरी मैला पहला बोले साच मिथ्या नहीं राई, चाले गुरमुख हुकुम रजाई, रहे अतीत सच्चे शरणाई, सच कर बैसे काल न जो है, मन मुख को आवत जावत दुख मोह है, रहाओ अप्यो पियो अकथ कथ रही है, निज कर बैस सहज कर रही है, हर रस माते इहो सुख कही है, गुरमत चाल ने चल नहीं डोले, गुरमत साच सहज हर बोले, पीवे अमृत तत विरोले, सतगुरु देखिया दीखिया लीनी, मन तन अर्पयो अंतर गत कीनी, गत मित पाई आत्म चीनी, भोजन नाम निरंजन सार, परमहंस सच ज्योत अपार, जह देखो तह एकंकार, रह निरालम एका सच करनी, परम पद पाया सेवा गुरु चरणी, मन से मन मानिया चूकी अंग प्रमणी, इन विद कौन कौन नहीं तारिया, हर जस संत भगत निस्तारिया, प्रभ पाए हम अवर न पारिया, साच महल गुर अलख लखाया, नेचल महल नहीं साया माया, साच संतोखे परम चुकाया, जिनके मन वसिया सच होई, तिनकी संगत गुरमुख होई, नानक साच नाम मलख होई, गौरी महला पहला, राम नाम चितरा पैजा का, उपजंप दर्शन की जय ताका, राम ना जपो अपार कुमारा, जुग जुग दाता प्रभ राम हमारा, रहाओ गुरमत राम जपे जन पूरा, इत कट अनहत बाजे तूरा, जो जन राम भगत हर प्यार, से प्रभ राखे कृपा तार, जिनके हृदय हर हर सोई, जिनका दर्श परस सुख होई, सर्व जिया में एको रवे, मन मुख अंकारी फिर जूनी पवे, सो बूझे जो सतगुर पाए, हों में मारे गुर शब्दे पाए, अर्ग उर्द की संद क्यों जाने, गुरमुख संद मिले मन माने, हम पापी निर्गुण को गुण करिए, प्रभ होए दयाल नानक जन करिए, हम पापी निर्गुण को गुण करिए, प्रभ होए दयाल नानक जन करिए, सोलें अष्टपदिया।

बिल्कुल शब्द ना छूटी है। देखो बिचारा जे लख कर्म कमावही दिन गुर अंधियारा रहाओ। अंधे अकली बारे क्या तिन से कही है, दिन गुर पंख ना सूजई चित विद निर्भय है। खोटे को खरा कहे।

सेवा करें ठाकुर नहीं दिसे, पोखर नीर विरोली है माखन नहीं दिसे। इस पद जो असाए ले सो गुरु हमारा, नानक की ने आपको सो अपर अपारा। सब आपे आप वर्तदा आपे परमाया, गुर कृपा ते बूझिए सब जम समाया।

मन का सूतक दूजा भाओ, परमे पूले आवो जाओ, मन मुख सूतक कवे न जाए, जिचर शब्द न पीजे हर कहनाए राव, सबो सूतक जेता मो आकार, मर मर जमे वारो वार, सूतक अग्न पौने पानी माहे, सूतक भोजन जेता किस खाहे, सूतक कर्म न पूजा होए, नाम रते मन निर्मल होए, सतगुर सेवे सूतक जाए, मरे न जन्मे काल न खाए, सातक सिमरत शोध देखो कोए, बिन नावे को मुक्त न होए, जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार, कल में गुरमुख उतरत पार, साचा मरे न आवे जाए, नानक गुरमुख रह समाए, गौड़ी मैला कीजा, गुरमुख सेवा प्राण अधारा, हर जियो राखो हृदय उर्धारा, गुरमुख तोबा साथ द्वारा, पंडित हर पर तजो विकारा, गुरमुख पौजल उतरो पारा, रहाओ गुरमुख विचो हो मैं जाए, गुरमुख मैल न लागे आए, गुरमुख नाम वसै मन आए, गुरमुख कर्म कर्म सच होई, गुरमुख अहंकार जलाए दोई, गुरमुख नाम रते सुख होई, अपना मन प्रबोधो बूझो सोई, लोक समझावो सुने न कोई, गुरमुख समझो सदा सुख होई, मनमुख डंफ बहुत चतुराई, जो किछ कमावे सो थाए न पाई, आवे जावे खौर न काई, मनमुख कर्म करे बहुत अभिमाना, बग जो लाए बहन चाना, जम पकड़िया तभी पछताना, बिन सतगुर सेवे मुक्त न होई, गुर प्रसादी मिले हर सोई, गुरदाता जुग चारे होई, गुरमुख जात पत नामे।

राम पढ़ो मन करो विचार, गुर प्रसादी मैल उतार रहाओ। वाद विरोध ना पाया जाए, मन तन फीका दूजे पाए, गुर के शब्द सच लिवलाए। हो मैं मैला यो संसारा, नित तीर्थ नावे ना जाए अहंकारा, बिन गुर पेटे जम करे खुआरा। सो जन साचा जे हो मैं मारे, गुर के शब्द पंच संगारे, आप तरे सगले कुल तारे, माया मोह नट बाजी पाई, मनमुख अंध रहे लपटाई, गुरमुख अलिपत रहे लिवलाई। बहुते पेख करे पेख तारी, अंतर तिसना फिरे अंकारी, आप ना चीने बाजी हारी, कापड़ पहर करे चतुराई, माया मोह अत परम पुलाई, बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई। नाम रते सदा बैरागी, ग्रही अंतर साच लिव लागी, नानक सतगुर सेवे सेवड पागी। गौड़ी महला तीजा, ब्रह्मा मूल वेद अव्यासा, तिस्ते उपजे देव मोह प्यासा, त्रै गुण परमे नाही निज करवासा, हम हर राखे सतगुरु मिलाया, अनदिन भगत हर नाम दृढ़ाया। रहाओ त्रै गुण बाणी ब्रह्म जंजाला, पर वाद वखाणे सिर मारे जमकाला, तत नाचीने बन्ने पंड पराला, मनमुख अज्ञान को मार्ग पाए, हर नाम विसारिया बहु

गुर कै शब्द अंतर सहजरी दे, मेरा प्रभ पाया गुर कै शब्द सीधे। सतगुर मेले प्रभ आप मिलाए, मेरे प्रभ साचे कै मन पाए। हर गुण गावे सह सुवाए, बिन गुर साचे परम पुलाए। मनुख अंधे सदा बिख खाए, जम डंड सह सदा दुख पाए। जमुआ ना जो है हर की शरणाई, हों मैं मार सच लिवलाई। सदा रहे हर नाम लिवलाई, सतगुर सेवे से जन निर्मल पवित्ता। मन स्यों मन मिलाए सब जग जीता, इन विद कुशल तेरे मेरे नीता। सतगुरु सेवे सो फल पाए, हृदय नाम विच्चों आप गवाए। अनहद बाणी शब्द वजाए, सतगुरु ते कवन का।

बंधन ना टूटे मुक्त न पाए, मुक्त दाता सतगुरु जुगमाए, गुरुमुख प्राणी परम गवाए, सहज तुन उपजे हर लिव लाए रहाओ। त्रै गुण काले की सिरकारा, नाम न चेते उपावन हारा, मर जमे फिर वारो वारा, अंधे गुरु ते परम न जाई, मूल छोड़ लागे दूजे पाई, बिखा माता बिख माए समाई, माया तर मूल जंत्र पर माए, हर जियो विसरिया दूजे पाए, जिस नजर करे सो परम गत पाए, अंतर साच बार साच वर्ताए, साच न छपे जे को रखे छपाए, ज्ञानी बूझे सह सुबाए, गुरुमुख साच रहा लिव लाए, हों मैं माया शब्द जलाए, मेरा प्रभ साचा मेल मिलाए, सतगुरु दाता शब्द सुनाए, तावत राखे ठाक रहाए, पूरे गुरते सोजी पाए, आपे करता सृष्ट सिरज जिन गोई, तिस बिन दूजा अवर न कोई, नानक गुरुमुख बूझे कोई, गौड़ी महला तीजा, नाम अमोलक गुरुमुख पावे, नामो सेवे नाम सहज समावे, अमृत नाम रसना नित गावे, जिसनो कृपा करे सो हर रस पावे, अंदिन हृदय जपो जगदीसा, गुरुमुख पावो परम पद सुखा रहाओ, हृदय सुख पया प्रगास, गुरुमुख गावे सच गुण तास, दासन दास नित होवे दास, गृह कुटुंब मैं सदा उदास, जीवन मुक्त गुरुमुख को होई, परम पदार्थ पावे सोई, त्रै गुण मेटे निर्मल होई, सहजे साच मिले प्रभ सोई, मोह कुटुंब स्यों प्रीत न होए, जा हृदय वस्या सच सोए, गुरुमुख मन वेदिया अस्थिर होए, हुकम पचाने बूझे सच सोए।

सबद मन रंगिया लिव लाए, निज कर वस्या प्रभ की रजाए, सतगुर सेवे जाए अभिमान, गोविंद पाई है गुणी निधान रहाओ। मन बैरागी जा सबद पौ खाए, मेरा प्रभ निर्मला सब तै रहा समाए, गुर कृपा ते मिले मिलाए, हर दासन को दास सुख पाए, मेरा हर प्रभ इन विद पाया जाए, हर कृपा ते राम गुण गाए, त्रिग पहु जीवन जित हर नाम न लगे प्यार, त्रिग से सुखाली कामन मोगवार, तिन सफल जन्म जिन नाम आधार, त्रिग त्रिग गृह कुटुंब जित हर प्रीत न होए, सोई हमारा मीत जो हर गुण गावे सोए, हर नाम बिना मैं अवर न कोए, सतगुर ते हम गत पत पाई, हर नाम ते आया दुख सगल मिटाई, सदा आनंद हर नाम ले विलाई, गुर मिलिए हमको शरीर शुद्ध भई, हऊ मैं तृष्णा सब अग्न बुझई, बिन से क्रोध खिमा गह लई, हर आपे कृपा करे नाम देवे, गुरुमुख रतन को विरला लेवे, नानक गुण गावे।

सतगुर ते जो मोह फेरे ते वे मुख बुरे दिसन अंजन बद्दे मारियन फिर वेला ना लहन हर हर राखो कृपा तार सतसंगत मेलाए प्रभ हर हृदय हर गुणसार रहाओ से भगत हर पाव दे जो गुरमुख पाए चलन आप छोड़ सेवा करन जीवत मोए रहन जिसदा पिंड प्राण है तिसकी सिरकार ओहो क्यों मनो विसारी है हर रखिए हृदय तार नाम मिले पत पाए नाम मने सुख होए सतगुर के नाम पाए कर्म मिले प्रभ सोए सतगुर ते जो मोह फेरे ओए प्रम दे ना टिकन तर्क असमान ना चले विच विस्ता पहे पचन इहो जग परम पुलाया मोह टगोली पाए जिना सतगुर पेटिया तिन नेड़ ना पिटे माए सतगुर सेवन सो सोहने हों मैं मैल गवाए सबद रते से निर्मले चलने सतगुरु पाए हर प्रभ दाता एक तू तू आपे बस।

हर दरगे पहन आया हर आप लिया गल लाए मन करहला गुरु मन्या गुरमुखकार कमाए गुर आगे कर जोदड़ी जन नानक हर मेलाए गौड़ी महला चौथा

मन करहला गुरु गोविंद संभाले रहाओ, मन करहला विचारिया मन मुख फाथिया महाजाल, गुरुमुख प्राणी मुक्त है हर हर नाम समाल, मन करहला मेरे प्यारिया सत्संगत सतगुर पाल, सत्संगत लग हर त्याये हर हर चले तेरे नाल, मन करहला वड पादिया हर एक नजर निहाल, आप छड़ाए छुटिए सतगुर चरण समाल, मन करहला मेरे प्यारिया विच देही जोत समाल, गुरु नौ निज नाम विखालिया हर दात करी दयाल, मन करहला तू चंचला चतराई छड विकराल, हर हर नाम समाल तू हर मुक्त करे अंतकाल, मन करहला बड पागिया तू ज्ञान रतन समाल, गुर ज्ञान खड़ग हत तारिया जम मारे अड़ा जम काल, अंतर निधान मन करहले प्रम पवे बार पाल, गुर पुरख पूरा पेटिया हर सज्जन लदड़ा नाल, रंग रतड़े मन करहले हर रंग सदा समाल, हर रंग कदे ना उतरे गुर सेवा शब्द समाल, हम पंखी मन करहले हर तरवर पुरख अकाल, वड पागी गुर

जब यो मन में करत गुमाना तब यो बावर फिरत बिगाना जब यो हुआ सगल की रीना ताते रमैया कट कट चीना सहज सुहेला फल मस्कीनी सतगुर अपने मोहे दान दीनी रहाओ जब किसको यो जान समंदा तब सगले इस मेले फंदा मेर तेर जब इन्हें चुकाए कांते इस संग नहीं बहराए जब इन अपनी अपनी तारी तब इसको है मुश्किल पारी जब इन करने हार पछाता तब इसनो नाही किस ताता जब इन अपनो बांधियो मोहा आवे जाए सदा जम जोहा जब इसते सब बिन से परमा पेद नाही है पार ब्रह्मा जब इन किच कर माने पेदा तब ते दुख दंड अर खेदा जब इन एको एक ही बूझिया तब ते इसनो सब किच सूझिया।

कर कृपा जो सतगुर मिलियो, मन मंदिर में दीपक जलियो, जीत हार की सोजी करी, तो इस कर की कीमत परी। करन करावन सब किछ एक है, आपसे बुद्ध विचार विवेक है, दूर ना ने

सास जपत पाव अपदा जाए तावत मनुआ आवे खाए जास जपत फिर दुख ना लागे जास जपत ए हो मैं पागे जास जपत वस आवे पंचा जास जपत हृदय अमृत संचार जास जपत ए तृष्णा बुझे जास जपत हर दरगे सिजे जास जपत कोट मिटे अपराध जास जपत हर होवे साध जास जपत मन शीतल होवे जास जपत मल सगली खोवे जास जपत रतन हर मिले बहुर ना छोड़े हर संग हिले जास जपत कई बैकुंठ वास जास जपत सुख सह निवास जास जपत ए अग्न न पोहत जास जपत एहो काल न जोहत जास जपत तेरा निर्मल माथा जास जपत सगला दुख लाता जास जपत मुश्किल कछु न बने जास जपत सुन अनहत तुने जास जपत ए निर्मल सोए जास जपत कमल सीधा होए गुर शुभ दृष्ट सब ऊपर करी जिसके हृदय मंत्र दे हरी अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा कहो नानक जिस सतगुरु पूरा गौड़ी महला पंजवा गुर का शब्द निरिद अंतर तार है पंच जना स्यो संग निवार है दस इंद्री कर राखे वास ताके आत्मे होए प्रगास ऐसी दृढ़ता ताके होए जा को दया मया प्रभ सोए रहाओ साजन दुष्ट जाके एक समान है जेता बोलन तेता ज्ञान है जेता सुनना तेता नाम जेता पेखन तेता ध्यान सहजे जागन सहजे सोए सहजे होता जा

सहजे अमृत पियो नाम, सहजे कीनो जी को दान, सहज कथा में आत्म रसिया, ताके संग अविनाशी वसिया, सहजे आसन अस्थिर पाया, सहजे अनहत शब्द बजाया, सहजे ऋण चुनकार सुहाया, ताके कर पार ब्रह्म समाया, सहजे जाको पर्यो कर्मा, सहजे गुर पेट्यो सत्कर्मा, जाके सहज पया सो जाने, नानक दास ताके कुर्बाने, गौड़ी मैला पंजवा, प्रथमे गर्भ वास्ते तरिया, पुत्र कलत्र कुटंब संग जुरिया, पोजन अनेक प्रकार बहु कपरे, सर पर गमन करेंगे बपुरे, कवन स्थान जो कबहु ना तरे, कवन शब्द जित दुर्मत हरे, रहाओ इंद्रपुरी में सर पर मरना, ब्रह्मपुरी नेचल नहीं रहना, शिवपुरी का होएगा काला, त्रैगुण माया बिनस बिताला, गिर तर तरण गगन अरतारे, रवसस पवन पावक नीरारे, दिनस रैन बर्त अरतेदा, सासत सिमरत बिनसेंगे बेदा, तीरथ देव देहोरा पोथी, माला तिलक सोच पाक होती, तोती दंडौत प्रसादन पोगा, गमन करे गो सगलो लोगा, जात वर्ण तुर्क अर हिंदू, पस पंखी अनेक जोन जिंदू, सगल पसार दिसे पासारा, बिनस जाए गो सगल आकारा, सहज सिफत भगत तत ज्ञाना, सदा आनंद नेचल सचताना, तहां संगत साध गुण रसे, अनपौ नगर तहां सदवसे, तह पौ परमा सोग न चिंता, आवन जावन मृत न होता, तह सदा आनंद

जो इस मारे तिसे वड्याई, जो इस मारे तिसका दुख जाई। ऐसा कोई जो दुबदा मार दवावे, इसे मार राज जोग कमावे। रहाओ जो इस मारे तिसको पौना है, जो इस मारे सो नाम समाहे। जो इस मारे तिसकी तृष्णा बुझे, जो इस मारे सो दरगे सिजे। जो इस मारे सो तनवंता, जो इस मारे सो पतवंता। जो इस मारे

जो इस मारे सो नहीं चलता नहीं, जो इस मारे सो वड पागा, जो इस मारे सो अंधिन जागा, जो इस मारे सो जीवन मुक्ता।

इस मारी बिन थाए न परे, कोट कर्म जाप तप करे, इस मारी बिन जन्म न मिटे, इस मारी बिन जमते नहीं छूटे, इस मारी बिन ज्ञान न होई, इस मारी बिन झूठ न तोई, इस मारी बिन सब किछ मैला, इस मारी बिन सब किछ जौला, जाको पै किरपाल कृपा निज, इस पै खलासी होई।

मन अपने में फिर चेत बिनस जाहे माया के हेत। हर अविनाशी तुमरे संग मन मेरे रच राम के रंग। जा के काम उतरे सब भूख जा के काम ना जो है दूत। जा के काम तेरा वड गमर जा के काम होवे तू अमर। जा के

जाके ऊन नाही काहू बात, एक आप अनेक पात, जाकी दृष्ट होए सदा निहाल, मन मेरे करता की काल, ना को चतुर नाही को मूड़ा, ना को हीन नाही को सूरा, जित को ला

बोले कूर साकत मुखकारा, बिन सिमरन गर्दव की न्याई, साकत थान परिष्ट फिराई, बिन सिमरन कूकर हर काया, साकत लोभी बंध न पाया, बिन सिमरन है आत्म काती, साकत नीचे तिस कुल नहीं जाती, जिस पया कृपाल तिस सत्संग मिलाया, कहो नानक गुर जगत कराया, गौड़ी महला पंजवा, गुर के बचन मोह परम गत पाई, गुर पूरे मेरी पैज रखाई, गुर के बचन से आयो मोह नाओ, गुर प्रसाद मोह मिलिया छाओ, रहाओ, गुर के बचन सुन रसन वखाणी, गुर कृपा से अमृत मेरी बाणी, गुर के बचन मिटिया मेरा आप, गुर की दया ते मेरा वड प्रताप, गुर के बचन मिटिया मेरा परम, गुर के बचन पेख्यो सब ब्रह्म, गुर के बचन कीनो राज जोग, गुर के संग तरिया सब लोग, गुर के बचन मेरे कार्य सिद्ध, गुर के बचन पाया नाव निद, जिन जिन कीनी मेरे गुर की आशा, तिसकी कटिये जम की फासा, गुर के बचन जागिया मेरा कर्म, नानक गुर पेटिया पार ब्रह्म, गौड़ी महला पंजवा, किस गुर को सिमरों सास सास, गुर मेरे प्राण सतगुर।

अपना दासरा आपे मुल लियो, आपे लायो अपना प्यार। सदा सदा तिस गुरु को करी नमस्कार। कल कलेश पै परम दुख लाथा, कहो नानक मेरा गुर समराथा। गौड़ी मैला पंजवा, मिल मेरे गोविंद अपना नाम देहो। नाम बिना त्रिग त्रिग असनेहो, रहाओ नाम बिना जो पहरे खाए, जो कूकर जूठन में पाए। नाम बिना जेता व्योहार, जो मृतक मिथ्या सिगार। नाम विसार करे रस भोग, सुख सुपने नहीं तन में रोग। नाम त्याग करे अनकाज, बिनस जाए झूठे सब पाज। नाम संग मन प्रीत न लावे, कोट कर्म कर तो नरक जावे। हर का नाम जिन मन ना आराधा, चोर की न्याई जमपुर बादा। लाख अडंबर बहुत विस्तारा, नाम बिना झूठे पासारा। हर का नाम सोई जन ले, कर कृपा नानक जिस दे। गौड़ी मैला पंजवा, आद मद जो अंत निवा है, सो साजन मेरा मन चाहे। हर की प्रीत सदा संग चाले, दयाल पुरख पूरन प्रतपाले। रहाओ बिन सतनाही छोड़ न जाए, जह पेखा तह रया समाए। सुंदर सुगड़ चतुर जी दाता, पाई पूत पिता प्रभ माता। जीवन प्राण आधार मेरी रास, प्रीत लाई कर हृदय निवास। माया सिरक काटी गोपाल, कर अपना लीनो नगर निहाल। सिमर सिमर काटे सब रोग, चरण ध्यान सर्व सुख भोग। पूरन पुरख नवतन नित बाला, हर अंतर बार संग

खोजत फिरे असंख अंत ना पारिया, से होए भगत जिना कृपारिया, हों वारिया हर वारिया। रहाओ सुन सुन पंथ डराओ बहुत पहारिया, मैं तक्की और संता लेहो उबारिया। मोहन लाल अनूप सर्व साधारिया, गुर निव निव लागो पाए देहो दिखारिया। मैं किए मित्र अनेक इक्कस बलिहारिया, सब गुण किसी नाहे हर पूर पंडारिया। चौ दिस जपिए नाऊ सूख सवारिया, मैं आही और तुहार नानक बलिहारिया। गुर काड्यो पूजा प्रसार मोह कुपारिया, मैं जीत्यो जन्म अपार बहुर नहारिया। मैं पायो सर्व निदान अकथ कथारिया, हर दरगे शोभावंत बाल उडारिया। जन नानक लद्दा रतन अमो

नारायण हर रंग रंगो, जप जेवा हर एक मंगो, राव तज हो मैं गुर ज्ञान पजो, मिल संगत तुर कर्म लिखियो, जो दी सह सो संग न गयो, साकत मूड लगे पच मोयो, मोहन नाम सदा रव रहयो, कोट मदे किने गुरमुख लयो, हर संतन कर नमो नमो, नौ निद पावे अतुल सुखो, नैन अलोवो साध जनो, हृदय गावो नाम निदो, काम क्रोध लोभ मोह तजो, जन्म मरण दो ते रहयो, दुख अंधेरा करते मिट्यो, गुर ज्ञान दृढ़ायो दीप बलियो, जिन सेव्या सो पार परयो, जन नानक गुरमुख जगत करयो। महला पंजवा गौड़ी, हर हर गुर गुर करत परम गए, मेरे मन सब सुख पायो, रहाओ बल तो जल तो क्या गुर चंदन शीत लायो, अज्ञान अंधेरा मिट

सागर गहरो चर संतन नाव तरायो ना हम कर्म ना कर्म सुच प्रभ गह पूजा अपायो पौ खंडन दुख पंजनो भगत वचल हर नायो अनाथ नाथ कृपाल दीन समरथ संत ओटायो निर्गुनी आरे की बेनती देहो दर्श हर आयो नानक शरण तुहारी ठाकुर सेवक द्वारे आयो। गौड़ी महला पंजवा रंग संग बिखिया के पोगा इन संग अंध ना जानी हौ संचो हौ खाटता सगली अवध बिहानी रहाओ हौ सूरा प्रधान हो को नाही मुझे समानी जो बनवंत अचार कुलीना मन में होए गुमानी जो उलझायो बाद बुद्ध का मर्त्या नहीं बिसरानी पाई मीत बंदव सके पाछे तिन्हों को संपानी जित लागो मन बासना अंत साई प्रगटानी आंग बुद्ध सुच कर्म कर ए बंधन बंदानी दयाल पुर

करवास नाही पुछो सखी सहेलिया, बिन नाम प्रीत प्यार नाही वसे साथ सुहेलिया। सच मन सज्जन संतोख मेला, गुरमति सो जानिया, नानक नाम ना छोड़े सातन नाम सहज समानिया। मिल सकी सहेलड़ियो हम फिर रावे हा, गुर पुछ लिखोगी जियो शब्द स्नेहा। शब्द साचा गुर दिखाया मन मुखी पछतानिया, निकस जातो रह अस्थिर जाम सच पछाणिया। साच की मत सदा नौतन

मकर साजने आया, मिलवर नारी मंगल गाया, गुण गाए मंगल प्रेम रहती, मुंद मन उमा हो, साजन रहन से दुष्ट व्यापे, साच जप सच लाहो, कर जोड़ सातन करे बिनती, रैन दिन रस पिनिया, नानक पिर तन

रहेगी ना बिना प्रभु वे परवाहे। तन ना बाजू रह न साके बिखम रहन कनेरिया। नह नींद आवे प्रेम पावे सुन बेनंती मेरिया। बाजों प्यारे कोई न सारे एक लड़ी कुर लाए नानक सा तन मिले।

हर प्रीत प्यारे शब्द विचारे किसी का सो होवे पुन दान अनेक नावन क्यों अंतर मल तोवे नाम बिना गत कोई न पावे हाथ निग्रह बेबाने नानक सच कर शब्द सिंजापे दुबदा महल के जाने तेरा नाम।

तेरा मैल सच्चा जियो, नाम सच्चा वापारो, नाम का वापार मीठा, भगत लाहा अंदिनो, जिस बाज वखर कोई न सूजे, नाम ले वो खिन खिनो, परख लेखा नदर साची, कर्म पूरे पाया, नानक नाम।

आतन बिनो करे जियो हर के गुण सारे खिन पल रह न सके जियो बिन हर प्यारे बिन हर प्यारे रह न सके गुर बिन महल न पाई है जो गुर कहे सोई पर की जय तिसना अग्न बुझाई है हर साचा सोई तिस बिन अवर न कोई बिन सेवे सुख न पाए नानक सा तन मिले मिलाई जिसनों आप मिलाए तन रैन सुहेलड़िए जियो हर स्यों चित लाए सतगुर सेवे पाओ करे जियो विच्चों आप गवाए हर गुण गाए अन दिन लागा पाओ सुन सखी सहेली जी की मेली गुर के शब्द समाओ हर गुण सारी ताकंत प्यारी नामे तरी प्यारो नानक कामन ना प्यारी राम नाम गलहारो तन एक लड़ी जियो बिन ना प्यारे दूजे पाए मुठी जियो बिन गुर शब्द करारे बिन शब्द प्यारे कौन दुत्तर तारे।

नानक कामुन सदा रंग राती हर जियो आप मिलाए ता मिली है हर मेले जियो हर बिन कौन मिलाए बिन गुर प्रीतम अपने जियो कौन परम चुकाए गुर परम चुकाए यूं मिलिए माए तासा तन सुख पाए गुर सेवा बिन कोर अंधार बिन गुर मग न पाए कामन रंग राती सहजे माती गुर कै शब्द विचारे नानक कामन हर वर पाया।

सदा सुहागन जा सतगुर सेवे गुर के अंक समाये गुर शब्द मेला ता फिर रावी लाहा नाम संसारे नानक कामन ना प्यारी जा हर के गुण सारे सा तन रंग माने जियो अपने नाल प्यारे एनस रंग राती जियो गुर शब्द विचारे गुर शब्द विचारे हों में मारे इन बिद मिलो प्यारे सा तन सुहागन सदा रंग राती साचे नाम प्यारे अपने गुर मिल रही है अमृत गई है दुबदा मार निवारे नानक कामन हर

पानी अन न पावे मरिए हावे दिन फिर क्यों सुख पाये। गुर आगे करो बिनंती जे गुर पावे ज्यो मिले तिवें मिलाये आपे मेल ले सुखदाता आप मिलिया कर आए नानक कामन सदा सुहागन ना फिर मरे न जाए। गौड़ी महला तीजा कामन हर रस बेदी जियो हर कै सह सुवाए मन मोहन मोह लिया जियो दुबदा सह समाए दुबदा सह समाए कामन वर पाए गुरमती रंग लाए एहो शरीर पूर कुसत परिया गलताई पाप कमाए गुरमुख भगत जित सहज तुन उपजै बिन भगती मैल न जाए नानक कामन पिरै।

स्त्री पुरुष काम व्यापे जियो राम नाम की विद नहीं जानी। मात पिता सुत पाई खरे प्यारे जियो डूब मोए बिन पानी। डूब मोए बिन पानी गत नहीं जानी। हो मैं ताप संसारे जो आया सो सबको जासी। उबरे गुर विचारे गुरमुख होवे राम नाम वखाणे। आप तरह कुल तारे नानक नाम वसे कट अंतर। गुरमत मिले प्यारे राम नाम बिन को थिर नाही। जियो बाजी है संसारा दृढ़ भगत सच्ची जियो। राम नाम वा पारा राम नाम वा पारा अगमा पारा। गुरमति तन पाई है सेवा सुरत भगत के साची। विचों आप गवाई है हम मत हीन मूरख मुगद अंधे। सतगुरु मार्ग पाए नानक गुरमुख शब्द सुहावे। अंदिन हर गुण गाए आप सराय करे आप जियो। आपे शब्द सवारे आपे सतगुरु आप शब्द जियो। जुग जुग भगत प्यारे जुग जुग भगत प्यारे हर आप सवारे। आपे भगती लाए आपे दाना आपे बीना आपे सेव कराए। आपे गुण दाता अवगुण काटे हृदय नाम वसाए। नानक सद बलिहारे।

साज गवाए, सदा हर रस पाए, जहाँ हर पाए, रसना सबक सुहाए, नाम प्याए सदा सुख पाए, नाम रहे लीलाए, नामे उपजे नामे दिन से नामे सच समाए, नानक नाम गुरमति पाए आपे ले लवाए, ए विदानी चाकरी पिया जियो तन छोड़ परदेश सिधाए, दूजे किने सुख न पायो पिया जियो बिख्या लोभ लुवाए, बिख्या लोभ लुभाए परम पुलाए, ओ क्यों कर सुख पाए, चाकरी विदानी खरी दुखाली आप वेच कर्म गवाए, माया बंधन टिके नाही छिनछि दुख संताए, नानक माया का दुख तदे चूके जा गुरु सबदी चितलाए, मन मुख मुकुट गवार पिरा जियो शब्द मन ना वसाए, माया का परम अंग पिरा जियो हर मार्ग क्यों पाए, क्यों मार्ग पाए बिन सतगुरु पाए, मन मुख आप गणाए हर के चाकर सदा सुहेले, गुरचरणी चित लाए जिसनो हर जियो कृपा करे, सदा हर के गुण गाए, नानक नाम रतन जग लाहा गुरुमुख आप।

मन आस दर्श निमानिया सास सास ना करी विसरे पल मूरत दिन राते नानक सारंग ज्यो प्यासे क्यों मिलिए प्रभु दाते। एक बिनो करो जियो सुन कंत प्यारे मेरा मन तन मोह लिया जियो देख चलत तुम्हारे चलता तुम्हारे देख मोही उदास तन क्यों ती रहे गुणवंत ना दयाल बाला सर्व गुण भरपूर है फिर दोष ना ही सुख दाते हो विछड़ी बुरियारे बिनवंत नानक दया तारो कर आवो नहा प्यारे। हो मन अर्पी सब तन अर्पी अर्पी सब देसा हो।

रहे। जहाँ साध संत एकत्र हो गए हैं तहाँ तुझे त्यावे। कर दया मया दयाल स्वामी हो दीन कृपारा, बिनवंत नानक दर्श प्यासे मिल दर्शन सुख सारा। मोहन तेरे बचन अनूप चाल निराली, मोहन तू माने एक जी अवर सब राली। माने ता एक अलेख ठाकुर जिन्हें सब कल तारिया, तुद बचन गुर के वस किया आद पुरख बनवारिया। तू आप चलिया आप रहया आप सब कल तारिया, बिनवंत नानक पैज।

पैन दाना जमकाल किनको लगे नाही जो एक मन त्यावे मन बचन कर्म जे तुद आराधे से सबे फल पावे मल मूत मूड जे मुग्ध होते से देख दर्शो ज्ञाना बिन वंत नानक राज निचल पूरन पुरुष भगवाना मोहन तू सुफल फलिया।

बेअंत गुण तेरे कथे न जाहि, सतगुरु पुरख मुरारे बिनवंत नानक टेक राखी, जित लग तरिया संसारे। गौड़ी महला पंजवां श्लोक। पतित असंख

संत जप मना तू राम नारायण गोविंदा हर माधो त्याए मना मुरार मुकंदे कटिये काल दुख पातो दुख हरण दीन शरण श्री तार चरण कमल आरा दिए जम पंख बिखरा अगन सागर निमक सिमरत सा दिए कल मले दहता शुद्ध करता दिन सरण आरा दो बिनवंत नानक करो कृपा गोपाल गोविंद माधो सिमर मना दामोदर दुख हर पै पंजन हर राया श्री रंगो दयाल मनोहर भगत वचल बिरदाया पदक वचल पुरख पूरन मने चिंदिया पाई है तम अंग कूप ते उधार है नाम मन वसाई है सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन गुण अंक भगती गाया बिनवंत नानक करो कृपा पार ब्रह्म हर राया चेत मना पार ब्रह्म परमेश्वर सर्व कला जिन तारी करुणा में समरथ स्वामी कट कट प्राण अधारी प्राण मन तन जी दाता बेअंत अगमा पारो शरण जोग समरथ मोहन सर्व दोख बिदारो रोग सोग सब दोख बिनसे जपत नाम मुरारी बिनवंत नाम।

प्रतपाला प्रतपाल महादयाल दाना दया तारे सब किसे काल कंटक लोभ मोह नाशे जी जाके प्रभु बसे सो प्रसन्न देवा सफल सेवा पई पूरन काला बिनवंत नानक।

संते मान त्याग कर भगत खगौरी मोहे साधु मनते सखी वस आया फिर छोड़ न जाई तेरी रीत पली भगवंत नानक जरा।

गोविंद गाये कल कलेश मिटे प्रम नासे मन चिंदिया फल पाये पार ब्रह्म पूरन परमेश्वर नानक नाम ते आये। सखी इच करी नित सुख मनाई प्रभु मेरी आस पुजाए चरण प्यासी दर्श बैरागन पेखो थान सवाए खोज लहो हर संत जना संग समरथ पुरख मिलाए नानक तिन मिलिया सुरजन सुखदाता सेवद पागी माए। सखी नाल वसा अपने ना प्यारे मेरा मन तन हर संग हिलिया सुन सखिए मेरी नींद भली मैं आप नड़ा फिर मिलिया प्रम खोयो सांत सह स्वामी परगास तया कौल खिलिया वर पाया प्रभु।

परमेश्वरा गुरुदेव सखा अज्ञान पंजन गुरुदेव बंधक सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है गुरुदेव मंत्र निरोधरा गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत गुरुदेव पारस परस्परा गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मजन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतित पवित्र करा गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत्र हर जप उदरा गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा हम मूढ़ पापी जित लग तरा गुरुदेव सत गुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा श्लोक आपे किया कराया आपे करने जोग नानक एक और अवरया दूसर हुआ न होग पौड़ी ओं सात सतगुरु नमस्कार आद मद अंत निरंकार आपे सुन आपे सुख आसन आपे सुनत आप ही जासन आपन आप आपे उपायो आपे बाप आप ही मायो आपे सुखम आपे

निरंकार आकार आप निर्गुण सरगुण एक, एक एक बखान नो नानक एक अनेक। पौड़ी ओम गुरुमुख कियो अकारा, एक सूत पर ओवन हारा, तिन तिन त्रै गुण विस्तार, निर्गुण ते सरगुण विस्तार, सगल पाप कर करे उपायो, जन्म मरण मन मोह बढ़ायो, दोहू पाप ते आप निरारा, नानक अंत न पारा वारा। श्लोक से सहा भगवंत से सच संपै हर रास, नानक सच सुच पाई है ते संतन के पास। पवड़ी सत्सा सत सत सत सो, सत पुरख ते पिन न को, सो शरण परे जे पायं, सिमर सिमर गुण गाय सुनायं, संशय परम नहीं कछ व्यापत, प्रगट प्रताप पाहू को जापत, सो साधु ए पहुंचन हारा, नानक ता कै सद बलिहारा। श्लोक तन तन कहां पुकारते, माया मोह सब कूर, नाम बिहूने नानका, होत जात सब तूर। पवड़ी तद्दा तूर पुनीत तेरे जनुआ, तन तेऊ जेहे रुच या मनुआ, तन नहीं बाछे सुर्ग नाचे, अत प्रे प्रीत साध रज राचे, तंदे कहां व्यापे ताहू, जो एक छाड अनकते न जाहू, जा कह ही है दियो प्रभ नाम, नानक साध पूरन भगवान। श्लोक अनिक पेख

आया, जन्मत मोयो मोनी माया। गर्भ कुंट में उर्ग तप करते, सास सास सुमरत प्रभ रहते। उर्ज परे जो छोड़ छदाना, देवन हार मने बिसराना। तारो कृपा जिसे गुसाई, कित उत नानक तिस बिसरो नाही। श्लोक आ

या जुग जित जित आपे लायो सो सो पायो जो आप दिवायो ओवा का अंत न जाने को जो जो करे सो फुन हो एक के सगला विस्तारा नानक आप सवार नहारा। श्लोक रात रहे बनता विनोद कुसुम रंग बिक सोर।

0: कौड़ी।
1: रे मन बिन हर जय रचो, कहते बंधन पाहे, जे विद कतहु ना छूती है।

जोड़ा ते रंग एक कै नानक गूड़ा रंग पौड़ी रारा रंगो या मन अपना हर हर नाम जपो जप

अगमाते या माया में जन्मे मरना, जो जो हुक्म तिवे त्यों करना, को ऊन ना को पूरा, को सुगर ना को मूरा, जित जित लावो।

जाको दया मया विदाता, एक आवन फिर जोन ना आया, नानक हर के दर्श समाया। श्लोक यास जपत मन होए आनंद, बिनसे दूजा पाओ, दुख दर्द तिसना बुझे, नानक नाम समाओ। पौड़ी जैया जारो दुर्मत दो, तिसे त्याग सुख सहजे सो, यैया जाए परो संत सरना, जे आसर एया पव जल तरना। यैया जन्म न आवे सो, एक नाम ले मने परो, यैया जन्म न हारिये, गुरपूरे की टेक, नानक ते सुख पाया, जाके ही रे एक। श्लोक अंतर मन तन बस रहे, पीत ऊत के बीत, गुरपूरे उपदेशया, नानक जपिये नीत। पौड़ी अंदिन सिमरो तास को, जो अंत सहाय होए, ए बिखिया दिन चार छे छार चलो सब कोए, ताको मा

खर्च खजाना नाम तंग या भगतन की रास खिमा गरीबी आनंद सहज जपत रहे गुणतास खेले बिकसे अनुभ स्यो जा को होत कृपाल सदीव गनीव सुहावने राम नाम गृह माल खेद न दुख न दानते।

लोग आस अनित गुरुमुख मिटाए नानक नाम अरोग पौड़ी गद्दा गोविंद गुण रमो सास सास जपनीत कहां विशासा देह का विलम न करहो मीत न बारक न जोगने न वृद्धि कछ बंद ओ बेरा न बूझिए जो आए पर

गुर प्रसाद सिमरत रहे जाहु मस्तक पाग, नानक आए सफल ते जाको प्रिय सुहाग। श्लोक कोखे शास्त्र देव सब आम न कस्तो कोए, आप जुगा दी हुन।

काल से जो साकत प्रभ कीन अनक जोन जन्मे मरे आत्म राम न चीन ज्ञान ध्यान ताहू को आए कर कृपा जी।

प्रगट पै नानक ने छपया श्लोक। चित चितवो चरणार बिंद ऊद कवर बिरसांत, प्रगट पै आपे गोविंद नानक संत मतांत। पौड़ी। चच्चा चरण कमल गुर लागा, तन तन ओ आ दिन संजोग सभागा, चार कुंट दह दुष्क्रम आयो, पई कृपा तब दर्शन पायो। चार विचार बिन सो सब दुआ, साध संग मन निर्मल हुआ,

रे छच्छा चार हो तेरे संता, अपनी कृपा करो भगवंता। छाड़ सियानप बहु चतुराई, संतन की मन टेक टिकाई, छार की पुत्री परमगत पाई, नानक जाको।

चूरन मिटे तुम्हारो, राम नाम स्यों कर व्योहारो, चूरत चूरत साकत मुआ, जा कह हृदय होत पाओ बिया। चरह कसम मल पाप तेरे मनुआ, अमृत कथा संत संग सुनुआ, चरह काम क्रोध दुष्टाई, नानक जा को कृपा गुसाई। श्लोक। यतन करो तुम अनक विद।

ज्ञानत सोई संत सोए प्रमते की चत पिन अंधकूप ते ते कढ़ो जे हो वो सो प्रसन्न ना कह हाथ।

पावन बिन नावे सुख नाहे तले जाम के दूत ते जो साधु संग समाहे। बार बार जाऊं संत सदके नानक पाप बिना से कद के। श्लोक थाक ना होती तिन्हों दर जे हो वो सो प्रसन्न जो जन प्रभ अपने करे नानक ते तन तन।

या डेरा को श्रम कर काले जाका तसू नहीं संग चाले। ओ आडेरा की सो मित जाने जाको दृष्ट पूरन भगवाने डेरा ने चल सच।

साध संग अहं बुद्ध विकराल सुख पावो सहजे बसो दर्शन देख निहाल। तेरी जा मैं जम मरे गर्भ जोन दुख पाए मोह मगन लपटत रहे हों आवे जाए। टहत टहत अब टह परे साध जना शरणाए दुख के फाहे काट।

पौड़ी। पत्ता परमित पार न पाया, पतित पावन अगम हर राया, होत पुनीत कोट अपराधु, अमृत नाम जपह मिल साधु। पर पच त्रोह मोह मिटनाई, जाको राखो आप गुसाई, पाँच सौ छत

आवै बांध्यो आपन हों हों बंदा दोष देत आगे को अंधा बात चीत सब रही सियानप जिसे जनाबो सो जाने नानक श्लोक पै पंजन अग

मन मूर्ख कह करें पुकार। जो मांगे तो मांगे दिया, जाते कुशल न काहू थिया, मांगन मांगता एक मांग, नानक जाते।

मम्मा जाहू मरम पछाना, पेटत साध संग पतिलाना, दुख सुख उआ के समत बिचारा, नरक सुरग रहत अवतारा, ताहू संग ताहू निर्लेपा, पूरन कट कट पुरख बिसेखा, उआ रस में उआहू सुख पाया, नानक लिपत नहीं ते माया। श्लोक। यार मीत सुन साजनो, बिन हर छूटन नाहे, नानक ते बंधन कटे, गुर की चरनी पाहे। पौड़ी। यैया जतन करत बहु विदिया, एक नाम बिन कह लोस दिया, याहू जतन कर होत।

खसमता ओ आ सुख देता पार ब्रह्म ऐसो अगनता असंख खते खिन बख्शन हारा नानक साहिब सदा दियारा। श्लोक सत कहो सुन मन मेरे शरण परो हर राए उकत सियानप सगल त्याग नानक ले समाए। पौड़ी ससा सियानप छाड़ आना हिकमत हुक्म ना प्रपति आना सहस पाठ करें चतुराई संग तुहारे एक ना जाई। सो सो जप दिन राती रे जी चले तुहारे साथी साध सेवा लावे जे आपे नानक ताको दुख ना।

पौड़ी। हेरो काट काट सगल कै पूर रहे भगवान, होवत आए सद सदीव दुख पंजन गुर ज्ञान। हौ छुट तै होए आनंद ते, हौ नाही तै आप हटे दुख जन्म मरण संत संग परताप। हित कर नाम दृढ़ दयाला, संत संग होत कृपाला, पूरे कछु न किन्हू किया, नानक सब कछ प्रभु।

बेगाना अल्प मत जियो पिंड जिन सुख दिए ताहे न जानत तत। लाहा माया कारने दैद स्टूडन जाए देवन हार दार प्रभ निमख न मने मसाए। लालच झूठ बिकार मोह या संपे मन माहे लंपट चोर निंदक महा तिन्हो संग बिहाए। खुद पावे ता बख्श ले खोटे संग खरे नानक पावे।

पव जल ते काडू प्रभु नानक तेरी टेक पौड़ी। खेलत खेलत आयो अनक जोन दुख पाए, खेद मिटे साधु मिलत सतगुरु बचन समाए। खिमा गई सच संचयो।

खरा दिलासा गुर दिया, आए मिले भगवंत। आपन किया करें आप, आगे पाछे आप, नानक सो सराही है जे कट कट रहा ब्याप। श्लोक आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल, एक अक्षर हर मन बस्त नानक होत निहाल। पौड़ी अक्षर में त्रिभवन प्रभ धारे, अक्षर कर कर वेद विचारे, अक्षर शास्त्र सिमरत पुराना, अक्षर नाद कथन वख्याना, अक्षर मुक्त जुगत पै परमा, अक्षर कर्म कीर्त सुच परमा, दृष्टमान अक्षर है जेता, नानक पार ब्रह्म निर्लेपा। श्लोक हाथ कलम अगम मस्तक लिखावती, उर्ज रहो सब संग अनूप रूपावती, पुस्तक कह न जाए।

हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निदान, जा कै सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे, है भी होवन हार, हे संत के सदा संग निधारा आधार। हे ठाकुर हूँ दासरो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोए, नानक दी जय।

गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है, गुरुदेव मंत निरोधरा, गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत, गुरुदेव पारस परस्परा, गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर, गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतित पवित करा, गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग, गुरुदेव मंत हर जप उदरा।

सतगुरु प्रसाद। आद गुर ए नमः है, जुगाद गुर ए नमः है, सतगुर ए नमः है, श्री गुरुदेव ए नमः है। अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख गावो, कल कले स्तन माय मिटाओ। सिमरो जास विसंगर एक है ना।

प्रभु सिमरन दुख जम नसे, प्रभु के सिमरन काल पर हरे, प्रभु के सिमरन दुश्मन तरे, प्रभु सिमरत कछ बिघन न लागे, प्रभु के सिमरन अन्न दिन जागे, प्रभु के सिमरन पाव न व्यापे, प्रभु के सिमरन दुख न संतापे, प्रभु के सिमरन साध के संग सर्व निधान नानक हर रंग, प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध, प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध, प्रभु के सिमरन जप तप पूजा, प्रभु के सिमरन बिनसै दूजा, प्रभु के सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभु के सिमरन दरगे मानी, प्रभु के सिमरन होय सो भला, प्रभु के सिमरन सो फल फला, से सिमरन जिन आप सिमराए, नानक का कहला गुपाए, प्रभु का सिमरन सबते ऊंचा, प्रभु के सिमरन उदरे मूचा, प्रभु के सिमरन तृष्णा बुझे, प्रभु के सिमरन सब किछ सुझे, प्रभु के सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभु के सिमरन पूर्ण आशा, प्रभु के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नामृत माहि सुनाए, प्रभु जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभु को सिमरे से तनवंते, प्रभु को सिमरे से पतवंते, प्रभु को सिमरे से जन प्रवान, प्रभु को सिमरे से पुरुष प्रदान, प्रभु को सिमरे से बेमोहताजे, प्रभु को सिमरे से सर्व के राजे, प्रभु को सिमरे से सुखवासी, प्रभु को सिमरे सदा अविनाशी, सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगैर वाला, प्रभु को सिमरे से परोपकारी, प्रभु को सिमरे तिन सद बलिहारी, प्रभु को सिमरे से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरे तिन सुख बिहावे, प्रभु को सिमरे तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरे तिन निर्मल रीता, प्रभु को सिमरे तिन अनंत घनेरे, प्रभु को सिमरे बसे हर नेरे, संत कृपा ते अनदिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग, प्रभु के सिमरन कारज पूरे, प्रभु के सिमरन कभो न झूरे, प्रभु के सिमरन हर गुण बानी, प्रभु के सिमरन सहज समानी, प्रभु के सिमरन निचल आसन, प्रभु के सिमरन कमल विगासन, प्रभु के सिमरन अनहद जुन पार, सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार, सिमरे से जन जिन को प्रभु नया, नानक तिन जन सरनी पया, हर सिमरन कर पगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेत उपाय, हर सिमरन तय सुध जति दाते, हर सिमरन नीच चौ कुंट जाते, हर सिमरन तारी सर करना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन कियो सगल अकारा, हर सिमरन में आप निरंकारा, कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरुमुख हर सिमरन तिन पाया श्लोक, दीन दर दुख पंजना, कट कट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभु साथ, अष्टपदी जय मात पिता सुत नीत न भाई, मन उहा नाम तेरे संग सहाई, जय मां प्यान दूत दम दले, ते केवल नाम संग तेरे चले, जय मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम खिन माए उदारी, अनित पुने चरण कर्त नहीं तरे, हर को नाम कोट पाप पर हरे, गुरुमुख नाम जपो मन मेरे, नाम पावो सुख घनेरे, सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत हो सुखिया, लाख करोरी वंदना करे, हर का नाम जपत निस्तर है, अनेक माया रंग सिखना बुझावे, हर का नाम जपत आभावे, जे मार के हो जात इकेला, ते हर नाम संगोत सोएला, ऐसा नाम मन सदा ते आई है, नानक गुरुमुख परम गत पाई है, छूटत नहीं कोट लखबाही, नाम जपत ने पार कराही, अनेक विघ्न जय आए संगारे, हर का नाम तत्काल उधार है, अनेक जोन जन्मे मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम, हौ मैला मल कहु न धोवे, हर का नाम कोट पाप खोवे, ऐसा नाम जपो मन रंग, नाम पाये साध के संग, जे मार्ग के गने जाए न कोसा, हर का नाम उहा संग तोसा, जे पैंदे महा अंग गुबारा, हर का नाम संग जिया।

पहचानो। जय माँ प्याम सब वो काम, तै हर के नाम की तुम ऊपर छान। जहाँ त्रिखा मन तुझ आकर्ष है, तै नानक हर हर अमृत बरख है। भगत जना की बरकर नाम, संत जना के मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर के नाम उदरे जन कोट। हर दस पर संत दिन रात, हर हर औसत साध कमात। हर जन के हर नाम निधान, पार ब्रह्म जन की नो दान। मन तन रंग रते रंग एक है, नानक जन के बिरत विवेक है। हर का नाम जन को मुक्त जुगत, हर के नाम जन को तृप्त भूत। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत तब करे न भंग। हर का नाम जन की वडियाई, हर के नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत तस्वाए वियोग। जन वाता हर नाम की सेवा, नानक पूजे हर हर देवा। हर हर जन के माल खजीना, हर तन जन को आप सब दीना। हर हर जन के ओट सतानी, हर प्रताप जन अगर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते। आठ पैर जन हर हर जपे, हर का पगत प्रकट नहीं छपे। हर की पगत मुक्त बहु करे, नानक जन संकेते तरे। पार जात ए हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। सबसे उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत हृदय वसे, संत प्रताप दीर्घ सब नसे। संत का संग बड़ भागी पाये, संत की सेवा नाम ध्याये। नाम तुल कछ अगर न होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए। श्लोक बहु शास्त्र बहु स्मृति, पेखे सर्प टंडोल। पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ज्ञान, खत शास्त्र स्मृत वख्यान। जो अभ्यास कर्म कर्म क्रिया, सगल त्याग बन मदे फिरिया। अनेक प्रकार की ये बहु जतना, पुन दान हो में बहु रतना। शरीर कटाए हो मैं कर राती, वर्त नेम करे बहु पासी। नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिया एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिरे चिरजीव, महा उदास कपि सरथीव। अगन माए होमत प्राण, कनक अश्व है वर भूम दान। न्योली कर्म करे बहु आसन, जैन मार्ग संजम अच्छादन। निमक निमक कर शरीर कटावे, तो भी हो मैं मेल न जावे। हर के नाम संसर कछ नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गप पाहे। मन कामना तीरथ दे छुटे, गर्भ गुमान न मन ते हुटे। सोच करे दिन और रात, मन की मैल न तनते जात। इस देही को बहु साधना करे, मन से कभू न भिख्या करे। जल को वह बहु दे अनीत, शुद्ध कहाँ होए काची वीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतित बहुमूच। बहुत श्यांत जम का पौ व्यापे, अनेक जगन कर प्रसन्ना धापे। पेट अनेक अगर नहीं बुझे, कोट उपार दर गहने सिजय। छूटत नाही ऊप बयाल, मोह व्यापे माया जाल। अवर करतूत सगली जमदाने, गोविंद पदन बिन तिल नहीं माने। हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोले सह सुभाए। चार पदार्थ जे को मांगे, सब जना की सेवा लागे। जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सब गावे। जे को अपनी शोभा लोरे, साध संग ए हो मैं चोरे। जे को जन्म मरण से डरे, सब जना की सरनी परे। जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा, नानक ताके बल बल जासा। सगल पुरुख में पुरुख प्रदान, साप संग जाका मिटे अभिमान। आपस को जो जाने नीचा, सो गनिये सबसे ऊंचा। जाका मन होए सगल की रीना, हर हर नाम तिन कट कट चीना। मन अपने ते बुरा मिटाना, देखे सगल सृष्ट साजना। सुख दुख जन सम दृष्टेता, नानक पाप पुन नहीं लेता।
निज तन को तन तेरो नाओ, निथाम को नाओ तेरा थाओ, निमाने को प्रभ तेरो मान, सगल कटा को देवो दान। करन करावन हार स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी, अपनी गत मिट जानो आपे, आपन संग आप प्रभ राते, तुमरी उस्तक तुमते होए, नानक अवर ना जानस कोए। सर्व कर्म में श्रेष्ठ कर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म, सगल क्रिया में उत्तम क्रिया, साध संग दुर्मत मल हिरिया।

बख्श लियो तो नानक सीजे। जे प्रसाद तर ऊपर सुख बसे, सुत प्रात मीत बनता संग हसे। जे प्रसाद पीवे शीतल जला, सुखदाई पवन पावक अमूला। जे प्रसाद भोगे सब रसा, सगल समग्री संग साथ बसा। दीने हक पाव कर नेत्र रसना, तिसे त्याग अवर संग रचना। ऐसे दोख मूड अंग व्यापे, नानक काज लेहो प्रव्यापे। आद अंत जो राखनहार, तिस्यो प्रीत न करे गवार। जा की सेवा नव निध पावे, तास्यो मूड़ा मन नहीं लावे। जो ठाकुर सब सदा हजूरे, ताको अंदा जानत दूरे।

चाहते हैं। जो छदना सो अस्थिर कर माने, जो होवन सो दूर पराने, छोड़ जाए किस पाश्रम करे, संग सहाय किस पारे, चंदन ले उतारे धोए, गर्द प्रीत पसंद संग होए, अंधकूप में पतित विकराल, नानक काट लियो प्रभु दयाल, करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात, बाहर पेट अंतर मल माया, छप सुनाए कछ करे छिपाया, बाहर ज्ञान त्यान स्नान, अंतर व्यापे लोभ सुहान, अंतर अगन बाहर तन सुहारा, जल पाथर कैसे करे अथाहा, जाके अंतर बसे प्रभ आप, नानक तेजन सह समात, सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गए लिहो और निभावे, कहां बुझारत बूझे डोरा, निष्कई है तो समझे पोरा, कहां विषण पद गावे गुंग, जतन करे तो भी सुरभंग, कह पिंगल पर्वत पर भवन, नहीं होत उहा उस गवन, करतार करुणा में दीन बेनती करे, नानक तुम्हरी कृपा करे, संग सहाय सो आवे ना चीत, जो बैराई तासो प्रीत, बलुआ के गृह पीतर बसे।

त्याहु जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लियो आपन कर करम। तू ठाकुर तुम पै अरदास जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बार तेरे तुमरी कृपा में सुख गनेरे।

सारा जाके मन लागा प्रभु मीठा सर्व सुख काहू मन बूठा जिस जन अपना हुकुम मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगनत साओ अपनी देरास खात पीत बरते अनत उलास अपनी अमान कछ बहुर साहले अज्ञानी मनी रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोए।

कहे मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई। मिथ्या तन तन कुटुंब सबाया मिथ्या हो मैं ममता माया।

आए। गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, जो किरपन के निरारक दाम। तन तन ते जन जे कट बस्यो हर नाव, नानक ताके बल बल जाओ। रहत अवर कछ अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखो गंध लावत। जानन हार प्रभु प्रवीन, बाहर पेख न काहू पीन। और उपदेश आप न करे, आवत जावत जन्मे मरे। जिसके अंतर बसे निरंकार, तिसकी सीख करे संसार। जो तुम

अष्टपदी जे प्रसाद शक्ति अमृत खाए तिस ठाकुर को रख मन माहे जे प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमरत परम गत पावे जे प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याए सदा मन अंदर जे प्रसाद दे संग सुख बसना आठ पैर सिमरो तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई है त्यावन जोग जे प्रसाद पाठ पतंबर हंडावे तिसे त्याग कत अवर लुभावे जे प्रसाद सुख से सोई जय मन आठ पैर ताका जस का वी जय।

सब ताके जे प्रसाद तुझको ना पहुंचे मन साथ साथ सिमरो प्रभु ऊचे जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे जे प्रसाद अपूखन कहरी जय मन ते सिमरत क्यों आलस की जय जे प्रसाद अस्वहस्त अस्वारी मन किस प्रभु को कभू ना बिसारी।

जी प्रसाद तेरी पत्र है, गुर प्रसाद नानक जस कहे। जी प्रसाद सुने करन नाद, जी प्रसाद पेखे विस्माद। जी प्रसाद बोले अमृत रसना, जी प्रसाद सुख सहजे बसना। जी प्रसाद हस्त कर चले, जी प्रसाद संपूर्ण फले। जी प्रसाद परम गत पावे, जी प्रसाद सुख सह समावे। ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो।

साध के संग मिटे अभिमान, साध के संग प्रगटे सो ज्ञान, साध के संग बुझे प्रवनेरा, साध संग सब होत निवेरा, साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा बरने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ माए समानी, साध के संग अगोचर मिले, साध के संग सदा प्रफुल्ले, साध के संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस बुंचा, साध संग होए सबकी रेन, साध के संग मनोहर बैन, साध के संग न कथू धावे, साध संग अस्थित मन पावे, साध के संग माया ते पिन, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न।

आप आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बने आई। साध के संग न कभू धावे, साध के संग सदा सुख पावे। साध संग बस अगोचर लहे, साधु के संग अजर सहे। साध के संग बस है थान ऊंचे, साधु के संग महल पहुंचे। साध के संग दृढ़ सब कर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म। साध के संग पाए नाम निधान, नानक साधु के कुर्बान। साध के संग सब कुल उधार है, साध संग साधन मीत कुटम निस्तार है। साधु के संग सो तन पावे, जिस तन ते सब को वरसावे। साध संग धर्म राय करे सेवा, साध के संग शोभा सुर देवा। साधु के संग पाप पलायन, साध

अमृत गुण गायन साध के संग सर्व थान गम नानक साध के संग सफल जन्म साध के संग नहीं कष्टाल दर्शन पेटत होत निहाल साध के संग कलू कतहर साध के संग नरक पढ़हर साध के संग इहा उहा सुहेला साध संग बिचरत हर मेला जो इच्छा सोई फल पावे साध के संग ना बिरथा जावे पार ब्रह्म साध रिद बसे नानक उदरे साध सुन रसे साध के संग सुनो हर नाओ साध संग हर के गुन गाओ साध के संग ना मन से बिसरे साध संग सर पर निस्तरे साध के संग लगे प्रभ मीठा साधु के संग कट कट जीठा साध संग पै आज्ञाकारी साध संगत पै हमारी साध के संग मिटे सब रोग नानक साध पेटे संग।

गुण गाम, काहू जुगत कितह न पाये तरम, नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर करम। जिस कै मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत राम दास, आत्म राम तिस नदरी आया, दास संतन पाए किन पाया, सदा निकट निकट हर जान।

ऐसी जुगत नानक रामदास। प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै। तैसा हरख तैसा उसोग, सदा अनंत तै नहीं वियोग। तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी,

अष्टपदी, कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पय तीर्थवासी, कई कोट वन प्रमेय उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट कपीसर होते, कई कोट आपम ध्यान तारे, कई कोट कब काप विचारे, कई कोट नरसन नाम दियावे, नानक करते का अंत न पावे, कई कोट पय अभिमानी, कई कोट अंत अज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अभिज आत्म निकोर, कई कोट पर दर्द को हिरे, कई कोट पर दुख न करे, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश परमाहे, जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाय, कई कोट पाथर बिरख मिट जाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश पू मंडल, कई कोट सस्यर सूर नक्षत्र, कई कोट देवदान इंद्र सिर छत्र, सगल समग्री अपने सूत धारे, नारक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तारे, कई कोट राजस्ताम

नानक आप अलिप्त रहा भरपूर। कई कोट पताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्मे जीवे मरे, कई कोट बहुजो नी फिरे।

नानक सब कुछ प्रभ के हाथ। कई कोट पै बैरागी राम नाम संग तिन लिव लागी। कई कोट प्रभ को खोजनते आत्म में पार ब्रह्म लहंते। कई कोट दर्शन प्रभ प्यास तिनको मिलियो प्रभ अविनाश। कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग। जिनको हुए आप सो प्रसन्न नानक के जन सदा तन तन। कई कोट खानी अर खंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड।

तिन होवत आत्म परदास। कई कोट तक के बेटे सदा निहारे एको नेत्रे। कई कोट नाम रस पीवे अमर पहे सत सद ही जीवे। कई कोट नाम गुण गावे आत्म रस सुख सह समावे। अपने जन को साथ साथ समारे नानक ओए परमेश्वर के प्यार।

हुक्मे तार अदर रहावे, हुक्मे उपजे हुक्म समावे, हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मे अनेक रंग प्रकार, कर कर देखे अपनी वडियाई, नानक सब में रिया समाई। प्रभ पावे मानव गत पावे, प्रभ पावे ता पाथर तरावे, प्रभ पावे बिन सास राखे, प्रभ पावे ता हर गुण पाखे।

जो पावे सो कार करावे, नानक दृष्टि अवरना आवे। कहो मानस के क्या होए आवे, ज्योतिष पावे सोई करावे। इसके हाथ होए ता सब पिछले, ज्योतिष पावे सोई करे। अनजानत भिख्या में रचे, जे जानत आपन आप बचे। परने पूला दे दिस्तावे, निमक माए चार कुंट फिर आवे। कर कृपा।

गुर प्रसाद नानक सच कहे। कबू होए पंडित करे बखान, कबू मोन तारी लावे ध्यान। कबू तट तीरथ स्नान, कबू सिद्ध साधक मुख ज्ञान। कबू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनेक जोन परमे परमिया। नाना रूप जो स्वागी दिखावे, जो प्रभ पावे तिवे न चावे। जो

अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश। मन तन नाम रते इक रंग, सदा बसे पार ब्रह्म के संग। ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। मिट गए

अष्टपदी जिसके अंतरराग अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान। जो जाने में जो बनवंत सो होवत विस्ता का जंत।

सारे अनित तपस्या करे अंकार, नरक सुरग फिर फिर अवतार। अनित जतन कर आत्म नहीं द्रवे, हर दरगे को कैसे गवे।

देश जाए, प्रभु कृपा से बंधन टूटे, गुरु प्रसाद नानक हों छूटे। सहस खटे लख उठतावे, तृप्त न आवे माया पाछे पावे, अन भोग दुखिया के करे, न तृप्तावे खप खप मरे। बिना संतोष नहीं को राजे, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे, नाम रंग सर्व सुख होए, बड़ पागी किसे प्राप्त होए, करण करा।

आपे रचिया सब कै साथ, आप कीनो आपन विस्तार, सब कछ उसका ओ करने हार। उसते तिन कहो किस होए, थान सनंतर एक कैसोए, अपने चलित आप करने हार, कौतुक करे रंग अपार। मन में आप मन अपने माहे, नानक कीमत कह न जाए। सत सत सत प्रभ स्वामी, गुरु प्रसाद किने वख्यानी। सच सच सच सब कीना, कोट मदे किने बिरले चीना। पला पला।

और अष्टपदी संत के दुखन आरजा कटे हैं, संत के दुखन जमते नहीं छुटे, संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक में पाए, संत के दुखन मत होए मलीन, संत के दुखन सो बाते हीन, संत के हते को रखे न कोए, संत के दुखन थान प्रस्त होए, संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक भी तरे, संत के दुखन ते मुख पवे, संत के दुखन काग जून लवे, संत के दुखन सर्प जोन पाए, संत के दुखन त्रिगत जोन किरमाए, संत के दुखन तृष्णा में जले, संत के दुखन सबको छले, संत के दुखन तेज सब जाए, संत के दुखन नीच निचाए, संत दुखी का थाव को नाहे, नानक संत पावे तो ओए भी जत पाहे, संत का निंदक महा अपताए, संत का निंदक खेंट करना पाए, संत का निंदक महा प्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राजते हीन, संत का निंदक दुखिया अर्दीन, संत के निंदक को सर्व रोग।

उसके स्थान, जैसा दिन आवे तैसा नानक जान। नाना रूप नाना जाके रंग, नाना देख करे एक रंग, नाना विद कीनो विस्तार, प्रभ अविनाशी एकंकार। नाना चलत करे खिन माहे, पूर पूरन सब ठाए, नाना विद कर दंत बनाई, अपनी कीमत आपे पाए। सब कब तिसके सब तिसके ठाओ, जब जब जीवे नान ठरनाओ। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड, नाम के तारे सिमरत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आकाश पताल, नाम के तारे सगल आकार, नाम के तारे पुरिया सब भवन, नाम के खंग उदरे सुन श्रवन। कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जनगत पाए। रूप सत जा का सत स्थान, पुरुष सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जा की बाणी, सत पुरुष सब माए समानी। सत कर्म जा की रचना सत, मूल सत सत उत्पत्त, सत करनी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाए तिसे सब पली। सत नाम प्रभता सुखदाई, विश्वास सत नाम गुरते पाई। सत बचन साधु उपदेश, सत ते जन जा कह रे प्रवेश। सत निरत बूझे जे कोए, नाम जपता की गत होए। आप सत की आसव सत, आपे जाने अपनी मित गत। जिसकी सृष्टि हो करने हार, और न बूझ करत विचार, करते की मित न जाने किया, नानक ज्योतिष पावे सो वर्तिया। बिस्मन बिस्म पे बिस्माद, जिन बूझिया किस आया स्वाद। सब के रंग रात जन रहे, गुर के बचन पदार्थ लहे। ओए दाते दुख का तुनहार, जाके संग करे संसार। जन का सेवक सो वड पागी, जन के संग एक लिव लागी। गुन गोविंद कीर्तन जन गावे, गुर प्रसाद नानक फल पावे। श्लोक आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी बे सच। अष्टपदी चरण सत सत प्रसन्हार, पूजा सत सत सेवदार, दर्शन सत सत देख।

अष्टपदी सतगुर सिख की करे प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरे गुर बचनी हर नाम उचरे सतगुर सिख के बंधन काटे गुर का सिख विकार ते हाटे सतगुर सिख को नाम तन दे गुर का सिख वड़ पागी है सतगुर सिख का हल्क पलक सवार नानक सतगुर सिख को जी नाल समार गुर के गृह सेवक जो रह गुर की आज्ञा मन में सह आपस को कर कछ न जनावे हर हर नाम हृदय सत्यावे मन बेचे सतगुर के पास तिस सेवक के कार्य रास सेवा करत होए ने कामी किसको हो प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिस आप करे नानक सो सेवक गुर की मत ले बीस विश्वे गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ अनेक बार गुर को बल जाओ सर्व निदान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म एक आप नहीं कच भरम सह श्यान लया न जाइए नानक ऐसा दुर्बड़ पागी पाई है सफल दर्शन पे खुद पुनीत पर सब चरण

निर्मल रीत तीर्थ संग राम गुण गवे पार ब्रह्म की दरगे गवे। सुनकर वचन करण आघाने मन सुन दो खातम पतियाने पूरा गुर अख्यो जाका मंत्र अमृत दृष्ट पे कह हो संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावे तिस लय मिलाए। जीवा एक पुस्तक अनेक सतपुर पूरन विवेक। काहू बोल न पहुंच प्राणी अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी। निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किने न पाई। अनित भगत बंधन मुक्त करे चरण कमल हृदय सिमरे। सब बलिहारी सतगुरु अपने नानक जिस पर साथ ऐसा प्रभ जपने। क्यों हर रस पावे जन कोए अमृत पीवे अमर सो होए। उस पुरख का नाही कदे विनाश जाके मन प्रगटे गुण पास। आठ पैर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक को दे। मोह माया के संग ना लेप मन में राखे हर एक। अंधकार दीपक प्रगासे नानक परम मोह दुख सहते नासे। तपत माए ठाट वरताई अंध भया दुख ना ठे भाई। जन्म मरण के मिटे अंदेशे साधु के पूर्ण उपदेशे। पहुंचू का निरपो हो बसे सगल व्याद मनते खैनते। जिसका साथ तिन कृपा भारी साध संग जप नाम मुरारी। ठित पाई चूके क्रम गवन सुन नानक हर हर दस्रवन। निर्गुण आप सरगुण भी ओही कलाकार जिन सगली मोही। अपने चरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए। हर बिंदु जाना ही कोए सर्व निरंतर को सोए। पोत पोत रव्या रूप रंग कहे प्रभा फाद कै संग। रच रचना अपनी कल तारी अनेक बार नानक बलिहारी। श्लोक साथ न चाले बिन भजन बिखिया सगली चार। हर हर नाम कमावना नानक इहो दम सार। अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार। अवर उपास पद मीत विसारो चरण कमल में उधार। करण कारण सो प्रभ संगरथ दृढ़ कर गहो नाम हर वत। यो तन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत। एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे। जिस तन को चार कुंठ उठ भावे सो तन हर सेवा ते पावे। जिस सुख को नित बांचे मीत सो सुख साधु संग परीत। जिस शोभा को करे पली करनी सा शोभा पज हर की सरनी। अनेक उपावी रोग न जाए रोग मिटे हर औखद लाए। सर्व निदान में हर नाम निदान जप नानक दरगे परवान। मंत्र बोधो हर कहनाए दैर्य स्थावत आवे ठाए। ताको बिघन ना लागे कोए जाके हृदय बसे हर सोए। कल पाती ठांडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ। पाओ बिन से पूरन होए आस भगत पाए आत्म प्रगास। तित कर जाए बसे अविनाशी कहो नानक काटी जन फासी। तत विचार कहे जन साचा जन्म मरे सो काचो काचा। आवागमन मिटे प्रभु सेव आप त्याग शरण गुरुदेव। त्यों रतन जन्म का होए उधार हर हर सिमर प्राण आधार। अनेक उपाव न छूटन हारे सिमरत सास वेद विचारे। हर की पगत करो मन लाए मन बंशत नानक फल पाए। संग ना चाल तेरे धना तू क्या लगता में मूर्ख मना। सुत मीत कुटम अर्गनता इनसे कहो तुम कर्म सनाता। राज रंग माया विस्तार इनसे कहो कर्म छुटकार। अख हस्ती रथ असवारी चूठा डंप चूट पासारी। जिन दिए तुस बुझे ना बेगाना नाम विसार नानक पछताना। गुर की मत तू ले आने पगत बिना भो डूबे सियाने। हर की पगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारे चीत। चरण कमल वाको मन माहे जन्म जन्म के किल विख जाए। आप जपो अगरा नाम जपाओ सुनत कहत रहत गत पाओ। सार भूत सत हर को नाओ सह सुभाए नानक गुण गाओ। गुण गाव तेरी उतरस मैल बिनस जाए हो मैं विख फैल। हो है अचिंत बसे सुखनाल सास ग्रास हर नाम समाल।
सारथ्यान सगली मना साथ संग पावे सत धना हर पूंजी संच करो व्यवहार इहां सुख दरगे जयकार सर्व निरंतर एको देख कहो नानक जाके मस्तक लेख एको जप एको सलाह एको सिमर एको मनाह एक के गुण गाव अनंत मंथन जाप एक भगवंत एको एक एक हर आप पूरन पूर रहो प्रव्याप अनेक विस्तार एक ते भये एक अराज प्राचक गए मंथन अंतर एक प्रवराता गुरु प्रसाद नानक एक जाता श्लोक फिरत फिरत प्रभु आया।

अष्टपदे जाचक जन जाचे प्रदान कर कृपा देवो हर नाम। साजना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी सरदा पूर। सदा सदा प्रभु के गुण गावो साथ साथ प्रभु में ध्यावो। चरण कमल सो लागे प्रीत भगत करो प्रभु की नित नीत। एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रसार। प्रभु की दृष्ट महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोए। जिन चाख्या से जन तृप्ता में पूरन पुरख नहीं डोलाने। सुवर भरे प्रेम रस रंग उपजे चाओ साध के संग। परे शरण आम सब त्याग अंतर पर गाओ सम दिन लिवलाग। बड़ पागी जपिया प्रभ सोए नानक नाम रति सुख होए। सेवक की मनसा पूरी भई सतगुर ते निर्मल मत लई। जन को प्रभ होयो दयाल सेवक की नो सदा निहाल। बंधन काट मुक्त जन भया जन्म मरण दुख क्रम गया। इच पुनी सरदा सब पूरी रव रया सब संग हजूरी। जिस पासा तिन लिया मिलाए नारक भक्ति नाम समाये। सो क्यों बिसरे जे काल न पाने सो क्यों बिसरे जे की आ जाने। सो क्यों बिसरे जिन सब किस दिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया। सो क्यों बिसरे जे अगन में राखे गुरु प्रसाद को बिरला लाखे। सो क्यों बिसरे जे बिखते काडे जन्म जन्म का टूटा गाडे। गुरपुर सत्य है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया। साजन संत करो यो काम आम त्याग जपो हर नाम। सिमर सिमर सिमर सुख पाओ आप जपो अवरह नाम जपाओ। भगत पाए तरी है संसार बिन भक्ति तन हो सी चार। सर्व कल्याण सुख निध नाम बूढ़त जाप पाए विश्राम। सगल दुख का होत नाश नानक नाम जपो गुण पास। उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तन अंतर एही सुआव। नेत्रों पेख दर्श सुख होए मन विकसे साध चरण तोए। भगत जना के मन तन रंग बिरला को पावे संग। एक बस दीजे कर माया गुरु प्रसाद नाम जप लया। ताकि उपमा कहीं न जाए नानक रहया सर्व समाए। प्रभ संग दीन दयाल भगत वचल सदा कृपाल। अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा कर्त कृपाल। आद पुरुष कारण करतार भगत जना के प्राण आधार। जो जो जप है सो हो पुनीत भगत पाए लावे मनहित। हम निर्गुनियार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरुष भगवान। सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निमख हर के गुण गाए। अनेक राज भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन भाई। बहु भोजन का पर संगीत रसना जपती हर हर नीत। फली सो करनी सो बातनवंत हृदय बसे पूरन गुरमंत। साध संग प्रभ देव निवास सर्व सुख नानक प्रगास। श्लोक हर गुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप। आपन किया नानका आपे ही फिर जाप। अष्टपदी जब अकार यो कचना दृष्टि ताप पाप पुन तब कहते होता। जब तारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध के संग समात। जब इसका वरण चेन ना जापत तब हरक शोक कोप से व्यापत। जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहा किस होवत भरम। आपन खेल आप वर्ती जा ना करने हार न दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुकुट को किसको गनी। जब एक है हर अगम अपार तब नरक स्वरूप को कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सह सुवाए तब शिव सकट को कित ठाए। जब आपे आप अपनी जोत धरे तब कौन निडर कौन कत डरे। आपन चलित आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार। अविनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण को कहा विनाशन। जब पूरन करता प्रभ होए तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे।
आपन आप ही अचर जा, नानक आपन रूप आप ही उपर जा। जय निर्मल पुरख पुरख पत होता, तह बिन मैल कहो क्या चोता। जय निरंजन निरंकार निर्वाण, तह कौन कौमान कौन अभिमान।

कहिए चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानो आप जय अचल अछेद अभेद समाया उहा किसे व्यापक माया आप उसको आपे

निहारा बहु बेअंत ऊंचते ऊंचा नानक आपस को आते पहुंचा जय आप रचियो प्रपंच आकार त्यो गुण में कीनो विस्तार पाप पुन तह पई कहावत कौ नरक कौ स्वर्ग बंछावत आल जाल माया जंजाल होमे मोह परम तय पार दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की योग ख्यान आपन खेल आप कर देख है खेल संकोच है तो नानक एक है जय अवगत भगत है आप जय पसरे पासा संत प्रताप दो पास का आपे धनी उनकी शोभा उन्हों बनी आपे कौतक करे अनंत सोज आपे रस को गन निर्जोग जिस पावे तिस आपन ना इलावे जिस पावे तिस खेल खिलावे बेसुमार अथा अगनत अतोल ज्यो बुलावो त्यो नानक दास बोले श्लोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तनहार नानक एको पसरिया दूजा कह विस्तार अष्टपदी आप कथे आप सुनने हार आपे एक आप विस्तार जात पावे ता श्रेष्ठ उपाय अपने भाणे ले समाये सुनते पिन नहीं किछ होए आपन सूत सब जगत परोए जाको प्रभु जीव आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो संदर्शी तत्का देता नानक सगल श्रेष्ठ का जेता जी जंत्र सबका कह हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राख है तिस कोई न मारे सो मुआ जिस मनो बिसार है तिस तज अवर कहा को जाए सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जा कह सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ गुण निदान बेअंत अपार नानक दास सदा बलिहार पूरन पूर रहे दयाल सब ऊपर होत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहो व्याप प्रतपाल है जी अनुभव पात जो जो रचियो सो तिसे त्यात जिस पावे तिस लय मिलाए भगत करे हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मान्या करन हार नानक इक जान्या जन लागा हर एक कहनाए तिसकी आसना बिथी जाए सेवक को सेवा बने आए हुकम बूझ परम पद पाए किसते ऊपर नहीं विचार जाके मन बस्या निरंकार बंधन तोर पे निर्वैर अंतिम पूजे गुर के पैर ए लोक सुखी पर लोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मेले साध संग मिल करो आनंद गुण गावो प्रभ परमानंद राम नाम तक करो विचार दुर्लभ देखा करो उदार अमृत वचन हर के गुण गाओ प्राण तरन का यह सुहाओ आठ पैर प्रत्ये को नेरा मिटे अज्ञान बिन से अंधेरा सुन उपदेश हृदय बसाओ मन इच्छे नानक फल पाओ हलत पलत दो लिहो सवार राम नाम अंतर उधार पूरे गुर की पूरी दीखिया जिस मन बसे तिस साच परीखिया मन तन नाम जपो लिवलाए दुख दर्द मन ते पहुंचाए सच व्यापार करो व्यापारी दरगे निभे खेप तुम्हारी एक का टेक रखो मन माहे नानक दौर न आवे जाए तिस्ते दूर कहाँ को जाए उबरे राखन हार ध्याए निरपो जपे सकल को मिटे प्रभ कृपा से प्राणी छुटे जिस प्रभ राख है तिस माही दुख नाम जपत मन होवत सुख चिंता जाए मिटे अंकार तिस जन को कोई न पहुंचन हार सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा नानक ताके कारज पूरा मत पूरी अमृत जा की दृष्ट दर्शन देखत उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जा के अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा सेवक प्रवान अंतर जामी पुर प्रदान जिस मन बसे सोत निहाल ताके निकट नावत काल अमर पै अमरा पद पाया सात संग नानक हर ध्याया श्लोक ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास अष्टपदी संत संग अंतर प्रगटी था नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री एक स्फट माहे अनक रंग नाना दृष्टा है
नवनिध अमृत प्रभ का नाम, देही मैं इसका विश्राम। सुन समाद अनहत्य नाद, कह न जाई अचरज विस्माद। तिन देखिया जिस आप दिखाए, नानक तिस जन सो जी पाए। सो अंतर सो बाहर अनंत, कट कट व्याप रहा भगवंत। तरण माए आकाश दयाल, सर्वलोक पूरन प्रताल। बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा करम। पौन पानी बह संतर माहे, चार कुंट बह दिसे समाहे। तिस्ते पिन नहीं को ठाओ, गुरु प्रसाद नाम सुख पाओ। वेद पुराण सिमृत में देख, ससियर सूर नक्षत्र में एक। बाणी प्रभु की सबको बोले, आप अडोल न कभू डोले। सर्व कला कर खेले खेल, मोल न पाये गुणे अमोल। सर्व ज्योत में जाकी ज्योत, तार दे हो स्वामी ओत पोत। गुरु प्रसाद धर्म का नाश, नानक तिन में यो विश्वास। संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना के हृदय सब धर्म। संत जना सुने शुभ वचन, सर्व व्यापी राम संग्रचन। जिन जाता तिसकी यह रहत, सत बचन साधु सब कहत। जो जो होए सोई सुख माने, करण करावन हार सब जाने। अंतर बसे बार भी ओही, नानक दर्शन देख सब मोही। आप सत किया सब सत, तिस तब ते सगली उत्पत। तिस पावे ता करे विस्तार, तिस पावे ता एकंकार। अनेक कला लखी न जाए, जिस पावे तिस रहे मिलाए। कवन निकट कवन कही है दूर, आपे आप पर पूर। अंतर्गत जिस आप जनाए, नानक तिस जन आप बुझाए। सर्वभूत आप वर्तारा, सर्वनैन आप देखनहारा। सगल समग्री जा का तना, आपन जस आप ही सुना। आवन जात एक खेल बनाया, आज्ञाकारी की नीमाया। सब कह मद अलिप्त तो रहे, जो किस कहना सो आपे कहे। आज्ञा आवे आज्ञा जाए, नानक जा पावे ता ले समाए। इसते होए सो नाही बुरा, ओरे कहो किने कछ करा। आप कला करतूत अतने की, आपे जाने अपने जी की। आप साच तारी सब साच, ओत पोत आपन संगराच। ताकि गतमित कहीं न जाए, दूसर होए तासो जी पाए। तिसका किया सब परवान, गुरु प्रसाद नानक हो जान। जो जाने तिस सदा सुख होए, आप मिलाए लय प्रभ सोए। ओ तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। तन तन तन जन आया, जिस पर साथ सब जगत तराया। जन आवन का ए सुहाओ, जन के संचित आवे नाओ। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक किस जन को सदा नमस्कार। श्लोक

हस्तदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर देख साथ साथ सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आस अनित्या गोतरंग संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साथ संग अग्न सागर करो हर तन के पर ले हो पंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार केम कुशल सहज आनंद साध संग पज परमानंद नरक ने

अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख पंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अनुलीक लाल ए रतन सुनत कमल।

पास सुंदर चतुर तत्व का बेता सुंदर सी एक दृष्टेता ए फल किस जन के मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निधान जपे मन कोए सब जुग में ताकी गत होए गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतात केवल हर नाम गोविंद भगत के मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटे संत कृपा ते जम ते छुटे जाके मस्तक कर्म प्रब पाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बसे सुने लाए प्रीत तिस जन आवे हर प्रभ चीत

गुण गोविंद गोपाल प्रभ शरण परो हर राय। ताकि आप कल्याण सुख जाते सब कछ होए, चार कुंट दह दिस प्रम्यो तिस बिन अवर न।

राम नाम तन संचवै साच सहा भगवंत। उठत बैठत हर पजो साधु संग परीत नानक दुर्म।

नानक संत निर्मल पए जिन मन वसया सोए पौड़ी। तृतीया त्रै गुण बिखै फल कब उत्तम कब नीच नरक सुर्ग प्रमतो कणो सदा संगारे मीच। हरक सोग सहसा संसार हौ हौ करत बिहाए जिनकी ये तिसे न जाननी चित में अनक उपाय। आद ब्याद उपाद रस कभो न टूटे ताप पार ब्रह्म पूरन तनी नह बूझे परताप। मोह परम बूढ़त कणो महानरक में वास कर कृपा प्रभ राख।

पौ बिन से अमृत रसे रंग रते निरंकार दुख दारद अपवित्रता नासे नाम आधार। सुर नर मुन जन खोजते सुख सागर गोपाल मन निर्मल मुख उजला होए।

बेदियो अज्ञान रचियो संसार। जन्म मरण बहु जोन प्रमण कीने कर्म अनेक, रचनहार ने सिमरियो मनना विचार विवेक। पाओ भगत भगवान संग माया लिप्त न रंच, नानक बिरले पाये जो ना रचे परपंच। श्लोक। खट शास्त्र ऊंचो कहे अंत न पारावार, भगत सो है गुण गावते।

नारद मुन जन सुख व्यास जस गावत गोबिंद रस गी दे हर्षो बीदे भगत रचे भगवंत। मोह मान प्रम बिनस्यो पाई शरण दयाल चरण कमल मन तन बसे दर्शन देख निहाल। लाभ मिले तो ताहिरे साध संग निवलाए खाट खजाना गुण निध हरे नानक नाम त्याए। श्लोक संत मंडल हर जस कर

भंडार संत संगत में पाई है अंत न पारावार। आप तजो गोविंद पजो शरण परो हर राय, दुख हरे पव जल तरे मन चिंदिया फल पाए। आठ पैर मन हर जपे सफल जन्म पर।

जम कंकर जोए न सकई, नानक प्रभु दयाल पौड़ी। अष्टमी अष्ट सिद्ध नव निध, सगल पदार्थ पूरन बुद्ध, कवल प्रगास सदा आनंद, निर्मल रीत निरोधर मंत, सगल धर्म पवित्र स्नान, सब में ऊंच विशेख ज्ञान, हर हर भजन पूरे गुर संग, जप करिए नानक नाम हर रंग।

हर नाम न जपें करत विपरीत, पर त्रिय रमें बकें साध निंद, करन न सुनही हर जस बिंद। हिरे पर दर्ब उदर कहताई, अगन न निवरे तृष्णा न बुझाई, हर सेवा बिन ए फल लागे, नानक प्रभु बिसरत मर जमें अपागे। श्लोक दस दिस खोजत मैं फिरियो, जत देखो तत सोए, मन बस आवे नानका जे पूरन कृपा होए। पौड़ी दसवीं दस द्वार बस कीने, मन संत

एकादशी निकट पेखो हर राम, इंद्री बस कर सुनो हर नाम, मन संतोख सर्व जी दया, इन विद वर्त संपूर्ण भया, तावत मन राखे इकठाए, मन तन शुद्ध जपत हर नाए, सब में पूर रहे पार ब्रह्म, नानक हर कीर्तन कर अटल एव धर्म।

द्वादशी दान नाम स्नान, हर की भगत करो तजमान, हर अमृत पान करो साध संग, मन तृप्ता से कीर्तन प्रवरंग, कोमल बाणी सबको संतोख है, पंच पू आत्मा हर नाम रस कोख है, गुर पूरे ते ए नेचो पाये, नानक राम रमत फिर जोन न आईए। श्लोक तीन गुणा में व्याप्या पूरन होत न काम, अकत उदाहरण मन बसे नानक छूटे नाम। पौड़ी त्रौदशी तीन ताप संसार, आवत जात नरक अवतार, हर हर भजन नाम मन में आयो, सुख सागर प्रभ निमख न गायो, हरख सोग का देह कर बांधियो, दीर्घ रोग माया आसादियो, दिने विकार करत श्रम पायो, नैनी नींद सुपन बरड़ायो, हर विसरत होवत ए हाल, शरण नानक प्रभ पुरख।

कुंट प्रभ आप सगल पवन पूरन प्रताप दशे दिशा रविया प्रभ एक करण आकाश सब में प्रभ एक जल थल वन पर्वत पाताल परमेश्वर तें बसें दयाल सूक्ष्म स्थूल सगल भगवान।

नाम दुर्मत मिटी हो मैं छुटी सिमरत हर को नाम। शरण गई पार ब्रह्म की मिटिया आवागमन आप तरे कुटुंब स्यो गुण गोविंद प्रभ रमन। हर की टहल कमावनी जपिए प्रभ का नाम गुर पूरे ते पाया नानक सुख विश्राम। श्लोक पूरन कब होना।

को उपदेश है को दृढ़ है तिसका होए उदार। किलबिख का तय होए निर्मला जन्म जन्म मल जाए हलत पलत मुख उजल।

सतगुर पुरख दयाल है जिसनो समत सब कोए, एक दृष्ट कर देखदा मन पावनी ते सिद्ध होए। सतगुर विच अमृत है हर उत्तम हर पद सोए, नानक कृपा ते हर त्याय है गुरमुख पावे कोए। महला चौथा, हौ मैं माया सब बिख है नित जग तोटा संसार, लाहा हर तन खटिया गुरमुख शब्द विचार। हौ मैं मैल बिख उतरे हर अमृत हर उद्धार, सब कार्य तिन के सिद्ध है जिन गुरमुख कृपा तार। नानक जो तुर मिले

रंग स्यो गुरुमुख हर गुण तास जन नानक हर शरणागति हर मेले गुर साबास। पौड़ी तू करता पुरख अगम है किस नाल तू वड़ी तुद जेवड होए सो आखिए तुद जेहा तू है पड़िए तू कट कट एक वर्तदा गुरुमुख पर गड़िए तू सच्चा सब सदा।

ज्यों बोलन तिवै सुहन, नानक हर आपे जानदा, जिन लाई प्रीत पिरन पौड़ी। तू करता आ

जन नानक सुख सवन। महला चौथा, सतगुर दाता दयाल है, जिसनो दया सदा होए। सतगुर अंदरों निर्वैर है, सब देखे ब्रह्म इक सोए। निर्वैरा नाल जे वैर चलाएं दे, तिन विच्चों तिस्तिया न कोए। सतगुर सबना दा कला मनाएंदा, तिसदा बुरा क्यों होए। सतगुरु नो जेहा को इच्छदा, तेहा फल पाए कोए। नानक करता

कनेरियां जे कारवत होवे साई खाए बिन सतगुर सोजी ना पवे अहंकार न विचों जाए अहंकारियां नो दुख भुख है हाथ तड्डे कर कर मंगाए कूड़ ठगी गुज्जी ना रहे मुलम्मा पाज ले जाए जिस होवे पूरब लिखिया तिस सतगुर मिले प्रभ आए ज्यों लोहा पारस पेटी है मिर संगत सुवरन होए जाए जन नानक के प्रभ तू तनी ज्यों पावे तिवे चलाए पौड़ी जिन हर हृदय सेव्या तिन हर आप मिलाए गुण की साध तिन स्यों करी सब अवगुण शब्द जलाए अवगुण विकण पलरी जिस देह सो सच्चे पाए बलिहारी गुरे आपने जिन अवगुण मेट गुण प्रगति आए वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख आलाए श्लोक महला चौथा सतगुरु विच वड्डी वड्याई जो अंदिन हर हर नाम ते आवे हर हर नाम रमत सुत संजम हर नामे ही तृप्तावे हर नाम तान हर नाम दीबाण हर नामो रख करावे जो चित लाए पूजे गुरमूरत सो मन इच्छे फल पावे जो निंदा करे सतगुर पूरे की तिस करता मार दिवावे फिर ओ वेला ओ हथ ना आवे ओ अपना बीजिया आपे खावे नरक कोर मुह काले खड़िया ज्यो तस्कर पाए गलावे फिर सतगुर की सरणी पवे ता उबरे जा हर हर नाम से आवे हर बाता आख सुनाए नानक हर करते एवे पावे महला चौथा पूरे गुर का हुक्म ना मन्ने ओ मनमुख अज्ञान मुठा बिखमाया उस अंदर कूड़ कूड़ो कर बुझे अनहोंदे झगड़े दे उस दे गल पाया ओ गल परोसी करे बहु तेरी उस दा बोलिया किसे न पाया ओ कर कर हंडे जो रन दुहागन उस नाल मुह जोड़े उस भी लक्षण लाया गुरमुख होए सो अलिप्तो वरते उस दा पाक छड़ गुर पाक बह जाया जो गुरगो पे अपना सो परा नाही पंचो उन लाहा मूल सब गवाया पहला आगम निगम नानक आप सुनाए पूरे गुर का बचन ऊपर आया गुर सिखा वड्या

सब पाप जगते का तिन सिर लया, उस अगे पिछे कोई नाही, जिस अंदर निंदा मोह अंब पया, जे सोयने नो ओ हाथ पाए ता खेहू सेती रल गया, जे गुर की सरनी फिर ओह आवे ता पिछले अवगुण बख्श लिया, जन नानक अंदिन नाम से आया, हर सिमरत किलविक पाप गया। पौड़ी तू है सच्चा सच तू, सब दू ऊपर तू दीवान, जो तुद सच त्याय दे सच सेवन सच्चे तेरा मान, ऊना अंदर सच मुख उजरे सच बोलन सच्चे तेरा तान, से भगत जिन्नी गुरमुख सा लाया।

कोई पुत्र सिख सेवा करे सतगुरु की, तिस कार्य सब सवारे, जो इच्छे सो फल पाए सी, पुत तन लक्ष्मी खर मेले हर निस्तारे, सब निधान सतगुरु विच जिस अंदर हर उर्धारे, सो पाए पूरा सतगुरु जिस लिखिया लिखत लिलारे, जन नानक मांगे तूर तिन जो गुर सिख मित प्यारे। महला चौथा, जिनको आप दे वड्याई, जगत दी आपे आन तिनको पैरी पाए, डरिये ता जे किछ आप दू कीचे, सब करता अपनी कला वधाए, देखो पाई इहो अखाड़ा हर प्रीतम सच्चे का, जिन अपने जोर सब आन निवाए, अपने आप भगता की रख करे, हर स्वामी निंदका दुष्टा के मौका ले कराए, सतगुर की वड्याई नित चढ़े सवाई, हर कीरत भगत नित आप कराए, आन दिन नाम जपो गुर सिखो, हर करता सत

सिखा के मोह उजले करे हर प्यारा, गुर का जयकार संसार शब्द कराए, जन नानक हर का दास है, हर दासन की हर पैज रखाए पौड़ी। तू सच्चा साहिब आप है सच हमारे, सच पूंजी नाम दृढ़ाए प्रवण जारे थारे, सच सेवे सच वणंज ले गुण कथे निरारे, सेवक पाए से जन मिले गुर शब्द सवारे, तू सच्चा साहिब अलख है गुर शब्द लिखारे। श्लोक महला चौथा, जिस अंदर ताप पराई होवे तिसदा कदे न होवी पला, उस दे आख्या कोई न लगे नित ओजारी पुकारे खला, जिस अंदर चुगली चुगलो वजे कीता करत्या उसदा सब गया, नित चुगली करे अनहोंदी पराई मोह कड न सके उसदा काला भया, कर्म तरती शरीर कल युग विच जेहा को बीजे तेहा को खाए, गला ऊपर तपावस न होई विच खादी तत्काल मर जाए, पाई वेखो न्याओ सच करते का जेहा कोई करे तेहा कोई पाए, जन नानक को सब सोजी पाई हर दर किया बाता आप सुनाए। महला चौथा, होंदे प्रतख गुरु जो विछड़े तिनको दर टोई नाहीं, कोई जाए मिले तिन निंदका मोह फिके थुक थुक मोह पाही, जो सतगुर फिटके से सब जगत फिटके, नित पंबल पूसे खाई जिन गुरु गोपिया अपना से लेंदे तहा फिराई, तिनकी पुख कदे ना उतरे नित पुखा पुख कुकाही, ओना दा आखिया को ना सुने नित हौले हौल मराही, सच गुर की वड्याई वेख न सकनी ओना अगे पिछे थाओ नाही, जो सतगुरु मारे तिन जाय मिले रेंदी खोंदी सब पत गवाई, ओए अगे कुश्ती गुर के फिटके जे उस मिले तिस कुष्ट उठाही, हर दिन का दर्शन ना करो जो दूजे पाए चित लाही, कुर करते आप लिख पाया तिस नाल क्यों चारा नाही, जन नानक नाम अराध तू तिस अपड़ को ना सकाही, नामे की वड्या

तिसको जगत निव्या सब पैरी पया जस वर्त्या लोई, तिसको खंड ब्रह्मंड नमस्कार करें, जिसके मस्तक हाथ तरया गुर पूरे सो पूरा होई, गुर की वड्याई नित चढ़े सवाई अपर को नास कोई, जन नानक हर करते आप बैठ क्या आपे तैज रखे प्रभु सोई। पौड़ी काया कोट अपार है अंदर हट नाले, गुरमुख सौदा जो करे हर वक्त संभाले, नाम निदान हर वणजी है हीरे परवाले, विण काया जे होर से तन खोज दे से मूड बेताले, से उजड़ परम पवाये ज्यो चार मिर्ग पाले। श्लोक महला चौथा, जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो औखा जग में होया, नरक कोर दुख खू है ओथे पकड़ को तोया, कूक पुकार को ना सुने ओ औखा होय होय रोया, ओन हलत पलत सब गवाया लाहा मूल सब खोया, ओ तेली संदा बलद कर नित पल के उठ प्रभ जोया, हर वेखे सुने नित सब किछ सिद्धू किछ गुज्जा ना हो।

चरण तोया, गुर सतगुर पिछे तर गया, ज्यो लोहा काट संगोया, जन नानक नाम से आए तू, जप हर हर नाम सुख होया। महला चौथा, वड पागिया सोहागनी, जिना गुरमुख मिलिया हर राय, अंतर जोत प्रगासिया, नानक नाम समाए। पौड़ी, एवो शरीर सब धर्म है, जिस अंदर सच्चे की विच जोत, गुहज रतन विच लुक रहे, कोई गुरमुख सेवक कड्डे कोत, सब आत्म राम पछाणिया, ता इक रविया इको ओत पोत, इक देखिया इक मन्या, इको सुनिया श्रवण स्रोत। जन नानक नाम सलाहे तू, सच सच्चे सेवा तेरी होत। श्लोक महला चौथा, सब रस तिन कह हृदय है, जिन हर वस्या मन माहे, हर दरगे ते मुख उजले, तिनको सब देखन जाहे, जिन निरपो नाम से आया, तिनको पो कोई नाहे, हर उत्तम सिनी सरेविया, जिनको तुर लिखिया आहे। ते हर दरगे पहनाई है, जिन हर उठा मन माहे, कोय आप करे सब कुटम स्यो, तिन पिछे सब जगत छदाहे, जन नानक को हर वेल जन, तिन वेख वेख हम।

से जंत भय हरि आवले, जिनी मेरा सतगुरु देखिया जाए। तन तन पिता तन तन कुल, तन तन सो जननी, जिन गुरु जनिया माए।

सच्चा शब्द पतार है सदा सदा रावे। ज्यो उबली मजी ठह रंग गहगा त्यों सच्चे नो जियो दे। रंग चलू लै अतरती

सत संगत में हर उस्तत है, संग साधु मिले प्यारिया, ओए पुरख प्राणी तन जन है, उपदेश करें पर उपकारिया, हर नाम दृढ़ावे हर नाम सुनावे, हर नामे जग निस्तारिया, गुर वेखण को सब कोई लोचे, नव खंड जगत नमस्कारिया, तुद आपे आप रखिया, सतगुर विच गुर आपे तुद सवारिया, तू आपे पूजे पूज करावे सत

सतगुरु नो मिले सही जन उबरे जिन हृदय नाम समारिया जन नानक के गुरसिख पुतो हर जप्यो हर निस्तारिया। महला तीजा हौ मैं जगत पुलाया दुर्मत बिखिया बिकार सतगुर मिले ता नदर होए मनमुख अंध अंधियार नानक आपे मेल ले जिसनो शब्द लाए प्यार। पौड़ी सच सच्चे की सिफत सलाह है सो करे जिस अंदर पिजे जिन्नी एक मन एक अरादिया तिनका कंध ना कबहू छिजे तन तन पुरख सावास है जिन सच रसना अमृत पिजे सच सच्चा जिन मन पामदा से मन सच्ची दरगह लिजे तन तन जन्म सचियारिया मुख उज्जल सच करिजे। श्लोक महला चौथा साकत जाए निवें गुर आ गए मन खोटे कूड़ कूड़ यारे जा गुर कहे उठो मेरे पाई बह जाहे कुसर बगुलारे गुर सिखा अंदर सतगुर वरते चुन कड्डे लद्दो वारे ओए अगे पिछे बह मूछ पाइन ना रलनी खोटे आरे ओना दा पख सो उथे नाही जाए कूड़ लहन पेडारे जे साकत नर खवाई लोचिए बिख कडे मुख उगलारे हर साकत सेती संग न करियो ओए मारे सिरजन हारे जिसका यो खेल सोई कर वेखे जन नानक नाम समारे। महला चौथा सतगुर पुरख अगम है जिस अंदर हर उर्धारिया सतगुरु नो अपड़ कोई ना सके जिस वल सिरजन हारिया सतगुरु का खड़क संजो हर भगत है जित काल कंटक मार विडारिया सतगुरु का रखन हारा हर आप है सतगुरु के पिछे हर सब उबारिया।

मन तृप्त है हर रस खाए पौड़ी। सच सच्चा कुदरत जानिए दिन राती जिन बनाया, सो सच सलाही सदा सदा सच सच्चे किया वड्याईया। सलाही सच सलाह सच सच कीमत किने न पाया, जा मिलिया पूरा सतगुरु ता हाजिर नदरी आईया। सच गुरमुख जिनी सलाहया तिना भुखा सब गवाईया। श्लोक महला चौथा। मैं मन तन खोज खोजेंदिया सो प्रभ लद्दा लोड़ विस्त

शब्द ना सुनई बहु रोल कचोला, गुरमुख जापे शब्द लिव लाए, हर नाम सुन मन्ने हर नाम समाए, ज्योतिष पावे सो करे कराया, नानक वजदा जंत वजाया। पौड़ी, तू करता सब किछ जानदा, जो जी अंदर वरते, तू करता आप अगणत है, सब जग विच गणत है, सब कीता तेरा वरत।

बनतै तू कट कट इक वरतदा सच साहिब चलतै सतगुरु नो मिले सो हर मिले नाही किसे परतै। श्लोक महला चौथा। एहो मनुआ दृढ़ कर रखी है गुरमुख लाई है चित क्यों सास गिरास विसारी है बहंदियां उठदियां नित मरण जीवन की चिंता गई इहो जीड़ा हर प्रभु वस ज्यों पावे त्यों।

दुख विहाए, सतगुर पुरख निर्वैर है, आपे लए जिस लाए, नानक दर्शन जिना विखा लियोन, तिना दरगे लए छड़ाए। महला तीजा, मनमुख अज्ञान दुर्मत अंकारी, अंतर क्रोध जुए मतहारी, कूड़ कुसत ओ पाप।

0: नानक पूरब लिखिया कमाए पौड़ी।
1: जिनके चित्त कठोर है से बह ना सतगुर पास, ओथे सच वर्तदा कूड़ियारा चित उदास। कोई वल छल कर चत कट दे फिर जाए बह कूड़ियारा पास, विच सच्चे कूड़ न गड्डे मन वेखो को निर्जास। कूड़ियार कूड़ियारी जाय रले सच्चार सिख बैठे सतगुर पास। श्लोक महला पंजवा, रहंदे खोंदे निंदक मारियन कर आपे आहर, संत सहाई नानका।

जे करण कारण समरथ पौड़ी पंजवा लै फाहे राती तुरहे प्रभ जाने प्राणी तके नार पराया लुक अंदर ठाणी सन्नी देन विखम थाए मिठा मदमाणी करमी आपो आपनी आपे पछताणी अजराइल फिरस्ता तिन पीड़े काणी। श्लोक महला पंजवा। सेवक सच्चे साह के से परवान दूजा सेवन नानका से पच पच मोए।

पंजवा अब खद सबे की त्यन निंदक का दारू ना है आप पुलाए नानका पच पच जोनी पाहे पौड़ी पंजवा तुस दिता।

मन मुख मूलो पुल्या विच लभ लोभ अहंकार झगड़ा कर दिया अन दिन गुदरे शब्द ना करे विचार शुद्ध मत करते सब हिरलई बोलन सब विकार दित्ते किते ना संतोखिये अंतर तिसना बहु अज्ञान अंध्यार नानक मन मुखान।

पंजवा गुरु नानक हर नाम दृढ़ाया पन्नन करण समरथ प्रभ सदा संभाले मित्र तू दुख सबाया लथ। महला पंजवा खुद आवंत ना जानई लाज कुलाज कुबोर।

के पूरे सतगुरु पावे। गुर सिखा अंदर सतगुरु वरते, जो सिखा नो लोचे सो गुर खुशी आवे। सतगुर आखे सो कार कमावन, सो जप कमावे। गुर सिखा की काल सच्चा थाए पावे, बिन सतगुर के हुक्मे जे गुर सिखा पासों कम कराया लोड़े, तिस गुर सिख फिर नेड़ ना।

नानक आख सुनावे जे बिन सतगुर के मन मने कम कराए सो जंत महा दुख पावे पौड़ी। तू सच्चा साहिब अत वड्डा तुहे जेवर तू वड वड्डे जिस तू मेले सो तुद मिले तू आपे बख्श लह लेखा छड़े जिसनो तू आप मिलाएंदा सो सतगुर सेवे मन गड गड्डे। तू सच्चा साहिब सच तू सब जियो पिंड चम तेरा हड्डे ज्यों पावे त्यों।

हर हर नाम जो जन जपे सो आया परवान, तिस जन के बलिहारणे जिन पजिया प्रभ निर्वाण, जन्म मरण दुख कटिया हर पेटिया पुरुष।

मन तन नित पावो, नाम सुने नाम संग्रह नामे लिव लावो, गृह तन सब पवित्र होए, हर के गुण गावो, हर नाम

तू सब में एक वर्तदा सब माहे समाना खान थन अंतर रव रहा जी अंदर जाना साध संग मिल पाए मन सच्चे पाना नानक प्रभ सरणा।

जिस सिमरत सुख पाई है सब तिखा बुझाई, कर सेवा पार ब्रह्म गुर पुख रह न काई, सगल मनोरथ पुन्या अमरा पद पाई, तुद जेवड़ तू है पार ब्रह्म नानक शरणाई। श्लोक महला पंजवा। डिठड़ो हब ठाए ऊण न काई जाए, नानक लद्दा तिन सुआओ जिना सतगुर भेटिया। महला पंजवा। दामनी चमत्कार त्यों वरतारा जग के, वत्स सुहावी साए नानक नाउ जपंदो तिस्तणी पौड़ी। सिमरत शास्त्र सोध सब किने कीव न जानी, जो जन पेटे साध संग सो हर रंग माणी, सच नाम करता पुरख ए रतना खानी, मस्तक होवे लिखिया हर सिमर पराणी, तो साधिचे सच नाम नानक मेहमानी। श्लोक महला पंजवा। अंतर चिंता नैनी सुखी मूल न उतरे पुख, नानक सच्चे नाम बिन किसे न लथो दुख। महला पंजवा। मुठड़े से ही साथ जिन्नी सच न लद्या, नानक से साबास जिन्नी गुरमिल इक पछाणिया पौड़ी। जिथे बैसन साध जन सो थान सुहंदा, ओए सेवन समरथ अपना बिनसे सब मंदा, पतित उदाहरण पार ब्रह्म संत वेद कहंदा, भगत वत्सल तेरा बिरद है जुग जुग वर्तंदा, नानक जा

पौड़ी ओथे अमृत वंडी है सुखिया हर करने जम के पंख न पाए फिर ना ही मरने जिसनो आया प्रेम रस से ही जरने बाणी उचरे साध जन अम्यो चले चरने तेक दर्शन नानक जीव्या मन अंदर तरने। श्लोक महला पंजवा। सतगुर पूरे सेवे दुखा का होए नास नानक नाम आराध्य कारज आवे रास। महला पंजवा। जिस सिमरत संकट छुटे अनद मंगल विश्राम नानक जपिए।

जिन हर उठा चित गाली अल पला लिया कम न आवे मित। महला पंजवा पार ब्रह्म प्रभ दृष्टि आया पूरन अगम विस्माद नानक राम नाम तन कीता पूरे गुरु प्रसाद। पौड़ी तो ना चली खसम नाल लब मोहे विगुते करतब करन पलेरिया मद माया सुते फिर जून पवायन।

जन रंग रूप रस बाद के करें प्राणिया, जिस पुलाए आप तिस कल नहीं जानिया, रंग रते निर्वाण सच्चा गावही, नानक शरण द्वार जे तुद पावही पौड़ी। जम्मन मरण ना तिन को जो हर लड़ लागे, जीवत से परवान हो।

दह दिशा जल पर्वत बन राए, जिथे डिठा मृत को इल बैठी आए पौड़ी। जिस सर्व सुखा फल लोड़िए सो सच कमावो, नेड़े देखो पार ब्रह्म इक नाम ते आवो। कोई सगल की रेण का हर संग समावो, दुख न दे किसे जी पत्स्यों कर जावो। पतित पुनीत करता पुरख नानक सुनावो। श्लोक दोहा महला पंजवा। एक जे साजन मैं किया सर्व कला समरथ, जियो हमारा खनिए हर मंतन संदड़ी वथ। महला पंजवा। जे कर गहें प्यारड़े तुद ना छोड़ा मूल, हर छोड़न से दुर्जना पढ़े दोज कैसूल पौड़ी। सब निधान कर जिस दे हर करे सो होवे, जप जप जीवे संत जन पापा मल तोवे। चरण कमल हृदय वसे संकट सब खोवे, गुरपुरा जिस पेटिए मर जन्म ना रोवे। प्रभ दर्श प्यास नानक घणी कृपा कर देवे। श्लोक दखना महला पंजवा। पूरी परम वंजाए प्री मोहब्बत हिक तू, जिथों वंजे जाए तिथाओ मौजूद सोए। महला पंजवा। चढ़ के कोड़े कुंदे पकड़े खूंडी दी खेडारी, हंसा से ती चित उलासे कुकड़ दी ओडारी पौड़ी। रसना उचरे हर श्रवणी सुने सो उदरे मिता, हर जस लिखे लाए पावनी से हस्त पविता। अठ सठ तीर्थ मजना सब पुन तिन किता, संसार सागर ते उदरे बिखिया गढ़ जिता। नानक लड़ लाए।

14। अब मोहि जलत राम जल पाया, राम उदक तन जलत बुझाया, रहाओ मन मारन कारण बन जाये, सो जल बिन भगवंत न पाये, जे पावक सुर

तू सतगुर हौ नौ तन चेला, कह कबीर मिल अंत की बेला। गौरी कबीर जी, जब हम एक को एक कर जानिया, तब लोगे काहे दुख मानिया। हम अपत्ते अपनी पत खोई, हमरे खोज परो मत कोई रहाओ। हम मंदे मंदे मन माही, साज पात काहू स्यो नाही। पत अपत ता की नहीं लाज, तब जानोगे जब उगरे गोपाज। कहो कबीर पत हर परवान, सर्व त्याग पज केवल राम। गौरी कबीर जी, नगन फिरत जो पाये जोग, बन का मिर्ग मुक्त सब होग। क्या नांगे क्या बांधे चाम, जब नहीं चीनस आत्म राम। रहाओ मूड मुंडाए जो सिद्ध पाई, मुक्ति पेड़ न गैया काई। बिंद राख जो तरिय पाई, खुश रे क्यों ना परमगत पाई। कहो कबीर सुनो नर पाई, राम नाम बिन किन गत पाई। गौरी कबीर जी, संध्या प्रात स्नान कर

देव कहो कबीर भगत कर पाया, पोले पाए मिले रघुराया। गौड़ी कबीर जी गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती। कहो रे पंडित बामन कब के होए, बामन कह कह जन्म मत खोए। रहाओ जो तू ब्राह्मण ब्रह्मणी जाया, तो आन बाट काहे नहीं आया। तुम कत ब्राह्मण।

तित लागे कंचुआ फल मोती, कवन सो कर जो निरपो कही है, पौ पज जाए अभय होए रही है। रहाओ तट तीरथ नहीं मन पतिया।

इस पर चाय परच रहोएस गौड़ी कबीर जी। जो जन परमित परमन जाना बातन ही बैकुंठ समाना ना जाना।

लाज न मरो कहो कर मेरा, अंक की बार नहीं कच तेरा रहाओ। अनक जतन कर काया पाली, मरती बार अगन संग जाली, चोआ चंदन।

कहां सुख बिसरे परमानंदा, कूटा एक पंच पनिहारी, टूटी लाज परे मतहारी, कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, ना ओ कूटा ना पनिहारी। गौड़ी कबीर जी। अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनेक जन्म किए बहुरंगा, ऐसे कर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होए आए। रहाओ जोगी जति तपि ब्रह्मचारी, कबहू राजा छत्रपत कबहू पेखारी, साकत मरे संत सब जीवे, राम रसायन रसना पीवे। कहो कबीर प्रभु कृपा की जय, हार परे अब पूरा दी जय। गौड़ी कबीर जी की नाल रलाए लिखिया महला पंजवा। ऐसो अचरज देखो कबीर, दद के पोले बिरोले नीर, रहाओ हरी अंगूरी गधा चरे, नित उठ हासे ही गय मरे, माता पैसा अमुहा जाए, कुद कुद चरे रसा तल पाए। कहो कबीर प्रगट पई खेड, ले ले को चूगे नित पेड़, राम रमत मत प्रगति आई, कहो कबीर गुरसो जी पाई। गौड़ी कबीर जी पंच पदे। ज्यों जल छोड़ बाहर पयो मीना, पूरब जन्म हों तप का ही ना, अब कहो राम कवन गत मोरी, सजीले बनारस मत पई थोरी। रहाओ सगल जन्म शिवपुरी गवाया, मरती बार मगहर उठ आया, बहुत बरस तप किया काशी, मरन पया मगहर की बासी, काशी मगहर संबिचारी, ओछी पगत कैसे उतरस पारी, कहो गुर गज शिव सब को जाने, मुआ कबीर रमत श्री राम है। गौड़ी कबीर जी। चोआ चंदन मर्दन अंगा, सो तन जले काठ के संगा, इस तन तन की कवन बढ़ाई, तरन परे उर्वार न जाई। रहाओ रात जे सोवे दिन करे काम, एक खिन लेह ना हर को नाम, हाथ ता डोर मुख खायो तंबोर, मरती बार कस बांध्यो चोर, गुरमत रस रस हर गुण गावे, रामे राम रमत सुख पावे, कृपा करके नाम दृढ़ाई, हर हर बात सुगंध बसाई, कहत कबीर चेतरे अंदा, सत राम झूठा सब तंदा। गौड़ी कबीर जी तिप दे चार तुके, जमते उल

राम दुख बिन से सुख कियो विश्राम। बैरी उल्ट पए है मीता साकत उल्ट सुजन पे चीता। अब मोहे सर्व कुशल कर मान्या सांत पई जब गोविंद जान्या। राव तन में होती कोट उपाद उलट पई सुख सह समाद। आप पछाने आपे आप रोग न व्यापे तीनों ताप। अब

जिन राम जानिया तिने पछानिया, जो गूंगे साकर मन मानिया, ऐसा ज्ञान कथे बनवारी, मन रे पवन दृढ़ सुख मन नारी, रहाओ सो गुर करो जे बहुर न करना, सो पद रवो जे बहुर न रवना, सो ध्यान करो जे बहुर न तरना, ऐसे मरो जे बहुर न मरना, उल्टी गंगा जमुन मिलावो, बिन जल संगम मन में नावो, लोचा समसर इहो व्यवहारा, तत विचार क्या और विचारा, अब तेज बाय पृथ्वी।

है मोल अब मोहे राम अपना कर जानिया सह सुभाए मेरा मन मानिया रहाओ ब्रह्म कथ कथ अंत न पाया राम भगत बैठे कर आया कहो कबीर चंचल मत त्यागी केवल राम भगत निज पागी गौड़ी कबीर जी जिहे मरने सब जगत तरासिया सो मरना गुर शब्द प्रगासिया अब कैसे मरो मरन मन

कवन सो मुन जो मन मारे है, मन को मार कहो किस तारे रहाओ। मन अंतर बोले सब कोई, मन मारे बिन भगत न होई। कहो कबीर जो जाने पेओ, मन मधुसूदन त्रिभुवन देओ। गौरी कबीर जी। ओए जो दिसे अंबर तारे, किन ओए चीते चीतन हारे। कहो रे पंडित अंबर कास्यों लागा, बूजे बूजन हार सवागा रहाओ। सूरज चंद करहें उजियारा, सब में पसरे।

राम जपत तन जर की ना जाए, राम नाम चित रहा समाए रहाओ, काको जरे आए हुए हान, नटवट खेले।

सुख मांगत दुख आगे आवे, सो सुख हमो न मांगिया पावे। विख्या अजो सुरत सुख आसा, कैसे हुई है राजा राम निवासा। रहाओ इस सुख ते शिव ब्रह्म डराना, सो सुख हमो साच कर जाना। सनकादिक नारद मुन सेखा, तिन भी तन में मन नहीं पेखा। इस मन को कोई खोजो पाई, तन छूटे मन कहाँ समाई। गुर प्रसादी जय दियो नामा, भगत के प्रेम इन्हीं है जाना। इस मन को नहीं आवन जाना, जिसका परम गया तिन साच पछाना। इस मन को रूप न रेखिया काई, हुक्मे जोया हुक्म बूझ समाई। इस मन का कोई जाने पे हो, ए मन लीन पे।

तक सिद्ध पहले लागे रहाओ साधक सिद्ध सगल मुनहारे एक नाम कल्प कर तारे जो हर हरे सो होए ना आना कह कबीर राम नाम पछाना।

कह कबीर पूरन जग सोई, जाके हृदय अवरना कोई। कौन को पूत पिता को काको, कौन मरे को दे संतापो, हर ठग जग को

कह कबीर ठग स्यो मन मानिया, गई ठगोरी ठग पहचानिया। अब मोको पै राजा राम सहाय, जन्म मरण कट परम गत पाई। रहाओ साधु संगत दियो रलाए, पंच दूत ते लियो छड़ाए। अमृत नाम जपो जप रसना, अमोल दास कर लीनो अपना। सतगुर कीनो पर उपकार, काड लीन सागर संसार। चरण कमल

जल सल पूर रहे प्रभ स्वामी, जत पेखो तत अंतर जामी, अपनी भगत आप ही दृढ़ाई, पूरब लिखत मिलिया मेरे पाई, जिस कृपा करे तिस पूरन साज, कबीर को स्वामी गरीब निवाज। जल है सूतक थल है सूतक, सूतक ओ पत होई, जन्मे सूतक मुए फुन सूतक।

हर जस सुने ना हर गुण गावे, बातन ही आसमान गिरावे। ऐसे लोग गुण से क्या कहिए, जो प्रभु किए भगत ते बाज।

कुशल कुशल करते जग बिन सह कुशल भी कैसे होई रहाओ। माटी के कर देवी देवा तिस आ गए जियो देही ऐसे पितर तुम्हारे कही।

गौड़ी। जीवत मरे मरे फुन जीवे ऐसे सुन समाया, अंजन माय निरंजन रही है बौड़ न पवजल पाया। मेरे राम ऐसा खीर बिलोई है, गुरमत मनुआ अस्थिर राखो, इन विद अमृत पियोई है रहाओ। गुर के बाण बजर कल छेदी, प्रगटिया पद परगासा, सकत अंधेर जेवड़ी प्रम चूका, नेचल शिव कर बासा। तिन बिन बाणे तनुख चढ़ाई है, इहो जग बेदिया पाई, दह दिस बूढ़ी पवन चुलावे, डोर रही लिवलाई। उन मन मनुआ सुन समाना, दुबदा दुर्मत पागी, कहो कबीर अनुपव इक देखिया, राम नाम लिवलागी। गौड़ी बैरागन तिप दे, उल्टत पवन चक्र खट पे दे, सुरत सुन अनरागी, आवे न जाए मरे न जीवे, तास खोज बैरागी। मेरे मन मन ही उल्ट समाना, गुर प्रसाद अकल पई अवरे, नातर था बेगाना। रहाओ निवरे दूर दूर फुन निवरे, जिन जैसा कर्मा।

पाप पुण्य दोए बैल बिसाहे, पवन पूजी प्रगास्यो तृष्णा गुण परी कट पीतर, इन विद टांड बिसाहो। ऐसा नायक राम हमारा, सगल संसार कियो बन जारा, रहाओ काम क्रोध दोए पै जगाती, मन तरंग बटो।

पंडित गुणी सूर हम दाते ए कहें बड हम ही। जिसे बुझाए सोई बूझे बिन बूझे क्यों रही है। सतगुर मिले अंधेरा चूके इन विद मानक लही है। तज बावे दहने विकारा हर पद दृढ़ कर।

बटुआ सब जग पसमा तारी ताड़ी लागी त्रिपल पलटी है छूटे होए पसारी मन पवन दोए तुम्बा करी है जुग जुग सारद साजी।

गज नव गज दस गज इक्कीस पुरिया एक तनाई साठ सूत नव खंड बेहतर पाठ लगो अधिकाई गई बुनावन माहो कर छोड़े जाए जुलाहो रहाओ गजी न मिनिये तोल न तुलिये पाचन शेर अढ़ाई जो कर पाचन बेग न पावे चगर करे करहाई दिन की बैठ खसम की बरकस ए बेला कत आई।

महोए। जित काट नाम ना उपजे, फूट मरे जन सोए। सावल सुंदर रामैया, मेरा मन लागा तो है। रहाओ साध मिले सिद्ध पाये।

तावत जोन जन्म प्रम थाके, अब दुख कर हम हारियो रे, कह कबीर गुर मिलत महारस, प्रेम भगत निस्तारियो रे। गौड़ी काल भूत की हस्तनी मन बौरा रे, चलत रचियो जगदीश, काम सुआए गज बस परे, मन बौरा रे अंकस कहो शीस। बिखे बाच हर राज समझ मन बौरा रे, निरपय होए न हर पजे, मन बौरा रे गयो न राम जहाज, राव मरकट मुष्टि अनाज की मन बौरा रे, लीनी हाथ पसार, छूटन को सहसा परे।

राम नाम तन कर संचौनी सो तन कठी न जावे हमरा तन मादो गोविंद तरनी तर यह सार तन कही है जो सुख प्रभ गोविंद।

मन मुकंद जेहबा नारायण परे न जमकी फासी निज तन ज्ञान भगत गुरदीनी तास सुमत मन लागा जलत अम्ब थम्ब।

تم کر لاکھ کوٹ اسو ہستی، ہم کر ایک مراری گوڑی۔ ज्यों कप के कर मुष्ट चनन की लुबद ना त्याग दयो، जो जो कर्म किए लालच्यों ते फिर ग्रह परयो، भगत बिन बिरथे जन्म गयो، साध संगत भगवान भजन बिन कहीं ना सच रहो रहाओ۔ ज्यों उद्यान कुसुम प्रफुल्लत किन्हें ना कराओ लयो، तैसे प्रमत अनेक जून में फिर काल हयो۔ या तन जोबन अर सुत दारा पेखन को जो दयो، तिन ही माए अटक जो उर्जे۔

सतगुर ओट लयो गौड़ी। पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुत्री जोरी, मैं नाही कछ आए न मोरा, तन तन सब रस गोविंद तोरा। रहाओ इस माटी में पवन समाया, झूठा परपंच जोर चलाया।

आयो लागत पवन खसम बिसरायो जीरा हर के गुना गाओ रहाओ गर्भ जोन में उर्द तप करता तो जठर अगर मैं रहता लख चौरासी जोन प्रम आयो अब के छुटके ठौर न ठायो कहो कबीर पज

में जब लग जुगत न जानिए पाओ भगत भगवान। संपै देख ना हरखिए विपत देख ना रोए जो संपै त्यों बिकत है बिदने रचिया सो होए। कह कबीर अब जानिया।

0: गौड़ी
1: पंथ निहारे कामनी लोचन परी ने उसासा पूर्णा पीजे पग न खिसे हर दर्शन की आशा उड़ो न कागा कारे बेग मिली जय अपने राम प्यारे रहाओ कह कबीर जीवन पद कारण हर की

आका स्वरूप देख मोहि ग्वारने, मोको छोड़ ना आओ ना जाहू रे। तोहे चरण मन लागो सारंग तर, सो मिले जो बड़ पागो रहाओ। वृंदावन मन हरन मनोहर, कृष्ण चरावत गाऊ रे, जाका ठाकुर तुम।

नाम तेरा आधार मेरा जो फूल गई है नार, कह कबीर गुलाम कर का जी आए पावे मार। गौड़ी लख चौरासी जी जोन में प्रमत नंद बहु ठाकोरे, भगत हेत अवतार लियो है पाग बड़ो बपरा कोरे। तुम जो कहत हो नंद को नंदन, नंद सो नंदन का कोरे, तरन आकाश दसो दिस नाही तब यो नंद कहाँ थोरे। रहाओ।

आये नाम पदार्थ मने बसाये हृदय शुद्ध जो निंदा हुए हमरे कपरे निंदक तोए निंदा करे सो हमरा मीत निंदक माए हमारा चीत।

बांधी बस्त अनूप बीच पाई। कुंजी कुलफ प्राण कर राखे करते बार न लाई। अब मन जागत रहो रे पाई। गाफल होए कै जन्म गवायो।

दिखे रोग पै बंधन पागे मन निज कर सुख जाना ना। एक सुमत रत जान मान प्रभ दूसर मने ना अनाना। चंदन बास पहे मन बासन त्याग कट्यो अभिमाना ना। जो जन गाए त्याए जस ठाकुर तास प्रभु है थाना ना। ते बड़ पाग बस्यो।

अक्षर लोक त्रय सब कछ इन्हीं माहे, ए अक्षर खिर जाएंगे ओए अक्षर इनमें नाहे। जहाँ बोलते अक्षर आवा, जह अबोलते मन ना रहावा, बोल अबोल मद है सोई, जस ओ है तस लख न कोई। अल्लह लहो तो क्या कहूं, कहूं ता को उपकार, बटक बीज में रव रहो जा को तीन लोक विस्तार। अल्लह लहंता पेद छे, कछ कछ पायो पेद, उलट पेद मन बेदियो, पायो अपंग अछेद।

लिख अर मेटे ताहे न माना, ओंकार लखे जो कोई सोई लख मेटना ना होई, कक्का किरण कमल में पावा।

जोत्रे भवन तन माहे समावा तो तत्ते तत मिलिया सच पावा थथा अथा था नहीं पावा ओ अथा एहो थिर ना रहावा थोड़े थल थानक आरंभे बिन ही थांबे मंदर थंबे दद्दा देख जो बिन सनहारा जस अदेख तस राख बिचारा दसवें द्वार कुंची जब दीजे तो दयाल को दर्शन कीजे तद्दा अर्दे उर्द निवेरा अर्दे उर्दे मंज बसेरा अर्दे छाड़ उर्द जो

अब पौ पान परोसो आवा, जो बाहर सो पीतर जानिया, पया पेद पूपत पहचानिया। मम्मा मूल गया मन माने, मरमी होए सो मन को जाने, मत कोई मन

अरे अल्प सुख छाड़ परम सुख पावा, तब ए त्रिय ओकंत कहावा। हा हा होत होए नहीं जाना, जब ही होए तब है मन माना।

लखमी बरस्यों जो लियो लावे, सोग मिटे सभी सुख पावे। खखा खिरत खपत गए केते, खिरत खपत अजहू ने।

बावन अखर जोरे आन, सकिया ना अखर एक पछान, सत का शब्द कबीरा कह, पंडित होए सो अनपैर है। पंडित लोगे को व्यवहार, ज्ञानवंत को तत विचार, जा कह जी जय।

अंतरजामी राम समारो, जीवत पावो मोख द्वार, अनपौ शब्द तत निज सार, चरण कमल गोविंद रंग लागा, संत प्रसाद पै मन निर्मल।

अंग माया ब्रह्म रमे सब संग ना ओ बढ़े न कटता जाए अकुल निरंजन एक कह पाए। तृतीया तीने सम कर ल्यावे अनद मूल परम पद पावे साध संगत उपजे विश्वास बाहर पीतर सदा प्रगास। चौथे चंचल मन को गहो काम क्रोध संग कबहो न बहो।

अर्ध उर्ध बिच सम पहचान, नीच ऊंच नहीं मान अमान, व्यापक राम सगल सामान। चौदस चौदह लोक मजार, रोम रोम में बसे मुरार।

गाम तुदनो पंडित पड़े रखीसर जुग जुग वेदा नाले। गाम तुदनो मोहनिया मनमोहन सुर्ग मच पयाले। गाम तुदनो रत्न उपाय तेरे जेते असरती।

सोख पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावे सब त्यावे तुझ जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावो संतो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू कट कट अंतर सर्व निर

तिन कुर्बाना। हर त्यावे तुझ जी से जन जुग में सुखवासी। से मुक्त पे जिन हर त्याया जियो तिन टूटी जम की फांसी। जिन निरपो जिन हर निरपो त्याया जियो तिनका पो सब गवासी। जिन सेविया मेरा हर जियो ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जियो जन नानक तिन बल जासी। तेरी पगत पंडार जी परे बेअंत बेअंता। तेरे पगत सरान तुझी हर अनेक अनेक अनंता। तेरी अनक करे हर पूजा जी तप तापें जपें बेअंता। तेरे अनेक पढ़े बो सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खटकर्म करंता। से पगत पले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुझ जेवन अवर न कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू ने चल करता सोई। तुझ आपे पावे सोई वरते जी तू आपे करें सो होई। तुझ आपे श्रेष्ठ सब उपाय जी तुझ आपे

कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी त्यानी गुर गुर हाई, कहन न जाई तेरी तिल वड्याई, सब सत सब तप सब चंगियाईया।

जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात, जिन दिन करके कीती रात, खसम विसारे ते कम जात, नानक नावे बासनात, आसा मेला पहला। जे दर मांगत पूक करे मैली खसम सुने, पावे तीरक पावे तके, एक वडाई दे जानो।

हित रंग नाचो रख रख पाओ। सिख सभा दीख्या का पाओ, गुरमुख सुनना साचा नाओ। नानक आखन वेरा वेर, हित रंग नाचो रख रख पैर। आसा मैला पैला पौन उपाय तरी सब तरती, जल अग्नि का बंद किया। अंधले दे दिस मुंड कटाया, रावण मार क्या वड़ा भया। क्या उपमा तेरी आखी जाए, तू सर्वे पूर रहा लिवलाए। रहाओ जी उपाय जुगत हक।

आगै अंत न पायो ताका कंस छेद क्या वड़ा भया। रतन उपाए तरे खीर मथिया होर पखलाए जे असी किया

जिंद तन मन हर पै आ गए जिंद झूठ विकार महा दुख देह देख वरन दिसे सबके जो उपजे सो आवे जाए नानक अस्थिर नाम रजाए आसा मेला पहला एको सर्वर कमल अनूप सदा विदास।

सतगुरु सेव अमृत रस चाखे, चल तो मन राखे अमृत चाखे, सतगुरु सेव अमृत शब्द पाखे, साचे शब्द मुक्त गत पाए, नानक विच्चों आप गवाए। आसा महला पहला, जो तिन किया सो सच तिया, अमृत नाम सतगुरु दिया, हृदय नाम ना

हर राते से जन परवान, तिनकी संगत परम निधान, हर बार जिन पाया तन नारी, हर स्यों राती शब्द विचारी, आप तरह संगत कुल तारे, सतगुरु सेव तत विचारे, हमरी जात पथ सच नाओ, कर्म तर्म संजम सत भाओ, नानक बख्शे पूछ न होए, दूजा मेटे को सोए, हाथा महला पहला, एक आवे एक जावे आई, एक हर राते रह समाई, एक तरन गगन में ठौर न पावे, से कर्महीन हर नाम न त्यावे, गुर पूरे ते गत मित पाई, इहो संसार बिखवत अत पौजल।

ज्यों जल अम्ब ऊपर कमल निरारे, बुरा पला कौ किसनो कही है, दिसे ब्रह्म गुरमुख सच लही है, अकथ कथो गुरमत विचार, मिल गुर संगत पावो पार। शास्त्र वेद सिमरत बहुपेद, अठसठ मज्जन हर रस रेद, गुरमुख निर्मल मैल न लागे, नानक हृदय नाम वडे तुर पागे। आसा मेला पहला, निव निव पाए लगो गुर अपने, आत्म राम निहारे।

गुर प्रसाद रतन हर लाभे, मिटे अज्ञान होए उजियारा रहाओ। रमनी रवे बंधन नहीं टूटे, विच हों मैं परम न जाई। सतगुर मिले ता हों मैं टूटे, ताको लेखे पाई। हर हर नाम भगत प्रिय प्रीतम, सुख सागर उर्धारे। भगत वचन जग जीवन दाता, मत गुरमत हर निस्तारे। मन स्यों जूझ मरे प्रभ पाए, मनसा मने समाए। नानक कृपा करे।

पोखरे। ऐसा गुरमत रमत शरीरा, हर पज मेरे मन गहर गंभीरा रहा। अनत तरंग भगत हर रंगा, अन दिन सूचे हर गुण संगा। मिथ्या जन्म साकत संसारा, राम भगत जन रहे निरारा। पूती काया हर गुण गाया, आत्म चीन रहे लिवलाया। आद अपार अपरंपर हीरा, लाल रता मेरा मन धीरा। कथनी कह कह से मुए, सो प्रभ दूर नाही प्रभ तू है। सब जग देख्या माया छाया, नानक गुरमत नाम।

ऐनक अंधले दीपक दे, पौजल डूबत चिंत करे, कहे सुने जो माने ना हो, हों बलिहार है ताके जाओ, नानक एक।

सब जप तप जिस हर हृदय अलखा व्यवहार नानक राम नाम मन राता गुरमत पाए सहज सेवा आशा महला पहला पंच पदे।

चौपदे विद्या विचारी ता पर उपकारी जा पंच राशी ता तीर्थवासी कुंगरू वाजे जी मन लागे तो जम कहा करे मोसो आ गए रहाओ आस निरासी तो सन्यासी जा जत जोगी ता काया पोगी दया दिगंबर दी बिचारी आप मरे अवरा ने मारी।

कौन इस पर सो रहा हो? आस प्यासी से जय आवा, आगे से पावा के न पावा, क्या जाना क्या होएगा री माई, हर दर्शन बिन रह न जाई राव, प्रेम न चाखिया मेरी तिस न बुझानी, दया सो जोबन तन पछतानी।

नदर करे मेलावा होई राव सरोरडे तन साच पछाणिया सह सुभाए अपना फिर जानिया गुर प्रसादी ऐसी मत आवे ता कामन कंते मन भावे कहत नानक पै पाव का करे सिदार सभी से जैरवे।

है कोई जाति स्थावे बख्शे सोई वो प्रसादी दुर्मत खोई जय देखा तह को सोई कहत नानक ऐसी मत आवे ताको सच्चे सच समावे आसा मैला पहला दुख दे तित सर्वरण भई ले निवासा पानी पावक तिन्ह किया पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डूबियले मन एक न चेतस मूर मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ ना हो जति सती नहीं पड़िया मूरख मुगदा जन्म तया प्रणवत नानक तिनकी सरणा जिंतु नाही विसरिया आसा मैला पहला छे घर छे गुर छे उपदेश गुर गुर एको वेश अनेक जय कर करते कीरत होए सो कर राख वडाई तोए राव विश्वे चस्या करिया पैरा सिती वारी माओ भया सूरजे को रुत अनेक नानक करते के केते वेश इको अंकार सतगुरु प्रसाद आशा करती जा मेला पहला लख लख कर लख वाजे ने जे लख उठ करे सलाम लखा उपर फुरमाइश तेरी लख उठ रखे मान जा पत लेखे ना पवे ता सब निराफल का।

जाओ, लख खटिए लख संजिए, खाजे लख आवे लख जाए, जा पत लेखे ना पवे ताजी किथे फिर पाए, लख सासत समझावनी लख पंडित पढ़े पुराण, जा पत लेखे ना पवे ता सबे कुपरवान, सच नाम पत उपजे कर्म नाम करतार, एनस हृदय जे वसे नानक नदरी पार, आसा मेला पहला दीवा मेरा एक नाम, दुख विच पाया तेल उन चानन ओ सोखिया, चूका जमस्यो मेल लोका मत को फकड़ पाए, लख मरिया कर एक ते एक रतीले पाए, रहाओ पिंड पत्तल मेल।

कर कर पगवे पेख पए। तौ कारण साहिबा रंग रते तेरे नाम अनेका रूप अनंता, कहन न जाही तेरे गुण के ते रहाओ। दर कर महला हस्ती कोड़े छोड़ विलायत देश गए, पीर पैगंबर सालिक साधक छोड़ी दुनिया खाए पए। साध सहज सुख रस कस तजियले, कापड़ छोड़े चमड़ लिए। दुखिए दर्द वंद दर तेरे नाम रते दरवेश भए। खलड़ी खपरी लकड़ी चमड़ी सिखा सूत तोती कीनी, तू साहिब हो सांगी तेरा प्रणवे नानक जात कैसी। आसा कर पंजवा महला पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। पीतर पंच गुप्त मनवासे, फिर न रहे जैसे पवे उदासे। मन मेरा दयाल सेती फिर न रहे, लोभी कपटी पापी पाखंडी माया अधिक लगे रहाओ। फूल माला गल पहरोगी हारो, मिलेगा प्रीतम तब करोगी सिंगारो। पंच सखी हम एक पतारो, पेड़ लगी है जीड़ा चालन हारो। पंच सखी मिल उदन करेहा, साहो पजूता प्रणवत नानक लेखा देहा। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद।

मां सिगार कामन तन पहरे रावे लाल प्यारी। लाल बहु गुण कामन मोही तेरे गुण हो है नावरी राव। हर हर हार कंठले पहरे दामोदर दंत ले कर कर करता कंगन पहरे किन विद चित तेरे। मधुसूदन कर मुंद्री पहरे परमेश्वर पटले तीरज तड़ी बंधावे कामन श्री रंग सुरमा दे। मन मंदर जे दीपक जाले काया सेज करे ज्ञान राव जब सेजे आवे ता नानक भोग करे। आसा मैला पहला कीता होवे करे कराया तिस क्या कही है भाई। जो किछ करना सो कर रहया कीते क्या चतुराई। तेरा हुकुम पला तुद पावे नानक ताको मिले वडाई। साचे नाम समावे रहाओ किरत पया परवाना लिखिया दौड़ हुकुम न होई। जैसा लिखिया तैसा पढ़िया मेट न सके कोई। जे क्यों दरगे बहुता बोले नौ पवे बजारी सतरंज बाजी पक्के नहीं कच्ची आवे सारी। ना को पढ़िया पंडित बिना ना को मूर्ख मंदा बंदी अंदर।

किंतु आपके मां हंडाव जो कुछ करे पला कर मानो सहज जोग निध पाव। बाबा जुगता जियो जुग है जुग जोगी परम तंत में जोगं अमृत नाम निरंजन पाया ज्ञान काया रस कोगं रहाओ शिव नगरी में आसन बैठो कल्प त्यागी बादं सिंगी शब्द सदा तुम सो है एन स्पूर नादं पक विचार ज्ञान मत दंडा वर्तमान विपूतं हर कीरत रह रास हमारी गुरुमुख पंथ अतीतं सगली जोत हमारी समया नाना वर्ण अनेकं कहो नानक सुन करथर जोगी पार ब्रह्म लिव एक।

परवान भया दर दर्शन का प्रीतम होवे मुकुट वैकुंठ करे क्या सिख तीरथा सद बैरागी जुए जन्म न हारे कहो नानक सुन कर पर जोगी खीवा अमृत धारे आशा महला पहला खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया आपे दोष न दे करता जमकर मुगल चढ़ाया एती मार पई कर लाने की दर्द न आया करता तू सदना का सोई जे सकता सत्य को मारे काम रोष न होई रहा सत्ता शिव मारे पै वगै खसमे सा पुरसाई।

को नौकर आए वड्डा साध करे मनभाने खसने नदरी कीड़ा आवे जेते चुगे दाने मर मर जीवे ताक पाए नानक नाम वखाने।

हर दर्शन पावे वड भाग, गुर के सब सच्चे बैराग। खट दर्शन वरते वरतारा, गुर का दर्शन अगम अपारा। गुर के दर्शन मुक्त गत होए, साचा आप वसे मन सोए। रहाओ गुर दर्शन उदरे संसारा, जे को लाए पाओ प्यारा। पाओ प्यारा लाए विरला कोए, गुर के दर्शन सदा सुख होए। गुर के दर्शन मोक द्वार, सतगुर सेवे परवार साधार। निगुरे को गत पाई नाही, अवगुण मुठे चोपा खाई। गुर के शब्द सुख शांत शरीर, गुरमुख का तो लगे न पीर। जम काल किस नीड़ न आवे, नानक गुरमुख सा।

आए सेवड का जी जिन नाम से आया सदा गुण दाता मन वसाया जो गुण संग्रह है तिन बलिहार है जाओ दर साचे साचे गुण गाओ आपे देव है सह सुभाए नानक कीमत कह न जाए ऐसा मैला तीजा सतगुर विच वड्डी वड्याई किरी विच ने मेल मिलाई आपे मेले मेल मिलाए अपनी कीमत आपे पाए हर की कीमत किन विध होए हर अपरंपर अग

लाए, तिनका जन्म मरण दुख लाथा, ते हर दरगे मिले सुवाए रहाओ, शब्द चाखे साचा साध पाए, हर का नाम मन वसाए, हर प्रभु सदा रहा परपूर, आपे नेड़े आपे दूर, आखण आखे बके सब कोए, आपे बक्स मिलाए सोए, कहने कथन न पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए, गुरमुख विच्चों आप गवाए, हर रंग राते मो चुकाए, अत निर्मल गुर शब्द विचार, नानक नाम सवारण हार, आसा मैला तीजा, दूजे पाए लगे दुख पाया, बिन शब्द बिरथा जन्म

पाए, संत संगत मिल हर गुण गाए, नौमे नाम करे विचार, आप तरह कुल उदनहार, गुर की बाणी नाम बजाए, नानक महल शब्द कर पाए, गुरमत सत सर हर जल नाया, दुरमत महल सब दुरत गवाया, आसा महला तीजा, मन मुख मरे मर मरण विगाड़े, दूजे पाए आत्म संगारे, मेरा मेरा कर कर विभूता, आत्म न चीने पर मैं विसूता, मर मोया सब दे मर जाए, उस तक निंदा गुर समझण आई, इस युग में लाहा हर जप ले जाए, रहाओ नाम विहून गर्भ गल जाए, बिरथा जन्म दूजे लोभाए, नाम विहूनी दुख जले सबाई, सतगुरु पूरे बूझ बुझाए, मन चंचल बहु चोटा खाए, एकठो छुड़किया ठौर न पाए, गर्भ जोन विष्टा का वास, तित कर मनमुख करे निवास, अपने सतगुरु को सदा बल जाई, गुरमुख ज्योति ज्योत मिलाई, निर्मल बाणी निज कर वासा, नानक हो मैं मारे सदा उदासा, आसा मेला तीजा, लाले अपनी जात गवाई, तन मन अर्पे सतगुर शरणाई, हृदय नाम वड्डी वड्याई, सदा प्रीतम प्रभ होए सखाई, सो लाला जीवत मरे, सोग हरक दोई समकर जाने, गुर प्रसादी शब्द उदरे, रहाओ करणी कार तुरो फुरमाई, बिन शब्द को

कूड़ा करे वपार बिन राशि वखर पल्ले ना पाए मनमुख पुल्ला जन्म गवाए सतगुर सेवे सो लाला होए उत्तम जाति उत्तम सोए गुर पौड़ी सबदू ऊंचा होए नानक नाम वडा।

दोहागणी का मन देख सिंगार, पुत्र कलत तन माया चितलाए, चूत मोह पाखंड विकार। राव सदा सुहागण जो प्रभ पावे, गुर शब्दी सिंगार बनावे, सेज सुखाली अंदिन हर रावे, मिल प्रीतम सदा सुख पावे। सा सुहागण साची।

करम कमाए सब दे उचो ऊंचा होए नानक साथ समावे सोए आसा मेला तीजा भगत रता जन सहज सुभाए गुर कै पैसा चै साठ समाए बिन गुर पूरे भगत न होए मन मुख रूने अपनी पथ खोए मेरे मन हर जप सदा

आए अंतर निर्मल अमृत शरण आए सदा सूचे साथ समाए हर सब वेखे सदा हजूर गुर प्रसाद रहा भरपूर जा जाओ तै वेखा सोए गुर बिन दाता अवरना कोए गुर सागर पूरा पंडार उत्तम रतन जवाहर अपार गुर प्रसादी देवन हार नानक बख्शे बख्शन हार आसा मैला तीजा गुर सायर सतगुर सच सोए पूरे पाग गुर सेवा होए सो बुझे जिस आप बुझाए गुर प्रसादी सेव कराए ज्ञान रतन सब सोजी होए गुर प्रसाद अज्ञान विनाशे अंधन जागे वेखे सच सोए रहाओ मोह गुमान गुर सब जलाए पूरे गुर पे सोजी पाए अंतर महल गुर शब्द पछाने आवन जान रहे फिर नाम समाने जम्मा मरना है संसार मन मुख अचेत माया मोह गुबार पर निंदा दो कूर कमावे विष्टा का कीरा विष्टा माए समावे सत संगत मिल सब सो जी पाए गुर का शब्द हर पल दृढ़ाए पौना मन्ने सदा सुख होए नानक सच समावे सोए आसा मेला तीजा पंच पदे शब्द मरे तिस सदा आनंद सतगुर पेटे गुर गोबिंद ना फिर मरे ना आवे जाए पूरे गुरते साज समाए जिनको नाम लिखिया तुरलेख ते अंदिन नाम सदा त्यावे गुर पूरे ते भगत विशेख रहाओ जिनको हर प्रभ ले मिलाए तिनकी गहन गत कहीं ना जाए पूरे सतगुरु दित्ति वडियाई उत्तम पदवी हर नाम समाए जो किछ करे सो आपे आप एक कड़ी में थाप थाप कह कह कहना आप सुनाए जे सो काले थाए ना पाए जिनके पोते पुन तिना गुरु मिलाए सच बाणी गुर शब्द सुनाए जहाँ शब्द वसे तहाँ दुख जाए ज्ञान रतन साचे सहज सुनाए नावे जेवड होर तर नाही कोए जिसनो बक्से साचा सोए पूरे शब्द मन वसाए नानक नाम रते सुख पाए आसा मैला तीजा नृत करे बहु वाजे बजाए यो मन अंधा बोला है किस आँख सुनाए अंतर लोभ परम अनल वाओ दीवा बले न सो जी पाए गुरमुख भगत कट चानन होए आप पछाण मिले प्रभ सोए रहाओ गुरमुख नृत हर लागे पाओ पूरे ताल विच्चों आप गवाए मेरा प्रभ साचा आपे जान गुर के सबल अंतर ब्रह्म पछाण गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यार गुर का शब्द सहज विचार गुरमुख भगत जुगत सच सोए पाखंड भगत नृत दुख होए एहा भगत जन जीवत मरे गुर प्रसादी पव जल तरे गुर के बचन भगत खाए पाए हर जियो आप वसै मन आए हर कृपा करे सतगुरु मिलाए नेचल भगत हर स्यो चित लाए भगत रते तिन सच्ची सोए नानक नाम रते सुख होए।

सोई गुर प्रसादी मन से हर बूझे सोई मैं सहुदाता एक है और ना ही कोई गुर कृपा से मन से ता सदा सुख होई रहाओ इस युग में निरपो हर नाम है पाइये गुर विचार बिन नामे जम के बस है मन मुख अंध द्वार हर के पाने जन सेवा करे बूझे सच सोई हर के पाने सालाई है पाने मने सुख होई हर के पाने जन्म पदार्थ पाया मत उत्तम होई नानक नाम सलाए तू गुरमुख गत होई।

विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल, जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सब ही आख वखाने, जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजावर न कोए, तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरुमुख प्रगट होए। इको ओंकार सतगुर प्रसाद, रागा साथ हर दूजा मेला चौथा, किस ही तरह किया मित्र सुत नाल भाई, किस ही तरह किया कुरुम सके नाल जवाई, किस ही तरह किया सिकदार चौधरी नाल अपने सुआई, हमारा तरह हर व्या समाई, हम हर स्यो तरह किया मेरी हर केक, मैं हर बिन पक तरा और न कोई, हूँ हर गुण गावा असंख अनेक, रहाओ जिन स्यो तड़े करें से जाहे, झूठ कड़े कर पछोताहे, फिर न रहे मन खोट कमाहे, हम हर स्यो तरा किया जिसका कोई समर्थ ना है, ये सब कड़े माया मोह पसारी, माया को लूजे गवारी, जन्म मरे जुए बाजी हारी, हमरे हर तरह जे हलत पलत सब सवारी, कल युग में तड़े पंच चोर चगड़ाए, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान वधाए, जिसनो कृपा करे तिस सत्संग मिलाए, हमरा हर तरह जिन ए तड़े सब गवाए, मिथ्या दूजा पाओ तड़े बह पावे, पराया छिद्र अटकले अपना अंकार वधावे, जैसा बीजे तैसा खावे, जन नानक का हर तरह धर्म सब श्रेष्ठ जिने आवे, आसा मेला चौथा, हृदय सुन सुन मन अमृत पाया, गुरबाणी हर अलख लखाया, गुरमुख नाम सुनो मेरी बहना, एको रव रया कट अंतर मुख बोलो, गुर अमृत बहना रहाओ, मैं मन तन प्रेम महा बैराग, सतगुर पुरख पाया वड़ पाग, दूजे पाए पवे बिख माया, पाग हीन नहीं सतगुर पाया, अमृत हर रस हर आप पियाया, गुर पूरे नानक हर पाया, गुर पूरे नानक हर पाया, आसा मेला चौथा।

जाए वडै पाग गुरमुख हर पाए नाम हीन कालख मुख माया नाम बिना त्रिग त्रिग जीवाया वड़ा वड़ा हर पाप कर पाया नानक गुरमुख नाम दिवाया आसा महला चौथा गुण गावा गुण बोली बाणी गुरमुख हर गुण आंख वखाणी जप जप नाम मन पया आनंदा सत सत सत गुरु नाम दृढ़ाया रस गाए गुण कर

शरीर सरोवर गुण प्रगट किए, नानक गुरमुख मत कट कडिए। आसा मैला चौथा, नाम सुनी नामो मन पावे, वडे पाग गुरमुख हर पावे। नाम जपो गुरमुख परगासा, नाम बिना मैं तर नहीं काई। नाम रविया सब सांस ग्यासा, रहाओ नाम में सुरत सुनी मन भाई। जो नाम सुनावे सो मेरा मीत सखाई, नाम हीन गए मूड नंगा। पच पच मोए बिख देख पतंगा, आपे थापे थाप उठापे, नानक नाम देवे हर आपे। आसा मेला चौथा, गुरमुख हर हर वेल वधाई, फल लागे हर रस रसाई। हर हर नाम जप अनत तरंगा, जप जप नाम गुरमुख सालाही। मारिया काल जम कंकर पुयंगा, रहाओ हर हर गुर में भगत रखाई। गुर सिखा सिख देवे मेरे भाई, हो मैं कर्म किस विद नहीं जाने। जो कुंचर नाए खाक सिर छाने, जे वड पाग होवे वड ऊंचे, नानक नाम जपे सच सूचे। आसा मेला चौथा, हर हर नाम की मन भूख लगाई। नाम सुने मन तृप्त है मेरे भाई, नाम जपो मेरे गुरु सिख मीता। नाम जपो नाम में सुख पावो।

दुख तंदा हर हर हर जस जपै वड पागी नानक गुरमत नाम लिव लागी। एक ओंकार।

गुरमत हर गुण बोलो जोगी त्यों मनुआ हर रंग पेन। जोगी हर दियो मति उपदेश जुग जुग हर हर एको वर्त है तिस आगे हम आदेश राओ। गावे राग पांच बो बोले एहो मनुआ खेले खेल जो वे कूप सिंचन को बसदा उठ बैल गए चर।

जोगी जंगम श्रेष्ठ सब तुमरी जो देहो मति तित चेल जन नानक के प्रभ अंतर जामी हर लागो मनुआ पेल। आसा मैला चौथा कब को पाले कुंगरू ताला कब को बजावे रबाब आवत जात बार खिन लागे हों कब लग समारो नाम। मेरे मन ऐसी पगत बने आई हम हर बिन खिन पल रह न सको जैसे जल बिन मीन मर जाई रहा। कब को मेले पंच सत गायन कब को राग तुन उठावे मेलत चुनत खिन पल चसा लागे कब लग मेरा मन राम गुन गावे। कब को नाचे पाव पसारे कब को हाथ पसारे हाथ पाव पसारत बिलम तिल लागे कब लग मेरा मन राम समारे। कब को लोगन को पति आवे लोक पति ने ना पत होए जन नानक हर हृदय सद त्यागो ता जय जय करे सब कोए। आसा मैला चौथा सत संगत मिलिए हर साधु मिल संगत हर गुण गाए ज्ञान रतन बलिया कट चानन अज्ञान अंधेरा जाए। हर जन नाचो हर हर त्याए ऐसे संत मिले मेरे पाई हम जन के तो मैं पाए रहाओ। हर हर नाम जपो मन मेरे अन दिन हर लिवलाए जो इच्छो सोई फल पाओ फिर भूख ना लागे आए। आपे हर अपरंपर करता हर आपे बोल बुलाए से संत पले तुद पावे जिनकी पत पावे खाए। नानक आत्मा राजे हर गुण जो आखे त्यों सुख पाए भगत भंडार दिए हर अपने गुण गाहक वनज ले जाए। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद राधा सा कर अठवा के

पूरे सावास चलन जानिया लाहा नाम से सार सब सुमाणिया रहा। पूरब लिखे देह से आए माया चलन आज के कल तुरु।

जीवन मरण सुख होए जिना गुरु पाया, नानक सच्चे सच सच समाया। आसा मैला चौथा जन्म पदार्थ पाए नाम ते आया, गुरु प्रसादी बुझ सच समाया। जिन तुर लिखिया लेख तिन्नी नाम कमाया, दर सच्चे सच्चार मैल बुलाया रहाओ। अंतर नाम निधान गुरु मुख पाइए, अंजन नाम से आए हर गुण गाइए। अंतर वस्त अनेक मनमुख नहीं पाइए, हूँ मैं गर्भ गर्भ आप खुआइए। नानक आपे आप खुआइए, गुरमत मन पर गास सच्चा पाइए।

हूँ उन दिन हर नाम कीर्तन करो। सतगुरु मोको हर नाम बताया हूँ हर दिन खिन पल रह ना सकू रहाओ। हम रह श्रवण सिमरन हर कीर्तन हूँ हर दिन रह न सकू हूँ एक खिन। जैसे हंस सरवर बिन रह न सके तैसे हर जन क्यों रहे हर सेवा बिन। किन्हु प्रीत लाई दूजा पाओ रिज तार किन्हु प्रीत लाई मोह अपमान। हर जन प्रीत लाई हर निर्वाण पद नानक सिमरत।

हर बिन खिन पल रह न सकूं, जैसे कर हल बेल दी जाई राव। हमरा मन बैराग बिरकत कहो, हर दर्शन मीत कहताई। जैसे अल कमला बिन रह न सके, तैसे मोए हर बिन रह न जाई। राज करण जगदी सुर प्यारे, मोए सरदा पूर हर गुसाई। जन नानक कै मन अंध होत है, हर दर्शन निमक दिखा।

सोई फिर खाया, जिन सुख बैठा ली तिस पर दोष दिखाया, पाई मीत कुटुंब देख विवादे, हम आई वसगत गुर प्रसादे, ऐसा देख भी मोहित हुए, साधिक सिद्ध सुरदेव मनुखा।

हम हर राखे लग सतगुरु पावे। तप करते तपसी फूलाए, पंडित मोहे लोग सुभाए, त्रै गुण मोहे मोहा आकाश हम।

त्यागी हूँ मैं प्रीत, दुखिया त्यागी लोगारीत, त्रै गुण त्याग दुर्जन मीत समाने, तुरिया गुण मिल साध पछाने, सहज गुफा में आसन बांधया, ज्योत स्वरूप अनाद वाजया, महा आनंद गुर शब्द विचार, त्रै सो राति तन सुहागना।

पूछी शरण पया रह न पाई, कौमी पाहो कह कह जाई। सुनो उपदेश सतगुर पे आया, गुर हर हर नाम मोहे मंत्र दृढ़ाया। निज कर वस्या गुण गाय अनंता, प्रभ मिलियो नानक कहे अचिंता। पर मेरा ए नायक हमारी, ए आमर हम गुर किए दरबारी।

आसा मेला पंजवा दुख रोग पए गत संते मन निर्मल हर हर गुण गाए।

तावत रहे एक एक बूझिया, आए बसे अब ने चल खाए, जगत उदाहरण संत तुम्हारे, दर्शन पेखत रहे अघाए, जन्म दोख परे मेरे पाछे, अब फकरे ने चल साधु पाए, सहज तुन गावे मंगल मनुआ, अब पाको फुन काल न खाए, करण कारण समर्थ हमारे, सुखदाई मेरे हर हर राय, नाम तेरा जप जीवे नानक, पोत पोत मेरे संग सहाय, आशा मैला पंजवा, अरड़ावे बिललावे निंदक, पार ब्रह्म परमेश्वर बिसरिया, अपना कीता पावे निंदक रहाओ, जे कोई उसका संगी होवे, नाले ले सिदावे, अनहोंदा अजगर पार उठाए, निंदक अग्नि माहे जलावे, परमेश्वर के द्वारे जे होए बतीते, सो नानक आख सुनावे, भगत जना को सदा आनंद है, हर कीर्तन गाए बिकसावे, आसा मेला पंजवा, जो मैं कियो सगल सिगारा, तो भी मेरा मगना पतियारा,

वस्त्र भी कुखन सुख बहुत विशेष है, कोई भी जानो कितने न लेखे, पथ शोभा और मान महत आज्ञाकारी सगल जगत। गृह ऐसा है सुंदर लाल, प्रभु का वासा सदा निहाल, व्यंजन भोजन अनेक प्रकार, रंग तमाशे बहुत विस्तार, राज मिलक और बहुत फुरमाइश, मन नहीं त्रापे तृष्णा न जायस, बिन मिल बे यो दिन ना बिहावे, मिले प्रभु ता सब सुख पावे, खोजत खोजत सुनी ए सोए, साध संगत बिन तरयो न कोए, जिस मुस्तक पाग तिन सतगुरु पाया, पूरी आशा मन तृप्त आया, प्रभ मिलिया ता चूकी डंजा, नानक लद्दा मन तन मंजा। आशा महला पंजवा पंच पदे

तुझ पे दाम, सील बिदारो तेरा काम। जाको दृष्ट मया हर राय, साबंदी ते ले चढ़ाए, साध संग मिल हर रस पाया, कहो नानक सफल ओ काया। सब रूप सब सुख बने सुहागन, अब सुंदर विचक्षण तू, रहाओ दूजा आसा महला पंजवा, इक तुके दूजा। जीवत दी सह तिस हर पर मरना, मुआ होवे किसने चल रहना। जीवत मोए मोए से जीवे, हर हर नाम अवसद मुख पाया, गुर सब्जी रस अमृत पीवे। रहाओ काची मटकी बिनस बिनासा, जिस छूटे तृप्ति तिस निज पर वासा। ऊंचा चढ़े सो पवे प्याला, तरन पड़े तिस लगे न काला। क्रमत फिरे तिन किछु न पाया, से अस्थिर जिन गुर शब्द कमाया। जियो पिंड सब हर कमाल, नानक गुर मिल पे निहाल। आसा महला पंजवा, उतरी तेरी बिद कर खाती, जान सत

हस्त रख परे थे चाम, इस ऊपर ले राख्यो गुमान। एक वस्त बूझे ता हो वै पाक, बिन बूझे तू सदा न पाक। कहो नानक गुर को कुर्बान, जिससे पाये हर पुरुष सुजान। आखा महला पंजवा एक तुके चौपदे, एक कड़ी दिन को बहुत दिहारे। मन ना रहे कैसे मिलो प्यारे, एक पल दिन को कहो ना बिहावे।

सब अंत न जाने पंच दूत मिल फिर विछोड़ी प्रम प्रम रोवे हाथ पछोड़ी जन नानक को हर दर्श दिखाया आत्म चीन परम सुख पाया।

दूध जन बकरा मोको कहाँ डवाई रहाओ हर मेरी ओट में हर का तान हर मेरा सखा मन माहे दीवान हर मेरी पूंजी मेरा हर वेसा हो गुरमुख तन छट्टी हर मेरा साहो गुर कृपा ते ए मत आवे जन नानक हर कै अंक समावे आसा मैला पंजवा प्रभ होए कृपाल ताए हो मन लाई सतगुर सेव सब फल पाई मन क्यों बैराग करेगा सतगुरु मेरा पूरा मनसा का दाता सब सुख निधान है अमृत सर सद ही पर पूरा रहाओ चरण कमल हृद अंतर धारे प्रगति ज्योत मिले राम प्यारे संत सखी मिल मंगल गाया अरहद बाणी नाद बजाया गुरु नानक तुठा मिलिया हर राय सुख रैन विहानी सह सुवाए आसा मेला पंजवा कर कृपा हर प्रगति आया मिल सतगुर तन पूरा पाया ऐसा हर तन संचिय भाई कहे न जाने जल नहीं डूबे संग छोड़ कर कत हो न जा रहा कोट न आवे निकुट न जाए खाए खर्च मन रहा अगाए सो सत्सा हो जिस कर हर तन संचाना इस तन से सब जग वरसाना तिन हर तन पाया जिस खूब लिखे का लेना जन नानक अंतवार नाम गहना आसा मेला पंजवा जैसे किसान बोवे किसानी काची पाकी बाढ़ परानी जो जन में सो जानो मुआ गोविंद भगत अस्थिर।

वार करत चूठी लग जाता रहा वजो साहिब का सेब बिरानी कैसे गुणे अच्छा दियो प्राणी तिस्यो लोक जो सद ही संगी कामना आवे सो फिर मंगी कहो नानक प्रभ दीन दयाला जो पावे त्यों कर कृतपाला आसा मेला पंजवा जी प्राण तन हर को नाम इहा उहा उन संकाम बिन हर नाम अवर सब छोरा कृत अधावे हर दर्शन मन मोरा रहाओ पगत पंडार।

नानक को गुरु दीक्षा दीन प्रभ अविनाशी कट कट चीन आसा महला पंजवा अनद विनोद परे पुर तारिया अपना कारज आप संवारिया।

निर्बुद्ध विवेक दास सगल का छोड़ अभिमान नानक को गुरदीनो दान आसा मेला पन्यवा बुद्ध प्रगास सही मत पूरी तमते बिनसी गुरमत दूरी ऐसी गुरमत पाई ने बूढ़त कोर

गुरु पूरे प्रगट मार्ग दिखाया, जात पात कछ उक्त न मोरी, गुरु नानक शरणागत तोरी, आसा मेला पंजवा तिप दे दूजा, हर रस पीवत सद ही राता, आन रसा खिन में लह जाता, हर रस के माते मन सदा आनंद।

जाए, हर साधु हर समाए, लाख करोरी मिले न के, जिसे प्राप्त तिस ही दे, नानक चाक पहे विस्माद, नानक गुरते आया साद, ईत ऊत कस छोड़ न जाए, नानक गीदा हर रस माहे, आस्था मेला पंजवा, काम क्रोध लोभ मोह मिटावे, छुटके दुर्मत अपने

आज्ञा मान भगत हुए तुम्हारी, जो इव मंत्र कमावे नानक सो पौजल पारे उतारी। आसा मेला पंजवा दुख दे पई प्राप्त मानक दे हुरिया, गोविंद मिलन किए तेरी बरिया, अगर काज तेरे कित न काम, मिल सौत संगत फज केवल नाम, संग जाम लाग पव जल तरन के, जन्म बिरथा जात रंग माया कह रहा हो, जब तप संजम कर्म ना कमाया, सेवा साधना जान्या हर राया, कहु नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की रा

उठत सोवत जागत विसर नाही तू सास गिरा साराओ राख राख शरण प्रभ अपनी अगर सागर विकराला नानक के सुखदाते सतगुर हम तुमरे बाल गोपाला आसा मैला पन्नवा हर जन लीने प्रभु छड़ाए प्रीतम सो मेरो मन मानिया पाप मुआबिक खाए प्रभाओ पाला ताओ कछु न व्यापे राम नाम गुण गाए बाकी को चित कछु न लागे चरण कमल शरणाए संत प्रसाद पै कृपाला होए आप सहाए गुण निधान नित गावे नानक सहसा दुख मिटाए आसा महला पंजवा औखद खायो हर को नाओ सुख पा

साज संगत हर चरण निवास, राम नाम नित जप मन मेरे, शीतल सांत सदा सुख पावे, किल विख जाए सबे मन तेरे, रहाओ कौ नानक जाके पूरन कर्म, सतगुर पेटे पूरन पार ब्रह्म, दूजे करके चौथी।

कर कृपा चरण संग मेली, सुख सहज अनंत सुहेली, साध संग गुण गाए अतोली, हर सिमरत नानक कई अमोली, आसा महला पंजवा, काम क्रोध माया मद मत्सर।

मिल संग पयो मन निर्मल गुरपुर लेखिन मैं तारे राव सबकी रेन होए रह मनुआ सगले दिशे मीत प्यारे सब मदे रविया मेरा ठाकुर दान देत सब जी समारे एको एक आप एक है सगला पासारे जप जप होए सगल साध जन एक नाम त्याए बहुत उधारे गैर गंभीर बेअंत गुसाई अंत नहीं किस पारावारे तुमरी कृपा ते गुरु गावे नानक त्याए त्याए प्रभु को नमस्कारे आसा मेला पंजवा तू बेअंत अविगत अगोचर एह सब तेरा आकार क्या हम जंत करें चतुराई जहाँ सब किछ तुझे मझार मेरे सतगुर अपने बालक राखो लीला तार।

आधार अगद करे सास सास समारे मां को है अगनार पर कौन पर दारा पर निंदा इनसो प्रीत निवार चरण कमल सेवी रिद अंतर।

राज मिलक जो बन गृह शोभा रूपवंत जो आमी बहुत दर्ब हस्ती अर कोड़े लाल लाख बयानी आगे दर्घ है कामना आवे छोड़ चले अभिमानी काहे एक बिना चित लाये उठत बैठत सोवत जागत।

एक दिहाड़े कर्म कर्म जुगत बहु करता करने हार ना जाने उपदेश करे आप ना कमावे सत शब्द ना पछाने नांगा आया नांगो जासी जो अस्ति खाक छाने संत सज्जन सुनो सब मीता झूठा एवो पसारा मेरी मेरी कर कर डूबे खप खप मोए गवारा गुर मिल नानक नाम ते आया साच नाम निस्तारा राग आसा कर पंजवा महला पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद प्रम में सोई सगल जगत तंद अंद को जागे हर जन महामोहनी मगन प्रिय प्रीत प्राण को त्यागे विरला चरण कमल अनूप हर संत मंत को लागे साधु नानक साधु संग जागे ज्ञान रंग वड पागे कृपा इको अंकार सतगुरु प्रसाद राग आसा कर छेवा महला पंजवा जो तुद पावे सो परवाना सुख सहज मन सोई करण कारण समरथ अपारा अवर नाही रे कोई तेरे जन रसक रसक गुण गावे मसलत मता सियानक जन की जो

तुम्हारा प्यारे साध संग रस पाया, त्रिपुट अघाए से जन पूरे सुख निदान हर गाया। जा को टेक तुम्हारी स्वामी, ताको नाही चिंता, जा को दया तुम्हारी हुई से सह पले भगवंता। कर्म मोह त्रो सब निकसे, जब का दर्शन पाया, वर्तन नाम नान।

वो किस पे करे पुकारा। निंदक की गत कतहु नाही खसमे एवे पाना, जो जो निंद करे संतन की त्यों संतन सुखमाना। संता टेक तुम्हारी स्वामी तू संतन का सहाई, कहु नानक संत हर राखे निंदक दिए रुड़ाई। आसा मेला पंजवा बार तोए अंतर मन मेला, दोए ठौर अपने कोए इहां काम क्रोध मोह व्याप्या, आगे मुसमुस रोए गोविंद भजन की मत है होरा। गर्मी मारी साथ न मरी नाम ना सुने डोरा रहाओ, माया की किरत छोड़ दवाई भक्ति सार न जाने, वेद शास्त्र को तर्कन लागा।

ना छुपाया, कूड़ कपट बंश निमुनिया दा, दिनस गया तत्काले सत सत सत नानक कहया, अपने हृदय देख समाले आसा मैला पन्या। उद्यम करत हो गए मन निर्मल, नाचे आप निवारे, पंच जनाले वसगत राखे मन में एकंकारे, तेरा जन नृत्य करे गुण गावे, रबाब

मुक्ते सगल सुनावे, कर संग साधु चरण पखारे, संत पूर तन लावे, मन तन अर्थ तरे गुर आगे, सत पदार्थ पावे, जो जो सुने पे खेलाए सरदा, ताका जन्म मरण दुख पागे, ऐसी नृत नरक निवारे, नानक गुरुमुख जागे, आसा मैला पंजवा।

आई रे आज के बस गुरकीनो के हर कुकर तिने लगाई रे रहाओ बाज फूनिया छपरा थामिया निकरिया कर पाया रे बिन जड़िए ले जड़ियो जड़ावा थेवा अचरज लाया रे दादी दाद न पहुंचन हारा चूपी निर्नो पाया रे माल बुली चै बैठी ले मृतक नैन दिखालन ताया रे सोई अजान कहे मैं जाना जानन हार ना छाना रे कहो नानक गुर अम्यो पियाया रसक रसक बिगसाना रे आसा मेला पंजवा बंधन काट बिसारे औगन अपना बिरद समारिया होए कृपाल मात कितने आई बारक ज्यो प्रतपारिया गुर सिख राखे गुर गोपाल काद लिए माँ पौजलते अपनी नदर निहाल रहाओ जाके सिमरन जमते छुटिए हलत पलत सुख पाइये सास गिरास जपो जप रसना नीत नीत गुण गाइये भगत प्रेम परम पद पाया साध संग दुख नाके छिजे न जाए किछ पौ न व्यापे हर तन निर्मल गाके अंत काल प्रभ पैसाई इत उतराखन हारे प्राण मीत हीत तन मेरे।

सब किसकी ता तेरा वरत है सदा सदा तेरी आस जे देह वड्याई ता तेरी वड्याई इत उत तुझे ते आओ नानक के प्रभु सदा।

जियो सुनकर बचन तुम्हारे सतगुर मन तन मेरा ठार थियो राव तुमरी कृपा ते पयो साध संग एहो काज तुम आप कियो दिड़ कर चरण गहे प्रभु तुमरे सहजे बिखिया पई थियो सुख निधान नाम प्रभु तुमरा एहो अविनाशी मंत्र लियो कर कृपा मुझ सतगुर दीना ताप संताप मेरा बैर गियो तन सुमानस देही पाई जित प्रभ अपने मेल लियो तन सुकल जुग साध संकीर्तन गाये नानक नाम अधा।

महाकोरते बां पकड़ गुर काट लिए, निरपो पे सगल पो मिटिया राखे राखन हारे, ऐसी दास तेरी प्रव मेरे कारज सगल सवारे, गुण निधान साहिब मन मेला।

कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाउ न जाने मेरा पासा मेला पंजवा। कर कृपा प्रभ अंतर जामी, साध संग हर पाये, खोल किवार दिखा ले दर्शन, पुनरप जन्म ना आये। मिलो प्रीतम स्वामी अपने, सगले दुख हरोरे, पार ब्रह्म जिन हृदय अराध्या, ताके संग तरोरे। राव महा उद्यान पावक सागर भय, हर्ष सोग में बसना, सतगुर पेट पया मन निर्मल, जप अमृत हर रसना। तन तन थाप कियो सब अपना, कोमल बंधन बांधिया, गुर प्रसाद पे जन मुक्ते, हर हर नाम आराध्या। राख लिए प्रभ राखनहार है, जो प्रभ अपने पाने, जियो पिंड सब कुमरा दाते, नानक सद कुर्बाने। आसा मेला पंजवा, मोह मलन नींद के छुट

काम क्रोध अहंकार गाखरो संयम कौन छुट्योरी सुर नर देव असुर त्रै घनिया सगलो पवन लुट्योरी दावा अग्न बहुत तृण जाले कोई हरिया बूट रहोरी ऐसो समरथ वरण न साको ताकि उपमा जात न कहोरी काजर कोट में पई न कारी निर्मल बरन बन्योरी महामंत्र गुर हृदय बस्यो अचरज नाम सुन्योरी कर कृपा प्रभ नदर अवलोकन अपने चरण लगाई प्रेम भगत नानक सुख पाया साधु संग समाई इको अंकार सतगुरु प्रसाद राग आशा कर सकता।

तब आप सिंगार सवार हार रहाओ दूजा आसा मेला पन्नवा दुख कनो जब होते दूर अब मसलत मुझे मिली है दूर चुका निहोरा सकी सहेरी धर्म गया गुर फिर संग मेरी रहाओ निकट कौन प्रे सेज तरी कौन कदम ते छूट परी मंदर मेरे शब्द उजारा अनद बिनोदी खत्म हमारा मस्तक भाग में फिर कर आया फिर सोहाग नानक जन पाया आसा मेला पंजवा साच नाम मेरा मन लागा लोगन से मेरा ठाठा बागा बार सूत

मन राला नानक जन गुरु पूरा पाया अंतर बार एक दिखाया आशा मैला पंजवा पावत रलिया जो बन बलिया नाम बिना माटी संग रलिया कान कुंडलिया बस्तर ओढ़लिया सेज सुख लिया मन गर्बलिया रहाओ तले कुंचरिया सिर कनक छतरिया हर पगत बिना ले तरन गडलिया रूप सुंदरिया अनिक स्त्रिया हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया माया चलिया बिकार बिखलिया शरण नानक प्रभु पुरख दयालिया आसा मेला पंजवा एक बगीचा पेड़ कन करिया अमृत नाम कहा मैं फलिया ऐसा करो विचार ज्ञानी जाते पाये पद निर्वाणी आस पास बिखुआ के कुंता बीच अमृत है पाई रे रहाओ सिंचन हारे एक है माली खबर करत है पात पत डाली सगल बनस्पत आन जड़ाई सगली फूली निफल नाकाई अमृत फल नाम जिन गुरते पाया नानक दास तरी तिन

जिनकू जाता सो ग्रस्त उदासी परवान, नाम रता सोई निर्माण, जाको मिलियो नाम निधाना, पंत नानक का पूर खजाना, आसा मैला पन्नवा। तीर्थ जाओ ता हो करते, पंडित पूछो ता माया राते, सो स्थान बताओ मीता, जाके हर हर कीर्तन नीता, रहाओ शास्त्र वेद पाप पुन विचार, नरक स्वर्ग फिर अवतार।

सगल सुख जां तू चित आवे, सो नाम जपे जो जन सुध पावे, रहाओ तन मन शीतल जप नाम तेरा, हर हर जपत तह दुख डेरा, हुक्म बूझे सोई परवान, साथ सब जाता निशान, गुरु पूरे हर नाम दृढ़ाया, पंत नानक मेरे मन सुख पाया, आशा मैला पंजवा, जहाँ पठावो तह तह जाई, जो तुम देहो सोई सुख पाई, सदा चेरे गोविंद गोसाई, तुमरी कृपा ते तृप्त अगा

कहो नानक नित इवै त्याई गत होवे संतै लग पाई। आसा मैला पंजवां उठत बैठत सोवत त्याये मार्ग चलत हरे हर गाये। श्रवण सुनी जय अमृत कथा जास सुनी मन होए आनंदा दुख रोग सगले मन लखा राव। कारज काम बाट काट जपी जय गुर प्रसाद हर अमृत पी जय। दिन सरैन हर कीर्तन गाये सो जन जन की वाट न पाये। आठ पैर जिस विसरे नाही गत होवे नानक तिस लग पाए।

सतगुर अपना सब सदा मनावो रहाओ, सतगुर का सत शब्द कमावो, फिर घर बैठे प्रभु अपना पावो, पर का बुरा न राखो चीत, तुमको दुख नहीं पाई मीत, हर हर तंत मंत गुर दीना, इन सुख नानक अंदिन चीना, आसा मेला तन्यवा। जिस नीच को कोई न जाने, नाम जपत ओह चौकुंत माने, दर्शन मांगो दे प्यारे, तुमरी सेवा कौन कौन ना तारे, रहाओ जाके निकट न आवे कोई, सगल सृष्ट हुआ के चरण मल धोई, जो प्राणी काहू नावत काम, संत प्रसाद का को जपिए नाम, साध संग मन सोवत जागे, अब प्रभु नानक नीचे लागे, आसा मेला धन्यवाद। एको एकी नैन निहारो, सदा सदा हर नाम समारो,

किलबिक बिनासे दुख दर्द दूर पै पुनीत संतन की तूर रहाओ। तप के संत उदाहरण जोग इस पेटे जिस पुर संजोग मन आनंद मंत्र गुरु दिया कृष्ण बुजी मन ने चलतिया नाम पदार्थ नौ निज सिद्ध नानक गुरते पाई बुद्ध। आशा महला पंजवा मिटी त्यास अज्ञान अंधेरे साध सेवा अग कटे कनेरे सुख सहज आनंद घना गुर सेवा ते पै मन निर्मल हर हर नाम सुना रहाओ। बिन सो मन का मूर्ख टीठा प्रभ का पावना लागा मीठा गुर पूरे के चरण गए कोट जन्म के पाप लहे रतन जन्म इव सफल भया कहू नानक प्रभ करी मया।

सत्संग चारे जाग रे मन जागन हारे बिन हर अवर नाव सुका मा झूठा मो मिथ्या पसारे राव गुर की बाणी स्यो रंग लाए गुर कृपाल होए दुख जाए गुर बिन दूजा नाही थाओ गुर दाता गुर देवे नाओ गुर पार ब्रह्म परमेश्वर आप आठ पैर नानक गुर जाप आसा मेला पंजवा आपे पेड़ विस्थारी साख अपनी खेती आपे राख जत कत

रहाओ। मूर्ख मुग्ध अज्ञान अविचारी नाम तेरे की आस मन धारी। जप तप संयम कर्म न सादा नाम प्रभु का मने अरादा। किछु न जाना मत मेरी थोरी बिनवत नानक ओट प्रभ तोरी। आसा महला पंजवा हर हर अखर दोए माला जपत जपत पै दीन।

हृदय समाले मुख हर हर बोले सोजन इत उत कते न डोले कहु नानक जो राचे नाए हर माला ताके संग जाए आसा महला संजवा जिसका सब किच तिसका होए तिस जन लेप न व्यापे कोए हर का सेवक सद ही मुक्ता जो किच करे सोई पल जन के अत निर्मल दास की जुगता रहाओ सगल त्याग हर सरणी आया तिस जन कहां व्यापे माया नाम निधान जाके मन माहे तिसको चिंता सुखने नाहे कहो नानक गुरु पूरा पाया परम मोह सगल बिन साया।

मिट गया दुख बिसारी चिंता, फल पाया जब सतगुरु मंता। सोई सत सत है सोए, सिमर सिमर रख कंठ करोए, कहो नानक कहो।

जागत भगत सिमरत हर राते रहाओ मोह परम बहु जोन को आया अस्थिर भगत हर चरण से आया बंधन अंग कूप गृह मेरा मुक्ते संत बुझे हर नेरा कहु नानक जो प्रभु शरण आये इहा सुख आगे गत पाए आसा मेला पंजवा तू मेरा तरंग हम मीन तुम्हारे तू मेरा ठाकुर हम तेरे द्वारे तू मेरा कर्ता हूँ सेवक तेरा शरण गई प्रभु गुनी गहेरा रहाओ तू मेरा जीवन तू आधार तुझे पेक विद सह कोलार तू मेरी गत पथ तू परवान तू समरथ मैं तेरा तान अन दिन जपो नाम गुण तास नानक की प्रभु पै अरदास आसा मेला पन्यवा रोवन हारे झूठ कमाना हस हस सोग करत बेगाना को मुआ का कह कर गावन को रोवे को हस हस पावन रहाओ बाल व्यवस्था ते बिरधाना पहुँचना मुका फिर पछताना प्रयो गुण में वर्ते संसारा नरक सुरग फिर अवतारा कहो नानक जो लाया नाम सफल जन्म।

सारे हो, खिसर गयो पूम पर डारे हो, साध मोहिला दी अंकारे, दोष नाही प्रभ करने हारे, साध संग मिटे परम अंधारे, नानक मेली सिरजन हारे, आसा मेला पंजवा, चरण कमल की आस प्यारे, जम कंकर नस गए विचारे, तू चित आवे तेरी माया, सिमरत नाम सगल रोग खया, रहाओ अनेक दुख देवे अवरा को, पहुँच न साके जन तेरे को।

सहज आनंद बसे बैरागी, नानक की अरदास सुनी जाए, केवल नाम हृदय में दी जाए। आशा मेला पंजवा, मन तृप्ता नो मिटे जंजाल, प्रभ अपना होया कृपाल, संत प्रसाद कली बनी, जाके गृह सब किछ है पूरन, सो पेटिया निरपै तनी राव, नाम दृढ़ाया साध कृपाल, मिट गई।

को जन पूरन रहे अधाई, कछु न कोरा हर पगतन को, खात खर्चत बिलछत देवन को, रहाओ जाका तरी अगम गुसा।

जा को दया करो मेरे स्वामी, कहो नानक नाही तिन कामी। आशा मैला पंजवा, जो मैं अपना सतगुर त्याया, तब मेरे मन महा सुख पाया, मिट गई गणित बिना।

मनसा मेरी देख चलत मन पै दिलासा नानक दास तेरा परवासा आसा महला पंजवा अन दिन मूसा लाज टुकाई गिरत कूप में खाए मिठाई सोचत साचत रैन बिहानी अनक रंग माया के चितवत कबू न सिमरे सारंग पानी रहाओ द्रुम की छाया नहीं चल गृह बांधिया काल के फांस सकत सर सांधिया बालू किनारा तरंग मुख आया सोथान मूड नहीं चल कर पाया साध संग जप्यो हर राय नानक जीवे हर गुण गाए आसा मेला पंजवा दो पुके नावा उनके संग तू करती केल उनके संग हम तुम संग मेल उनके संग तुम सब को लोरे।

हरे, उनके संग तू रखी पलोल, उस बिना तू छुटकी रोल, उनके संग तेरा मान महत, उनके संग तू साख जगत, उनके संग तेरी सब विद्थाटी, उस बिना तू हुई है माटी, ओ बैरागी मरे न जाए, हुक्मे बादाकार कमाए, जोड़ बिछोड़े नाम खाप, अपनी कुदरत जाने आप। आसा महला पंजवा, ना ओ मरता।

को तृष्णा जाओ निर्मल का हम जचना हम किछ नाही एक ओही आगे पाछे को सोई नानक गुरु खोए परम पंगा हम ओए मिल होए इकरंगा आसा महला पंजवा अनेक पांच कर सेवा करिए जियो प्राण तन आगे तरिए पानी पखा करो तज अभिमान अनेक बार जाइए कुर्बान सारी सुहागण जो प्रभु पाई तिसके संग मिलो मेरी माई रहाओ दासन दासी की पनहार उनकी रेण बसे जी नाल माथे पाग तो पावो संग मिले स्वामी अपने रंग जाप ताप देवो सब ने मां कर्म कर्म अर्पो सब हो मां गर्भ मोह तज हो देन उनके संग देखो प्रभ नैन निमुख निमुख एही आरा दो दिन सरैन ए सेवा साधो कहे कृपाल गोपाल गोविंद साध संग नानक बख्शिंद आशा मेला पंजवा प्रभ की प्रीत सदा सुख होए प्रभ की प्रीत दुख लगे न कोए प्रभ की प्रीत हो मैं मल खोए प्रभ की प्रीत सद निर्मल हो।

जग मोहनी हम त्याग गवाई, निर्गुण मिलियो वजी वधाई रहाओ। ऐसी सुंदर मन को मोह है, बाट काट गृह।

अब मोरे मन पया आनंद, पौ चूका टूटे सब फंद, कहो नानक जा सतगुर पाया, कर सगला मैं सुखी बसाया। आखा मैला पंजवा, आठ पैर निकट कर जाने, प्रभु का किया मीठा माने, एक नाम संकन आधार, होए रहे सबकी पगछार, संत रह सुनो।

रहाओ। लाल जवे हर परे पंडार, टोट ना आवे जप निरंकार, अमृत शब्द पीवे जन कोए, नानक ताकी परम गत होए, आका कर सतो।

प्रतपाले प्रभ आप कट कट सारी है, जिस मन उठा आप किस ना विसारी है, जो किस करे सो आप आपन पाणिया, भगता का सहाय जुग जुग जानिया, जप जप हर का नाम कदे न चूरिए, नानक दर्श प्यास।

तिसे अराध मना बिनाशे सगल रोग राखनहार अपार राखे अगन माहे शीतल हर हर नाम सुन।

तरी मोहत रंग माने फिर बोर बोर पछतावे अंधे चेत हर हर राया तेरा सोदन नेड़े आया रहाओ पलक दृष्ट देख फूलो।

ਸਾਰੇ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਹਮਾਰੇ ਨੀਤਾ ਬਿਨ ਹਰ ਹਰ ਆਨੀ ਤਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ।

देखत साधु संग हर हर नाम चरावो रंगन आपे ही प्रभु रंग। मन में राम नामा जात कर कृपा वसो मेरे हृदय होए सहाय आप रहाओ। सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम प्रत्येकन का चाओ। दया करो किरम अपने को यह मनोरथ सुहाओ। तन पन तेरा तू प्रभु मेरा हमरे बस किछ नाहे। ज्यो ज्यो राखे त्यों त्यों रहना तेरा दिया खाहे। जन्म जन्म के किल विख काटे मज्जन हर जन तूर। पाए भगत परम पौ नासे हर नानक सदा हजूर। आसा महला पंजवा अगम अगोचर दर्श तेरा सो पाए जिस मस्तक पाग। आप कृपाल कृपा प्रभु तारी सतगुरु बख्शिया हर नाम। कल जुग उधारिया गुरुदेव मल मूत मूड जे मुगद होते सब लगे तेरी सेव। रहाओ तू आप करता सब सृष्ट धरता सब मेरे आसमाए। परम राजा विस्माद हुआ सब पई पैरी आए। सत जुग त्रेता द्वापर कणिये कल जुग उत्तमो जुगा माहे। ऐ कर करे सो ऐ कर पाए कोई न पकड़िए किसे खाए। हर जियो सोई करे जे भगत तेरे जाचे एहो तेरा बिरद। कर जोड़ नानक दान मांगे अपने संतां दे हर दर्श।

सतगुरु बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे रहाओ। महा बिखादी दुष्ट अपवादी ते पुनीत संगारे, जन्म पवनते नरक पड़नते तिनके कुल उधारे। कोई न जाने कोई न माने से प्रगट हर द्वार।

मोकुटंब बिखे रसमा से मिथ्या गहन गहे मिथन मनोरथ सुपन आनंद उलास मन मुख सत कहे अमृत नाम पदार्थ संगे तिल मर्म ना लहे कर कृपा राखे सत्संगे नानक शरण आहे आसा महला पंजवा तिप दे ओहा प्रेम पिरी रहाओ कनक माणिक गज मोतियन।

चरणन सरहन संतन बंदन सुखो सुख पाहे। नानक तप्त हरि मिले प्रेम पिरी आशा महला पंजवा। गुरे दिखायो लोए ना रहाओ ईते ऊते कट कट कट कट तू ही मोहिना। कारण करना कारण करना एक है सोहिना। संतन परसन बलिहारी दर्शन नानक सुख सुख सोयना। आशा मेला पंजवा। हर हर नाम अमोला ओह सहज सुहेला रहाओ। संग सहाई छोड़ न जाई ओह अभय अतोला। प्रीतम पाई बाप मोरो माई भगतन का ओला। अलख लखाया गुर ते पाया नानक एहो हर का चोला। आशा मेला पंजवा। अपनी भगत निवाहे ठाकुर आयो आहे रहाओ। नाम पदार्थ हुए सका।

गुण रस रस गावे, एक आशा दर्श प्यासा आन न पावे, दया तुहारी क्या जंत विचारी, नानक बल बल जावे। आशा महला पंजवा, एक सिमर मन माही रहाओ, नाम ते आवो हृदय बसावो, तिस बिन को नाही, प्रभ सरनी आये सर्व फल पाये, सगले दुख जाही, जीयन को दाता पुरख विदाता, नानक कट कट आही। आशा महला पंजवा, हर बिसरत सो मुआ रहाओ, नाम ते आवे सर्व फल पावे, सो जन सुखिया हुआ, राज कहावे हो कर्म कमावे, बांध्यो नलनी प्रम सुआ, कहो नानक जिस सतगुरु पेटिया, सो जन ने चलसिया। आशा महला पंजवा, कर चौथा,

जाए। प्रभ तुमरे दर्श बिन सुख नाही, वर्त नेम संयम कर थाके। नानक साध शरण प्रभ संग वसै, आसा मैला पंजवा कर पंद्रवा पड़ताल एक ओंकार। सतगुरु प्रसाद विकार माया माद सोयो, सूझ बूझ ना आवे। पकर केस जम उठारियो, तद ही कर जावे। लोभ बिखिया बिखे लागे, हिरवित चित दुखाही। खिन पंगुना के मान माते, असुर जाने नाही रहाओ। वेद शास्त्र जन पुकारे, सुने नाही डोरा। निप्त बाजी हार मुका, पछतायो मन पोरा। दान सगल गैर वजे, परया दीवान लेखे ना परया। जिहे कारज रहे ओला, सोए कामना करया। ऐसो जग मोहे गुर दिखायो, तो एक कीरत गाया। मान तान तज

संत सेव प्रीत नाथ रंग लालन लाए। गुर ज्ञान मन दृढ़ाए रहसाए नहीं आए सहजाए मन निदान पाए। सब तजी मने की काम करा चिर चिर चिर चिर पया मन बहुत प्यास लागी। हर दर्शनो दिखावो मोहे तुम बतावो नानक दीन शरण आए गल लाए आसा मैला पंजवा। तो विखम गार तो रे आस प्यास तो मोह परम ही ते हो रे राव। काम क्रोध लोभ मान ए ब्याद छोरे संत संग नाम रंग।

काम क्रोध लोभ त्याग मन सिमर गोविंद नाम हर भजन सफल काम रहाओ। अज मान मोह विकार मिथ्या जप राम राम राम मन संतना के चरण लाग प्रभु गोपाल दीन दयाल पतित पावन पार ब्रह्म हर चरण सिमर जाग कर भगत नानक पूरन भाग आसा मैला पंजवा हर्ष सोग बैराग आनंदी खेल री दिखायो रहाओ। खिनहु पै निरपै खिनहु खिनहु उठ धायो खिनहु रस सोगन खिनहु खिनहु तज जायो खिनहु जोग ताप बहु पूजा खिनहु परमायो खिनहु कृपा साधु संग नानक हर रंग लायो।

गोविंद कर हां, हर हर मन प्यार हां, गुर कहया सो चित धर हां, अनस्यो तोर फेर हां, ऐसे लालन पायो री सखी राओ, पंकज मोह सर हां, पग नहीं चले हर हां, गह दियो मूड नर हां।

मना रहाओ। टूटे अन परानहा, रवयो सर्व थानहा, लहो जम पयानहा, पायो पेड़ थानहा, तो चूकी सगल कान।

अरख अभे हां पासों प्रीत कर हां बिनस न जाए मर हां गुर ते जान्या हां नानक मन मान्या मेरे मना आसावरी महला पंजवा एका ओट गहो हां गुर का शब्द कहो हां आज्ञा सत सहो हां मन है निधान लहो हां।

संत उपदेशया मेरे मना, जिस जन नाम सुख हार, तिस निकट ना कदे दुख हार, जो हर हर जस सुने हार, सब को तिस मने हार, सफल सो आया हार, नानक प्रभ पाया मेरे मना, आसावरी मैला तन्यवा, मिल हर जस गाये हां, परम पद पाये हां, उआ रस जो विदे हां, ताँ को सगल सिदे हां, अन दिन जा गया हां, नानक बढ़ पा गया मेरे मना रहाओ, संत पग तोये हां, दुर्मत खोये हां, दासे रेन होए हां, व्यापे दुख ना कोए हां, भगता शरण पर

पिस सुजै हां पतित उधार ले हो हां नानक अरदास ते हो मेरे मना आसावरी मैला पन्यवा एक तुका ओए परदेसिया हां सुनत संदेसिया हां रहाओ जहां स्यों रच रहे हां सब तो तज गए हां सुपना ज्यों पए हां हर नाम जिन लए हर तज अन लगे हां जन्मे मर पगे हां हर हर जन लहे हां जीवत से रहे हां जिसे कृपाल होए हां नानक भगत सोए।

हर पुर तार रहा सब ठौरे रहाओ। सच व्रत नेम ना काल संतावे, सतगुर शब्द क्रोध जलावे, गगन निवास समाद लगावे, पारस परस परम पद पावे। सच मन कारण तत्व दिलोवे, सुगर सरवर मैल न तोवे।

सुरत विपूत चढ़ावे, दर्शन आप सहज कर आवे, निर्मल बाणी नाद बजावे, अंतर ज्ञान महारसारा, तीर्थ मज्जन गुर विचारा, अंतर पूजा थान मुरारा, ज्योति ज्योत मिलावन हारा, रस रसिया मत एक भाए, तख्त निवासी पंच समाए, कार कमाई खसम रजाए, अवगत नाथ न लख्या जाए, जल में उपजे जल ते दूर, जल में ज्योत रहा करपूर, किस नेड़े किस आखा दूर।

उजड़ पर मैं रहे न पाई, बिन बूझे को खाए न पाई, नाम बिहूने माथे छाई, साच तनी जग आए बिना सा, छूटस प्राणी गुरमुख दासा रहाओ, जग मुहे बांधा बहुती आसा, गुरमती इक पे उदासा, अंतर नाम कमल पर गासा, तिनको नाही जम की त्रासा, जग त्रिय जित कामन हितकारी, पुत्र कलत्र लग नाम विसारी, वृथा जन्म गवाया बाजी हारी, सतगुरु सेवे करनी सारी, बारों हो मैं कह कहाए, अंदरों मुक्त लेप कदे ना लाए।

नदर करे संजोग मिलाए, रूड़ो कहो ना कहया जाई, अकथ कथो न कीमत पाई, सब दुख तेरे सुख रजाई, सब दुख मेटे सा चैन आई, कर बिन वाजा पग बिन ताला, जे शब्द बुझे ता सच निहाला, अंतर साथ सबे सुख नाला, नदर करे राखे रखवाला, त्रिभुवन सूजे आप गवावे, बाणी बूजे सच समावे, शब्द विचारे एक लिवतारा, नानक तन सवारन हारा।

जमन मरना हुकम पछाण राव माया मोह जग बांदा जम काले बांदा छूटे नाम समाले गुर सुख दाता अरना पाल हालत पलत निभी तुद नाल सबद मरे ता एक लिवलाए अचर चरे ता कर्म चुकाए जीवन मुक्त मन नाम वसाए गुरमुख होए ता सच समाए जिन तरसा जी गगन आकाश जिन सब थापी थाप उथाप सर्व निरंतर आपे आप किसे न पूछे बख्शे आप तू पुरुषागर मानक हीर तू निर्मल सच गुणी।

जग पंडित विरला विचारी, बिन सतगुर पेटे सब फिरे अंकारी। जग दुखिया सुखिया जन कोए, जग रोगी भोगी गुण रोए। जग उपजै बिन सह पत खोए, गुरमुख होवे बूझे सोए। मह गो मोल पार अपार।

वह जिस वेदन होए जिस बीती जाने प्रभ सोए आपे करता करे सोए जीवत मरना तारे तरना जय जगदीश परम गत सरना हों बलिहारी सतगुर चरना गुर बोहित शब्द पै सरना निरपो आप निरंतर ज्योत बिन नावे सूतक जग छोत दुर्मत बिन सह क्या कह रोत जन्म मुए बिन भगत सरोत मुए को सच रोवे मीत त्रै गुण रोवे नीता नीत दुख सुख पर हर सहज सुचीत तन मन सोपो कृष्ण प्रीत भीतर एक अनेक असंख कर्म तर्म बहु संख असंख बिन पै भक्ति जन्म बिरंथ हर गुण गावे मिल परमारंथ आप मरे मारे भी आप उपाय थाप उथाप सृष्ट उपाय ज्योति तू जात शब्द विचार मिलन नहीं प्रात सूतक अगन पथे जग खाए सूतक जल थल सभी थाए नानक सूतक

शिव सहज कर गुर कर पार, आशा मनसा शब्द जलाए, राम नारायण कहे कहाए, गुर ते वाट महल कर पाए।

सांच अकूट पंच तीन नव चार सुमावे, तरण जगन कल तार रहावे, बाहर जातो उल्ट करावे, मूर्ख हुए ना आखी सूजे, जेवा रस नहीं कहया बूजे, बिक्का माता जग सो लूजे, उत्तम संगत उत्तम होवे, गुण को पावे अवगण को वे।

गुरुमुख राम नाम तृप्ता से खोजत पावो सहज हरे रहाओ। काम क्रोध मन मोह शरीरा लब लोभ अहंकार सोपीरा राम नाम बिन क्यों मन तीरा अंतर नावन साच पछाणे अंतर की गत गुरुमुख जाने साच शब्द बिन

मिले कह जाऊं। गुर प्रसादी कर्म कमाओ, न मेरा ताहर गुण गाओ, गुर सेवा से आप पछाता, अमृत नाम से।

है सदा सुख आ गए। मन चंचल विद नाही जाने, मनमुख मैला शब्द ना पछाने, गुरमुख निर्मल नाम बखाने। हर जियो आगे करी अरदास, साधु जन

देवाना बन खंड माया मोह हैराना। इत उपजाहे काल के चापे गुरमुख खोज लह कर आपे बिन गुरु शब्द मन नहीं ठौरा सिमरो राम नाम अत निर्मल अवर त्यागो हो मैं कौरा रहाओ। यो मन मुग्ध कहो क्यों रहसी बिन समझे जम का दुख सहसी आपे बख्शे सतगुरु मिले काल कंटक मारे सच पीले। यो मन कर्मा यो मन तर्मा यो मन पंच तत् ते जन्मा साकत लोभी यो मन मूरा गुरमुख नाम जपे मन रूड़ा गुरमुख मन अस्थाने सोई गुरमुख त्रिभुवन सोजी होई। यो मन जोगी पोगी तप तापे गुरमुख चीने हर प्रभ आपे मन बैरागी हो मैं त्यागी कट कट मन सा दुबदा लागी राम रसायन गुरमुख चाखे दर कर मैली।

ग्रास इकत छाए किए गुरुमुख राग स्वाद अन त्यागे गुरुमुख इव मन भगती जागे अनहद सुन मानिया शब्द विचारी आत्म चीन पय निरंकारी इव मन निर्मल दर कर सोई गुरुमुख भगत पाओ तुम होई एनस हर जस गुर प्रसाद कट कट सो प्रभ

नानक हर जन के दासन दासा। आसा मैला पहला तन बिन से तन का को कही है, बिन गुरु राम नाम कत नहीं है, राम नाम तन संग सखाई, एनस निर्मल हर लिवलाई, राम नाम बिन कवन हमारा, सुख दुख सम कर नाम।

अवर्णा औषध तंत्र न मंता, हर हर सिमरन किल विखानता, तू आप फुलावे नाम विसार, तू आपे राखे कृपा धार। रोग परम पेद मन दूजा, गुर बिन परम जपे जप दूजा, अमृत पुरख गुर दर्शना देखे, विन गुर शब्द जन्म के लेखे, देख अचरज रहे विस्माद, कट कट सुर नर सह समाद, पर पुर पार रहे मन माही, तुम संसार अवर को नाही, जाके भगत हेत मुख नाम, संत भगत की संगत राम, बंधन तोरे सहज ध्यान, छूटे गुरमुख हर गुर ज्ञान, ना जम दूत दुख तिस लागे, जो जन राम नाम लिव जागे, भगत वछल भगता हर संग, नानक मुक्त पए हर रंग, आस्था महला पहला इक तुकी, गुर सेवे सो ठाकुर जाने, दुख मिटे सच शब्द पछाने, राम जपो मेरी सखी सखैनी, सतगुर सेव देखो प्रभ नैनी राव, बंधन मात पिता संसार, बंधन सुत कन्या अरनार, बंधन कर्म तर्म हो किया, बंधन पुत कलक

सा संचय तन जाए बिन हर भगत न पवीताए बंधन वेद बाद अंकार बंधन बिन सह मोह विकार नानक राम नाम शरणाई सतगुरु राखे बंद ना पाए।

जिन सिर सोहन पट्टियां मांगी पाए संदूर, से सिर काती मुनियन गल विच आवे तूर, महला अंदर होंदियां हुण बहन ना मिलन हदूर।

ओनी तुपक तावन चलाई, ओनी हस्त चिड़ाई, जिनकी चीरी दरगे पाटी, तिना मरना पाई। एक हिंदवाणी अगर तुरकानी, पटियाणी ठकुराणी, इकना पेरण।

कोई पिंड पवे जियो चलसी जे जाने कोई ओही ओही क्या करो है होसी सोई तुम रोवोगे ओसनो तुमको कौन रोई तंदा पिट्यो पाई हो तुम कूड़ कमावो।

न होई जे चलदा ले चलिया किछ संपै नाले तां संचो देख के बूझो बिचारे वणज करो मकसूद ले हो मत पछोतावो अवगुण छोड़ो गुण करो ऐसे तत् परावो धर्म भूम सत बीज कर ऐसी किस कमावो तावा।

निरंतर पंडित पांदे जोयसी नित पड़े पुराना अंतर वस्त न जाननी कट ब्रह्म लुकाना एक तपसी बन में तप करे।

बिन गुर शब्द ना छूटही प्रम आवे जावे एक गिर ही सेवक साधका गुरमति लागे नाम दान स्नान दृढ़ हर भगत सो जागे गुर ते दर कर जानिए।

लालच छेड़ दिए तो साच पछाणे, गुर के शब्द समाये परमार्थ जाने। यो मन राजा लोभिया लुभ तो लोभाई, गुरमुख लोभ निवारिये हर्षो बनियाई। कल्लर खेती बीजिए क्यों लाहा पावे, मन मुख सच ना पी गई कूड़ कूड़ गडावे। लालच छोड़ो अंधे हो लालच दुख पारी, साचो साहिब मन वसे हो मैं बिखमारी। दुबदा छोड़ कुआटड़ी मूसोगे पाई, एनस नाम सलाहिए सतगुरु शरणाई। मन मुख पत्थर सैल

हुक्मी पैदा जाए दरगे पानी है, हुक्मे ही सिर मार बंदर वाणी है। लाहा सच में आओ मन वसाई है, लिखिया पल्ले पाए गर्व मंजाई है। मन मुखिया सिर मार वाद खपाई है, ठग मुठी कूड़ियार बन चलाई है। साहिब हृदय वसाए ना पछोता वही, गुनहा बख्शन हार शब्द कमावही। नानक मंगे सच गुरमुख कालिए, मैं तुझ बिन अवरना कोई नजर निहाली है। आसा मेला पहला, क्या जंगल टूंडी जाए मैं कर बन हरियावला। सच टिके कर आए शब्द उतावला, जह देखा तह सोए अवर न जानिए। गुर की कार कमाए महल पछाणिए, रहाओ आप मिलावे सच ता मन पावे।

फरमाई जे मन सतगुरु दे मिले किन कीमत पाई, रत्ना पारक सोतनी तिन कीमत पाई, नानक साहिब मन वसै।

पर खाए। गुर बिन किने न पायो के ती कह कहाए, अर्थ दिखावे वाटड़ी सच्ची भगत दृढ़ाए। मन मुख जे समझाए पी उजड़ जाए, बिन हर नाम न छूट सी मर नरक समाए। जन्म मरे पर माइए हर नाम न लेवे, ताकि कीमत ना पवे बिन गुरु की सेवे।

जिस आप कर आए, नानक सिर दे छूटी है दरगे पत पाए। आसा महला पहला, रूड़ो ठाकुर मारो रूड़ी गुरबाणी, वड्डे पाग सतगुर मिले पाई है पद निर्वाणी। मैं ओलगिया ओलगी हम छोरू थारे, जो तू रा

आप गया सोजी पई गुरु सब्जी मेला रहाओ। हौ मैं गर्भ गवाये पाये विचार, साहिब से मन मानिया दे साच आधार। एन इस नाम संतो किया सेवा सच्चाई, ताको बिघ्न न ला।

नीले अग्न जलाये। जिन्नी आत्म चीनिया परमात्म सोई, एको अमृत बिरख है फल अमृत होई। अमृत फल जिन चाखिया सच रहे अगाई, तिन्ना परम न भेद है हर रसन रसाई। हुकम संजोगी आया चल सदा रजाई, औगुण यारे को गुण नानक है सच मिले वडाई। आसा मेला पहला मन रातो हर नाए सच वखाणिया, लोकां दा क्या जाए जा कुछ पाणिया। जो लग जियो प्राण सच दियाई, लाहा हर गुण गाए मिले सुख।

दर सेवक दरवान दर्द तू जान ही, भगत तेरी हैरान दर्द गवावही, दर्गे नाम हदूर गुरमुख जानसी, वेला सच परवान।

कर्म होवे ता परम पद पाईए कथे अकथ कहानी। तू करता किया सब चेहरा चा को करे प्राणी, जा को नदर करे तू अपनी साई सच समाणी। नाम तेरा सब कोई लेत है जेती आवन जानी, जा तुद भावे ता गुरमुख बूझे।

गुर सेवा से सब कुल उधारे, निर्मल नाम रखे उधारे, साची शोभा सात द्वारे, सेवट पागी जे गुर सेवा लाए, अंगिन पद सच नाम दृढ़ाए, नामे उदरे कुल सभाए।

सतगुर नाम बुझाया, बिन नामे भुख न जाई। नामे तृष्णा अग्न बुझे है।

कर कृपा नाम मनवसाए, इहो सिर दी जय आप दवाए, हुक्म बूझे सदा सुख पाए, आप करे तैं आप कराए, आपे गुरमुख नाम वसाए, आप पुलावे आप मार्ग पाए, सच्चे शब्द सच समाए, सच्चा शब्द सच्ची है बाणी, गुरमुख जुग जुग आख वखाणी, मनमुख मोहे परम पुलानी, बिन नामे सब फिरे बोराणी, तीन पवन में एक काम आया, मूरख पढ़ पर दूजा पाव दृढ़ाया, बहु कर्म कमावे दुख सवाया, सतगुर सेव सदा सुख पाया, अमृत मीठा शब्द विचार, अंदिन पोगे हूं मैं मार, सहज आनंद कृपा धार, नाम रते सदा सच प्यार, हर जब पढ़िए गुर शब्द विचार, हर जब पढ़िए हूं मैं मार, हर जपिए पै सच प्यार, नानक नाम गुरु।

गुर ते कर दर पाया भगती परे पंडारा। गुरमुख नाम से आई है बूझे विचारा, गुरमुख परत सला है अंतर शब्द अपारा। गुरमुख सुख उपजे दुख कदे न होई, गुरमुख हो मैं मारिये मन निर्मल होई। सत गुर मिले आप गया, त्रिभुवन सोजी पाई। निर्मल ज्योत पसर रही, ज्योति ज्योत मिलाई। पूरे गुर समझाया मत उत्तम होई, अंतर शीतल शांत होए नामे सुख होई। पूरा सतगुरु ता मिले जानदर करे, किलविक पाप सब कटिए फिर दुख बिघन न होए। अपने हाथ वडियाईया दे नामे लाए, नानक नाम निधान मन वसिया वडियाई पाए। आसा मैला तीजा सुन मन मन वसाए, तू आपे आए मिले मेरे भाई। अंदिन सच्ची भगत कर सच्चे चित लाई, एको नाम त्याए तू सुख पावे मेरे भाई। हो मैं दूजा दूर कर वड्डी वड्याई रहाओ, इस भगती नो सुर नर मुन जन लोच दे, विन सतगुर पाई न जाए। पंडित पढ़ दे ज्योत की तिन बूझ न पाए, आपे थे सब रखियो ने किस कहन न जाए। आपे दे सो पाई है गुर बूझ बुझाई, जी जंत सब तिस दे सबना।

आपको वाली दितियन अंतर लोग विकारा एक आपे गुरमुख कीतियन बूजन विचारा भगत भी ओना नु बख्शियन अंतर

सोई, कर में पंच वर्त दे पंचे विचारी, नानक बिन सतगुर वस ना आवनी, नाम हो मैं मारी आसा महला तीजा। करे अंदर सब वस है बाहर किस नाही, गुर प्रसादी पाई है अंतर कपट खुलाही, सतगुर ते हर पाई है पाई, अंतर नाम निदान है पूरे सतगुर दिया दिखाई। रहाओ हर का गाहक होवे सो ले पाए रतन विचारा, अंदर खोले दिव दिस देखे मुक्त पंडारा, अंदर महल अनेक है जियो करे वसेरा, मन चिंदिया फल पाए सी फिर होए न फेरा, पार किया वक्त समाल ले गुर सो जी होई, नाम पदार्थ अमूल सा गुरमुख पावे कोई। बाहर पाले तो क्या लहे वक्त करे अंदर भाई, पर में पूला सब जग फिरे मनमुख पत जवाई, कर दर छोड़े अपना पर कर।

अंतर ब्रह्म पछाणिया गुर की वडियाई, आपे दान करे किस आखिए आपे दे बुझाई। नानक नाम से आए तू दर सच्चे तो बापाई। आसा महला तीजा, आपे आप पछाणिया साध मीठा भाई, हर रस चाखिए मुक्त भये जिना साचो भाई। हर जियो निर्मल निर्मला निर्मल मन वासा, गुरमती साला है बिखिया माए उदासा रहाओ। बिन शब्द आप न जापई सब अंधी भाई, गुरमती कट चानना नाम अंत सिखाई। नामे ही नाम वर्त दे नामे वर्तारा, अंतर नाम मुख नाम है नामे शब्द विचारा। नाम सुनिए नाम मनिए नामे वड्याई, नाम सलाहे सदा सदा नामे महल पाई। नामे ही कर चानना नामे शोभा पाई, नामे ही सुख उपजे नामे शरणाई। बिन नामे कोई ना मनिए मन मुख पत गवाई, जमपुर बादे मारिए बिरथा जन्म गवाई। नामे की सब सेवा करे गुरुमुख नाम बुझाई, नामो ही नाम मनिए नामे वड्याई। जिसनो देवे तिस मिले गुरुमती नाम बुझाई, नानक सब किछ नाम है।

आ बोले नानिवे दूजा पाव सुहाओ यो मनुआ क्यों कर वक्त आवे गुर प्रसादी ठाकी है ज्ञान मती कर आवे रहाओ सोहागनी आप सवारियों लाए प्रेम प्यार सतगुर के पाने चल दिया नामे सह शिगार सदा रामे फिर अपना सच्ची सेज सुवाए फिर के प्रेम मोहिया मिल प्रीतम सुख पाए ज्ञान अपार सिगार है शोभावंती नार सासब राई सुंदरी फिर कहे प्यार सोहागनी विच रंग रखियो न सच्चे अलख अपार सतगुर सेवन अपना सच्चे पाए प्यार सोहागनी सिगार बनाया गुण का गलहार प्रेम पिरमल तन लावना अंत

कर दी सब फिरे बिन शब्द हो न जाए नानक नाम रते तिन हो मैं गई सच्चे रहे समाए। आसा मैला तीजा सच्चे रते से निर्मले सदा सच्ची सोए ऐथे कर कर जाप दे आ गए जुग जुग प्रगट होए। ए मन रूड़े रंगुले तू सच्चा रंग चढ़ाए रूड़ी बाणी जे रपे ना इहो रंग लह ना जाए। रहाओ हम नीच मैले अत अभिमानी दूजे पाए विकार गुर पारस मिले कंचन होए निर्मल ज्योत अपार। बिन गुर कोई ना रंगी है गुर मिले रंग चढ़ाओ गुर कै पै पाए जोरते सिफ्ती सत समाओ पै बिन लाग ना लग गई ना मन निर्मल होए।

बिन संगति सब ऐसे रहे जैसे पस्तोर, जिनकी तेत से न जाननी बिन नावे सब चोर, एक गुण विहाजे।

सत संतोख ए संजमी मन निर्मल शब्द सुनाए। लेखा पढ़ना पहुँची है कछ कहने अंत न पाए। गुरते कीमत पाई है सच शब्द सोच।

सच रतिया सुहागणी जिना गुर कै शब्द सिगार। कर ही सो फिर पाया सच्चे शब्द विचार, अवगण गुणी बखसाया हर स्यों लिव लाई, हर वर पाया कामणी गुर मेल मिलाई। रहाओ इक फिर हदूर ना जानवी दूजे परम पुलाए, क्यों पायन दोहागणी दुखी रहन विहाए। जिनके मन सच वसिया सच्ची कार कमाए, अंदिन सेवे सहज स्यों सच्चे माही समाए। दोहागणी परम पुलाया कूड़ बोल बिखाए, फिर ना जानन अपना सुन्नी।

सच निर्मल मन वसाए, सुहागणी सदा फिर पाया हूँ मैं आप दुआए, फिर सेती अन दिन गह रही सच्ची सेज सुपाए, मेरी मेरी कर गए पल्ले किछ ना पाए, मैल नाही दुहागणी अंत गई पछताए, सो फिर मेरा एक है एक त्यों लिव लाए, नानक जे सुख लोड़।

मन सदा हरि आवला सहजे हर गुण गाए राव मन मुख सदा दुहागणी दर खड़िया बिललाहे जिना पिरका स्वाद ना आयो जो तुर लिखिया सो कमाहे गुरुमुख बीजे सच जम्मे सच नाम व पार जो इतला है लायन पग

सफल जन्म हमारा, नाम नवै निज पाया परे अकुट पंडारा, आवे इस राशि के व्यापारी जिना नाम प्यारा, गुरमुख हो वै सो तन पाए तिना अंतर शब्द विचारा, भगति सार न जाननी मनमुख अहंकारी, तुरु आखो आयन जुए बाजी हारी, बिन प्यारे भगत न हो वही ना सुख होए शरीर, प्रेम पदार्थ पाई है

अन रस में पोलाया बिन नामे दुख पाए, सतगुरु पुरख ना पेटियो जे सच्ची बूझ बुझाए, ए मन मेरे बावले हर रस चट साध पाए, अन रस लागा तू फिरे बिरथा जन्म गवाए, रहाओ इस जुग में गुरुमुख निर्मले सच नाम रहे लिवलाए, विण कर्मा किछ पाये नहीं क्या कर कहे आ जाए, आप पछाणे शब्द मरे मनो तज विकार, गुर शरणाई पज पए बक्से बक्सनहार, बिन नावे सुख न पाईए ना दुख विच्चों जाए, इहो जग माया मोह व्यापिया दूजे परम पुलाए, दोहागणी तिरकी सार न जानही क्या कर करें सिगार, अन दिन सदा जल्द।

सांस सहज सुख के सब हाट, सावा पारी एक है थाट, जे जिया डन को ले ना जगात, सतगुर कर दीनी तुरकी छाप, वखर नाम लद खेप चलावो, ले लाहा गुरमुख कर आवो, सतगुर साहो सिखवन जारे, पूंजी नाम लेखा साथ समारे।

मन परदेसी आया मिलियो साध के संग, जिस वखर को चाहता सो पायो न मैं रंग, जेते माया रंग रस बिनस जाए खिन माहे, भगत रते तेरे नाम स्यों सुख पुंचे सब ठाए। सब जग चल तो पेखी है नहीं चल हर को नाओ, कर मित्राई साध चो नहीं चल पावे ठाओ, मीत साजन सुत बंद।

दर्शन कौ बल जाओ। जिस सिमरत दुख बीस रहे प्यारे, सो क्यों तजना जाए। इहो तन वेची संत पै प्यारे, प्रीतम दे मिलाए। सुख सिगार बिखिया के फीके, तज छोड़े मेरी माए। काम क्रोध लोभ तज गए प्यारे, सतगुर चरनी पा।

सस्य सोए सृष्ट जिन साजी सबना साहिब एक भया सेवत रहे चित जिनका लागा आया तिनका सफल भया मन काहे भूले मूड मना जब लेखा देवे बीरा तो पड़या रहाओ ईवड़ी आद पुरख है।

गोविंद गर्भ पया कर पांडे जिन आवि साजी चारण वाह तही किया कग्गे काल सेवक जे काले शब्द गुरु के लाग रहे बुरा पला जे समकर जाने इन विद साहिब।

पंडित आप सिया छच्छे छाया वर्ती सब अंतर तेरा किया परम हुआ परम उपाय पुलायन आपे तेरा कर्म हुआ तिन गुरु मिलिया जज्जे जान मंगत जन जाचे

टट्टे तंच करो क्या प्राणी, कड़ी के मोहत के उठ चलना, जुए जन्म ना हारो अपना, पाज पड़ो तुम हर सरना, ठट्ठे ठांड वर्ती तिन अंतर, हर चरणी जिनका चित लागा सही जन निस्तरे, तो प्रसादी सुख पाया, डड्डे डंफ करो क्या प्राणी, जो किछ होआ सो सब चलना, तिसे सिरेवो ता सुख पावो, सर्व निरंतर रव रहा।

नाने रवत रहे कट अंतर, हर गुण गावे सोई, आपे आप मिलाए करता पुनरप जन्म ना होई। तत्ते तारू पव जल हुआ, ताका अंत न पाया, ना तर ना तुल्हा।

गुरुमुख आखे गुरुमुख बूझे गुरुमुख एको जाने रारे रव रहा सब अंतर जेते किए जनता जंत उपाय।

वेखे चाखे सब किछ जाने अंतर बाहर रव रहा राड़े राड़ करे क्या प्राणी तिसे त्यावो जे अमर होआ तिसे त्यावो सच समावो उस विटों कुर्बान किया हा है होर ना कोई दा।

ममे मत हिरलई तेरी मूड़े हौ मैं वड्डा रोग पया अंतर आत्मे ब्रह्म ना चीनिया माया का मोहताज भया कक्के काम क्रोध परम्यो मूड़े ममता लागे तुद हर विसरिया पढ़े गुणे तू बहुत पुकारे।

स्वामी आप प्रभ कृपा करे सेजा सुहावी संग पिरके सात सर अमृत भरे कर दया मया दयाल साचे शब्द मिल गुण गावो नानका हर वर देख बिगसी मुंद मन उमाहो मुंद सहज सलो नड़िए एक प्रेम बिनंती राम मैं मन तन हर भावे प्रभ संगम राती राम प्रभ प्रेम राती हर बिनंती नाम हर कै सुख वसै।

तित अगम पुरे कहो कित बिद जाइए राम। सच संजमो सार गुणा गुर शब्द कमाइए राम। सच शब्द कम

जप तप कर कर संयम था की हठ निग्रह नहीं पाई है। नानक सहज मिले जग जीवन सतगुर बूझ बुझाई है। गुर सागरो रत्नागर तित रतन कणे रे राम कर मज्जनो सप्त सरे मन निर्मल मेरे राम। निर्मल जल नाए जा प्रभ पाए पंच मिले विचारे काम क्रोध कपट बिखिया ताज।

सच साहिबो आद पुरख अपरंपरो तारे राम अगम अगोचर अपर अपारा पार ब्रह्म प्रधानो आद जुगादि है भी होसी अवर चूठा सब मानो कर्म तर्म की सार न जाने सुरत मुक्त क्यों पाये नानक गुरमुख शब्द पछाने एहनिस नाम ते आये मेरा मनो मेरा मन मानिया नाम सखाई राम हो मैं ममता माया संग न जाई राम माता पित पाई सुत चतुराई।

नानक हर की भगत ना छोड़ो सहजे होए सो होई। मेरा मनो मेरा मन निर्मल साथ संभाले राम अवगुण मेट चले।

गुरुमुख तत् विचारो। साजन मीत सो जान सखा तू, सच मिले वडियाई, नानक नाम रतन प्रगासिया, ऐसी गुरमत पाई। सच अंजनो अंजन सार निरंजन राता राम, मन तन रव रहा जग जीवनो दाता राम। जग जीवन दाता हर मन राता, सहज मिले मिलाया, साध सभा संता की संगत, नदर प्रभु सुख पाया। हर की भगत रते बैरागी, चूके मोह प्यासा, नानक हो।

ते कबहु ना हारे हर हर गुण सारे तिन जम नेड़ ना आवे जमन मरण तिना काजू का जो हर लागे पावे गुरमत हर रस हर फल पाया हर हर नाम उर्धार जियो जिन एक मन त्याया।

हर दरगह मान सोई जन पावे, जो नर एक पछाणे ओह नव निध पावे, गुरमत हर त्यावे नित हर गुण आख वखाणे, एनस नाम तिसे काली जय, हर उत्तम पुरख प्रदान जियो जिन

काचा साहिब मन वसै की फासे जम जाले राम। मछली विचुन्नी नैन रुन्नी जाल बद्दिक पाया, संसार माया मोह मीठा अंत परम छुपाया।

कहो नानक गुर शब्द सवारी सफलियो जन्म सवाया। दूजड़े कामन परम फुली हर वर न पाए राम, कामन गुण नाही बिरथा जन्म गवाए राम। बिरथा जन्म गवाए मनमुख आणी अवगुणवंती चू

भगत पाव इहो मार्ग बिखड़ा गुरुद्वारे को पावे। कहे नानक जिस करे कृपा सो हर भगती चितलावे। मेरे मन बैरागिया तू बैराग कर किस दिखावे। हर सोहेला तिन सद सदा जो हर गुण गावे। कर बैराग तू छोड़ पखंड सो सो सब किस जाने। जल थल महियल एको सोई गुरमुख हुकम पछाने। जिन हुकम पछाता हरी केरा सोई सर्व सुख पावे। इव कहे नानक सो बैरागी आम दिन हर लिवलावे। जै जै मन तू तावदा तह तह हर तेरे नाले। मन से आणप छोड़िए।

क्यों कहे नानक मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। मन तू गर्ब अटिया गर्ब लद्या जाए माया मोहनी मोया फिर जूनी पवाए गर्ब लागा जाए मुग्ध मन।

सब संसार दुख गवाया, अदिष्ट अगोचर गुरु बचन त्याया, पवित्र परम पद पाया। अनहद तुन वाजे नित वाजे, गाई सतगुरु बाणी, नानक दात करी प्रभ दाते, ज्योति ज्योत समाणी। मन

नानक मन तन अर्प गुर आगे जिस प्राप्त सो पाए। रतना रतन पदार्थ बहु सागर परे आराम, बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम। गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया निर्मोलक रतन अपारा, हर हर नाम अतोलक पाया तेरी भगत परे पंडा।

मैं गुरुमुख राम से आए राम, राम नाम से आए पवित्र हुए, आए तिस रूप ना रेख्या काए, रामो राम रव्या कट अंतर, सब कृष्णा पूख गवाई, मन तन शीतल सिगार सब हुआ, गुरमत राम पर गाता, नानक आप अनुग्रह किया, हम दासन दासन दासा, जिन्नी रामो राम नाम विसारिया, से मनमुख मूर

अभिमानी हर रामो नाम चुराया। मां बिखम जम पंस दुहेला कालू खत्म हो अंधियारा। नानक गुरमुख।

जिन अंतरे राम नाम वसै तिन चिंता सब गवाया राम। सब अर्था सब कर्म मिले मन चिंदिया को फल पाया राम। मन चिंदिया फल पाया राम नाम से आया राम नाम गुण गाए। दुर्मत कबुद गई सुध होई राम नाम मन लाए। सफल जन्म शरीर सब होवा जित राम नाम पर गासे।

लिख पाए जियो। हर नाम पदार्थ कलयुग उत्तम, हर जपिए सतगुरु पाए जियो। हर हर मन पाया परम सुख पाया, हर लाहा पद निर्वाण जियो। हर प्रीत लगाई हर नाम सिखाई, परम चूका आमन जान जियो।

किन हित दुख उतरे, हर हर नाम समाया, जिन हर से आया सुर पाग लिख पाया, तिन सफल जन्म परवान जियो, हर हर मन पाया परम सुख पाया, हर लाहा पद निर्वाण जियो, जिन हर मीठ लगाना ते जन प्रधाना, ते उत्तम हर हर लोग जियो, हर नाम वडाई हर नाम सखाई, गुर सब्दी हर रस भोग जियो, हर रस भोग महा निर्जोग वड पागी हर रस पाया, से तन वड्डे सत पुरखा पूरे, जिन गुरमत नाम ते आया, जन नानक रेण मंगे पग साधु, मन चूका सोग विजोग जियो, जिन हर मीठ लग

गुण ज्ञान पदार्थ हर हर कृतार्थ शोभा गुरमुख होई अंतर बाहर हर प्रभ एको दूजा अवर न कोई हर हर लिव लाई।

हम जाते हर बहा प्रभु पकड़ाए दियो, प्रभु बहा पकड़ाई उत्तम मत पाई, गुरचरणी जन लागा हर हर नाम जपिया आराध्या मुख मस्तक पाग सवागा, जन नानक हर कृपा धारी मन हर हर मीठा लाए जियो, हर दया प्रभ तारो पाखन हम तारो सद देवो सब सुभाए जियो। आशा महला चौथा मन नाम जपाना हर हर मन पाना, हर भगत जना मन चाओ जियो, जो जन मर जीवे तिन अमृत पीवे, मन लागा गुरमत पाओ जियो, मन हर हर पाओ।

यो मन नाम जपाना हर हर मन पाना हर भगत जना मन चाओ जियो जग मरण ना पाया नित आप लुकाया मत जम पकड़े ले जाए जियो हर अंतर बाहर हर प्रभ एको इहो जियड़ा रखिया ना जाए जियो क्यों जियो रखी जय हर वस्त लोड़ी जय जिसकी वस्त सो ले जाए जियो मन मुख करण।

जग मरण न पाया नित आप लुकाया मत जम पकड़े ले जाए जियो तुर मरण लिखाया गुरमुख तो आया जन उबरे हर हर ध्यान जियो हर शोभा पाई हर नाम वड्याई हर दरगे पे दे जान जियो हर दरगे पे दे हर नामे सीधे हर नामे ते सुख पाया जन्म मरण दोवे दुख में ते हर रामे नाम समाया हर जन प्रभ रल एको होए हर जन प्रभ एक समान जियो तुर मरण लिखा।

मंत्र दृढ़ाए, हर रस रसाए, हर अमृत हर मुख चोए जियो, हर अमृत रस पाया, मुआ जीवाया, फिर बाहुड़ मरण ना होई, हर हर नाम अमर पद।

समेला सन्नीवा संत कर कहला अंधो अंध घना मैं सो प्रभु दी था राम चाखेड़ा चाखेड़ा मैं हर वस मीठा राम हर वस मीठा मन में बूठा सतगुरु तूठा सहज भया गृह वस आया मंगल गाया पंच दुष्ट ओए पाग गया शीतल आघाने अमृत बाणे साजन संत बसी था कहो नानक हास्यो मन मान्या सो प्रभु नैनी दीठा।

राम सद बलिहारे कर नमस्कारे जिन पेटत प्रभ जाता काट काट रव रहा सब थाई पूरन पुरख विदाता गुर पूरा पाया नाम ते आया जुए जन्म नहारे बिनवंत नानक शरण तेरी राख कृपा धारे बेअंता बेअंत गुण तेरे केतक गावा राम तेरे चरणा तेरे चरण तूर वड पागी पावा राम हर तूड़ी नाइये मैल गवाइये जन्म मरण दुख लाथे अंतर बाहर सदा हदूरे परमेश्वर प्रभु साथे मिटे दुख कल्याण कीर्तन बहुड़ जोन ना पावा बिनवंत नानक गुरु शरण करिए अपने प्रभु भावा आशा छंत महला पंजवा कर चौथा इको अंकार सतगुरु प्रसाद हर चरण कमल मन बेदिया किछ आमना मीठा राम राजे मिल संत संगत आरा दिया हर कट कटे जीठा राम राजे हर कट कटे जीठा अमृतो उठा जन्म मरण दुख नाथे गुण निध गाया सब दुख मिटाया हों मैं बिनसी गाठे प्रियो सह सुबाई छोड़ न जाई मन लागा रंग मजीठा हर नानक बेदे चरण कमल किछ आन न मीठा ज्यों राती जल माछली त्यों राम रस माते

आप लिए लड़ लाए हर रत्न पदार्थो प्रगटो पूर्णो छोड़ न कथो जाए। प्रभ सुगर स्वरूप सुजान स्वामी ताकि मिटे न दाते जल संग्राती माछली नानक हर माते। चात्रिक जाचे बूंद ज्यो हर प्राण अधारा राम राजे माल खजीना सुत प्रात नीत सबू ते प्यारा राम राजे। सबू ते प्यारा पुरख निरारा ताकि गत नहीं जानिए हर सास गिरास न बिसरे कबू गुर शब्दी रंगमानिए। प्रभ पुरख जग जीवनो संत रस पीवनो जप परम मोह दुख दारा चात्रिक जाचे बूंद ज्यो नानक हर प्यारा मिले नारायण अपने मन ओरथो पूरा राम राजे। ताथी पीत परम की पेटत गुर सूरा राम राजे पूरन गुर पाए पूर्व लिखाए सब निज दीन दयाला आद मद अंत प्रभ सोई सुंदर गुर गोपाला। सुख सहज आनंद कनेरे पतित पावन साधु तूरा हर मिले नारायण नानका मन ओरथो पूरा। आसा महला पंजवा संत कर सेवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद श्लोक। जाको पय कृपाल प्रभ हर हर सही जपात नानक प्रीत लगी तिन राम स्यों पेटक साथ संगात। संत जल दूध न्याई रीत अब दूध आत नहीं मन ऐसी प्रीत हरे। अब उर्जो अल कमले बासन माहे मगन इक खिन भी नाहे टरे। खिन नाहे टरिये प्रीत हरिये सिगार हगरस अर्पिये जह दुख सुनिये जम पंथ पणिये तह साध संग ना डरपिये। कर कीरत गोविंद गुणिये सगल प्राचत दुख हरे कहो नानक छंत गोविंद हर के मन हर्ष्यो निहो करे हो ऐसी मन प्रीत हरे। जैसी मछली नीर इक खिन भी ना धीरे मन ऐसा निहो करे हो। जैसी चात्रिक प्यास खिन खिन बूंद चवे बरस सुहावे में हो हर प्रीत करी जय इह मन दीजे अपलाये चित मुरारी। मान न की जय शरण परी जय दर्शन को बलिहारी गुर सो प्रसन्ने मिल ना विछुन्ने तन देन दी साथ सनेहा। कहो नानक छंत अनंत ठाकुर के हर्ष्यों की जय नेहा मन ऐसा निहो करे हो। चकवी सूसने हो चितवे आस पणी कल दिनियर देखिए कोकिल अंब प्रीत चवे सुहाविया मन हर रंग कीजिए। हर प्रीत करी जय मान न की जय इक राशि के हम पाहुणिया अज क्या रंग लायो मोह रचायो नांगे आवन जावणिया। फिर साधु सरणी पड़िए चरणी अब टूटस मोह जो किती है कहो नानक छंत दयाल पुरख के मन हर लाए प्रीत कब दिनियर देखी है। निष्कुरंक जैसे नाद सुन श्रवणी ही ओ डिवे मन ऐसी प्रीत की जय। जैसी तरुण पतार उर्जी पिह शिव यो मन लाल दी जय मन लाले दी जय पोक करी जय। हब खुशियां रंग माने फिर अपना पाया रंग लाल बनाया अत मिलियो मित्र चिराने। गुरथी आसाखी ता डिठम आखी फिर जेहा अवर न दिसे कहो नानक छंत दयाल मोहन के मन हर चरण गही जय ऐसी मन प्रीत की जय। आसा महला पंजवा श्लोक। बन बन फिरती खोजती हारी बहु अवगाहे नानक पेटे साध जग हर पाया मन माहे। छंत जा को खोजे असंख मुनि अनेक तपे ब्रह्मे कोट आराधे ज्ञानी जाप जपे। जप ताप संजम क्रिया पूजा अनेक शोधन बंदना कर गवन वसुधा तीर्थ मज्जन मिलन को निरंजना। मानुख बन तिन पशु पंखी सगल तुझे आराधते दयाल लाल गोविंद नानक मिल साध संगत होए गते। कोट विषम अवतार शंकर जटाकार चाहे तुझे दयार मंथन रुच अपार। अपार अगम गोविंद ठाकुर सगल पूरक प्रवतनी सुर सिद्ध गण गंधर्व से आवे जप किन्नर गुणपनी। कोट इंद्र अनेक देवा जपत स्वामी जय जयकार अनाथ नाथ दयाल नानक साध संगत मिल उधार। कोट देवी
जा को सेवे लक्ष्मी अनक पाप गुप्त प्रगट जाको अराधे पौन पानी दिन सुरात नक्षत्र ससियर सूर त्यावे बकुद गगना गावे सगल खानी सगल बाणी सदा सदा त्यावे सिमरत पुराण चतुर्वेद खस शास्त्र जाको जपात पतित पावन भगत वचल नानक मिलिए संग साथ जेती प्रभु जनाई रसना तेत भनी अनजानत जो सेवा तेती न जाय गनी अवगत अगमत अथा ठाकुर सगल मंजे बाहरा सर्व जाचक एक दाता न दूर संगी जाहरा वस भगत थिया मिले जिया ताकी उपमा कित गनी तिहो दान मान नानक पाए शीस साधे तर चरनी है समय ला तन्यवा श्लोक उद्दम करो वड पागियो सिमरो हर हर राय नानक जिस सिमरत सब सुख होवे दुख दर्द परम जाए संत नाम जपत गोविंद ने अलसाइए पेट साधु संग जमपुर ने जाइए दुख दर्द ना कहो व्यापे नाम सिमरत सब सुखी सास सास आराद हर हर त्याए सो प्रभु मनमुखी कृपाल दयाल रसाल गुण निद कर दया सेवा लाइए नानक प्रेम पै चरण जम पै नाम जपत गोविंद ने अलसाइए पावन पतित पुनीत नाम निरंजना परम अंधेर

सूर्या अगाध बोध समरथ स्वामी सर्व का पौ पंजना नाम स्वयं पै चरण जम पै पावन पतित पुनीत नाम निरंजना। ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे मोह आसर तो चरण तुम्हारी शरण सिदे हर चरण कारण करण स्वामी पतित उदरन हर हरे सागर संसार पल उतार नाम सिमरत बहुतरे आद अंत बेअंत खोजे सुनी उदरन संत संग विदे नानक पयम पै चरण जम पै ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे। भगत वत्सल हर बिरद आप बनाया जय जय संत आराधे तें तें प्रगटाया प्रभ आप लिए समाये सह सुबाये भगत कार्य सारिया आनंद हर जस मां मंगल सर्व दुख विसारिया। चमत्कार प्रगास देह जिस एक तह दृष्टाया नाम स्वयं पै चरण जम पै भगत वत्सल हर बिद आप बनाया आशा महला पंजवा।

फिर संतन सुहाग मरे न जावे, जहाँ कह गए हर नाओ सो सद ही रावे। अविनाशी अवगत सो प्रव सदा नवतन निर्मला, नह दूर सदा हदूर ठाकुर दह दिस पूर्ण सब सदा। प्राण पत गत मत जाके प्रिय प्रीत प्रीतम पावे, नानक बखाने गुरु बचन जाने फिर संतन सुहाग मरे न जावे। जा को राम पतार का कह अनुद घना, सुखवंती सानार सो बापूर बना। मान महत कल्याण हर जस संग सुरजन सो प्रभु, सर्व सिद्ध नव निध तित ग्रह नहीं ऊना सब कछु। मधुर बानी प्रह मानी फिर सुहाग का बना, नानक वखाने गुरु बचन जाने जाको राम पतार का कह अनुद घना। आओ सखी संत पाठ सेवा लागी है, पीछो चरण पखार आप त्यागी है। तज आप मिटे संताप आपने जनाई है, शरण गही जय मान ली जय करे सो सुख पाई है। कर दास बासी तज उदासी, कर जोर दिन रैन जागी है। नानक वखाने गुरु बचन जाने आओ सखी संत पाठ सेवा लागी है। जाके मस्तक पाग से सेवा लाया, ताकि पूर्ण आस जिन साथ संग पाया। साथ संग हर के रंग गोविंद सिमरन ला गया, परम मोह विकार दूजा सगल तिने त्याग गया। मन शांत सह स्वभाव उठा, अनद मंगल गुण गाया। नानक वखाने गुरु बचन जाने जाके मस्तक पाग से सेवा लाया। आशा महला पंजवा श्लोक। हर

चैन से मिलो संतन के संग मोहे उधार ले हो बिनो करो कर जोड़ हर हर नाम दे हो हर नाम मांगो चरण लागो मान से आगो तुम दया कतहु न तावो शरण पावो करुणा में प्रभ कर मया समर्थ अगत अपार निर्मल सुनो स्वामी बिनो ए हो कर जोड़ नानक दान मांगे जन्म मरण निवार ले हो अपराधी मतहीन निर्गुण अनाथ नीच सठ कठोर कुलहीन व्यापक मोह कीच मल परम कर्म अहं ममता मरण चीत न आवे बनता विनोद आनंद माया अज्ञान तालप तावे खिसे जोबन बले जरुआ दिन निहारे संग मीच बिनवंत नानक आस तेरी शरण साधु राख नीच परमे जन्म अनेक संकट महाजोन लपट रहो ते संग मीठे पोग सोन प्रमत पार अगमत आयो बहु परदेश पायो अब ओट तारी प्रम मुरारी सर्व सुख हर नायो राख महारे प्रभ प्यारे मुझते कछु न हुआ होन सुख सहज आनंद नानक कृपा तेरी तय पौन नाम तारी उधारे पगत संसार कौन जेन केन प्रकारे हर हर जस सुनो श्रवण सुन श्रवण बानी पुरुष ज्ञानी मन निधाना पावे हर रंग राते प्रभ विधाते राम के गुण गावे बसुद कागद बन राज कलमा लिखन को जे होए पवन बेअंत अंत न जाए पाया गही नानक चरण शरण आशा महला पंजवा पुरख पते भगवान ताकि शरण गही निपो पे प्राण चिंता सगल लही मात पिता सुख मीत सुरजन इष्ट बंधक जानिया गय कंठ लाया गुर मिलाया जस विमल संत वखाणिया बेअंत गुण अनेक महिमा कीमत कछु न जाए कही प्रभ एक अनेक अलख ठाकुर ओट नानक तिस गही अमृत बन संसार सहाय आप भये राम नाम उरहार बिक के दिवस गए गत परम मोह विकार बिन से जोन आमन सब रहे अगन सागर पै शीतल साध अंचल गह रहे गोविंद गोपाल दयाल समरथ बोल साधु हर जय जय नानक नाम त्याय पूरन साध संग पाई परम गते जय देखो तय संग एको रव रहा कट कट वासी आप विरले किने लया जल कल मैयल पूर पूरन कीट हस्त समान्या आद अंते मत सोई गुर प्रसादी जान्या ब्रह्म पसर्या ब्रह्म लीला गोविंद गुण निर्जन कहा सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नानक रव रहा।

कलमल पातरे दुख पूख दरिद्र नाथे प्रगत मग दिखाया मिल साध संगे नाम रंगे मन लोड़ींदा पाया हर देख दर्शन चुपनी कुल संभुआ सब तरे दिन श्रेण आनंद अंदिन सिमरंत नानक हर हरे।

श्लोक शुभ चिंतन गोविंद रमन निर्मल साधु संग नानक नाम न विसरो एक घड़ी कर कृपा भगवंत छंत पिन्नी रैनड़ी है चमकन तारे जागे संत जना मेरे राम प्यारे राम प्यारे सदा जागे नाम सिमरे अंजनो चरण कमल ध्यान हृदय प्रभ विसरना ही किनो तब मान मोह विकार मन का कलमला दुख जारे बिन हंस नानक सदा जागे हर दास संत प्यारे मेरी सेजड़ी है अडंबर बनिया मन अनद भया प्रभ आवत सुनिया प्रभ मिले स्वामी सुखे गामी चार मंगल रस भरे अंग संग लागे दुख पागे प्राण मन तन सब हरे मन इच्छ पाई प्रभ त्याई संजोग सा शुभ गणिया बिन हंत नानक मिले श्री पर सगल आनंद रस बनिया मिल सकिया पुछे कहो कंत निशानी रस प्रेम परी कछ बोल न जाने गुण गुण गुप्त अपार करते निगम अंत न पावे भगत पाए ते आए स्वामी सदा हर गुण गावे सगल गुण सो ज्ञान पूरन आपने प्रभ पाने बिन हंस नानक रंग रा

सर से हर नाम रहसे प्रभ आप कृपा सहारिया हर चरण लागे सदा जागे मिले प्रभ बनवारिया शुभ दिवस आए सहज पाए सगल निध प्रभ पागे बिनवंत नानक शरण स्वामी सदा हर जन पागे आशा मैला कंजवा उठ वंज बटा उड़िया तैं क्या चिर लाया मोलत कुंडिया कित कूड़ लुभाया कूड़े लुभाया तो माया करे पाप अमित्या तन पसम तेरी जमे हेरी काल बपड़े जितया

आया बिनवंत नानक सुख सहज मेला प्रभु आप बनाया नरक ना दिखड़िया सिमरत नारायण जय जय धर्म करे दूत पहे पलायन परम तीरज सह सुखिए साथ संगत हर पजे पर अनग्रो राख लीने मोह ममता सब तजे गय कंठ लाए गुर मिलाए गोविंद जपत अघायण बिनवंत नानक सिमर स्वामी सगल आस पुजायन निध सिद्ध चरण गहे ताके हाकारा सब किछ वस जिसे सो प्रभु असारा गह पुजाली ने नाम जी ने कर पार मस्तक राखिया संसार सागर नह व्यापे अम्यो हर रस्ता क्या साध संगे नाम रंगे रणजीत वड्डा अखाड़ा बिन वंश नाम सर्व स्वामी।

संग देखे करणहारा काय पाप समाये, सुकृत की जय नाम लीजे नरक मूल न जाइए। आठ पैर हर नाम सिमरो चले तेरे साथ है, पद साध संगत सदा नानक मिटे दुख कमाते। वल वंश कर उदर परे मूर्ख गावारा, सब किस दे रहा हर देवन हारा। दातार सदा दयाल स्वामी काय मनो विसारी है, मिल साध संगे पद निसंगे कुल समूह आतारी है। शिव साधक देव मुंजन भगत नाम आधारा, बिनवंत नान सदा तजी है प्रभ एक करने हारा। खोट न की चई प्रभ परखन हारा, पूर कपट कमाऊ गड़े जन्मे संसारा। संसार सागर तिन्नी तरिया जिन्नी एक से आया, तब काम क्रोध अनिंद निंदा प्रभ सुनाई आया। जल फल मैयल रविया स्वामी ऊंच अगम अपारा, बिनवंत नानक टेक जन की चरण कमल आधारा। पेट हर चंदौरड़ी अब फिर किछ नाही, माया रंग जेते से संग न जाही। हर संग साथी सदा तेरे दिन त्रैन संभालिए, हर एक बिन कछ

सतगुरु प्रसाद। कमला परम पीत कमला परम पीत हे तीक्ष्ण मद विपरीत हे अवध अकाल जात गैबर बन कोर गहबर बन कोर हे गृह मूसक मन चोर हे दिन करो अन दिन खास दिन खास जात बिहात प्रभ बिन मिलो प्रभ करणा पते जन्म मरण अनेक बीते प्रेय संग बिन कछ नह गते कुल रूप तूप ज्ञान ही नी सुज बिना मोहे कौन मात पर जोड़ नानक शरण आयो प्रिय नाथ नर हर करो गात। मीना जलहीन हे ओहो बिछरत मन तन खीन हे कत जीवन प्रिय बिन होत सन्मुख सहबान हे मृग अर्पे मन तन प्राण हे ओहो बेदियो सहज स्रोत प्रिय प्रीत लागी मिल बैरागी खिन रहन त्रिग तन तिस बिना पलका ना लागे प्रिय प्रेम पागे चितवंत अंजन प्रमना श्री रंग राते नाम माते पै परम दुतिया सगल खोत कर मया दया दयाल पूरन हर प्रेम नानक मगन होत। अलियल गुंजात हे मकरंद रस बासन मात हे प्रीत कमल बंदावत आप चात्रिक चित प्यास हे तन बूंद बचित्र मन आस हे अल्पीवत बिन सतताप ताता विनाशन दुख नाशन मिल प्रेम मन तन अतकना सुंदर चतुर सुजान स्वामी कवन रसना गुणपना गह पूजा लेवो नाम देवो दृष्ट तारत मिटत पाप नानक जम पै पतित पावन हर दर्श पे सतमह संत।

सुने। श्लोक महला पहला। बलिहारी गुरे अपने देहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते की ये करतना लागी वार। महला दूजा, जे सौ चंदा उगवे सूर चढ़े हजार, इते चानन होंदिया गुरबिन को रंदार। महला पहला। नानक गुरु न चेतनी मन अपने सुचेत, छुटे तिलबु आर ज्यो सुन्ये अंदर खेत। खेते अंदर छुटिया कहो नानक सोना, फलियां फुलियां बपड़े पीतन विच सुआ पौड़ी। आपी ने आप साजियो आपी ने रचियो नाओ, दुई कुदरत साजिए करे आसन जिठो चाओ। दाता करता आप तू तुस देवे करे पसाओ, तू जानो ई सब से दिल ऐसे जिंद कवाओ। करे आसन जिठो चाओ। श्लोक महला पहला। सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड, सच्चे तेरे लो सच्चे आकार, सच्चे तेरे करने सर्व विचार। सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान, सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान। सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान, सच्चे तुझ आखे लख करोड़। सच्चे सब कान सच्चे सब जोर, सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह, सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह। नानक सत्यायन सच, जो मर जमे सो कच ने कच। महला पहला। वड्डी वड्याई जा वड्डा नाओ, वड्डी वड्याई जा सतन्याओ, वड्डी वड्याई जाने चलसाओ, वड्डी वड्याई जाने अलाओ, वड्डी वड्याई बुझे सब भाओ, वड्डी वड्याई जा पुछना दात, वड्डी वड्याई जा आपे आप। नानक कार न कथनी जाए, कीता करना सरबर जाए। महला दूजा। एहो जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास। इकना हुक्म समाए लए, इकना हुक्मे करे विनाश, इकना पाने कढ़ लए, इकना माया विच निवास। ए पे आख न जाते जे किसे आने रास, नानक गुरमुख जानिए जा को आप करे परगास पौड़ी। नानक जी उपाय कह लिखना वे तरम बहा लिया, ओथे सच्चे ही सच निबड़े चुन वक कड्डे जिज मालिया। थाव न पायन कूड़ यार मौका ले दो जिक चालिया, तेरे नाय रते से जिन गए हार गए से ठगन वालिया। लिखना में करम बालिया। श्लोक महला पहला। विस्माद नाद विस्माद वेद, विस्माद जीव विस्माद पेद, विस्माद रूप विस्माद रंग, विस्माद नागे फिरे जंत। विस्माद सौन विस्माद पानी, विस्माद अग्नि खेडे विडानी, विस्माद करती विस्माद खानी, विस्माद साध लगे प्राणी। विस्माद संजोग विस्माद विजोग, विस्माद सुख विस्माद भोग, विस्माद सिफत विस्माद सलाह, विस्माद उजड़ विस्माद राह, विस्माद नेड़े विस्माद दूर, विस्माद देखे हाजरा हजूर। वेख उड़ान रहा विस्माद, नानक पूजन पूरे भाग। महला पहला। कुदरत दिसै कुदरत सुनिए, कुदरत पौ सुख।

बोले आल पताल लख क्या के मुंदड़े लख क्या के हार जित तन पाइए नाम का सेतन होवे चार। ज्ञान न गली टूंडी है कथना करड़ा सार कर्म मिले ता पाइए होर हिकमत हुकम खुआर पौड़ी। नदर करे जे आपनी ता नदरी सतगुर पाया एओ जियो बहुते जन्म प्रम्या ता सतगुर शब्द सुनाया। सतगुर जे वरदाता को नहीं सब सुनियो लोक सुभाया सतगुर मिले सच पाया जिन विचों आप गवाया जिन सचो सच बुझाया। श्लोक महला पहला। कड़िया सबे गोपियां पहर कन गोपाल गहने पौन पानी बैसंतर चन सूरज अवतार सगली तरती माल तन वर्तन सर्व जंजाल नाक मुझसे ज्ञान में होनी खाए गया जमकाल। महला पहला। वाइन चेले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर उड़ उड़ रावा चाटे पाए वेखे लोक हसे कर जाए रोटियां कारण पूरे ताल आप पछाड़े तरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरपौ निरंकार सच नाम जाका की आ सकल जहां सेवक सेवे कर्म चढ़ाओ पिन्नी रैन जिना मन चाहो सिक्खी सिख्या गुरु विचार नदरी कर्म लंगाए पार कोलू चरखा चक्की चक फल वारो ले बहुत अनंत लाटू माधानिया अनगा पंखी पौधिया लैन नशा सूए चार पुलाइए जंत नाम पौधिया गंत नांत बंधन बंद पुलाए सोए पै किरत नचे सब कोए नच नच हसे चले सिरोए उड़ न जाए सिद्ध न होए नचे कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ पौड़ी। नाओ तेरा निरंकार है नाई ले नरक न जाइए जियो पिंड सब तिसदा देखा जय आप गवाइए जे लोड़ है चंगा अपना कर कुन्हू नीच सदाइए जे जरवाना पर हर है जर वेश करेंदी आइए को रह न परिये पाइए। श्लोक महला पहला। मुसलमाना सिर्फ फरियत पर पढ़ करे विचार बंदे से जे पवे विच बंदी वेखन को दीदार हिंदू साला ही साला हम दर्शन रूप अपार तीर्थ नावे अर्चा पूजा अग्रवास में कार जोगी सुनत्या जेते अलख नाम करतार सुखम मूरत नाम निरंजन काया का आकार सतिया मन संतोष उपजे देने के विचार दे दे मंगे सैसा गुना सो करे संसार चोरा यारा तय कुड़ियारा खारा बावे कार एक होदा खाए चले ऐसाओ तिना बेकाई कार जल फल जिया प्रिया लोहा आकारा आकार ओए जे आखे सोटू है जाने तिना बे तेरी सार नानक पगता पुसलान सच नाम आधार सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंतिया पाछार। महला पहला। मिट्टी मुसलमान की पेड़ है पई कुम्हार कर पांडे इट्टा किया जल्दी करे पुकार जल जल रो वह बपड़ी चढ़ चढ़ को अंगियार नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी। बिन सतगुर किने ना पायो बिन सतगुर किने ना पाया सतगुर विच आप रखियो न कर प्रगट आप सुनाया सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया उत्तम क्यों विचार है जिन सच्चे सुन चित लाया जग जीवन दाता पाया। श्लोक महला पहला। हौ विच आया हौ विच गया हौ विच जमया हौ विच मोआ हौ विच दिता हौ विच लया हौ विच खटिया हौ विच गया हौ विच सत्यार कूड़ियार हौ विच पाप पुन विचार हौ विच नरक सुरग अवतार हौ विच हसे हौ विच रोवे हौ विच परिये हौ विच होवे हौ विच जाति जिनसी खोवे हौ विच मूर्ख हौ विच सियाणा मोख मुक्त की सार न जाना हौ विच माया हौ विच छाया हौ मैं कर कर जंतु पाया हौ मैं बूझे तांदर सूझे ज्ञान में होना कर सतलूझे नानक हुक्मी लिखिए लेख जिहा वेखे तिहा वेख महला दूजा हौ मैं एहा जात है हौ मैं

पढ़ पढ़ गड्डी लगी है, पढ़ पढ़ परिये साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड्डिया खात, पढ़िए जेते बर्स बर्स, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सास। नानक लेख है एक गल होर हो मैं चखना चाक महला पहला। लिख लिख पढ़े आते ता पढ़िया, बहु तीर्थ पवे आते तो लव्या, बहु पेक किया देही दुख दिया, सोवे जी आपना किया, अन्न न खाया साध गवाया, बहु दुख पाया दूजा भाया, बकर न पहरे एन स्पहरे, मोन विगूता क्यों जागे गुर बिन सूता, पग पे ताना अपना किया कमाना, अलमल खाई सिर छाई पाई, मूर्ख समझे पत गवाई, गिन नावे किछ खाई न पाई, रह बिमानी मरी मसानी, अंग न जाने फिर पछतानी। सतगुर पेटे सो सुख पाए, हर का नाम मन वसाए, नानक नजर करे सो पाए, आस उंदे सेते ने केवल, हों मैं शब्द जलाए पौड़ी। भगत तेरे मन पाम दे, दर सोहन कीर्त गाम दे, नानक करमा बाहरे दर तो न लेनी ताम दे, एक मूल ना बुझन अपना अनहोंदा आप गणाए दे, हों ताड़ी का नीच जात होर उत्तम जात सदाए दे, तिन मंगा जीत जैत आए दे।

मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करें प्यार करमी तर्म करें गावावे मंगे मोख द्वार जति सदावे जुगत न जाने छड़ में कर बार सबको पूरा आपे हो वह कट ना कोई आखे पग परवाना पिछे पाई है ता नानक तोलिया जापे महला पहला वदी सवज्जग नाम का सच्चा वेखे सोए सबनी चाला मारिया करता करे सोए अगे जाप मजोर है अगे जियो नवे जिनकी लेख है पपवे चंगे से के पौड़ी तुर कर्म जिना को तुद पाया ता किन्नी खपन ते आया ए ना जनता के वश किच नाही तुद वेकी जगत उपाया इकना नो तू मेल ले इका को तुद खुआया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुद आप बुझाया सहजे ही सच समाया।

कुदरत वस्या तीरांत न जाई लख्या रहाओ। जात में जोत जोत में जाता अकल कला भरपूर रहा। तू सच्चा साहिब सवालियो जिन की तीसो पार पया। कहो नानक करते किया बाता जो कुछ करना सो कर गया। महला दूजा जो शब्दंग ज्ञान शब्दंग वेद शब्दंग ब्राह्मण है खत्री शब्दंग सूर शब्दंग सूदर शब्दंग प्राकृत है सर्व शब्दंग एक शब्दंग जे को जाने भयो नानकता का दास है सोई निरंजन देव। महला दूजा एक कृष्ण सर्व देवा देव देवा पात्मा

गुरु बिन ज्ञान न होए पौड़ी। पढ़िया हो वह गुनेगा ताओ उमी साधना मारी है, जे हाँ काले कालना तेवे हो नाव पचारी है, ऐसी कला न खेड़ी है जित दर गए गए आहारी है, पढ़िया अत्य ओमिया विचार गए विचारी है, मोह चले सो अगे मारी है। श्लोक महला पहला। नानक मेर शरीर का एक रथ एक रथवाओ, जुग जुग फेर वटाई है ज्ञानी बुझे ताहे, सब जुग रथ संतोख का कर्म अग्गै रथवाओ, त्रेते रथ जते का जोर अग्गै रथवाओ, द्वापर रथ कपे का सत अग्गै रथवाओ, कल युग रथ अगन का कूड़ अग्गै रथवाओ। महला पहला। शाम कहे सितंबर स्वामी सच में आछे साथ रहे, सबको सच समावे रिग कह रहा भरपूर, राम नाम देवा में सूर नाई ले प्राचित जाहे, नानक तो मुखंतर पाहे।

कर लावो गोबर पर न जाए, तोती टिक्का तै जप माली तान मलेच्छा खाए, अंकर पूजा अपने कतेबा संयम तुरका भाई, छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जाए तरंगा महला पहला, मानस खाने करे निवाज, चुरी वगाए तिन गलताग,

सोए पौड़ी तुर पुराने पौन वेग हर रंगी हरम सुवारिया कोठे मंडप मालिया लाल बैठे करपा सारिया चीज करन मन पाम दे हर बुजन ना ही हारिया कर फुरमाइश खाया वेख मेहलत मरण विसारिया जर आई जोगन हारिया स्लोक महला पहला जे कर सूतक मनी है सब तय सूतक होए गोहे अतै लकड़ी अंदर कीड़ा होए जे ते दाने अन के जिया बाज न कोए।

मोह पुका फिके पाए, फिका मूर्ख आखिए पाना लह सजाए महला पहला। अंदरों झूठे तेज बार दुनिया अंदर फैल, असर तीरथ जे नाम है उतरे नाही मैल। जिन पर अंदर बाहर गुदर के फले संसार, तिन ने हो लगा रब सेती देखने विचार। रंग हसे रंग रोवे चुप भी कर जाए, परवाह नाही किसे केरी बात सच्चे ना। दरवाज ऊपर खर्च मंगा जबे देता खाए, दीवान एको कलम एका हमा तुमा मेल। दर ले लेखा पीर छुटे नान का जो तेल पौड़ी। आपते ही करना कियो कल आपते ही सहतारिय, देखे पीता अपना तर्क पक्की सारी है। जो आया सो चलसी सब कोई।

परमा साहेब तुठे जो मिले मेला दूजा, एक नहीं चाकरी जित को खसम न जाए, नानक सेवक काड़िए जैसे ती खसम समाए पावड़ी, नानक अंत न जा अपनी हरता के पारा बार, आप कराए साक्षी फिर आप कराए मार, इक ना गरी जंजीरिया इक तुरी चले बिशियार, आप कराए करे आप हर कैसे करी पुकार, नान

जियो। गुर चरण लाग हम बिनवता, पूछत कह जियो पाया, कवन काज जग उपजय बिन सह कहो मोहे समझाया। देव करो दया मोहे मार्ग लावो, जित पै बंधन टूटे, जन्म मरण दुख फेड़ कर्म, सुख जी जन्म ते छूटे राव। माया फास बंद नहीं फारे, अरे मन सुन ना लूके, आपा पद निर्माण ना चीनिया, इन विद अभियो ना चूके, कहीं ना उपजे उपजी।

ज्यों प्रतिबिंब बिंब को मिली है उदक कुंभ बिगराना। कहो कबीर ऐसा गुण परम पादा तो मन सुन समाना। आशा गज साज

सूझिया, गुर प्रसाद में सब कुछ सूझिया। आशा इकत पत्थर पर उरकट कुरकट, इकत पत्थर पर पानी, आस पास पंच जोगिया बैठे, बीच नकट दे रानी। नकटी को ठंगन बाबा दू, किने विवेकी काटी तू राव। सगल माहे नकटी का वासा, सगल मार ओहेरी, सगलिया की हो बहन पान जी, जिने बरी तिस्केरी। हमरो परता बड़ो विवेकी, आपे संत कहावे, ओ हमारे माथे कायम और

लुंजत मुंजत मोन जटा तर अंक कऊ मरना तांते सेवी अले रामना रसना राम नाम हित जाके कहां करे जमना रहाओ आगम निर्गम जो तिक जाने बहु बहु ब्या करना पंत मंत्र सब औखद जाने अंत तौ मरना राज भोग अर छत्र सिंहासन बहु सुंदर रमना पान कपूर सुबासक चंदन अंत तौ मरना वेद पुराण सिमरत सब खोजे कहू न उबरना कहो कबीर इो रामे जंपो मेट जन्म मरना आशा फील रबाबी बल्द पखावजे कौआ ताल बजावे पैर चोलना गधा नाचे पैसा भगत करावे राजा राम तक

कछुआ कह अंगार बेलोरो लूकी शब्द सुनाया आशा बटुआ एक बेहतर आधारी एक ओज से द्वारा

दिल में सोच विचार कवा दे, पिस्त दोज किन पाए, काजी तें कमन कतेब बखानी, परत गुनत ऐसे सब मारे, किन्हों खबर न जानी रहाओ, सकत स्नेहो कर सुन्नत करिए, मैं न बदौगा पाई, जोरे खुदाई मोहे तुर्क करेगा, आपन ही कट जाए, सुन्नत किए तुर्क जे होएगा, औरत का क्या करिए, अर्ध शरीरी नार न छोड़े है, ताते हिंदू ही रही है, छाड़ कतेब राम पज बौरे, जुल्म करत है पारी, कबीर है पकड़ी टेक राम की, तुर्क रहे पचिहारी। आशा जब लग तेल दीवे मुख बाती, तब सूजे सब कोई, तेल जले बाती ठहरानी, सुना मंदर होई, रे बौरे तुह करी न राखे कोई, तू राम नाम जब सोई रहाओ, काकी मात पिता को काको, कवन पुरख की जोई, कट कूटे को बात न पूछे, काडो काडो होई, ब्योहरी बैठी माता रोवे, खटिया ले गए पाई, लक्ष छुटकाए।

एक तो के संत सनंद अंत नहीं पाया, वेद पढ़े पर ब्रह्म में जन्म गवाया। हर का बिलोवना बिलोवो मेरे भाई, सहज बिलोवो जैसे तकना जाए रहाओ। तन कर मटकी मन माए बिलोई, इस मटकी में सबक संजोई। हर का बिलोवना मन का विचारा, गुरु पर साथ पावे।

सूता मंदल ना बाजे नट पे सूता बुझ गई अगर ना निकसो तुआ रव रहा एक अगर नहीं दुआ रहाओ टूटी पंख न बजेर बाब फूल बिगारे अपना।

आधार होगनहारे हो गया इस मूरत के मुखचार। मालन पुली जग पुलाना हम पुलाने ना है, कहो कबीर हम राम राखे कृपा कर हर राय आशा। 12 वर्ष बालपन बीते 20 वर्ष कछ तप ना कियो, 30 वर्ष कछ देव ना पूजा फिर पछताना विरद भयो। मेरी मेरी करते जन्म गयो सायर शोक पुजंग बलयो, रहाओ सूखे सरवर पाल बंधावे लूने खेत हथवार करे। आयो चोर तुरंत तह ले गयो मेरी रासत मुग्ध फिरे, चरण शीश पर कंपन लागे नैनी नीर असार बहे। जेवा बचन शुद्ध नहीं निकसे तब रे कर्म की आस करे, हर जियो कृपा करे लिव लावे। लाहा हर हर नाम लियो गुर प्रसादी हर खन पायो, अंते चलदिया नाल चलियो। कहत कबीर सुनो रे संतो अन तन कछुए।

करारा पहर खवादना की जय रे मन सुकृत कर कर ली जय रे मन रहाओ कुम्हारे एक जो माती गूंदी बहु विद्वानी लाई काहू में मोती मुक्ताल काहू ब्याद लगाई सू में तन राशन को दिया मुग्ध कहे तन मेरा जम कर दंड मुंड में लागे खिन में करे निवेरा हर जन उत्तम पद सदावे आज्ञा मन सुख पाई ज्योतिष पावे

चिरगट फाल च तारा ले गयो तरी तागरी छूटी आशा। हम मस्कीन खुदाई बंदे तुम राज मन पावे, अल्लाह अवल दीन को साहिब जोर नहीं फुरमावे। काजी बोलिया बन नहीं आवे रहाओ, रोजा तरे निवाज गुजारे कलमा।

आप जनाए अवर को जाने तब हुए पिस्त सरी की माटी एक पेट तर नाना तामे ब्रह्म पछाना कह कबीरा पिस्त छोड़ कर दोजक सो मन माना आशा गगन नगर एक बूंद न बरखे नाद कहा जो समाना पार ब्रह्म पर

ना साखी शब्द सुरत नहीं उपजै खिंच तेज सब लीना श्रवणन बिकल पे संग तेरे इंद्री का बल खाता चरण रहे कर तर्क परे है मुखो न निक्षय बाता थाके पंच दूत सब तस्कर आप अपने प्रमते थाका मन कुंचर उर थाका तेज सूत तर रमते मृतक पाए दशा बंद छूटे मित्र पाई सब छोरे कहत कबीरा जो हर त्यावे जीवत बंधन तोरे आशा इक तुके चौथा सर्पनी ते ऊपर नहीं बलिया जिन ब्रह्मा विष्णु महादेव छलिया मार मार सर्पनी।

निर्विवेक बुद्ध होई, पारस परस लोहा कंचन सोई, साकत स्वान सब करे कराया, जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया, अमृत ले ले नीम सिंचाई, कह कबीर ओआ को सहज न जाई। आशा लंका सा कोट समुद्र सी खाई, तेहि रावण कर

रहाया, दस मास माता उधर राखिया, बहुर लागी माया, प्राणी काहे को लोभ लागे, रतन जन्म खोया, पूरब जन्म कर्म पूम बीज नाही बोया, राव बारिक ते बिर्द पया, होना सो होया, जा जम आए चोट पकड़े, तब है काहे रोया, जीवने की आस तर है जम निहार सासा, बाजी गरी संसार कबीरा, चेत टाल पासा, आसा, तन रैनी मन पुनरप कर हाँ, पांचों तत बराती, राम राय स्यो पावर ले हो, आत्म के रंग राती, गाओ गाओरी दुल्हनी मंगल चारा, मेरे गृह आए राजा राम पुकारा रहा, नाभि कमल में बेदी रचने, ब्रह्म ज्ञान उचारा, राम राय सो दूलो पाया, असबद पाव हमारा, सुर नर मुन जन कौतक आए, कोट तेतीस उजाना, कह कबीर मोहि ब्याह चले हैं, पुरख एक भगवाना, आशा सास की दुखी ससुर की प्यार।

किन विद रहन रहो रे। से जय रमत नैन नहीं पेखो, यो दुख कासो कहो रे रहाओ। बाप साव का करे लड़ाई, माया सद मतवारी। बड़े भाई कह जब संग होती, तब हो ना प्यारी। कह कबीर पंच को चगरा, चगरत जन्म गवाया। झूठी माया सब जग बांधिया, मैं राम रमत सुख पाया। आशा हम कर सूत तने नित ताना, कंठ जनेऊ तुम्हारे। तुम तो वेद पढ़ो गायत्री, गोविंद हृदय हमारे। मेरी जय बा विष्णु नयन नारायण, हृदय बसे गोविंदा। जम द्वार जब पूछस बवरे, तब क्या कहस मुकंदा। रहाओ हम गोरु तुम ग्वार गुसाई, जन्म जन्म रखवारे। कबहू न पार उतार चरायो, कैसे खसम हमारे। तू बामन मैं काशीक दुल्हा, बुझो मोर ज्ञाना। तुम तो जाचे कूपत राजे, हर सौ मोर त्याना। आशा जब जीवन ऐसा सुपने जैसा, जीवन सुपन समान। साच कर हम गांठ दीनी, छोड़ परम निधान। बाबा मा

आशा जो मैं रूप किए बहु तेरे अब पुन रूप न होई ताजा तन साज सब खाता राम नाम बस होई अब मोहे नाचनो ना आवे मेरा मन मंदिर।

रोजा तरह मनावे अल्हो स्वागत जी सिंघारे आपा देख अवर नहीं देखे काहे को चख मारे काजी साहिब एक तो ही में तेरा सोच विचार न देखे खबर न करे दीन के बौरे ताते जन्म अलेख है रहाओ साच कते

गुप्ता हीरा प्रगट पयो जब गुरुदम दिया दिखाई आशा पहली करूप कुछ आप कुलखनी सहरह पे है बुरी अब की स्वरूप सुझा।

रहो रहोरी बहुरिया कुंगत जिन काडे अंकी बार लहेगी ना आडे रहाओ कुंगत काड गई तेरी आगे उनकी गैल तो है जिन लागे कुंगत कादे की यह बढ़ाई दिन दस पांच।

राम पछाना, कहत कबीर कार गह तोरी, सूते सूत मिलाए कोरी आसा। अंतर मैल जे तीर्थ नावे, किस बैकुंठ ना जाना, लोक पति ने कछु न होवे।

जैसे मेंढक तैसे ओए नर, फिर जोनी आवे। मनो कठोर मरे बनारस, नरक में बांचिया जाई। हर का संत मरे हारंबे, ता सगली सेंतराई। दिन सुन रे वेद नहीं शास्त्र, तहां बसे निरंकारा। कह कबीर नरक से त्यावो, बावरिया संसारा। दिन सुन रे वेद नहीं शास्त्र, तहां बसे निरंकारा। कहत कबीर नरक।

आशा मन मेरो गाजी जुहबा मेरी काटी मत मत काटो जम की फांसी कहां करो जाती चह करो पाती राम को नाम।

आठ पैर अपना खसमते आवो। सोने की सुई रुपए का तागा, नामे का चित हर सो लागा। आशा साप कुंठ के डे दिख नहीं छाडे, उदक माहे जैसे बग त्यान माडे। काहे को की जय त्यान जपन्ना, जब ते सुध ना ही मन अपना। रहाओ सिंगच पोजने जो नर जाने, ऐसे ही ठग देओ बखाने। नामे के स्वामी लाए ले चगरा, राम रसायन पियो रे दगरा। आशा पार ब्रह्म जे चीन सी, आशा ते ना भाव सी। रामा भगतें चे

प्रेंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश पंच दोख असाद जाम है ताकी के तक आस मादो अभिव्याहित कीन विवेक दीप मलीन रहाओ

काल पास अदद लागे कछ ना चले उपाय। रविदास दास उदास तज प्रम तपन तक गुर ज्ञान भगत जन तय हरन परमानंद करो निदान। आशा

रविदास पने जो जाने सो जान, संत अनंत अंतर नाही। आशा तुम चंदन हम अरिंद बापुरे, संग तुम्हारे बासा, नीच रूख ते ऊंच पए हैं, गंध सुगंध निवासा। मादो सत्संगत शरण तुम्हारी, हम अवगण तुम उपकारी रहाओ। तुम मखतूल सुपेत सपैयल,

तुझे चरण अरविंद पान मन पान कर पायो पायो रमैया धन रहाओ संपत विपते पटल माया धन। ताम है मगन हो

जन रविदास राम रंग राता, क्यों गुर प्रसाद नरक नहीं जाता। माटी को पुतना कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौड़े फिरत है राव। जब कछ पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगत है। मन बच क्रम रस कसे लुभाना।

प्रमत सुरत बहु जन्म दिलाने, तन मन तन नहीं तीरे, लालच दिख काम लुगद राता, मन बिसरे प्रभ हीरे। रहाओ दिख फल मीत लगे मन बौरे, चार विचार न जानिया, गुंते पीत बदी अनुपांति, जन्म मरण फिर तानिया। जुगत जान नहीं हृदय निवासी, जलत जाल जम फंद परे, दिख फल संच परे मन ऐसे, परम पुरख प्रभ मन बिसरे। ज्ञान प्रवेश गुरे तन दिया, ध्यान मान मन एक मये, प्रेम पगत मानी सुख जानिया, तृप्त अघाने मुक्त भये। जोत समाए समानी जाके, अचली प्रभ पहचानिया, तन्ने तन पाया करनी तर, मिल जन संत समान।

जी माया प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया शैननाई बुतकारिया ओ कर कर सुनिया हृदय वस्या पार ब्रह्म भगता में गनिया

जिन मन होर मुख होर से पांडे सचिया रखे इश्क खुदाए रंग दीदार के विसरिया जिन नाम ते कोई पारथिए रहा आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से तिन तन जने दी माओ आए सफल से पर्वतगार अपार अगम

कीचे नाम ती आये बिन नावे पूज न होए रहाओ। बाहर देव पखालिए जे मन तोवे कोई झूठ लह जियो।

पाए, जित कम हर विसरह दूजे लगे जाए। ऐसा सतगुरु सेविए मना जित सेविए, गोविंद प्रीत उपजे अवर विसर सब जाए। हर से की चित दहरह जरा का पौ न हो वही, जीवन पदवी पाए रहाओ। गोविंद प्रीत सो इक सहज उपजिया, वेख जैसी भगत बनी आप से ती आप खाया। कामन निर्मल हुआ ज्योति ज्योत समय, दिन पागा ऐसा सतगुरु ना पाये। जे लोचे सब कोई पूरे की पाल विच्चो निकले, ता सदा सुख होए। नानक ऐसे सतगुरु की क्या ओ सेवक सेवा करे, गुर आगे जियो तरे। सतगुर का पाना चित करे, सतगुर आपे कृपा करे। गुजरी महला तीजा, हर की तुम सेवा करो, दूजी सेवा करो ना कोई जी। हर की सेवा ते मनु चिंदिया फल पाये, दूजी सेवा जन्म बिरखा जाएगी। हर मेरी प्रीत रीत है, हर मेरी कथा कहानी जी। गुर प्रसाद मेरा मन पीजे, यहाँ सेव बनी जियो राव। हर मेरा सुमरत, हर मेरा शास्त्र, हर मेरा बंधक, हर मेरा भाई। हर की मैं भूख लागे, हर नाम मेरा मन तृप्त है। हर मेरा साथ अंत होए सखाई, हर दिन होर रास पूरी है, चल दिया नाल न जाई। हर मेरा तन मेरे साथ चाले, जहाँ हो जाऊं तह जाई। सो टूठा जो टूठे लागे, सूठे कर्म कमाए।

जाऊं, सतगुरु मिले हर मन वसै, सहजी रहे समाए रहाओ। जा पौ पाए अपना बैराग उपजे मन आए, बैराग ते हर पाए हर सू रहे समाए। शिव मुक्त जे मन जिने फिर तात न लागे आए, दसवें द्वार रहत करे त्रिभुवन सो जी पाए। नानक गुर ते गुर होया वेखो तिसकी रजाए।

आए गुरमुख बूझे कोई नानक विचों हूं मैं मारे काहर पे तै सोई गुजरी मैला की जा। किस जन शांत सदा मत नहीं चल जिसका अभिमान गवाए सो जन निर्मल जे गुरमुख बूझे हर चरणी चितलाए हर चेत अचेत मना जो इच्छा सो फल होई गुर प्रसादी हर

जिन हो वही गुण मन पर के अवरा समझाए। गुरु सदाए अज्ञानी अंधा किस को मार्ग पाए। नानक बिन नजरी किछु न पाए जिस नजर करे सो पाए। गुरु प्रसादी देवड़े आए अपना शब्द वर्ताए। गुजरी मैला की जा पंच पदे ना काशी मत उपजे ना काशी मत जाए। सतगुरु मिले मत उपजे ता ही सो जी पाए। हर कथा तू सुन रे मन शब्द मन वसाए। इह मत तेरी फिर रहे ता परम विचों जाए रहाओ। हर चरण हृदय वसाए तू किल विख होवे नास। पंच

ही अंत गया पछताए। शिव मन काशी सब तीर्थ सिमरत सतगुरु दिया बुझाए। अक्सर तीर्थ किस संग रहे जिन हर हृदय रहा समाए। नानक सतगुरु मिले हुक्म बुझिया एक वसिया मन आए। जो तुद पावे सब सच है सच्ची रहे समाए। गुजरी महला तीजा तीजा एको नाम निधान पंडते सुन सच्चे। दूजे पाए जेता पढ़े पढ़त गुणत सदा दुख होई। हर चरणी तू लाग रहो गुर शब्द सोजी होई। हर रस रसना चाक तू तामन निर्मल होई राव। सतगुरु मिले मन संतोषी है ता फिर कृष्णा पूख न होए। नाम निधान पाया पर कर जाय न कोई। कथनी बदनी जे करे मन मुख बूझ न होए।

सो मूर्ख जो आपना पछाणे सच ना करे प्यार सच्चे जगत डहकाया कहना कछु न जाए नानक जो तिस

गुरमत नाम मेरा प्राण सिखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहा। हर जन केवट पाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिले कृपा से, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते पागहीन जम पास। जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुरु संगत पाए, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। तन तन सतसंगत जित हर रस पाया, मिल नानक नाम प्रगास। गुजरी महला चौथा। गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम, मिल सतसंगत शब्द मन मोह। जप गोविंद गोविंद त्याय, सबको दान दे प्रभ ओ है। मेरे भाई जना मोह को, गोविंद गोविंद गोविंद मन मोह। गोविंद गोविंद गोविंद गुण गावा, मिल गुर साध संगत जन सो है। रहाओ सुख सागर हर पगत है, गुरमत कौला रिद सिद्ध लागे पग ओ है। जन को राम नाम आधारा, हर नाम जपत हर नामे सो है। दुर्मत पागहीन मत फीके, नाम सुनत आवे मन रो है। कौआ काग कौ अमृत रस पाई है, कृपते विस्ता खाए मुख गो है। अमृत सारे सतगुर सतवादी, जित नाते कौआ हंस हो है। नानक तन तन वड्डे वड पागी, जिन गुरमत नाम हृदय मल तो है। गुजरी महला चौथा। हर जन उत्तम उत्तम बाणी, मुख बोले पर उपकारे। जो जन सुने सरदा भगत।

उत्तम प्राण सतगुरु गुर पूरा हम पापी गुर निस्तारे रहाओ। गुरमुख वड़ पागे जिन हर हर नाम अधारे हर हर अमृत हर रस पावे हैं गुरमत भगत पंडारे जिन दर्शन गुरु सतपुरुष

नानक जन हर की शरण आई, हर पावे हर निस्तारे, गुजरी महला चौथा। ओ दयाल मेरा मन लावो, हूँ अंगन राम नाम नित्याई, सब सुख सब गुण सब निधान, हर जित जपिए दुख पुख सब ले जाई। मन मेरे मेरा राम नाम सखा हर पाई, गुरमत राम नाम जस गावा, अंत बेली दर्ज है ले छाई राव। तू आपे दाता प्रभ अंतर जामी, कर कृपा लोच मेरे मन लाई, मैं मन तन लोच लगी हर सेती, प्रभ लोच पूरी सतगुरु शरणाई। मानस जन्म पुन कर पाया, बिन नामे त्रिग त्रिग बिरथा जाय, नाम बिना रस कस दुख पावे, मुख फीका थुक थूक मुख पाई। जो जन हर प्रभु हर हर शरणा, तिन दर्जे हर हर देव डे आई, तन तन सबा सह

हारी अंकर मेल न उतरे हूँ मैं बिन गुरु बाजी हारी। मेरे ठाकुर रख ले वो कृपा धारी कोट मदे को विरला सेवक होर सगले व्यवहारी रहा। शास्त्र वेद सिमरत सब सोदे सब एका बात पुकारी बिन गुरु मुक्त न को पावे मन वेखो कर बिचारी। अस सच मज्जन कर स्नाना प्रम आए थर सारी अनक सोच करें दिन राती बिन सतगुर अंधियारी। तावत तावत सब जग पायो अब आए हर द्वारी दुर्मत मेट बुद्ध परगासी जन नानक गुरमुख तारी। गुजरी महला पंजवा हर तन जाप हर तन ताप हर तन भोजन पाया निमख न बिसरो मन के हर हरे साध संगत में पाया। माई खाट आयो कर पूता हर तन चलते हर तन बैसे हर तन जागत सूता रहा। हर तन स्नान हर तन ज्ञान हर संग लाए त्याना हर तन तुल्हा हर तन देड़ी।

नवनिध पाई आश्चर्य हर सोका सावो खर्चो कोट न आवे हलत पलत कह संगे लाज खजाना गुरु।

प्रीत कापड़ पथ परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीत अमृत पीवो सदा चिर जीवो हर सिमरत अनद अनंता रंग तमाशा पूर्ण आशा कभे न व्यापे चिंता पावर तुम्हारा यो मन हो हर चरणा हो कौला नानक दास उन

तिन पौ सागर तरिया। गुर हर बिन को ना बिरथा दुख काटे, प्रभ तज अवर सेवक जे हुई है, तित मान महत जस काटे। रहाओ माया के सन बंग सेन साथ, तित ही कामना आया। हर का दास नीच कुल ऊंचा, किस संग मन बांचत फल पाया। लाख कोट बिखिया के बिंजन, तामे तृष्ण ना बूझी। सुमरत नाम कोट उजियारा, बस अगोचर सूजी। फिरत फिरत तुम रे द्वार आया,

सुंदर बाग मंदिर संग न कछू जाया, अवर सब मिथ्या लोभ लभी, गुरपुरे दियो हर नामा, जी को एहा वस्त सभी रहाओ। इष्ट मीत बंदर सुत पाई, संग बनता रच हसया, जब अंति और

निदान सतगुरु दृढ़ाया, दिन सुना आवे जाई हर जप माया बंधन टूटे। अरे कृपाल दयाल प्रभ मेरे, साध संगत मिल छूटे। रहाओ।

नमस्कार। वर्ण जात को पूछे नाही बाछे चरण रवारो, ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारो, सगल सृष्ट को तनी कही जय, जन को अंग निरारो रहाओ। साध संग नानक बुध पाई, हर कीर्तन आधारो, नाम देव त्रिलोचन।

नानक को प्रभु पूर रहो है, एको जतर कथा गुजरी मैला पंजवा। मता मसूरत अवर सियानप जन को कछु ना आयो, जह जह अवसर आए बनियो है तहां तहां हर के आयो। प्रभु को भगत वचल बिरदायो, करे प्रतपाल बारक की न्याय, जन को लाड लड़ायो रहाओ। जब तप संयम करम तरम हर कीर्तन जन गायो, सन परयो नानक ठाकुर की अवैदान सुख पायो।

कहो नानक तिस गुर बलिहार, जिन सबका किया उधार। गुजरी मैला पंजवा, मात पिता पाई सुख बंदत, तिनका बल है थोरा। अनक रंग माया के पेखे, किछ साथ न चाले पोरा। ठाकुर तुझ बिन आए न मोरा, मोहे अनाथ निर्गुण गुण नाही। मैं आयो तुमरा तोरा रहाओ। बल बल बल बल चरण तुम्हारे, इहां उहां तुम्हारा जोरा। साध संग नानक दर्श पायो, बिनस्यो सगल निहोरा। गुजरी मैला पंजवा, आल जाल प्रम मोहत जावे, प्रभ से ती रंग लाए। मन को इह

मेरे सतगुरु मन शरण तुम्हारे परी अचेत्या ने बारक नानक हम तुम राखो तार करे। गुजरी महला पंजवा तू दाता जिया सबना का बसो मेरे मन माहे चरण कमल रिद माहे समाये तह परम अंधेरा नाहे ठाकुर जा सुमरा तू ताहे कर कृपा सर्व प्रतपालक प्रभु को सदा सल।

मेरे चित चित वो हर रसन अरा दो निरखो तुमरी ओर रहाओ। दयाल पुरख सर्व के ठाकुर बिनो करो कर जोर नाम जपे नानक दास तुमरो उदरस आखी फोर गुजी महला पंजवा।

कपटे अनेक जुगत कर कायो विसरत प्रभु के ते दुख गनिये महामोनी खायो करो अनग्रो स्वामी मेरे गनो न मोहे कमायो गोविंद दयाल कृपा।

पज सदा भगवंत रहाओ। नाम एक आधार भगता एक आगे तेक, कर कृपा गोविंद दिया गुर ज्ञान बुद्ध विवेक, करण कारण समरथ श्री कर शरण ताकी गही मुक्त जुगत रवाल।

सास सास अराध हर हर लह जाए मन की चिंग। मेरे मन जाप तब का नाम सुख सहज आनंद पावे मिली निर्मल थाओ रहाओ। साध संग उधार इहु मन आठ पहर आराध काम क्रोध अहंकार बिन सह मिटे सगल उपाद। अटल अछेद अपेद स्वामी शरण ता की आओ चरण कमल आराध हृदय एक सों लिवलाओ। पार ब्रह्म प्रभ दया तारी बख्श ली ने आप सर्व सुख हर नाम दिया नानक सो प्रभ जाप। गुजरी मैला पंजवा गुर प्रसादी प्रभ ते आया गई शंका टूट दुख अनेरा पै बिना से पाप गए निखूट। हर हर नाम की मन प्रीत मिल साध बचन गोविंद त्याए महा निर्मल रीत राव। जाप ताप अनेक करनी सफल सुमरत नाम कर अनुग्रह आप राखे पै पूरन काम। सास सास ना बिसर कबहू ब्रह्म प्रभ समरथ गुण अनक रसना क्या बखाने अगनत सदा कथ। दीन दर्द निवार तारण दयाल कृपा करण अटल पद।

रोग, हर नाम औखद गुर नाम दीनो, करण कारण जोग, मन तन बाकी है जन तूर, कोट जन्म के लह पातित गोविंद लोचा पूर रहाओ। आद अंते मद आशा कुकरी विकराल, गुर ज्ञान की

पवन मित्र पुत्र कलत्र सुर रुद तीन ताप जलंत जप राम रामा दुख निवारे मिले हर जन संत।

कलेश मिटे तै परमा निर्मल गुण प्रभु गाए। गोविंद तुझ बिन अवर ना ठाओ, कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा नाम रहाओ। सतगुर सेव लगे हर चरनी वड्डे पाग लिवलागी, कवल प्रगास पए साध संगे दुर्मत बुद्ध त्यागी। आठ पहरे

योगी काम क्रोध अहंकार तजियले लोभ मोह तिस्माया मन तत अविजत त्याया गुरु प्रसादी पाया ज्ञान ज्ञान सब दात तकियले सेत बरन सब दूता ब्रह्म कमल मद।

ना पद माया मगर न छाया, ना सूरज चंद ना ज्योत अपार, सर्व दृष्ट लोचन अब अंतर, एका नदर सो त्रिगुण सार। पवन पाणी अगन तिनकिया, ब्रह्मा विष्णु महेश अकार, सर्वे जाचक तू प्रभु दाता, दात करे अपने विचार, कोट के तिस जाचे प्रभु नायक, देंदे तोट नाही पंडार, ऊंदे पांडे कछ ना समावे, सीधे अमृत परे निहार। सिद्ध समाधि अंतर जाचे, रिद्ध सिद्ध जाच करे जय।

ताको काल नाही जम जो है बूझे अंतर शब्द विचार। अब तब अवर ना मांगो हर ते नाम निरंजन दीजे प्यार, नानक चात्रिक अमृत जल मांग।

गुर प्रसादी हर प्रभ जाचे ऐसी नाम बढ़ाई रहाओ। है जी बहुते पेश करें पुछिया को केते उधर परन कहताएं बिन हर भगत नाहीं।

है जी पाग परे गुर शरण तुम्हारी, मैं और न दूजी पाई। अब तब एक को एक पुकारो आज जुगा सिखाई। ऐ जी राखो पैज नाम अपने की, तुझ ही सो बन आई, कर कृपा गुरु।

सोग बिजोग विसर्जत रोग। पाई रे गुर कृपा ते भगत ठाकुर की, सतगुर वास हृदय हर निर्मले, ना जम कान ना जम की बाकी रहाओ। हर गुण रसन रवे प्रभ संगे, जो तिस पावे सहज हरी, बिन हर नाम बिरथा जग जीवन, हर बिन नेफल नेत करी।

निंदक नर काले मुख निंदा जिन गुर की दात न पाए। ऐ जी शरण परे प्रभु बख्श मिलावे बिलम न अदुआर आई। अनदे मूले नाथ सिरनाथा सतगुर मेल मिलाई। ऐ जी सदा दयाल दया कर रव्या गुरमते प्रमन चुकाई। पारस पेट कंचन तात होई सत संगत की वड़ियाई। हर जल निर्मल मन स्नानी मज्जन सतगुरु पाई पुनरप जन्म।

हर दिन जियरा रह न सके जो बालक खीर अधारी, अगम अगोचर प्रभ गुरमुख पाये अपने सतगुर के बलिहारी। मन रे हर कीरत तर तारी, गुरमुख नाम अमृत जल पाये जिनको कृपा तुम्हारी रहाओ। सनक सनंदन नारद मुन सेवे अन दिन जपत रहे।

जोत मुरारी सब जाचक तू एको दाता मांगे हाथ पसारी भगत जना की उत्तम वाणी गावे अकथ कथा नित न्यारी सफल जन्म पया तिनकेरा आप सरे कुलतारी मनमुख दुबदा दुर्मत व्यापे जिन अंतर मोह गुबारी संत जना की कथा ना पावे कोई डूबे सन परवारी निंदक निंदा कर मल तोवे ओ मल पख माया तारी संत जना की निंदा व्यापे ना उर्वार न पारी यो परपंच खेल किया सब करते हर करते सब कल तारी हर एक को सूत वरते जुग अंतर सूत किंचे एक अंकारी रसन रसन रस गावे हर गुण रसना हर रस तारी नानक हर बिन

हरन मद मोह दहन मुरार मन मकरंद जन्म मरण निवार तरणी तर पत राख परमानंद जलत अनक तरंग माया गुर ज्ञान हर रिद मंत छेद अहं बुद्ध करुणा में चिंत मेट पुरख अनंत सिमर समरथ पल मुहूर्त प्रभ ध्यान सहज समाद दीन दयाल प्रसन्न पूरन जाचिए रजसाद मोह मिथन दुरंत आसा बासना बिकार रख धर्म परम बिदार मनते उदर हर निरंकार तनाड आड पंडार हर निद होत जिनाना चीर खल मुगद मूड कटाक्ष श्री तर पे गुण मत तीर जीवन मुक्त जगदीश जप मन तार रिद प्रतीत जी दया मया सर्वत्र रमणं परम हंसै रीत देत दर्शन श्रवण हर जस रसन नाम उचार अंग संग भगवान परसन प्रभ नानक।

एहो जगत ममता मुआ जीवन की विध नाहे, गुर कै पाणे जो चले ता जीवन पदवी पाहे। ओए सदा सदा जन जीवते जो हर चरणी चित लाहे, नानक नदरी मन वसै गुरमुख सह समाए। महला तीजा, अंदर सहसा दुख है आपै सिर तंदे मार, दूजे पाए सुते कभे न जागे माया मोह प्यार। नाम ना चेते शब्द ना विचारे क्यों मन मुक्का आचार, हर नाम न पाया जन्म बिरथा गवाया, नानक जम मार करे खुआर पौड़ी। अपना आप उपायन तदो होर ना कोई, मता मसूरत आप करे जो करे सो होई। तदो आकाश ना पताल है ना त्रै लोई, तदो आपे आप निरंकार है ना ओपत होई। जो तिस पावे तिवें करे तिस बिन

ना जाए, सदा सदा सो सेवी है जो सब में रह समाए। अवर न दूजा क्यों सेवी है जब मैं ते मर जाए। नेफल तिन का जीविया जे खसम ना जाने अपना अवरी को चितलाए। नानक एव न जापई करता केती दे सजाए। महला तीजा सच्चा नाम त्याई है सबो वरते सच। नानक हुकम बुझ परवान होए ता फल पावे सच। कथनी बदनी करता फिरे हुक्मे मूल न बुझई अंधा कच निकच पौड़ी। संजोग विजोग उपायन सृष्टि का मूल रचाया। हुक्मी सृष्ट साजियन ज्योति ज्योत मिलाया। ज्योति हूँ सब चानना सतगुर शब्द सुनाया। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रैगुण सिर तंदे लाया। माया का मूल रचायन दुरिया सुख पाया। श्लोक महला तीजा सो जप सो तप जे सतगुर पावे सतगुर के

माया मोह अज्ञान है बिखम अत पारी, पत्थर पाप बहु लद्या क्यों तरिये तारी, अनदिन पगती रत्या हर पार उतारी, गुर शब्दी मन निर्मला हौ मैं छड विकारी, हर हर नाम त्याय हर हर निस्तारी। श्लोक कबीर मुक्त द्वारा संकुड़ा राई दसवें पाए, मन तो मैं गल हो रहा निक्षा क्यों कर जाए।

कोई सो जाए। हौ मैं मन अस्थूल है क्यों कर विच दे जाए। सतगुर मिले हौ मैं गई जोत रही सब आए। इहो जियो सदा मुक्त है सहजे रहा समाए। पौड़ी प्रभ संसार उपाय कै वस अपने कीता। गणते प्रभु न पाई दूजे परमीता। सतगुरु मिले जीवत मरे बुझ सच समीता। सब दे हों मैं खोई हर मेल मिलीता। सब किछ जाने करे आप आपे विगसीता। श्लोक महला तीजा। सतगुरु स्यो चित न लायो नाम नव स्यो मन आए। त्रिग इवे आ जीविया क्या जुग मैं पाया आए। माया खोटी रास है एक चसे में पाज लह जाए। हथों छुड़की तन स्याव होए बदन जाए कुमलाए। जिन सतगुर स्यों चित लाया तिन सुख वसया मन आए। हर नाम त्यावे रंग स्यों हर नाम रहे लिवलाए। नानक सतगुर सो तन सौंपया।

पाई जल मोई कंत न लायो पाओ नानक सुख वसन सुहागणी जिन प्यारा पुरख हर राव पौड़ी। सब जग फिर मैं देखिया हर इको दाता उपाय किते न पाये हर कर्म विदाता गुर शब्दी हर मन वसे हर सहजे जाता अंदरों तृष्णा अग्न बुझी हर अमृत सर नाता।

छड़ जाए। केसनो कूड़ बोल के खवा लिए, जे चल दिया नाल न जाए। काया मिट्टी अंध है, पौने पुछो जाए। हों ता माया मोहया, फिर आवा जाए। नानक हुकम ना जातो खसम का, जे रहा सच समाए। महला तीजा, एको ने चल नाम तन, होर तन आवे जाए। इस तन को तस्कर जोए न सके, ना ओ चक्का ले जाए। के ओ हर तन जीए से

जिना नाम तन खटिया पौड़ी। मेरा साहिब अत वड्डा सच गहर गंभीरा, सब जग तिसके वस है सब तिसका चीरा। गुर प्रसादी पाई है नेचल तन तीरा, कृपा ते हर मन वसै पेटे गुरसूरा। गुणवंती सलाया सदा थिर नेचल हर पूरा। श्लोक महला तीजा। त्रिग तिना दा जीविया जो हर सुख पर हर त्याग दे, दुखों में पाप कमाए। मनमुख अज्ञानी माया मोह व्यापे, तिन बूझ ना काई पाए। हलत पलत ओए सुख ना पावे, अंत गए पछताए। गुर प्रसादी को नाम त्याए, तिस होमे विच्चों जाए। नानक जिस पूर्व होवे लिखिया, सो गुर चरणी आए पाए। महला तीजा। मनमुख ऊदा कौल है, ना तिस भगत ना नाओ।

गुरुमुख पवित्ता, अंदरों कपट विकार गया मन सहजे जीता, तह जोत प्रगास आनंद रस अज्ञान गविता, अंदिन हर के गुण रवे गुण प्रगट किता, सबना दाता एक है इको हर मिता। श्लोक महला तीजा। ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण कही है जे अंदिन हर लिवलाए।

समाए। नानक तिसनो मिलिया सदा सुख पाई, जे अनदिन हर नाम त्याए महला तीजा। अंतर कपट मन मुख अज्ञानी, रसना झूठ बुलाए। कपट कीते हर पुरख न पीजे, नित वेखे सुने सुवाए। दूजे पाए जाए जग प्रबोधे, बिख माया मोह सुवाए। इत कमाणे सदा दुख पावे, जम्मे मरे फिर आवे जाए। सहसा मूल ना चुकई, विच विष्टा पचे पचाए। जिसनो कृपा करे मेरा स्वामी, तिस गुर की सिख सुनाए। हर नाम त्यावे हर नामो गावे, हर नामो अंत छड़ाए पौड़ी। जिन्ना हुकुम मनायोन ते पूरे संसार, साहिब सेवन अपना पूरे शब्द विचार। हर की सेवा चाकरी सच्चे शब्द प्यार, हर का महल तिन्नी पाया जिन्हो मैं विच्चो मार। नानक गुरमुख मिल रहे जप हर नामा उरधार। श्लोक महला तीजा। गुरमुख त्यान सहज तुन उपजे, सच नाम चित लाया। गुरमुख अनदिन रहे रंग राता, हर का नाम मन पाया। गुरमुख हर वेखे गुरमुख हर बोले, गुरमुख हर सहज रंग लाया। नानक गुरमुख ज्ञान प्राप्त होवे, तिमर अज्ञान अंधेर चुकाया। जिसनो कर्म होवे तुर पूरा, तिन गुरमुख हर नाम ते आया। महला तीजा। सत गुर जिना न सेवियो, शब्द ना लगो प्यार। सहजे नाम ना त्याया कित आया संसार। फिर जूनी पाई है विष्टा सदा खुआर। कूड़े लालच लगिया ना उरवार ना पार। नानक गुरमुख उबरे जे आप मेले करतार पौड़ी। भगत सच्चे दर्शों दे सच्चे शब्द रहाए। हर की प्रीत तिन उपजी हर प्रेम कसाए। हर रंग रहे सदा रंग राते, रसना हर रस प्याए। सफल जन्म जिन्नी गुरमुख जाता, हर जियो हृदय वसाए। बाज गुरु फिरे बिल लांदी, दूजे पाए खुआए। श्लोक महला तीजा। कल युग में नाम निधान पगती खटिया, हर उत्तम पद पाया। सतगुर सेव हर नाम मन वसाया, अंदिन नाम ते आया। विचे ग्रहे गुर बचन उदासी, हों मैं मोह जलाया। आप तरिया कुल जगत तराया, तन जने दी माया। ऐसा सतगुर सोई पाए, जिस तुर मस्तक हर लिख पाया। जन नानक बलिहारी गुर अपने विटो, जिन परम पुला मार्ग पाया। महला तीजा। त्रै गुण माया वेख पुले, ज्यो देख दीपक पतंग पचाया। पंडित पुल पुल माया वेखे, दिखा किने क्यों आन चढ़ाया। दूजे पाए पढ़े नित बिखिया, नामो देख आया। जोगी जंगम सन्यासी पुले, ओना अंकार बहु गर्भ बधाया। छादन भोजन ना लेही, सत पिखिया मन हठ जन्म गवाया। एतड़िया विच्चों सो जन समदा, जिन गुरमुख नाम ते आया। जन नानक किसनो आख सुनाई है, जा कर दे सब कराया। पौड़ी। माया मोह प्रेत है, काम क्रोध अंकारा। ए जम की सिरकार है, एना ऊपर जम का दंड करारा। मन मुख जम मग पाईन, जिन दूजा पाओ प्यारा। जम पुर बदे मारियन, को सुने ना पुकारा। जिसनो कृपा कर

लपटाए, गुर कै शब्द पर जा लिए ता ए विच्चों जाए, तन मन होवे उजला नाम वसे मन आए, नानक माया का मारण हर नाम है, गुरमुख पाया जाए महला तीजा, त्यों मन केतड़िया जुग परमिया, थिर रहे ना आवे जाए, हर पाणा ता परमायन, कर परपंच खेल उपाए, जा हर बख्शे ता गुर मिले, अस्थिर रहे समाए, नानक मन ही ते मन मानिया, ना किछ मरे न जाए पौड़ी, काया कोट अपार है मिलना संजोगी, काया अंदर आप वस रहा आपे रस होगी, आप अतीत अलिप्त है निर्जोग हर जोगी, ज्योतिष पावे सो करे सो होगी, हर गुरुमुख नाम ते आई है लह जाहे विजोगी। श्लोक महला तीजा, वाह वाह आप अखाएदा।

नानक वाह वाह करत्या प्रभ पाया कर्म प्राप्त होए मैला तीजा। वाह वाह करती रसना सबद सुहाई पूरे सबद प्रभ मिल्याई वडभागिया वाहो वाहो मोह कढाई। वाह वाह करें सही जन सोने तिनको प्रजा पूजने आई। वाह वाह कर्म प्राप्त होवे नानक दर सच्चे शोभा पाई पौड़ी। वज्र कपाट काया गढ़ पीतर कूड कुसत अभिमानी परम फूले नदर ना आवनी मनमुख अंध अज्ञानी उपाय कित न लबनी कर पेख थके पेखवानी। गुर शब्दी खोलायन हर नाम जपानी हर जियो अमृत बिरख है जिन पिया ते तृप्तानी। श्लोक महला तीजा। वाह वाह करत्या रहन सुख विहाय वाह वाह करत्या सदा आनंद होवे मेरी माए। वाह वाह करत्या हर्ष्यो लिवलाए वाह वाह कर्मी बोले बोलाए। वाह वाह करत्या शोभा पाए नानक वाह वाह सत।

जे सतगुरु दिया दिखाए महला तीजा, वाह वाह गुरुमुख सदा करें, मनमुख मरे बिख खाए, ओना वाह वाह ना पावे दुखे दुख विहाए, गुरुमुख अमृत पीवना वाह वाह करें लिब लाए, नानक वाह वाह करें से जन निर्मले, त्रिभुवन सोजी पाए पौड़ी, हर कै पाणे गुर मिले सेवा भगत बनी जाय, हर कै पाणे हर मन वसे सहजे रस पी जाय, हर कै पाणे सुख पाई हर लाहा नित ली जाय, हर कै तख्त बहालिए।

जाए, वाह वाह करत्या मन निर्मल होवे, हों मैं विच्चों जाए, वाह वाह गुरसिख जो नित करे सो मन चिंदिया फल पाए, वाह वाह करें से जन सोहने हर तिनके संग मिला।

जिन सेविया तिन फल पाया हो तिन बलिहारे जाओ। वाह वाह गुणी निदान है जिसनो देसो खाए। वाह वाह जल थल भरपूर है गुरमुख पाया जाए। वाह वाह गुरसिख नित सब करो गुर पूरे वाह वाह पावे। नानक वाह वाह जो मन चित करे तिस जम कंकर नेड़ ना आवे। पौड़ी हर जियो सच्चा सच है सच्ची गुरबाणी। सतगुर ते सच पछाणी है सच है समाणी। अन दिन जागे ना सवे जागत रहन विहानी। गुरमत्ती हर रस चाखिया से पुन पराणी। बिन गुर किने न पायो पच मोए अजानी। श्लोक महला तीजा। वाहो वाहो बाणी निरंकार है तिस जेवड़ अवर न कोए। वाहो वाहो बाणी निरंकार है तिस जेवड़ अवर न कोए। वाह वाह अगम अथाओ है वाह वाह सच्चा सोए। वाह वाह वे परवाओ है वाह वाह करे सोए। वाह वाह अमृत नाम है गुरमुख पावे कोए। वाह वाह कर्मी पाईए आप दया कर दे। नानक वाह वाह गुरमुख पाईए अन दिन नाम लए महला तीजा।

तार टाडी दर कर पाए सी सच रखे उर तार टाडी का महल अगला हर कहना है प्यार टाडी की सेवा चाकरी हर जप हर निस्तार श्लोक महला तीजा गुजरी जात गवार जा सो पाए अपना गुर कै शब्द विचार अन दिन हर जप जापना जिस सतगुरु मिले तिस पौ पवे सा कुलवंती नार सा हुकुम पछाणे कंत का जिसनो कृपा की ती करतार ओ कुचजी कुलखणी पर हर छोड़ी पतार पै पै मल कटिए निर्मल हो वै शरीर अंतर प्रगास मत उत्तम हो वै हर जप गुणी गहीर पै विच बैसे पै रहे पै विच कमावे कार कैथे सुख वडियाया दरगे।

तिथै सोग विजोग ना व्यापये अस्थिर जग थिया। श्लोक महला तीजा। एहो सब किछ आवन जान है जेता है आकार जिन एहो लेखा लिखिया सो हो आ प्रवान नानक जे को

गुर आराधना जेवा जप गुरनाओ नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुरनाओ सतगुर से तीरतिया दर्जे पाये ठाओ कहो नानक कृपा करे जिसनो ए वस दे जग में उत्तम काढ़िए विरले के महला पंजवा रखे रखन हार आप उबारियन गुर की पैरी पाए काज सवारियन हुआ आप दयाल मनो ना विसारियन सात जना कै संग पव जल तारियन साकत निंदक दुष्ट खिन माहे बिदारियन तिस साहिब की टेक नानक मन्ने माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए पौड़ी अकुल निरंजन पुरख अगम अपारी है सच्चो सच्चा सच सच निहारी है कूड़ न जापे किछ तेरी तारी है सबसे दे दातार जेत उपारी है इक्कत सूत परोए जोत संजारी है हुक्मे पवजल मंज हुक्मे तारी है प्रभ जियो तुद त्याए सोए जिस पाग मथारी है तेरी गत मित लकी ना जाए हों तुद बलिहारी है। श्लोक महला पंजवा। जा तू तुसे मेरवान अचिंत वसे मन माहे जा तू तुसे मेरवान नौ निद कर्म है पाहे जा तू तुसे मेरवान ता गुर का मंत्र कमाए जा तू तुसे मेरवान ता नानक सच समाहे। महला पंजवा। किती बहन बहने मुच बजाएन वज नानक सच्चे नाम बिन किसे न रहिया लज। पौड़ी। तुद त्यायन बेद कते बां सन खड़े गणती गणी न जाए तेरे दर पड़े ब्रह्मे तुद त्यायन इंद्र इंद्रासना शंकर विष्णु अवतार हर जस मुख पणा पीर पिकाबर शेख मसायक औलिए ओत पोत निरंकार कट कट मौलिए।

महला पंजवा कितिया कुटंग गुजा थी ए नाहित नानक तै सह ककिया मन में सच्चा मित पौड़ी। हौ मांगो तुझे दयाल कर दासा गोलिया नौनिद पाई राज जीवा बोलिया अमृत नाम निधान दासा कर कणा तिनके संग निहाल श्रवणी जस सुना कमावा तिनकी कार शरीर पवित्र होए पखा पानी पीस भिक्षा पैर तोए आपको कछु न होए प्रभ नदर निहाली है मोहि निर्गुण चै थाओ संत धर्मशाली है। श्लोक महला पंजवा।

पंजवा दृष्ट तार प्रभ राखिया मन तन रता मूल नानक जो प्रभ पानिया मरो विचारी सूल। पौड़ी जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर छोड़ सियाणप सगल मन तन अर्प तर पूजो गुर के पैर दुर्मत जाए जर सात जना कै संग पव जल बिखम तर सेवो सत गुरुदेव अगै ना मरो डर हिन मैं करे निहाल ऊने सुवर भर मन को होए संतोख त्याये सदा हर सो लगा सतगुर सेव जा को कर्म तुर। श्लोक महला पंजवा लगड़ी सुथान जोड़न हार है जोड़िया नानक लहरी लख से आन डुबन दे नामा पिरी। महला पंजवा बन पिहाव लै हिक साथी लदम दुख हरता हर नामा बल बल जाई।

जब त्या पहुँच न सके कोई तेरी टेक जन। गुर पूरे वाओ वाओ सुख लहा चितार मन। गुर पै सिफ्त पंडार कर्मी पाई है। सतगुर नदर निहाल बहुड़ ना ताई है। रखे आप दयाल कर दासा अपने। हर हर हर हर।

तेंदे सिमरन हब किछ लदम बिखम ना डिठम कोई जिस पत रखे सच्चा साहिब नानक मेट न सके कोई पौड़ी होवे सुख कणा दे त्याए वन्ये रोगा कान हर गुण गाए अंदर वरते ठांड प्रभचित आए पूरन होवे आस नाए मन वसाए कोई न लगे बिघन आप गवाए ज्ञान पदार्थ मत गुरते पाए तिन पाए सभी थोक जिस आप दिवाए तू सबना का खसम सब तेरी छाए। श्लोक महला पंजवा। नदी तरंदड़ी मैंडा खोज न खुंबे मंज मुहब्बत तेरी कौसे चरणी मैंडा हीड़ा सीतम हर नानक तुल्हा बेड़ी। महला पंजवा। जिना दिसंदड़िया दुरमत बंजे मित्र असाडड़े से हौ टूडे दी जग सबाया जन नानक विरले के पौड़ी आवे साहिब चित तेरिया भगता डिठिया मन की कटिये मैल सात संग उठिया जन्म मरण पौ कटिये जन का शब्द जप बंधन खोलन संत दूत सब जाहे छप तिस्यो लाइन रंग जिस दी सब तारिया ऊंची हूँ ऊंचा थान अगम अपारिया रैन दिनस कर जोड़ सास सास ते आई है जहाँ आपते होए दयाल ता भगत संग पाई है। श्लोक महला पंजवा। बार विडानले हुमस तुमस कूका पैया राही तौ सह सेती लगड़ी डोरी नानक अनद सेती बन गाही। महला पंजवा। सच्ची बैसक तिना संग जिन संग जपिए नाओ तिन संग संग ना की चई नानक जिना अपना सुआओ। पौड़ी। सावेला परवान जिस सतगुर पेटिया हुआ साधु संग फिर दुख ना तेटिया पाया नेचर थान फिर गर्भ ना लेटिया नदरी आया एक सगल ब्रह्मेटिया तत ज्ञान लाए त्यान दृष्ट समेटिया सबो जपिए जाप जे मुखों बोले त्या हुक्मे बुझ निहाल सुख सुखेटिया परख खजाने पाए से बहुर न खोटिया। श्लोक महला पंजवा। विछोहे जंबूर खवे ना मंजन गाखड़े जेसो तनी मिलन नानक सुख संभू सच। महला पंजवा। जिमी वसंदी पानी है ईदन रखे पाए नानक सो सो आहे जाके आडल हब को। पौड़ी। तेरे कीते कम तुदे ही गोचरे सोई वरते जग जे किया तुद तुरे बिस्म पे बिस्माद देख कुदरत तेरिया शरण परे तेरी दास करगत होए मेरिया तेरे हाथ निधान पावे तिस दे जिसनो होए दयाल हर नाम से ले अगम अगोचर बेअंत अंत न पाये जिसनो हो है कृपाल सो नाम ते आई है। श्लोक महला पंजवा। करछिया फिरन सुआव ना जान सुनिया से मुख दिसन नानक रते प्रेम रस। महला पंजवा। खोजी लदम खोज छड़िया उजाड़ तैसे दिती वाड़ नानक खेत ना छिजई। पौड़ी। आराध्यो सच्चा सोए सब किछ जिस पास दोहा सिरिया खसम आप खिन में करे रास त्यागो सगल उपाव तिसकी ओट गहो पौ सरनाई पज सुखी हो सुख लहो कर्म कर्म तत ज्ञान संता संग होए जपिए अमृत नाम बिघन न लगे कोए जिसनु आप दयाल तिस मन उठिया कायन सब निधान साहिब तुठिया। श्लोक महला पंजवा। लदम लबन हार कर्म करन दो मापिरी इको सिरजन हार नानक बिया ना पसी है। महला पंजवा। पापड़िया पछाड़ बाण सचावा सन कै गुर मंत्रड़ा चितार नानक दुख न थी वही। पौड़ी। वाह वाह सिरजन हार पायन ठाड आप जी जंत मेरवान तिसनो सदा जाप दया तारी समरथ चुके बिल बिलाप नठे ताप दुख रोग पूरे गुर प्रताप कीतियन अपनी रख गरीब निवाज थाप आपे लयन छाए बंधन सगल काप
तिसन बुझी आस पुन्नी मन संतोख त्राप वड्डी हूँ वड्डा अपार खसम जिस लेप न पुन पाप। श्लोक महला पंजवा। जाको पै कृपाल प्रभ हर हर से जपात नानक प्रीत लगी तिन राम स्यों पेटत साध संगात। महला पंजवा। राम रमो बड़ पागी हो जल सल मही अल सोए नानक नाम अराध्य है बिघन न लागे कोई पौड़ी। पगता का बोलिया परवान है दरगे पवे थाए पगता तेरी टेक रते सच नाए जिसनो होए कृपाल तिसका दुख जाए। पगत तेरे दयाल ऊ ना मेहर पाए दुख दर्द वड रोग ना पोहे तिस माए। पगता एहो आधार गुण गोविंद गाए सदा सदा दिन रैन इको इक त्याए पीवत अमृत नाम जन नामे रहे अगाए। श्लोक महला पंजवा। कोट बिघन तिस लागते जिसनो विसरै नाओ नानक अन दिन बिलपते ज्यो सुन्ये कर काओ। महला पंजवा। प्री मिलावा जाथी है साई सुहावी रुत कड़ी मोहत ने विसरै नानक रविये नित पौड़ी। सूर वीर वरी आम किने न होड़िए फौज पानी हाठ पंचा जोड़िए दस नारी औ दूत देन चमोड़िए जिन जिन लैन रलाए एहो ए न लोड़िए त्रै गुण इन कै वस किने न मोड़िए परम कोट माया खाई कहो कित बिद तोड़िए गुरपुरा आराध बिखम दल फोड़िए हौ तिस अगे दिन रात रहा कर जोड़िए। श्लोक महला पंजवा। किलविक सबे उतरन नीत नीत गुण गाओ कोट कलेसा उपजै नानक बिसरै नाओ। महला पंजवा। नानक सतगुर पेटे पूरी हो वै जुगत हसंदिया खेलंदिया पैनंदिया खावंदिया विचे हो वै मुक्त पौड़ी। सो सतगुर तन तन जिन परम गर तोड़िया सो सतगुर वाहो वाहो जिन हरस्यों जोड़िया नाम निधान अखुट गुर दे दारुओ महारोग विकराल तिने बिदारुओ पाया नाम निधान बहुत खजानिया जिता जन्म अपार आप पछानिया महिमा कही न जाए गुर समरथ देव गुर पार ब्रह्म परमेश्वर अपरंपर अलख अभेव। श्लोक महला पंजवा। उद्दम करेंदिया जियो तू कमाउंदिया सुख पुंच त्याय दिया तू प्रभु मिल नानक उतरी चिंत। महला पंजवा। शुभ चिंतन गोविंद रमन निर्मल साधु संग नानक नाम ना विसरो एक कड़ी कर कृपा भगवंत पौड़ी। तेरा कीता होए ता काहे डर पिए जिस मिल जपिए नाओ तिस जियो अर्पिए आए चित निहाल साहिब बेसुमार तिसनो पोहे कवन जिस वाल निरंकार सब किछ तिस कै वस ना कोई बारा सो पगता मन उठा सच समाहरा तेरे दास ते आयन तुद तू रखन वालिया सिर सबना समरथ नदर निहालिया। श्लोक महला पंजवा। काम क्रोध मद लोभ मोह दुष्ट वासना निवार राख लियो प्रभ अपने नानक सद बलिहार। महला पंजवा। खांदिया खांदिया मोह कटा पैनंदिया सब अंग नानक त्रिग तिना दा जीविया जिन सच ना लगो रंग पौड़ी। ज्यो ज्यो तेरा हुक्म त्यों त्यों होना जय जय रखे आप तह जाए खड़ोवना नाम तेरे कै रंग दुर्मत तोवना जप जप तुद निरंकार परम पौ खोवना जो तेरे रंग रते से जोन ना जोवना अंतर बाहर इक नैन अलोवना जिनी पछाता हुक्म तिन कदे ना रोवना नाओ नानक बख्शीस।

महला पंजवा कोट बिघन तिस लागते जिसनो विसरै नाओ नानक अंदिन बिलपते जो सुनजे कर काव पौड़ी सिमर सिमर दातार मनोरथ पूरिया इच पुन्नी मन आस गए विसूरिया पाया नाम निधान जिसनो पालदा जोत मिली संग जोत रहया कालदा सुख सहज आनंद उठे तित कर आवन जान रहे जन्म ना तहां मर साहेब सेवक इक इक दृष्टाया गुर प्रसाद नानक सच समाया।

चार पाव दो सिंह गुंग मुख तब कैसे गुन गई है। ऊठत बैठत ठेगा पर है तब कत मूड लुकई है। हर बिन बैल बिराने होई है फाटे नाकट टूटे कादन कोदो को पुसखई है। रहाओ सारो दिन डोलत बन मैया अजो ना पेट अगई है। जन भगतन को कहो ना मानो कियो अपनो पई है। दुख सुख करत महा प्रम बूडो अनिक जोन परमई है। रतन जन्म खोयो प्रभ बिसरियो इहो अवसर कत पई है। प्रमत फिरत तेलक के कप ज्यों

मुसमुसरो है कबीर की माई, ए बारक कैसे जीवे रघुराई। तनना बुनना सब तजो है कबीर, हर का नाम लिख लियो शरीर रहाओ। जब लग तागा बाहो बेई, तब लग बिसरे राम स्नेही।

सतगुरु प्रसाद। जो राज दे ता कमन बढ़ाई, जो पीख मंगावे ता क्या कट जाई। तू हर पज मन मेरे पद निर्बान, बौर ना होए तेरा आवन जान। रहाओ सब ते उपाई परम पुलाई, जिस तू देवे तिसे बुझाई, जिस तू देवे तिसे बुझाई। सतगुरु मिले।

मले ना लाचे पार मलो परमलियो बैठो री आई आवत किने ना पेखियो कवने जाने री बाई कौन कहे किन बूजिए रमैया आकुल री बाई रहाओ जो आकाश है पंखियलो खोज निरखियो ना जाई जो जल माजे माछलो मार्ग पेखनो ना जाई जो आकाश है कड़ुअलो मृग तृष्णा परया नामे चे स्वामी बीठलो जिनती ने जरिया। गुजरी श्री रविदास जी के पदे करती जा इको अंकार सतगुरु प्रसाद दूध तां बच रहे।

और ना फूल अनूप ना पावो रहाओ। मैलागर बेरे है पयंगा, बिख अमृत बसे इक संगा। तूप दीप नई बेदे बासा, कैसे पूज करें तेरी दासा। तन मन अर्पो

अंतरमल निर्मल नहीं कीना, बार पे खुदासी हृदय कमल कट ब्रह्म न चीना, काहे पया सन्यासी। परमे पूली रे जय चंदा, नहीं नहीं चीनिया परमानंदा रहाओ, कर कर खाया पिंड बंडाया, चिंता मुंडा माया, ओम मसान की पसम लगाई, गुर बिन तप्त न पाया, काय जपोरे काय तपोरे काय बिलो वो पानी, लख चौरासी जिन उपाय सो सिमरो निर्वाणी, काय कमंडल कापड़िया रे अड़सठ काय फिराही, बदत त्रिलोचन सुन रे प्राणी, कण बिन गाहो के पाही गुजरी। अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे, सर्प जोन वल वल अवतरे।

बेसवा जोन वल वल अवतरै। अंत काल जो लड़के सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै, सूकर जोन वल वल अवतरै। अंत काल जो

मेरे मन मुख हर हर हर बोलिए, गुरमुख रंग चलू लै राती, हर प्रेम पीनी चोलिए रहाओ, हौ फिरो दीवानी आवल बावल, किस कारण हर टोलिए, कोई मिले मेरा प्रीतम प्यारा, हम किसकी गुलगोलिए। सतगुरु पुरख मनावो अपना, हर अमृत पी चोलिए, गुर प्रसाद।

पूरा कहो हम तन दियो है तार। जो आओ शरण ठाकुर प्रभु तुमरी किस राखो कृपा थार। जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो राखो लाज मुरार। देव गंधारी हर गुण गावे हो किस बलिहारी। देख देख जीवा साध गुर दर्शन। जिस हृदय नाम मुरारी रहाओ तुम पवित्र पावन पुरख प्रभु स्वामी। हम क्यों कर मिले जुठारी। हमरे जिए होर मुख होर हो तो है हम कर्म ही पूर्यारी। हमरी मुदर नाम हर स्वामी रुद अंतर दुष्ट दुष्टारी। ज्यो पावे त्यों राखो स्वामी जन नाम शरण तुम्हारी। देव गंधारी हर के नाम बिना सुंदर है नट्टी। ज्यो बेसुआ के कर पूत जमत है किस नाम परयो है प्रकटी रहाओ। जिनका हृदय नाहे हर स्वामी तिन बिगड़ रूप बिन रखती। ज्यो निगुरा बहु बाता जाने ओह हर दरगह है प्रस्ती। जिनको दयाल हुआ मेरा स्वामी तिना साध जना पग चकती। नानक पतित पवित मिल संगत गुर सतगुर पाछे चुकती। छक्का पहला देव गंधारी महला पंजवा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। माई गुर चरणी चित लाइए प्रभ होए कृपाल कमल प्रगासे। सदा सदा हर त्याय रहाओ अंतर एको बाहर एको सब में एक समाय। कट अव घट गविरा सब खाई हर पूरन ब्रह्म दिखाई है। पुस्तक करे सेवक मुन के ते तेरा अंत ना कतहु पाई है। सुख दाते दुख पंजन स्वामी जन नाम सद बल जाई है। देव गंधारी माई होन हार सो होई है। राज रहो रचना प्रभ अपनी कहां लाभ कहां खोई है रहो। कै फूले आनंद बिखे सोग कब हसनो कब रोई है। कब मुँह मैल परे अभिमानी कब साधु संग तोई है। कोई न मेटे प्रभ का किया दूसर नानी अलोई है। कहो नानक किस गुर बलिहारी जिन पर साध सुख सोई है। देव गंधारी माई सुनत सोच पै डरत। मेर तेर तजो अभिमाना शरण स्वामी की परत रहाओ। जो जो कहे सोई पल मानो नाहे ना का बोल करत। निम्फ न बिसरो हिये मोरे ते बिसरत जाई हों मरत। सुखदाई पूरन प्रभ करता।

कब हूँ। सुख आयो कै परम विनाशी, कृपाल हुए प्रभ जगु, कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ, साध संग तज लभु। देव गुणारी मन जो अपने प्रभ पावो, नीचो नीच नीच अपनाना, होए गरीब बुलावो रहाओ। अंत अडंबर माया के बिरते, तासो प्रीत कटावो, जो अपनो स्वामी सुख माने, ताम है शोभा पावो। दासन दास रे दासन की, जन की टहल कमावो, सर्व सुख बढ़ियाई नानक, जीवो मुखो बुलावो। देव गंगारी प्रभ जी तो प्रसाद प्रम डार्यो, तुमरी कृपा ते सबको अपना, मन में यह विचार्यो रहाओ। कोट पराध मिटे तेरी सेवा, दर्शन दुख उतार्यो, नाम जपत महासुख पायो, चिंता रोग विदार्यो। काम क्रोध लोग झूठ निंदा, साधु संग बिसार्यो, माया बंद काटे कृपा निध, नाम आप उधार्यो। देव गुणारी मन सगल श्यान रही, कर्म कराम हार स्वामी, नाम कोट गही रहाओ। आप मेक पय शरणाई, इन मत साधु कही, प्रभु की आज्ञा मान सुख पाया, परम अंधेरा नहीं। जान प्रवीण स्वामी प्रभु मेरे, शरण कुमारी अही, खिन में खाप उठापन हारे, कुदरत की मना पही। देव गुणारी महला पंजवा, हर प्राण प्रभु सुख दाते, गुरु प्रसाद काहूं जाते रहाओ। संत तुम्हारे तुमरे प्रीतम, तिनको काल न खाते, रंग तुम्हारे लाल कहे हैं, राम नाम रसमाते। महाकिल्बित कोट दोख रोगा, प्रभ दिष्ट तुहारी हाते, सोत जाग हर हर हर गाया, नानक गुरु चरण पराते। देव गंगारी पंजवा, सो प्रभ जत पत पेक्षो नैनी, सुखदाई जीवन को दाता, अमृत जाकी बैणी रहाओ। अज्ञान अंधेरा संति काटिया, जीव दान गुर देनी, कर कृपा कर लीनो अपना, जलते शीतल होनी। तरम तरम किछ उपज ना आयो, नह उपजी निर्मल करनी, छाड़ स्यानक संजम नानक, लागो गुर की चरणी। देव गुंडारी महला पंजवा, हर राम नाम जप लाहा, गत पावे सुख सहज आनंदा, काटे जम के पाहा रहाओ। खोजत खोजत खोज विचार्यो, हर संत जना पह आहा, तिना प्राप्त एवो निधाना, जिनके कर्म लिखा, से बड़ पागी से पतवंते, से ही पूरे साहा, सुंदर सुगड़ स्वरूप ते नानक, जिन हर हर नाम विसाहा। देव गंगारी महला पंजवा, मन कह अंकार अफारा, दुर्गंध अपवित्र अपावन पीतर, जो दिशा सोचारा रहा।

अंग गुंग पिंगल मत हीना त्रव राखो राखन हारा तरण करावन हार समरथा क्या नानक जंत बिचारा देव गंधारी महला पंजा। सो प्रभु नेरे हूते नेरे सिमरत आए गाए गुण गोविंद दिन रैन सांझ सवेरे रहाओ उदर दे दुलभ साधु संग हर हर नाम जपे रह करी न मोहत न चसा बिलंब हो काल नित नित हेरे।

सारे कहो नानक प्रभु मिले मनोहर मन शीतल बिसारे। देव गंधारी महला पंजवा। हर जप सेवक पार उतारे हो दीन दयाल पे प्रभ अपने बहुर जन्म नहीं मारे हो रहाओ। साध संगम गुण गावे हर के रतन जन्म नहीं हारे हो। प्रभ गुण गाए बिखे बन तरिया

ऊंचा आन न संसर को लागे टूट रहे हम ऊंचा रहा बहु व्यंत अत बड़ो बारो खा नहीं अगहूचा तोल न तुलिय मोल न मुलिय कत पाई है मन रूचा खोज असंख्या अनिकृत पंखा बिन गुर नहीं पहुंचा कहो नानक कृपा करी ठाकुर मिल साधु रस पूंचा देव गंगारी महला पंजवा।

अगम अगम्मा कवन महिमा मन जीवे सुन सो चार आश्रम चार ग्रन्ना मुकत पे शेर तो गुर शब्द दृढ़ाया परम पद पाया द्वितीय गए सुख हो कहो नानक पव सागर तरिया हर मृद पाई सहजो राग देव गंधार।

देवगंधारी महला पंजवा जानी न जाई ताकी गात रहाओ कह के थारो हो कर कतराई बिस्मन बिस्मे कहन कहात गण गंधर्व सिद्ध अर साधिक सुर नर देव ब्रह्म ब्रह्मादिक चतुर वेद उचरत दिन रात अगम अगम ठाकुर आगाद गुण बेअंत बेअंत पन नानक कह न जाई परे परा देव गंधारी महला पंजवा त्याए गाए करने हार पौ नाही सुख सहज आनंदा अन कोही रे एक समार रहाओ सफल मूरत गुर मेरे माथ है जब तक देखो तब तक साथ है चरण कमल मेरे प्राण आधार समर्थ अथा बड़ा प्रभु मेरा कट कट अंतर सर्व नेरा ताकि शरण आसर प्रभु नानक जाका अंत ना पारावार देव गंधारी महला पंजवा उल्टी रे मन उल्टी रे सात क्षों कर उल्टी रे झूठे की

देवदारी मेला नावा। जब तुम्हें चूटी देखी प्रीत अपने ही सुख सो सब लागे, क्या दारा क्या नीत रहा, मेरो मेरो समय कैक है, हिस्सों बांधो चीत, अंतकाल संगी नह को ए अचरज है रीत। मन मूरख अजहू ने संगत सिख दे हारो नीत, नानक पौजल पार परे जो गावे प्रभु के गीत। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्भय अकाल अमृत अजूनी सैभंग गुरु प्रसाद राग विहागरा चौक दे महला पंजा।

करिया बहु बंदे करिया फिर साध सफरिया जय कीर्तन हरिया नानक सरनरिया। इको ओंकार सतगुर प्रसाद राग बिहागरा महला नावा हर की गत नह को जाने जोगी जति तपि पचहारे और बहु लोग सियाने रहाओ छिन में राव रंग को कर ली राव रंग कर डारे रीते परे परे सखनावे यह ताको विवहारे अपनी माया आप पसारी आपे देखन हारा नाना रूप तले बहुरंगी सबसे रह न्यारा अगनत अपार अलख निरंजन जे सब जग परमायो सगल परम तज नानक प्राणी चरण ताहि चितलायो। राग बिहागड़ा संत महला चौथा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर नाम से आई है मेरी जिंदड़िए गुरुमुख नाम अमोले राम हर रस बीदा हर मन प्यारा मन हर रस नाम से

मन सिंधियाला फल पाया, हर प्रभ गुण नानक बाणी बोले राम। गुरमत मन अमृत उठदा मेरी जिंदड़ी, मुख अमृत बैन अलाए राम। अमृत बाणी भगत जना की मेरी जिंदड़ी, मन सुनिए हर लिव लाए राम। चिरी विचुना हर प्रभ पाया, गल मिलिया सह

कोई हर सब आन मिलावे राम। हौ मन देवो किस अपना मेरी जिंदगी, हर सब की हर कथा सुनावे राम। गुरुमुख सदा आराध हर मेरी जिंदगी, मन चिंदेड़ा फल पावे राम। नानक पद हर शरणागति मेरी जिंदगी, वड पागी नाम ते आवे राम। कर कृपा प्रब आए मिल मेरी जिंदगी, गुरमत नाम प्रगासे राम। हौ हर बाज उगीनिया मेरी जिंदगी, जो जल बिन कमल।

हर हर नाम ते आए राम, हर ताज वडे लिख पाया मेरी जिंदड़ी, जन नानक नाम समाए राम। हर सेती मन भेदिया मेरी जिंदड़ी, जो बालक लग दुध खीरे राम। हर दिन सांस ना पाई है मेरी जिंदड़ी, जो चात्रिक जल बिन तेरे राम। सतगुर सह नहीं जाए पाओ मेरी जिंदड़ी, गुण दसे हर प्रभ तेरे राम। जन नाम थर में लाया मेरी जिंदड़ी, कर वाजे शब्द कनेरे राम। मन हो मैं विचड़े मेरी जिंदड़ी, बिख बांधे हो मैं जाले राम। जो पंखी कपो

तेरी ये गुर सतगुर वीर लगाया राम, कर कृपा सुन बेनती हर हर जन नानक नाम से आया राम। बिहागड़ा महला चौथा जग सुकृत कीरत नाम है मेरी जिंदड़ी, हर कीरत हर मन तारे राम, हर हर नाम पवित्र है मेरी जिंदड़ी, जब हर हर नाम उधारे राम। सब के लिए पाप दुख कटिया मेरी जिंदड़ी, मल गुरुमुख नाम उतारे राम। वद पुन्नी हर प्याया जन नानक हम मूरख मुगध निस्तारे राम। जो हर नाम से आए दे मेरी जिंदड़ी, तिना पंचे वसगत आए राम। अंतर नव निज नाम है मेरी जिंदड़ी, गुर सतगुर अलख लखाए राम। गुर आशा मनसा पूरिया मेरी जिंदड़ी, हर मिलिया सुख सब जाए राम। गुरमस्तक हर प्रव लिखिया मेरी जिंदड़ी, जन नानक हर गुण गाए राम। हम पापी बलवंशिया मेरी जिंदड़ी, पर द्रोही ठग माया राम। वड पागी गुर पाया मेरी जिंदड़ी, गुर पूरे गत नित पाया राम। गुर अमृत

हम बलिहारी तिनको मेरी जिंदगी जिन हर हर नाम आधारो राम गुर सतगुर नाम दृढ़ाया मेरी जिंदगी बिक औजल तारण हारो राम जिन एक मन हर त्याया मेरी जिंदगी तिन संत जना जयकारो राम नाम तुहार जप सुख पाया मेरी जिंदगी सब दुख निवारण हारो राम सारतना तन

तरस पाताल आकाश है मेरी जिंदगी, सब हर हर नाम से आवे राम। पौन पानी बह संतरो मेरी जिंदगी, नित हर हर हर जस गावे राम। वाण तृण सब आकार है मेरी जिंदगी, मुख हर हर नाम से

जो मनमुख पाप लुभाने राम जन नानक गुरु मिल उबरे मेरी जिंदड़िए हर जप हर नाम समाने राम। सब जाए मिलो सतगुरु को मेरी जिंदड़िए जो हर हर नाम

ते हर दर्दे पैन आया मेरी जिंदड़िए एन सात समाने राम तिनके संग मन उतरे मेरी जिंदड़िए रंग राते नजर

ए मन तन सब अर्पे हा राम, मन तन तन सब प्रभु केरा, क्या को पूज चढ़ावे जिस होए कृपाल दयाल स्वामी, सो प्रभ अंक समावे पाग मस्तक होए जिसके, तिस गुर नाल सुनेहा जन कहे नानक मिल साध संगत, हर हर नाम पूजे हा। दहिस खोजत हम फिरे मेरे लाल जियो, हर पायड़ा कर आए राम, हर मंदर हर जियो साजिया मेरे लाल जियो, हर तिस में रहा समाए राम, सर्वे समाना आप स्वामी गुरुमुख प्रगट होया।

कवन रसना गुण कना प्रम लोभ मोह विकार खाके मिल सकी मंगल गाया नानक पयम पै संत जम पै जिन हर हर संजोग मिलाया। बिहागड़ा महला पंजवा कल कृपा।

कर दया मया गोपाल गोविंद कोई नाही तुझ बिना समरथ अगत अपार पूरन जियो तन तन तुम मना मूरत मुग्ध अनाथ चंचल।

वजी वधाई मन सांस आई मिलिया पुरख अपारी बिनवंत नानक सिमर हर हर इच पुन्नी हमारी।

हर की भगत मंगे, हर भगत पाये प्रभु ते आये, जाए मिलिए हर जना, मान मोह विकार तजिए, अरतु तन तन इहो मना, बब पुरख पूरन गुण संपूरन, प्रम तीत हर

हर हर नाम जपत कुल सगले तारे राम, हर नाम जपत सो हंस प्राणी ताकी महिमा कित गना, हर जिसर नाही प्राण प्यारे चितवंत दर्शन सद मना, शुभ दिवस आए गह कंठ लाए प्रभु ऊंच अगम अपार, बिनवंत नानक सफल।

नानक शरण समरथ स्वामी तैज राखो मोरे। जाके बिछड़िया तिन आप मिलाया राम, साधु संग में हर गुण गाया राम।

मन पर कीक ना आया सहज ना लगो पाओ शब्द साध न पायो मन हथ क्या गुण गाए। नानक आया सो परवान है जो गुरमुख सच समाए।

सतगुर कह तै पन ना करो रह अंक समाए अन दिन सहसा कदे न चूके दिन सब दे दुख पाए काम क्रोध लोभ अंतर सब ला।

बंधन तोड़े सच वसै अज्ञान अंधेरा जाए सब किस देखे किसे का जिनकी आतन साज नानक शरण करतार की करता राखे लाज। पौड़ी जदों आपे साथ किया जदों आपे साथ किया बह करते तदों कुछ ना सेवक दिया तदों क्या को लेवे क्या को देवे जा अवर ना दूजा किया फिर आपे जगत उपाया करते दान सबना को दिया आपे सेव बनायन गुरमुख आपे अमृत पिया आप निरंकार

कथिय ना पाइय अंगदिन रहे सदा गुण गाए जिन कर्म किन ना पायो पौके मुए बिन लाए गुर के शब्द मन तन तुझे आप वसे मन आए नानक नगरी पाये आपे ले मिलाए पौड़ी आपे वेद पुराण सब शास्त्र आप कथे आप पीजे आपे ही दह पूजे करता आप पर पंच करी जय आप परवृत आप निर्वृति आपे अकथ कथिज आपे पुन सब आप कराए आप अलिपत वर्ती जय आपे सुख दुख दे रहे करता आपे बख्श करी जय आपे सुख दुख दे रहे करता आपे बख्श करी जय श्लोक महला तीजा शेखा अंदरों जोर छड़ तू पौ कर चल गवाए गुर कह तै के निस्तरे तैरच निर पौ पाए मन कठोर शब्द तेज तू शांत वसे मन आए शांति विच कार कमावनी।

मनमुख माया मोह है नाम ना लगो प्यार। कूड़ कमावे कूड़ संग्रह कूड़ करे आहार। दिख माया।

को पार पवै, जिना अंदर सच्चा सोए, नाम समाले नाम संग्रह, नामे ही पत होए, नानक सतगुर पाया कर्म परापत होए। पौड़ी आपे पारस आप ताप है, आप की कौन कंचन, आपे ठाकुर सेवक आपे, आपे ही पाप खंडन, आपे सब कट भोग है स्वामी, आपे ही सब अंजन, आप विवेक आप सब देता, आपे गुरुमुख पंजन, जन नानक सालाहे नारजै, तुद करके तू हर सुख दाता वडन। श्लोक महला चौथा।

हक संगत सो मिलाप हुए, लिव कटोरी अमृत परी, पीती कथे विकार पौड़ी। आपे सुर नर गण गंधर्वा, आपे

नानक सतगुरु मिले मेरी प्यास गई, फिर पाया कर आए पौड़ी। आपे संत परम संत सब आपे, आपे ठाकुर दास पाया, आपे दस अठ वर्तु पायन, आप ब्रह्म आप राज लया, आपे मारे आपे छोड़े, आपे बख्शे करे दया, आप अपुल न पुले कभी, सब सच कपाव से सच किया, आपे जिना बुझाए गुरमुख, तिन अंदरों दूजा परम गया। श्लोक महला पंजवा, हर नाम न सुमरे।

लाए हो, सतगुर का पाना चित रखो, संजम सच्चा ने हो, नानक ऐसे सुख है अंदर रखसी, अग्गे हर्षों केल करे हो पौड़ी। आपे पार अठारह बनस्पत, आपे ही फल लाए, आपे माली आप सब सूचे, आपे ही मोह पाए, आपे करता आपे पुगता, आपे दे दिवाए, आपे साहिब आपे है राखा, आपे रहा समाए, जन नानक वडियाई आखे हर करके की, जिसनो तिल ना कमाए। श्लोक महला तीजा। मानस परया आया, मानस परया आए, जित पीते मत दूर होए, बरल पवे विच आए, अपना पराया

सो सब कुछ पावे जिसनो कृपा निरंजन केरी, सोई साओ सच्चा बनजारा जिन वत्तर लदिया हर नाम तन तेरी। सब किसे नो सालायो संतो जिन दूजे

पौड़ी जा आप कृपाल होवे हर स्वामी ता अपना नाउ हर आप जपावे है आपे सतगुरु मेल सुख देवे अपना सेवक आप हर पावे।

वस, सब कुछ तेरे वस है, तू सच्चा साहो, भगत रते रंग एक कै पूरा वे साहो, अमृत भोजन नाम हर रज रज जन साहो, सब पदार्थ पालन।

प्राप्त होए। इस जोगी की नगरी सबको वसे पेटी जोग न होए। नानक ऐसा विरला को जोगी जिस पट प्रगट होए। पौड़ी आपे जंत उपायन आपे आधार आपे सूखम।

सतगुरमुख को हर दिया, सतगुरमुख को हर दिया बुझाए रहाओ। दुहागनी खरिया बिल्ला दिया, सिना मैल न पाए, दूजे पाए करूपी दुख पावे आगे जाए। गुणवंती नित गुण।

हर जियो मन वसाया, हर कर कृपा सतगुरु मिलाया, पूरे सतगुरु हर नाम से आया रहाओ। ब्रह्म वेद वाणी प्रगाती माया मोह पसारा, महादेव ज्ञानी वर्ते कर अपने तामस बहुत अंकारा। किसन सदा अवतारी रूदा, किस लग करे संसार।

साचे नाई रते बैरागी पाइन मोख द्वारा। एक को सच वर्ते सब अंतर सब ना करे सतपाला, नानक इकस दिन मैं अवर ना जाना सब ना दीवान दयाला। वड हंस महला तीजा गुरुमुख सत संजम तत ज्ञान है, गुरुमुख साचे लगे ध्यान है।

गुरुमुख जात पत खट सोए, गुरुमुख अंतर सखाई प्रभ होए, गुरुमुख जिसनो आप करे सो होए, गुरुमुख आप वदाई देवे सोए, गुरुमुख शब्द सच करनी।

ए मन नाम निदान खूप आए अपने गुर की मन लै रजाए रहाओ गुर के शब्द विचों मैल गवाए निर्मल नाम वसे मन आए करमे पूला फिरे संसार मर जन में जम करे खुआर नानक सेवड पागी जिन हर नाम से आया गुर प्रसादी मन वसाया वडहंस महला तीजा हौ में नावे नाल विरोध है दोए ना वसे इक ठाए हौ में विच सेवा ना हो वई ता मन बिरखा जाए हर चेत मन मेरे तू गुर का शब्द कमाए हुक्म मन्ने ता हर मिले ता विच्चों हौ में जाए रहा हौ में सब शरीर है हौ में ओपत होए हौ में वड्डा गुबार है हौ में विच बुझ ना सके कोए हौ में विच पगत ना हो वई हुक्म ना बुझे आ जाए हौ में विच जियो बंद है नाम ना वसे मन आए नानक सतगुरु मिले हौ में गई ता सच वसिया मन आए सच कमावे सच रहे।

मैं अवगुण भरपूर शरीरे हाओ क्यों कर मिला अपने प्रीतम पूरे जिन गुणवंती मेरा प्रीतम पाया से मैं गुण नाही हूँ क्यों मिला मेरी माया हूँ कर साका उपाव बहु तेरे नानक गरीब राखो हर मेरे वडहंस महला चौथा मेरा हर प्रभ सुंदर मैं सार ना जानी हूँ हर प्रभ

ते मैं गुण नाही हौ क्या करी दुहागण, नित सुहागण सदा तिर रावे, मैं कर्महीन तब ही गल लावे, तू फिर गुणवंता हो अवगण आरा, मैं निर्गुण

क्यों कर हर दर्शन पावा हों जाए कुछा अपने सतगुरे गुर पुछ मन मुग्ध समझावा पूला मन समझे गुर शब्दी हर हर सदा से आए नानक जिस नजर करे मेरा प्यारा सो हर चरणी सितलाए हों सब वेश करी तिर कारण जे हर प्रभ साचे भावा तो फिर प्यारा मैं नजर ना देखे हों क्यों कर धीरज पावा जिस कारण हों सिगार सिगारी सो फिर रत्ता मेरा अवरा नानक तन तन तन सुहागन जिन फिर रावेरा सच सवरा हों जाए पुछा सुहाग सुहाग।

सब मन तन जियो करो हर प्रभ का इस मार्ग पैने मिली है आप नड़ा प्रभ नगर कर देखे नानक जोत ज्योति रली है जो हर प्रभ का मैं

हर हर कथा सुनाए। तन तन गुरु गुर सतगुर पूरा नानक मन आस पुजाए। गुर सज्जन मेरा मेल हरे जित मिल हर नाम से आवा। गुर सतगुर पासो हर गोष्ट पूछा कर सांझी हर गुण गावा। गुण गावा नित नित सद हर के मन जीवे नाम सुन तेरा। नानक जित वेला विसरे मेरा स्वामी तित वेले मर जाए जियो मेरा। हर वेखन को सब कोई लोचे सो वेखे जिस आप विखाले। जिसनो नजर करे मेरा प्यारा सो हर हर सदा समाले। सो हर हर नाम सदा सदा समाले। जिस सतगुर पूरा मेरा मिलिया नानक हर जन हर इक्के होए। हर जप हर तेती।

रहाओ लाख भगत जाको आरा दे लाख पति सर कप ही सादे लाख जोगी सर करते जोगा लाख पोगी सर पोगे पोगा कट कट वक्त जाने तोरा है कोई साजन पर्दा तोरा करो जतन जे होए मेहरवाना करो जतन जे होए मेहरवाना ताको दे जियो कुर्बाना फिरत फिरत संतन पे आया दुख परम हमारा सगल मिटाया महल बुलाया प्रभ अमृत पूछा कहो नानक प्रभ मेरा ऊंचा वढांस महला पंजवा तन सोवेला जित दर्शन करना हौ बलिहारी सतगुर चरणा जी के दाते प्रीतम प्रभ मेरे मन जी वे प्रभ नाम चितेरे रहाओ सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी शीतल पुरख दृष्ट सुजानी सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी आए ना जावे मेरा प्रभ अवनाशी तुम मेहरवान दास हम दीना नानक साहिब पर पुर लीना वढांस महला पंजवा तू बेअंत को विरला जाने गुर प्रसाद को

जल सल मैयल रहा पर पूरे निकट वसे नाही प्रभ दूरे जिसनो नदर करे सो त्याए आठ पहर हर के गुण गाए जी जंत सगले प्रत पारे सर्व परयो नानक हर द्वारे वडहंस महला पंजवा उवड़ दाता अंतर जामी सब में रव्या पूरन प्रभ स्वामी मेरे प्रभ प्रीतम नाम आधारा हौ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाओ तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे मन निर्मल होए संता दूरे चरण कमल हृदय उधारे तेरे दर्शन को जाई बलिहारे कर कृपा तेरे गुण गावा नानक नाम जपत सुख पावा वडहंस महला पंजवा साध संग हर अमृत पीजे ना जियो मरे ना कबहू छीजे वड पागी गुर पूरा पाये गुर कृपा ते प्रभु ते आये रहाओ रतन जवाहर हर मानक लाला सिमर सिमर प्रभु कै निहाला जत कत पेखो साधु शरणा हर गुण गाए निर्मल मन करना कट कट अंतर मेरा स्वामी बूठा नानक नाम पाया प्रभ तूठा वडहंस महला पंज

मेरे अंतर लोचा मिलन की प्यारे हो क्यों पाई गुरपुरे जे सो खेल खिलाये बालक रह ना सके बिन खीरे मेरे अंतर भुख ना उतरे अमाली जे सो भोजन मैं नीरे मेरे मन तन प्रेम प्रम का बिन दर्शन क्यों मन तीरे सुन सज्जन मेरे प्रीतम पाई मैं मेलियो मित्र सुखदाता ओह जी की मेरी सब वेदन जाने नित सुनावे हर किया बाता हों एक दिन तिस बिन रह ना सका जो चात्रिक जल को बिल लाता हों क्या गुण तेरे सार समाली मैं निर्गुण को रख लेता हों पई उड़ीनी कंस को अमाली सो फिर कद नैनी देखा सब रस भोगन विसरे बिन फिर किते न लेखा एहो कापड़ तन ना सुखावई।

मैं सब शिंगार बनाया अमाली बिन फिर काम ना आए जा सह बात ना पुछिया अमाली ता बिरथा जोबन सब जाए तन तन ते सुहागनी अमाली जिन सो रहा समाए हों वारिया तिन सुहागनी अमाली तिनके तोवा सद पाए जिचर दूजा परम सा अमाली तिचर मैं जानिया प्रभ।

सच तुन सच शब्द विचारा, अंजन सच सलाना तन तन वड भाग हमारा। मन मेरे साचे नाम विटों बल जाओ, दासन दासा।

बिन साचे होर सलाहना जासे जन्म सब कोए सच खेती सच बीजना साचा वापारा अंदिन लाहा सच नाम तन भगत परे पंडारा सच खाना सच पहनना सच टेक हर नाओ जिसनो बख्शे तिस मिले महली पाए थाओ आवे सच्चे जावे सच्चे फिर जूनी मूल न पाए गुरमुख दर साचे सच्यार है साचे माहे समाए अंतर सच्चा मन सच्चा सच्ची सिफत सुनाए सच्चे थान सच सलाना सतगुर बलिहार है जाओ सच वेला मूरत सच जित सच्चे नाल प्यार सच वेखना सच बोलना सच्चा सब आकार नानक सच्चे मेले ता मिले आपे ले मिलाए ज्यों पावे त्यों।

अधिकाई, काम क्रोध नित्य संतावे, वाहो वाहो सहजे गुण रवि जय, राम नाम इस युग में दुर्लभ है, गुरुमत हर रस की जय, रहाओ शब्द चीन मन निर्मल होवे, ता हर के गुण गावे, गुरुमति आपे आप पछाणे, ता निज कर वासा पावे, ए मन मेरे सदा रंग राते, सदा हर के गुण गाओ, हर निर्मल सदा सुखदाता, मन चिंदिया फल पाओ, हम नीच से उत्तम भय हर की शरणाई, पात्र डुबदा काड लिया साथी वड्याई, विख से अमृत भये गुरमत बुद्ध पाई, अको परमल पये अंतर वासना समाई, मानस जन्म दुलंग है जग में खटियाए, पूरे पाग सतगुर मिले हर नाम से आए, मन मुख पूले बिख लगे पहला जन्म गवाया, हर का नाम सदा सुख सागर साचा शब्द ना पाया, मुखों हर हर सब को करे विरले हृदय वसाया, नानक जिन कै हृदय वसया मोख मुकत तिन पाया।

आइए नाता सो प्रमाण सच कमाइए। जब साच अंदर होए साचा ताम साचा पाइए। लिखे बाजो सुरत नाही बोल बोल गवाइए। जिथे जाए बइए भला कहिए सुरत शब्द लिखाइए। काया कूड़ बिगाड़ काहे नाइए। ता मैं कहया कहन जा तुदे कहाया। अमृत हर का नाम मेरे मन पाया। नाम मीठा मने लागा दुख डेरा ताया। सुख मन मैं आए वस्या जाम तै फुरमाया। नदर तुद अरदास मेरी जिन आप उपाया। ता मैं कहया कहन जा तुदे कहाया। वारी खत्म कढ़ाए किरत कमावना। मंदा किसे नाख झगड़ा पावना। न पाए झगड़ा स्वाम सेती आप वजावना। जिस नाल संगत कर सरीकी जाए क्या रुआवना। जो दे सेना मने कहना आख नाही बावना। वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना। सब उपायन आप आपे नजर करे। कौड़ा कोई ना मांगे मीठा सब मांगे। सब कोई मीठा मांग देखे। खसम पावे सो करे। किछ पुन दान अनेक करनी नाम तुल ना समतरे। नानका जिन नाम मिलिया कर्म होआ तुर कदे। सब उपायन आप आपे नदर करे। वडांस महला पहला करो दया तेरा नाम वखाना। सब उपाय है आप आपे सर्व समाना। सर्वे समाना आप तू है उपाय तंदे लाया। एक तुझ ही किए राजे एक ना

नाम तेरा है साचा सदा मैं मन पाना, दुख गया सुख आए समाना, गावन सुरनर सुगड़ सुजाना, सुरनर सुगड़ सुजान गावे जो तेरे मन पावे, माया मोहे चेते नाही ऐला जन्म गवावे, एक मूड मुगद ना चेते मूले जो आया तिस जाना, नाम तेरा सदा साचा सोए मैं मन पाना, तेरा वक्त सुहा

राजो ता तेरा सदा नहीं चले, एहो कबहु ना जावे। चाकर ता तेरा सोए होवे, जोए सहज समावे। दुश्मन ता दुख ना लगे मूले, पाप नेड़ ना आवे। हौं बलिहारी सदा होवा, एक तेरे नावे। जुगे जुगंतर भगत तुम्हारे, कीरत करें स्वामी तेरे द्वारे।

जुगे जुगंतर भगत तुम्हारे वड्डे मेरे साहेबा अलख अपारा क्यों कर करूं बेनंती हूं आप न जाना नदर करें ता साच पछाना।

आप वाणी किच मन की पूरी है, सारंग ज्यों पग तरे ठिम ठिम आप संदूरे, श्री रंग राती फिरे माती उदक गंगा वाणी, बिनवंत नानक दास हर का तेरी चाल सुहावी मधुराड़ी वाणी। वडहंस महला तीजा संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद, अपने पिरके रंग रती मोये सोभावंती नारे, सच्चे शब्द मिल रही मोये पिर रावे पाए प्यारे, सच्चे पाए प्यारी कंक सवारी हर हर स्यो निहो रचाया, आप गवाया ता पिर पाया गुर के शब्द समाया, सा तन शब्द सुहाई प्रेम कसाई अंतर प्रीत प्यारी, नानक सा तन मेल लई फिर आपे साचे सहे सवारी, निर्गुण वंतड़िए फिर देख हदूरे राम, गुरुमुख जिन्नी रावया मोये फिर रव रहा पर पूरे राम, फिर रव रहा पर पूरे वे खजूरे, जुग जुग एको जाता तन बाली कोली फिर सहज रावे, मिलिया कर्म विदाता जिन हर रस चाखिया शब्द सो पाखिया, हर सर रही पर पूरे नानक कामन सा फिर पावे, शब्दे रह हदूरे, सोहागनी जाए पूछो मुइये जिनी विच्चों आप गवाया, फिर का हुक्म ना पायो मुइये जिनी विच्चों आप ना गवाया, जिनी आप गवाया तिनी फिर पाया, रंग स्यो रलिया माने सदा रंग राती सहजे माती, अंदर नाम वखाने कामन वड पागी अंतर लिव लागी, हर का प्रेम सुभाया नानक कामन सहजे राती, जिन सच सिगार बनाया हौ मैं मार मुइये तू चल गुर के पाए, हर वर रावे सदा मुइये निज कर वासा पाए, निज कर वासा पाए शब्द बजाए, सदा सुहागन नारी फिर रलियाला जोगन बाला, अंदिन कंक सवारी हर वार सुहागो मस्तक पागो, सच्चे शब्द सुहाए नानक कामन हर रंग राती, जा चले सतगुरु पाए। वडहंस महला तीजा गुरुमुख सब वापार पला, जे सहजे की जय राम, अंदिन नाम वखाणी है लाहा हर रस पी जय राम, लाहा हर रस लीजे हर रावी जय, अंदिन नाम वखाणे गुण संग्रह अवगुण विकणे, आपे आप पछाणे गुरमत पाई वड्डी वड्याई, सच्चे शब्द रस पीजे नानक हर की भगत निराली, गुरमुख विरले कीजे गुरमुख खेती हर अंतर बीजिए, हर लीजे शरीर जमाए राम, अपने कर अंदर रस कुंच तू लाहा ले परथाए राम, लाहा परथाए हर मन वसाए, तन खेती वापारा हर नाम से आए मन वसाए, बूजे गुर विचारा मन मुख खेती वणज कर थाके, कृष्णा पुख न जाए नानक नाम बीज मन अंदर, सच्चे शब्द सुहाए हर वापार से जन लागे, जिना मस्तक मणि वड पागो राम, गुरमति मन निज कर वस्या सच्चे शब्द बैरागो राम, मुख मस्तक पागो सच बैरागो, साज रते विचारी नाम बिना सब जग बोराना, शब्दे हो मैं मारी साचे शब्द लाग मत उपजे, गुरुमुख नाम सुहागो नानक शब्द मिले पौ पंजन, हर रावे मस्तक पागो, खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वड्याई राम, गुरमति हुक्म बूझिए हुक्मे मेल मिलाई राम, हुक्म मिलाई सहज समाई गुर का शब्द अपारा, सच्ची वड्याई गुर ते पाई।

सच सवारण हारा। कौ पंजन पाया आप गवाया, गुरमुख मेल मिलाई कहो नानक नाम निरंजन। अगम अगोचर हुक्मे रहा समाई, स्वधंस महला तीजा। मन मेरिया तू सदा सच समाल जियो, अपने कर तू सुख वसै कोहे ना सके जम काल जियो। काल जाल जम जोहे न साके, साचे शब्द लिव लाए सदा सच रता मन।

अपागे नानक सहज सेवे गुर अपना से पूरे वडभागे वडहंस महला तीजा रतन पदार्थ वणजिए सतगुरु दिया बुझाई राम लाहा लाभ हर भगत है गुण में गुणी समाई राम गुण में गुणी समाए जिस आग बुझाए लाहा भगत है सारे बिन भगती सुख ना होई दूजे पत खोई गुरमत नाम आधार।

आए माया मो सब दुख है खोटा एव वापारा राम कूर बोल बिख खावणी बहु वधे विकारा राम बहु वधे विकारा सहसा एव संसारा बिन नावे पत कोई पढ़ पढ़ पंडित बाज बखाने बिन बूझे सुख न होई आवन जाना कदे ना चुके माया मोह प्यारा माया मोह सब दुख है खोटा एहो वपारा खोटे खरे सब परखियन तित सच्चे कै दरबारा राम खोटे दरगे सुतियन उबे करन पुकारा राम उबे करन पुकारा मुग्ध गवारा मनमुख जन्म गवाया विख्या माया जिन जगत कुलाया साचा नाम न पाया मनमुख संता नाल वैर कर दुख खटे संसारा खोटे खरे परखियन तित सच्चे दरबारा राम आप तरे किस आखी है और करना किछु न जाई राम जित खा दे तित लाए सी ज्यो तिस दी वडे आई राम ज्यो तिस दी वडे आई आप कराई वरी आम ना फुसी कोई जग जीवन दाता कर्म विदाता आपे बसे सोई गुर प्रसाद जी आप गवाई है नानक नाम पत पाई आप करे किस आखी है होर करना किछु न जाई वडंस महला तीजा सच्चा सौदा हर नाम है सच्चा वापारा राम गुरमति हर नाम वणजी है अतमोल अफारा राम अतमोल अफारा सचवा पार लगे वडपागी अंतर बाहर पगती राते सच नाम लिवलागी नदर करे सोई सच पाए गुर के शब्द विचारा नानक नाम रते नहीं सुख पाया सच है के वापारा हों में माया मैल है माया मैल परी जय राम गुरुमति मन निर्मला रसना हर रस पी जय राम रसना हर रस पी जय अंतर पी जय साथ शब्द विचारी अंतर फूटा अमृत परया शब्दे कार्ड पिए पनिहारी जिस नजर करे सोई सच लागे।

पंडित जोत की सब पढ़ पढ़ कूक दे, किस पे करें पुकारा राम, माया मोह अंतर मल लागे, माया के वा पारा राम, माया के वा पारा जगत प्यारा, आवन जान दुख पाए, बिख का कीड़ा बिख्यो लागा, बिष्टा माए समाए, जो तुर लिखिया सोए कमावे।

गुरमुख ए मन रंगी है दूजा रंग जाई राम है, दूजा रंग जाई साच समाई सच परे भंडारा। गुरमुख होवे सोई बूझे सत सवारण हारा, आपे मेले सो हर मिले।

सब बरल है, दूजे पाए कुआई राम। माता पिता सब हेत है, हेते पलचाई राम। हेते पलचाई पूर्व कमाई, मेट न सके कोई। जिन सृष्ट साजी सो कर वेखे, तिस जेवड़ अवर न कोई। मन मुख अंधा तप तप खपे, बिन शब्द सांत न आई। नानक बिन नावे सब कोई पुला, माया मोहे खुआई। ए जगत जलता देख के पज पे हर सरनाई राम। अरदास करी गुर पूरे आगे, रख ले वो देहो वडाई राम। रख ले वो सरनाई हर नाम वडाई, तुद जेवड़ अवर ना दाता। सेवा लागे सेवड़ पागे, जुग जुग एको जाता। जत सत संजम कर्म कमावे, बिन गुर गत नहीं पाई। नानक तिसनो शब्द बुझाए, जो जाए पवे हर सरनाई। जो हर मत दे सा उपजे, होर मत ना काई राम। अंतर बाहर एक तू, आपे दे बुझाई राम। आपे दे बुझाई अवर ना पाई, गुरमुख हर रस चाखिया। दर साचे सदा है साचा, साचे शब्द सुबाखिया। कर मैं निज कर पाया, सतगुरु दे वडाई। नानक जो नाम रते सही महल पाइन, मत परवान।

नाम दृढ़ाए, जप हर हर नाम विगसे राम। जप हर हर नाम कमल प्रगासे, हर नाम नवंग निद पाई। हौ मैं रोग गया दुख लाथा, हर सहज समाध लगाई।

गुरु जेवड़ दाता मैं अवर न कोई, वडहंस महला चौथा। हौ गुर बिन खरी निवाणी राम, जग जीवन दाता गुर मेल समाणी राम। सतगुर मेल हर नाम समाणी, जप हर हर नाम ते आया, जिस कारण हो तू सुनेंदी सो सज्जन हर कर पाया।

हर हर नाम मेरा प्राण सखाई, किस दिन करी निमख नहीं जीवा। हर हर कृपा करे सुखदाता, गुरुमुख अमृत पीवा। हर आपे सरदा लाए मिलाए, हर आपे आप सवारे। हों वारी दुर्सिख ली त्यारे। हर आपे पुरुष निरंजन सोई राम। हर आपे मिले करे सोई राम। जो हर प्रभ पावे सोई होवे, अवर न करना जाए। बहुत स्याणप लया न जाए, कर था के सब चतराए। गुर प्रसाद जन नानक देखिया, मैं हर दिन अवर न कोई। हर आपे पुरुष निरंजन सोई। वडहंस महला चौथा। हर सतगुर मेल, हर सतगुर चरण हम पाया राम। सिमर अज्ञान गवाया, गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम। गुर ज्ञान अंजन सतगुरु पाया, अज्ञान अंधेर

तिन नेफल जन्म सब बिरथा गवाया राम। नेफल जन्म तिन बिरथा गवाया ते साकत मोए मर चूरे। कर होंदे रतन पदार्थ भूखे भागहीन हर दूरे। हर हर तिन का दर्श ना करियो जिनी हर हर नाम ना प्याया। जिनी दर्शन सतगुरु पुरख ना पाया। हम चात्रिक दीन हर पा

गुरु नाम दृढ़ाया, हर हर नाम हर सती, हम शात्रिक दीन हर पास बेनंती। वडहंस महला चौथा, हर कृपा कर सतगुरु मेल सुखदाता।

समाप्त कर जाने। हर हर नाम हर राता, हर कृपा कर। गुरु सतगुरु मेल सुखदाता, सुन गुरुमुख नाम, सब दिन से हो मैं पापा राम।

ना जम कंकर मार बिदारे। हर प्रभ कृपा तारी सुख दाते, दुख लाते पाप सुन पापा। सुन गुरुमुख नाम सब दिन से हो मैं पापा। जप हर हर नाम मेरे मन पाया राम। मुख गुरुमुख जप सब रोग गवाया राम। गुरुमुख जप सब रोग गवाया हरोग तय शरीरा। अन दिन सहज समाध हर लागी हर जपया गहर गंभीरा। जात अजात नाम जिन पाया तिन परम पदार्थ पाया। जप हर हर नाम मेरे मन पाया। हर तारो कृपा कर कृपा लेहो उबारे राम। हर तारो कृपा।

विखंपयंगा अनतरंगा गुरुमुख पार लंघाए हर गोहित चढ़वड़ पागी लंगे गुरु सेवट शब्द कराए हम दिन हर रंग हर गुण।

तन प्रेम हर हर लाए चावक मन जिने गुरुमुख जी किया अकरो कढ़ावे शब्द पावे अपियो हर रस पीतिया सुन श्रवण बाणी गुरु खाणी हर रंगे तुरी चढ़ाया महामार्ग पंथ बिखड़ा जन नानक पार लंघाया कोड़ी तेजन दे राम पाया राम जित हर प्रभ जापे सा तन तन तुखाया राम जित हर प्रभ जापे।

हर नाम गत मिट जानिया, सब जन्म सफलो किया करते हर राम नाम वखानिया। हर राम नाम सलाए हर प्रभु हर भगत।

हर गाय मंगल राम नामा, हर सेव सेवक सेव की, प्रभ जाय पावे रंग महली, हर रंग माने रंग की, गुण राम गाए मन सुवाए,

जिन हर हर रसना पनया राम सो सह सुहेले गुण अमोले जगत उदाहरण आए तह बोहे सागर प्रभ चरणा केते पार लंघाए। जिन कहो कृपा करी मेरा ठाकुर तिनका लेखा ना गणिया कहो नानक तिस कोल कुमाई जिन प्रभ श्रवणी सुनिया। श्लोक लोइन लोई जिठ प्यास ना बुझे मुकणी नानक।

ठाकुर माने से प्रधाने हर सेती रंग राते हर रसय अघाए सहज समाए कट कट रमैया जाते से सज्जन संत से सुखिए ठाकुर अपने भाने कहो नानक जिन हर प्रभ डिठा तिन कह सत गुरु बाणे श्लोक।

ताख अगाने हर हर अमृत मीठा राम हर मने मीठा प्रभु तू था अमयोग उठा सुख करे दुख नाश परम विनाश संते जप जगदीश ईश्वर जय जय मोह रहत विकार था के पंच ते संग टूटा कहो नानक तिन कनिये वंजा जिन कट मेरा हर प्रभु उठा श्लोक जो लोड़ींदे राम सेवक से कांडया नानक जाने सत साई।

आप निरालम कंधे बांधी कर हुकम छडावन हारो अज कल कर दिया काल दिया पै दूजे पाए विकारो जम मार्ग पंथ ना सुजई उजड़ अंग गुबारो वा ना जल लेप तुलाइया ना भोजन परकारो वा भोजन पाओ ना।

वडहंस है, सच नाम उद्धार, सत संग्रह है, सद सत रहे, सच्चे नाम प्यार, सदा निर्मल मैल न लग गई, नदर की करतार, नानक हो तिन

के मुख गिरात ऐठे दुखो दुख कमावना मोया नरक निवास। मन मुख मोहे मैले शब्द ना जानने काम क्रोध विनाश सतगुर का पौछ।

के सतगुरु मिले उल्टी भाई भाई जीवत मरे तां बूझ पाए सो गुरु सो सिख है पाई जिस ज्योति ज्योत मिलाए मंगे हर हर सेती लिवलाए मन हर जख मीठा लागे पाई

राम नाम लिव लाए, नानक नाउ बेड़ा नाउ सुलहड़ा, पाई जित लग पार जन पाए। श्लोक महला तीजा, हर पहला

सतगुरु सेवै तां सुख पावै, नाहै तां जाहेगा जन्म गवाए। रहाओ त्रै गुण ताप बहु कर्म कमावै, हर रस साधना आया संध्या तर्पण करें गायत्री, बिन बूझे दुख पाया। सतगुरु सेवे सो वड भागी, जिसनो आप मिलाए, हर रस पी जन सदा तृप्ता से विचों आप गवाए। यह जग अंधा सब अंग कमावे, बिन गुर मग न पाए, नानक सतगुर मिले ता

सुन उपजे दतमत तब ही पाए हर का नाम सच्चा मन वस्या नामे नाम समाए बिन सतगुरु सब जग बोराना मन मुख अंधा शब्द ना जाने झूठे परम पुला ना रहाओ त्रैगुण माया परम पुलाया होमे बंधन कमाए जमन मरण सिर ऊपर उबो गर्भ जोन दुख पाए त्रैगुण वर्ते सगल संसारा होमे विच पत खोई गुरमुख होवे चौथा पद चीने राम नाम सुख होई।

आपे सेवा लाएंदा प्यारा आपे भगत उमाहा आपे गुण गावाएंदा प्यारा आपे शब्द समाहा आपे लेखन आप लिखारी आपे लेख लिखाहा मेरे मन जप राम नाम उमाहा अंदिन अंद होवे वडपागी ले गुर पूरे हर लाहा रहाओ आपे गोपी कान है प्यारा बन आपे गऊ चराहा आपे सावल सुंदरा प्यारा आपे वंश वजाहा कुवलिया पीड़ आप मराएदा प्यारा कर बालक रूप पचाहा आप अखाड़ा पाएदा प्यारा कर वेखे आप चोजाहा कर बालक रूप उपाएदा प्यारा चंदूर कंस केस माराहा आपे ही बल आप है प्यारा बल पन्ने मूरख मुगदाहा।

गोविंद प्रीत लगी अत्यारे, जब सत संग पए साधु जन, हृदय मिलिया सांत मुरारे। रहाओ तू हृदय गुप्त वसै।

हर रस अंतर पाई, नानक दीन दयाल पए हैं, कृष्णा शब्द बुझाई। सोरठ महला चौथा पंच पदा, अचर चरै ता सिद्ध होई, सिद्धि ते बुद्ध पाई, प्रेम के सर लागे तां पीतर, तां श्रम काटिया जाई। मेरे गोविंद अपने जन को देह वडियाई, गुरमत राम नाम पर गासो, सदा रहूं शरणा।

ओका हर नाम समाना, जिसकी वक्त सोई प्रभ जाने, जिसनो देश पाए वक्त अनूप अगम अगोचर, गुरपुरा अलख लखाए।

सोसोखा पूरलसी निर्भव निरंकार पावखंडन सब सुख नव निर्देशी हर जियो तेरी दासी राजा मानस बपड़ा क्या सालाही क्या तिस्ता मोहताजा रहाओ जिन हर त्याया सब किस तिस्ता तिसकी पूत गवाई ऐसा तन दिया सुख दाते निखुट न कभी जाई आनंद भया सुख सहज समाने सतगुर मेल मिलाई मन नाम जप नाम आराध अंदिन नाम वखाणी उपदेश सुन सा

सच सदा है निर्मला भाई, निर्मल साते सोए, नजर करे जिस आपनी पाई, किस प्राप्त होए। कोट मदे जनता ये भाई, विरला कोई कोए, नानक रत्ता सत नाम भाई, सुन मन तन निर्मल होए। सोरठ महला पंजवा दो तुके

बुझाई सेवो साध गहो ओट चरना न बिचरे मोत चसाई रहाओ। रे मन मुग्ध अचेत चंचल चित तुम ऐसी हृदय न आई प्राण पत त्याग आन तू रचिया उर्जो संग बैराई सोग न व्यापे आप न खापे साध संगत बुद्ध पाई साखत का बतना यूं जानो जैसे पान चुराई कोट पराध अछाद्यो ए मन कहना कछु न जाई जन नानक दीन शरण आयो प्रभ सब लेखा रखो उठाई। सोरठ महला पंजवा पुत्र कलत्र लोक गृह बनता माया संबंधे ही अंत की बार को खरा न होसी सब मिथ्या अपने ही। रे नर काहे पपोरो देही उड़ जाएगो तू।

जन नानक प्रभ कृपा पारी, मैं सतगुरु ओट गए ही। सोरठ महला पंजवा, गुरपुरा पे प्यो वड़ पागी, मने पया प्रगासा, कोई न पहुंचन हारा दूजा, अपने साहिब का भरवासा, अपने सतगुरु कै बलिहा।

एक राम नाम आधारा, सकल दर्शन अकाल मूरत, प्रभ है बिहो नहारा। कंठ लगाए अपने जन राखे, अपनी प्रीत प्यारा। वड्डी वड्याई अचरज शोभा, कारज आया रासे। नानक तो गुरु पूरा पेटे हो, सगले दुख विनाशे। सोरठ महला पंजवा, सुखिये को पेखे सब सुखिया, रोगी के पाने सब रोगी। करण परावन हार स्वामी, आपन हाथ संजो।

जन सेवा हर कीर्तन रस गाये, इहां सुख आगे मुख उजल, जन का संगवड पागी पाये। रचना एक अनेक गुण पूरन, जन की केतक उपमा कहिए। अगम अगोचर सब अविनाशी, शरण संतन की लहिए। निर्गुण नीच अनाथ अपराधी, ओट संतन की आही। बूढ़क मोह गृह अंध कूप में, नानक लेहो निवाही। सोरठ महला पंजवा सर पहला, जाके हृदय वस्या तू करते, ताकी तै आस पुजाई। दास अपने को तू विसरै नाही, चरण कूर मन पाई। तेरी अकथ कथा कथन ना जाई, गुण निदान सुख दाते स्वामी। सबते ऊंच बढ़ाई रहाओ, सो सो कर्म करत है प्राणी, जैसी तुम लिख पाई। सेवक को तुम सेवा दीनी, दर्शन देख अभाई। सर्व निरंतर तुम्हें समाने, जाको तुद आप बुझाई। गुर प्रसाद मिट्यो अज्ञाना, प्रगट पय सब ठाई। सोई ज्ञानी सोई प्यानी, सोई पुरख सुभाई। कहो नानक जित पय दयाला, ताको मन ते बिसर न जाई। सोरठ महला पंजवा, सगल समग्री मोहे व्यापी, कब ऊंचे कब नीचे। शुद्ध न होई है काहू जतना, ओड़क को ना पहुँचे। मेरे मन साधु शरण छुटकारा, बिन गुर पूरे जन्म मरण न रही। फिर आवत बारो बारा रहाओ, ओहो जो करम पुलावा कहियत। तिन में उर्जो सगल संसारा, पूरन भगत पुरख स्वामी का। सर्व थोक ते न्यारा, निंदो नाही काहू बात है, एहो खसम का किया। जासो कृपा करी प्रभ मेरे, मिल साध संगत ना ओलिया। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर, सबना कर तू उधारा। कहो नानक गुर बिन नहीं करिए, एह पूरन तत्व बिचारा। सोरठ महला पंजवा, खोजत खोजत खोज बिचार्यो, राम नाम सत सारा। किलबिख काटे निमख अराध्या, गुरमुख पार उतारा। हर रस पीवो पुरख ज्ञानी, सुन सुन महा कृपत मन पावे। साधु अमृत बानी रहाओ, मुक्त पुगत जुगत सच पाये। सर्व सुखा का दाता, अपने दास को भगत दान देवे। पूरन पुरख विधाता, श्रवणी सुनिए रसना गाये, हृदय त्याये सोई। करण कारण

प्रभ शरणा प्रगटे पले संजोगा। प्रभ बाणी शब्द सुवाख्या गावो सुनो पढ़ो नित भाई। गुर पूरे तू राख्या रहाओ साचा साहिब अमित वडाई। तगत वचल दयाला संता की पैज रखबा आया आग बिरद प्रतपाला। हर अमृत नाम पोजन नित पुंचो सर्व वेला मुख पावो। जरा मरा पाप सब नाखा गुण गोविंद नित गावो। सुनी अरदास स्वामी मेरे सर्व कला बने आई। प्रगट पई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वडियाई। सोरठ महला पंजवा कर दूजा चौपदे

सागर सर्व घटा भरपूरी रे, देखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जानिया दूरी रे। हर बेअंत हूँ मित्र वर्णो, क्या जाना होए कैसो रे, करो बेनती सतगुर अपने, मैं मूर्ख देओ उपदेशो रे। मैं मूर्ख की के तक बात है, कोट पराजी तरियारे, गुरु नानक।

सहज सैन अर सुखमन नारी ऊद कमल दिखाया। देखो अचरज भया जे ठाकुर को सुनत अगाध बोध सो हृदय गुरु दया रहाओ। जो दूत मोह बोध संतावत ते भयानक भया करह बेनती राख ठाकुर ते हम तेरी शरणया। जह पंडार गोविंद का खुलिया जे प्राप्त ते लया एक रतन मोको गुरु दीना मेरा मन तन शीतल थया। एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर न हुआ भगत पंडार गुरु नानक को सौंपे फिर लेखा मूल न लया। सोरठ महला पंजवा चरण कमल स्यों जा का मम लीना सेजन कृपित अभाई गुण अमोल जिस हृदय न वस्या ते नर कृष्ण त्रिखाई। हर आराधे अरोग अनुदाई जिसनो विसरे मेरा राम स्नेही किस लाख बेदन जन आई रहाओ। जिन जन ओट गई प्रभ तेरी से सुखिए प्रभ सरने जे नर बिसरिया पुरख विधाता ते दुखिया मैं गणने। जिन गुरमान प्रभु लिवलाए तेह महा आनंद रस करया जे प्रभु विसार गुर ते बेमुखाए ते नरक कोर में परया। जितको लाया तित ही लागा तैसो ही वरतारा नानक सह पकरी संतन की हृदय पै मगन चरनारा। सोरठ महला पंजवा राजन में राजा उरझायो मानन में अभिमानी लोभन में लोभी लोभायो त्यों हर रंग रचे ज्ञानी। हर जन को यही सुहावे तेक निकट कर सेवा सतगुरु हर कीर्तन ही तृप्त पावे रहाओ। अमलम स्यों अमली लग पायो कूमन कूम प्यारी खीर संग बारक है लीना प्रभ संत ऐसे हितकारी। विद्या में विद्यांशी रचिया नैन देख सुख पावे जैसे रखना साग लुभानी त्यों हर जन हर गुण गावे। जैसी पूख तैसी का पूरक सगल कटा का स्वामी नानक प्यास लगी।

हम मूर्ख तुम चतुर सियाने, तू सर्व कला का ज्ञाता माधो, हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन।

तुम बांध दे हो मेहरवाना, तुम करो कला हम पलो न जाने, तुम सदा सदा दयाला, तुम सुखदाई पुरुष बिधाते, तुम राखो अपने बाला, तुम निधान अटल सुल्तान, जी जंत सब जाते, कहो नानक हम यह हवाला, राख संतन के पाछे, सोरठ महला पंजवा कर दूजा, माप गर्भ में आपन सिमरन दे, कह तुम राखन हारे, पावक सागर अथा

जाने तू दाता मांगन को सगली दान दे तब कौने खिन में अवर खिने में अवरा अचरज चल तुम्हारे रूड़ो गूड़ो गहर गंभीरो ऊंचो अगमा पारे साज संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी अनद पया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी सोरठ महला पंजवा हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की शरणा संत हमारी ओट सतानी संत हमारा गहना हम संतन स्यो बन आई पूरब लिखिया पाई यह मन तेरा भाई रहाओ संतन स्यो मेरी लेवा देवी संतन स्यो व्योहारा संतन स्यो हम लाहा खाटिया हर पगत परे भंडारा संतन मोको पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का पोखा कर्म राय अब कहाँ करेगो जो फाटियो सगलो लेखा मां आनंद पाए सुख पाया संतन के प्रसादे कहो नानक हर्षो मन मानिया रंग रते विस्मा दे सूरठ महला पंजवा जेती समगरी देखो रे नर तेती ही छड़ जानी राम नाम संग कर व्योहारा पावे पर निर्वाणी

तेरा अंग मंगल विश्रामा, मन बाचत फल मिले अचिंता, पूरन होए कामा। इहा सुख आ गए मुख उजल, मिट गए आवन जाने, निरपो पे हृदय नाम वस्या, अपने सतगुर के मन पाने। उठत बैठत हर गुण गावे, दुख दर्द क्रम सागा, कहो नानकता के पूर करमा, जासा गुर चरनी मन लागा। सोरठ महला पंजवा, रतन छाड़ कौडी संग लागे, जाते कछु न पाये, पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर, मेरे मन सदा से आये। सिमरो हर हर नाम परानी, बिनसै काची दे अज्ञानी। रहाओ मृग कृष्णा अर सुपन मनोरथ, ताकि कछ न गढ़ाई, राम भजन बिन

साथी दरगह माने गुण गावत आराद नाम हर आए अपने खाने जय जयकार करे सब उस्तक संगत साध प्यारी सब गलिहार जाऊं प्रभ अपने जिन पूरन पैस सवारी गोष्ठ ज्ञान नाम सुन उदरे जिन जिन दर्शन पाया पयो कृपाल नानक प्रभ अपना अनुज सेती पर आया सूरठ महला पंजवा प्रभ की शरण सगल पहला से दुख बिन से सुख पाया दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुर त्याया प्रभ जियो तू मेरो साहिब दाता कर कृपा प्रभ दीन दयाला गुण गावो रंगरा।

मनवस्या विनाशी ताको विघ्न ना को लावे जो सतगुरु अपने राखे चरण कमल बसेरिद अंतर अमृत हर रस ताके कर सेवा सेवक प्रभ अपने जिन मन की छिप जाई नानक दास ताके बलिहारे जिन पूरन पैज रखाई सोरठ महला पंजवा माया मोह मगन अंधियार है देवन हार न जाने जियो पिंड साब जिन रचिया बल अपनो करमाने मन मूड़े देख रहे हो प्रभु स्वामी जो किछ करे सोई सोई जाने।

पाये गुरु दुआरी, कहो नानक जिस मस्तक लिखिया तिस गुर मिल रोग बिदारी। सोरठ महला पंजवा हर दूजा दो पदे इको अंकार। सतगुर प्रसाद सगल बनस्पत में बैसंतर सगल दूध में किया, ऊंच नीच में जोत समानी कट कट माधो जिया। संतो कट कट रहा समान।

स्वर्ग निवासी सदा अलेपा सब में रहा समायो सोरठ महला सन्यवा जाके सिमरण होए अनंदा बिन से जन्म मरण पै दुखी चार पदार्थ नवनिध पावे बहुर ना कृष्ण।

रहाओ। सांत पावे होवे मन शीतल, अजन नाम कर तुखी, गुरु नानक को प्रभु दिखाया, जल थल से पवन रुखी। सूरत महला पंजवा, काम क्रोध लोभ झूठ निंदा, इनके आप छुड़ाओ, ए पीतर ते इनको डारो, आपन निकट बुलाओ, अपनी विद आप जनाओ, हर जन मंगल गाओ।

जगत जीवन कैसे पावे। सूरठ मैला पंजवा अविनाशी जीवन को दाता सिमरत फरनल कोई गुण निदान भगतन को बर्तन बिरला पावे कोई। मेरे मन जत गुरु गोपाल प्रभ सोई जाकी शरण पै सुख पाये बहुत दुख न होई। रहाओ वडभागी साथ संग प्राप्त तिन पेटत दुर्मत खोई तिन की पूर्ण।

सांत सहज आनंद नाम जप वाजे अनहद तूरा रहाओ। मिले स्वामी प्रीतम अपने कर मंदर सुखदाई, हर नाम निधान नानक जन पाया सगली इच्छ पुजाई। सोरठ महला पंजवां गुर के चरण बसे रिद पी

दून चौनी दे वड्याई शोभा नीता नीत रहाओ। जी जंत प्रभ सगल उधारे दर्शन देखन हारे, गुरपूरे की अचरज वड्याई नानक सद बलिहारे। सोरठ महला पंजवां, संचन करो नाम तन निर्मल थाती अगम अपार, बिलिश बिनोद आनंद सुख मानो खाए जीवो सिख परवार। हर के चरण कमल आधार संत प्रसाद पायो।

नानक बिघन न लागे को, मेरा प्रभु हुआ कृपाला। सोरठ महला पंजवा, साधु संग भया मन उद्दम, नाम रतन जस गाई, मिट गई चिंता

कीमत कहन न जाई, नानक भगत पए अविनाशी, अपना प्रभु पया सहाय। सोरठ महला पंजवा, गए कलेश रोग सब नासे।

सिमर सिमर गुर सतगुरे अपना सगला दुख मिटाया, पाप रोग गए गुर बचनी मन इच्छे फल पाया। मेरा गुर पूरा सुखदाता करण कारण समरथ स्वामी, पूरन पुरख विधाता रहाओ। आनंद विनोद मंगल गुण गावो गुरु नानक भय दयाला, जय जय तार पै जग पीतर हुआ पार ब्रह्म रखवाला। सोरठ मैला पंजवा हमरी गणत ना गणिया काई अपना बिरद पछाण, हाथ दे राखे कर अपने सदा सदा रंगमान। साचा साहिब सद मेरवान बंद पाया मेरे।

ਨਾਨਕ ਸਦਗੁਰਬਾਣ। ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਦੁਰਤ ਗਵਾਇਆ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆ।

राजे राम की रखवाली, सुख सहज आनंद गुण गावो, मन तन देह सुखाली रहाओ। सतत उदाहरण सतगुरु मेरा, मोहे तिसका परवासा, बख्श ले सब सत।

मेरे प्यारे हर गोविंद गुर राखिया वड्डी वड्याई नानक करते की साच शब्द सत पाखिया सोरठ महला पंजवा अये कृपाल स्वामी मेरे तिथा चै दरबार सतगुर ताप गवाया।

हर के चरण हृदय उर्धार, सदा सदा प्रभ सिमरिए पाई, दुख किलबिख काटनहार। रहाओ तिसकी सरणी उबरे पाई, जिन रचिया सब कोए, करण कारण समरथ सो पाई, सच्चे सच्ची।

पाई सुख सागर प्रभ विसरो नाही मन चिंदियड़ा फल पाई रहाओ सतगुर पूरे ताप गवाया अपनी कृपा धारी पार ब्रह्म प्रभ पे दयाला दुख मिटिया सब परवारी सर्व निधान मंगल रस रूपा हर का नाम आधारो नानक पत राखी परमेश्वर उदरिया सब संसारो सोरठ महला पंजवा मेरा सतगुर रखवाला होआ पार कृपा प्रभ हाथ दे राखिया हर गोविंद नवा निरोआ रहाओ साप दया प्रभ आप मिटाया जन की इलाज रखाई साध संगत ते सब फल पाए सतगुर कै बल जाए हलत पलत प्रभ दोवें सवारे हमरा गुण अवगुण ना बिचारिया अटल बचन नानक गुर तेरा सफल कर मस्तक धारिया सोरठ महला पंजवा जी जंत्र सब तिसके किए सोई संत सहाई अपने सेवक की आपे राखे पूरन पई बढ़ाई पार ब्रह्म पूरा मेरे नाल गुर पूरे पूरी सब राखी होए सर्व दयाल रहाओ अंदिन नानक नाम ध्याए जी प्राण का दाता अपने दास को कंठ लाए राखे जो बारिक पित माता सोरठ महला पंजवा कारतीजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिल पंचो नहीं सहसा चुका।

गुर वड्याई काकी कीमत कहन ना जाई, सिर साहा पात साहा गुर पेटत मन ओ माहा, सगल पराशत लाथे मिल साध संगत कैसा थे, गुण निधान हर नामा जप पूरन होए कामा, गुर कीनो मुकुट द्वारा सब सृष्ट करे।

कृपा तारी, प्रभु पूरी लोच हमारी, कर स्नान गृह आए, आनंद मंगल सुख पाए। संतो राम नाम निस्तरिये, उठत बैठत हर हर त्याये। हम दिन सुकृत करिये रहाओ, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, को वड भागी पाए। कोट जन्म के किल विखनासे, हर चरणी सिसलाए। उस्तत करो सदा प्रभ अपने।

विघ्न विनाशन सब दुख नाशन सतगुर नाम दृढ़ाया कोए पाप है सब पावन जन नानक सुख कर आया। सोरत मैला पंजवा साहिब गुनी गहेरा कर लखर सब तेरा रखवाले गुर गोपाला सब जी भय दयाला जब अनद रहो गुर चरणा पौ कत है नहीं प्रभ सरणा रहाओ। तेरिया दासा हृदय मुरारी प्रभ अवचल नीव उसारी बल तन तक।

आई सास सास प्रभु त्याये हर मंगल नानक दाइये सोरठ महला पंजवा सुख सहज आनंदा प्रभ मिलियो मन पावंदा पूरे गुर कृपा तारी तागत पई हमारी हर की प्रेम।

हर रसक रसक गुण गाया। प्रभ काटिया जम का फासा, मन पूरन होई आसा, जह देखा तह सोई, हर प्रभ बिन अवर न कोई। कर कृपा प्रभ राखे, सब जन्म जन्म दुख लाते, निरपौ नाम से आया, अटल सुख नानक पाया। सोरठ महला पंजवा, फाड़ पाई करतारे, ताप छोड़ गया परवारे, गुरपुर है राखी, शरण सच्चे की ताकी, परमेश्वर आप हुआ रखवाला, सांत सहज सुख खिन में उपजे, मन हुआ सदा सुखाला। रहाओ हर हर नाम दियो दारू, तिन सगला रोग विदारू, अपनी कृपा तारी, तिन सगली बात सवारी। प्रभ अपना बिरद समारिया, हमरा गुण अवगुण ना विचारिया, गुर का शब्द

संवारे अपने दास का सदा रखवाला पर कृपा अपने कर राखे मात पिता जो पाला रहाओ वड पागी सतगुर पाया जिन जम का पंथ मिटाया हर भगत पाए चित लागा जप जीवे से वड पागा हर अमृत बाणी गावे सादा की दूरी नावे अपना नाम आपे दिया प्रभ करण हार रख लिया हर दर्शन प्राण आधारा एह पूरन विमल विचारा कर कृपा

हर संग सहाई पाया। जह जाये ता सुहेले कर कृपा प्रभु मेले। हर गुण गावो सदा सुभाई मन चिंदे सगले फल पावो। जी के संग सहाय रहाओ नारायण प्राण आधारा। हम संत जनारे नारा पतित पुनीत कर दीने कर कृपा हर जस दीने। पार ब्रह्म करे प्रतपाला सद जी संग रखवाला। हर दिन रैन कीर्तन गाये बहुर न जोनी पाये। जिस देवे पुरख विदाता

सिद्ध करत लाल तब चतुर पातरो आयो। रहाओ क्यों बिसरे इहो लाल प्यारो, सर्व गुणा सुख दायो, मंदर कर कै पंथ निहारो, नैन नीर पर आयो। हों हों पीत पयो है बीचो, सुनत देश निकटायो, पांबीरी के पात पर दो बिन देखे दूरायो। पयो किरपाल

सर्व गुना निध गायो, सर्व गुना निध रायो, रहाओ दूजा। सोरठ मैला पंजवा

उपाय सवाई लख अपराध कमावे कर उपदेश छिड़के बहु पांती बहुड़ पिता दल लावे पिछले अवगण बख्श लए प्रभु आगे मार्ग पावे हर अंतर जामी सब विद जाने ता किसते आख सुनाये कहने कथन ना पीजे गोविंद हर पावे पैज रखाये अवर ओट में सगली देखी एक तेरी ओट रहाये होए दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर आपे सुने विनंती पूरा सतगुर मेल मिलावे सब चूके मन की चिंती हर हर नाम अवखद मुख पाया जन नानक सुख वसंती सोरठ महला पंजवा सिमर सिमर प्रभ पय आनंदा दुख कलेश सब नाथे गुण गावत त्यागत प्रभ अपना कार्य सगले सांठे जग जीवन नाम सुम

आपे दाता आपे भुगता, क्या इह जंत विचारा, क्या गुण तेरे आख वखाने, कीमत कह न जाई, पेख पेख जीवे प्रभ अपना, अचरज तुम्हें वडाई, तार अनुग्रह आप सब स्वामी, पत मत कीनी पूरी, सदा सदा नानक बलिहारी, बाछो संता धूरी, सोरठ मैला पंजवा, गुर पूरा नमस्कारे, सब सबे काज सवारे, हर अपनी कृपा तारी, प्रभ पूरन तेज सवारी।

सिमर सिमर दयाला सब जी पय कृपाला जय जयकार गुसाई जिन पूरी बंत बनाए तू पारो स्वामी मोरा ते पुन पदा।

अपने सतगुर की वडियाई मन इच्छे फल पाई संतो दिन दिन चढ़े सवाई रहाओ जी जंत सब पै दयाला प्रभ अपने कर दीने सहज सुभाए मिले।